सुलेमान ने कहा, अनजान तरीके से इसका तख्त इसके सामने रख दो, देखें कि वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो राह रास नहीं पाते। मलिका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? वो कहने लगी, ये तो गोया वही है, हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सरे इताअत झुका दिया था, यानी हम मुस्लिम हो चुके थे। उसको ईमान लाने से जिस चीज ने रोक रखा था वो उन माबूदों की इबादत थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजती थी, क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी। उसे कहा गया कि महल में दाखिल हो। उसने जो देखा तो समझी कि पानी का हौज है और उतरने के लिए उसने अपने पांचे उठा लिए। सुलेमान ने कहा, ये शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को यह पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो यकायक वो दो मुतखासिम फरीक बन गए। सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते? शायद कि तुम पर रहम फरमाया जाए। उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया है। सालेह ने जवाब दिया, तुम्हारे नेक व बदशगुन का सररिश्ता तो अल्लाह के पास है, असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई इस्लाह का काम न करते थे। उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम खाकर अहद कर लो कि हम सालेह और उसके घर वालों पर शब खून मारेंगे और फिर उसके वली से कह देंगे कि हम इसके खानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद न थे, हम बिल्कुल सच कहते हैं, ये चाल तो वो चले और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर न थी, अब देख लो कि उनकी चाल का क्या अंजाम हुआ। हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी पूरी कौम को, वो उनके घर खाली पड़े हैं उस जुल्म की पादाश में जो वो करते थे। इसमें एक निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज करते थे।

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا.

बार इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं और इसमें हम अरबी में इस्तेमाल होने वाले जुमले बताते हैं आपको और मुख्तलिफ मूड के लिहाज से इसको तो हम खास अपना ख्याल में रखते हैं कि नहीं, इस मरतबा आपको जो अरबी सीखनी है ना अभी वो मूड कैसे उस पर डिपेंड करके सीखनी है। अच्छा, खुशी, हैरत, घबराहट, जल्दी, तो ये तमाम जो उमूर हैं इन मुख्तलिफ हालात में बात करने का अंदाज बदल जाता है। तो दोस्तों एक मरतबा फिर वही बात दोहराते हैं कि अरबी सीखने का मतलब यहाँ याद करना नहीं, सिर्फ हिफ्ज़ करना नहीं, बल्कि ये जानना है कि कौन सा जुमला किस मौके पर किस अंदाज में बोला जाता है। खासतौर पर आज के इस मौजू से रिलेटेड जो टॉपिक है वो ये कि अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, यानी जब मुलाकात अचानक हो, तो यहाँ तो भाई मामला ही कुछ अलग है। लहजा, रवैया और अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अहम बन जाता है। सामिन किराम, जब कोई मुलाकात अचानक हो जाए तो पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि आप फौरन रद्द अमल न दें, एक लम्हा रुकें, गहरा सांस लें और अपने आप को पुरसकून करें। तो यही छोटा सा वक्फा आपके पूरे रवैये को बदल सकता है। हमेशा मुस्बत नीयत फर्ज करें, यानी ये ना सोचें कि यह मुलाकात खराब होगी, बल्कि ये समझें कि शायद ये सीखने का मौका हो, ये एक अच्छी गुफ्तगू की शुरुआत। और ये बात जहन में खास जहर रख लीजिए कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना लहजा, अपना रवैया और अपना रद्द अमल जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं पहले उसलूब और पहले मूड की तरफ, जहां खुशी और अपनाइयत का अंदाज है। और ये तब होता है जब किसी करीबी दोस्त या अजीज, जान पहचान वाले से अचानक मुलाकात हो, तो अरबी में गर्म जोशी और मोहब्बत जाहिर की जाती है। अब वो क्या अल्फाज हैं, जैसे या अहले वसहला, अरे खुश आमदीद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, तशर्रफ्त बिरूयतिक, आप कैसे हैं, कैफ हालक, काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है, इसका रिस्की अरबी है, जमान वैनक, मिन जमान मा शफनाक, काफी अरसे से तुम्हारी जियारत नहीं हुई या तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। तो सामिन किराम, ये जुमले जो मुखातब है, जो अरबी अल्फाज सुनने वाला है, तो उसके दिल में ये एहसास दिलाता है कि आप खुश हैं, ये मुलाकात आपके लिए खुशगवार है। अब आते हैं दूसरे उसलूब की तरफ और उसमें कुछ सरप्राइज मूड है कि कभी मुलाकात ऐसी होती है कि जिसकी हमें कोई तवक्को नहीं होती। अब हम उस वक्त क्या कहेंगे? हाँ, आपको अगर मैं हिफ्ज करवा दूँ कई सारे अल्फाज और आप बस आप सीख लें और सब जगह में एक ही वो अल्फाज और आते रहे तो बात नहीं बनेगी ना। तो आपको कुछ अपनी पहले जैसे उस मूड पर हमने बात की थी कि अगर आप उस मूड में हैं तो आप क्या कहेंगे? हाँ, आप ये कहें कि हाँ जी, आपसे तो बड़े वक्त निकल गया, मुलाकात नहीं हुई, कहाँ थे आप, काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है। तो यहाँ देखें खुशी का अंदाज है कि आपसे मुलाकात हो, क्योंकि बड़ी खुशनसीबी है मेरी, बल्कि सिर्फ आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशनसीबी, यहाँ तक भी इस्तेमाल किया गया है इन जुमलों में। अच्छा जी, अब जो है सरप्राइज मूड में आपको कुछ अलग अल्फाज यूज करने, जैसे सरप्राइज्ड, यानी इसमें आपको बताना कि मैं तो बड़ा सरप्राइज हो गया हूँ। मुफाजा का मतलब है सरप्राइज, या लिल मुफाजा, अरे क्या हैरत है तुम इधर, लम तवक्का अन अराका हुना, मैंने यहाँ आपसे मिलने की तवक्को नहीं की थी, मैंने ये तवक्को नहीं की थी कि तुम इधर रहोगे, लम अतवक्का, मैंने तवक्को नहीं की, अन अराका हुना, कि तुम्हें इधर मिल जाए मुझे। मजीद उसी पर सवालात और भी बढ़ रहे हैं, मल्लज़ी जा अबिका इला हुना, आप यहाँ कैसे आए हैं, मल्लज़ी जा अबिका इला हुना, यानी सवाल ये दरअसल आप एक तो सरप्राइज हैं, अरे बंदा तुम यहाँ कहाँ से कैसे आ गए, मल्लज़ी जा अबिका इला हुना, अरे किस वजह से तुम इधर हो। तो ये जुमले न घबराहट है इसमें, न बदतमीजी है, न कुछ है, बल्कि इसमें हैरत का इजहार भी है बस, और दिलचस्पी भी। तो ये है सरप्राइज मूड। और अब हम रुख करते हैं बिजी मूड की तरफ, जहां आप मुख्तसर बात एहतियात के साथ, यानी बहुत ही थोड़े अल्फाज आप यूज कर रहे होते हैं। तो समझने के हम हर मुलाकात में, जैसे कि आपको आप जानते हैं, लंबी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी जाती, कभी वक्त कम होता है।

0: लेकिन फिर भी अदब के साथ बात ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ऐसे मौके पर अरबी में मुख्तसर मगर शाइस्ता जुमले इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं मुझे थोड़ी जल्दी है, अरे मुझे निकलना है, अना मुस्ताजिल, बस इतना भी यूज कर लेते हैं तो फिर चलेगा, यानी मुझे थोड़ी जल्दी है या मुझे जल्दी है, अना मुस्ताजिल, तारा मुस्ताजिल अना। इसी तरह नल्तकी लाहिकन इंशाअल्लाह बाद में मुलाकात होती है। तो इसके लिए आप अरबी डायलेक्टल लैंग्वेज में कई सारे अल्फाज हैं कि आप कह सकते हैं नतवासल इंशाअल्लाह, यानी हमारे मुलाकात या राब्ता होंगे बाद में, अब तो वक्त नहीं है, यानी आप इख्तिसार के साथ उनके मुलाकात को ख़त्म कर रहे हैं एहतियात के साथ। आप यहाँ ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते हैं, तो आप अस्सलाम वालेकुम अल्लाह तवासल इंशाअल्लाह, खलास अना मुस्ताजिल शुई, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, जल्दी है मुझे, इंशाअल्लाह बाद में मुलाकात होती है, बाद में फ़ोन कॉल पर बातचीत होगी, ना तवासल, हम बाद में तवासुल करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह ये भी होती है कि कोई ये जुमला कह दे कि मैं, अच्छा जी मैं बाद में आपको फ़ोन करूँगा, तो यहाँ सअत्तसिलु बिका लाहिकन, ये है अरबी, इसका तर्जुमा ये होगा कि मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। ठीक है, मजीद सामने कराम आते हैं चौथे उसलूब की तरफ, जहाँ थोड़ा एक दोस्ताना मूड है आपके सामने वाला, वो ज़्यादा करीबी नहीं है मगर एहतराम भी ज़रूरी है, तो आप अरबी में कोई जज्बात भी ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं, बेतकल्लुफ भी ना हो बल्कि तवाज़ुन रखा जाए। हाँ जी, क्या होगा, सईदुन बिलकाउ, अरे तुम्हें मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, सईदुन बिलकाउ, अतमन्ना अंतकुन खैर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो ये जुमले पेशवराना शाइस्तगी और समाजी समझ बोझ को ज़ाहिर करते हैं। समझ कराम अरबी ज़बान की असल खूबसूरती इसी में है कि वो हमें सिखाती है रुक रुक कर बात करना, सामने वाले को इज्जत देना, मौके के मुताबिक अल्फाज चुनना और अपने रवैये को काबू में रखना। अगर हम खुले जहन, लचकदार सोच और मुस्बत रवैये के साथ अचानक मुलाकातों को देखें तो वो दबाव नहीं बल्कि एक अच्छा तजुर्बा बन सकती हैं। और यही है लर्न अरबिक विद अस ट्यूटर तलहा का मकसद, कि अरबी को सिर्फ जबान नहीं बल्कि जिंदगी की एक महारत बनाना। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं प्रोग्राम के तत्बीकी मरहले में, वहाँ हम इस वक्त तक जो स्ट्रेटजीज वगैरह जो हमने सीखे हैं, जानने की कोशिश की है, उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, जैसा कि आपको पता है कि एक इल्म का नाम है। ओवरऑल जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए, और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं, इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक।
0: वेलकम एक्सामिन, एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम लर्न अरबिक विद अस में। अब हम प्रोग्राम के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां अरबी के जुमले हम उसको आपके रवैये, आपकी शख्सियत, आपके असर का हिस्सा बनाकर छोड़ेंगे। यानी हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में कुछ जुमले ऐसे होते हैं जहां कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं है और जहां बेतकल्लुफी भी नहीं बल्कि खूबसूरत तवाज़ुन है मोहब्बत और अदब के दरमियान, और यही जुमले हमारी गुफ्तगू को मुअस्सर भी बनाते हैं और दिलनशीन भी। सामिन किराम, हर लफ्ज जो हम बोलते हैं सामने वाले पर एक असर छोड़ता है, और जिस लहजे में हम बोलते हैं वो हमारी शख्सियत का आईना होता है। इसीलिए अचानक मुलाकात के वक्त हमें ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए जो न सिर्फ दुरुस्त हों बल्कि दिल को भी छू जाएं। अच्छा जी, तहकीकात की तरफ आते हैं, तो तहकीकात ये बताती हैं, एक मशहूर मुताला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये मुताला शाये किया गया है, वो कहते हैं कि जब हम मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख़ास कीमियाई मादा खारिज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। यही मादा दिल को सुकून देता है, एतमाद बढ़ाता है और सामने वाले को जज्बाती तौर पर ज़्यादा मुस्बत रद्द अमल देने पर आमादा करता है। बाज़ वैसे आपको तो ये पता है कि अच्छे अल्फाज सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते बल्कि दिल और दिमाग

0: दोनों पर असर डालते हैं। तो सामिन इकराम, अब आपका टाइम आ गया है, आपका वक्त है, आपकी आवाज़, आपके लहजे और आपके एतमाद का जायजा अब हम लेंगे। मेरे साथ वाज़े तलफ़ुज़ और दोस्ताना अंदाज में दोहराइए, तशर्रफ़्त बिरुयतिक। इसका क्या मतलब बना? मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई है, तशर्रफ़्त बिरुयतिक। इसी तरह एक्साइटमेंट या हैरतनाक बात के लिए आप क्या यूज करेंगे? बहुत ही कॉमन लफ्ज है, या मुफाजा, अरे क्या हैरत है। इसी तरह आप कहीं मुख्तसरन अपनी मीटिंग को ख़त्म करने करना चाह रहे हैं, तो सूरत आपने सिर्फ ये कहना कि अरे मैं मुस्ताजिल, मैं मुझे थोड़ी जल्दी है, ना मुस्ताजिल खेलन, मुझे थोड़ी जल्दी है। और ध्यान रखिए जुमले यानी बहुत ही महजब और मौसर हैं। अब जो है ना हम ज़रा सुनने की मशक करते हैं, यानी आप जो हमारी बात सुन रहे हैं, अब एक मुख्तसर मुकालमा सुने और गौर करें कि यहाँ अल्फाज और लहजा कैसा तासुर दे रहे हैं। अच्छा, पहला बंदा ये कहता है कि या अहले वसहला, लम तवक्का नराक हुना, अरे मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इधर रहोगे या तुम्हें मैं इधर देखूंगा। दूसरा बंदा कहता है कि अरे तशर्रफ्त बिरुयतिक, अना मुस्तअजिल क़लीलन, अरे मुझे बड़ी खुशी है तुमसे मुलाकात करके, वैसे मैं थोड़ा वो हूँ, जल्दी में हूँ। तो सामने किराम, ये चंद अल्फाज हैं जो हमारे लम्हे को खूबसूरत बनाते हैं, सामने वाले के दिल में एक अच्छा एहसास छोड़ जाते हैं। ये सच है कि अल्फाज का असर बाज़ औक़ात आरज़ी लगता है, लेकिन वक्त के साथ यही असर एक मुस्तकिल तासुर बन जाता है। इसीलिए दुनिया के ज्यादा पुरकशिश और मौसर लोग अक्सर एक ही किस्म के अच्छे और मुस्बत जुमले बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छे अल्फाज इंसान का सबसे ताकतवर हथियार होते हैं। आप भी ये तजुर्बा करके देखें, एक हफ्ते के लिए रोजाना सिर्फ चंद मुस्बत जुमले बोलें, आप हैरान रह जाएंगे कि लोगों का रद्दअमल और आपकी अपनी कैफियत दोनों कैसे बदलने लगते हैं। तो खुलासा ये है सामिन कराम, कि अरबी सीखने का मकसद बोलना नहीं सिर्फ, बल्कि असर छोड़ना है, और असर हमेशा अच्छे लफ्ज, अच्छे लहजे और अच्छे रवैये से पैदा होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद बिल्लाह ताला।
1: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए, और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक।
0: सामिकराम, हम इस वक्त प्रोग्राम के सेकंड लास्ट मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ये वो हिस्सा है जहां अरबी जबान को हम आपको जब अमली तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे। वैसे याद रखिए, हमारी ज़िंदगी में कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर सादा लगते हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। ख़ास तौर पर अचानक मुलाकात के वक्त, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के दौरान, जब न तैयारी होती है न मनसूबा, वही अल्फाज हमारी शख्सियत का तारुफ बन जाते हैं। सामने कराम, माहिरीन कहते हैं कि मोहब्बत और अदब के दरमियान जो मुतवाजन जुमले होते हैं, वही हमारी समाजी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि मुस्बत अल्फाज दिमाग में एक खास मादा पैदा करते हैं जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। यही मादा सुकून, अपनाइत और एतमाद को बढ़ाता है। यानी जब आप अच्छे अल्फाज बोलते हैं तो सामने वाले के दिल ही नहीं दिमाग पर भी मुस्बत असर डालते हैं। सामिन इकराम, अब आप मेरे साथ वाज़े और दोस्ताना लहजे में दोहराइए, तशर्रफ़्त बिरुयतिक। आपसे मिलकर खुशी हुई है, या मुफाजा, क्या हैरत है। अना मुस्तअजिल, अरे मुझे थोड़ी जल्दी है। अना मुस्तअजिल, तो ये वो जुमले हैं जहाँ तकल्लुफ कुछ नहीं बल्कि अपनाइयत, वक़ार दोनों का खूबसूरत इम्तिज़ाज है। अब आते हैं सामिन इकराम सुनने की मश की तरफ। वैसे हर इंसान को जुमले सुनना पसंद करता है। ये जुमले दोस्ती को मजबूत और ताल्लुक को गहरा बना देते हैं। जैसे कुंत फिक्र फीक, मैं तुम्हें याद कर रहा था। ये बातों बात में आपने ये बता दिए, काफी अरसे बाद मुलाकात हुई, लेकिन साथ साथ आप ये कह रहे हैं कुंत फिक्र फीक, मैं तुम्हें याद कर रहा था। अब ये जुमला सामने वाले को यह एहसास देता है कि वो आपके दिलो दिमाग में है। अचानक मुलाकात में आप कह सकते हैं कुंत फिक्र फीक, अरे मैं तो तुम्हें याद कर रहा था।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। सामने किराम, प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के इस समंदरी सफर में, इस कुरानी सफर में आपका खैर मकदम है। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज की गुफ्तगू एक ऐसे कुरानी सवाल से शुरू करते हैं जो बज़ाहिर चंद अल्फाज पर मुश्तमिल हैं, लेकिन हकीकत में ये इंसान के पूरे ईमान, उसके एतमाद, उसके खौफ, उसकी उम्मीद और अपने रब के साथ उसके ताल्लुक को एक आयना फराहम करता है। अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? जरा इस सवाल को दिल के करीब लाइए। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? तुम मुझे कैसा समझते हो? मेरे बारे में तुम्हारा तसव्वुर क्या है? मेरी रहमत के बारे में तुम क्या सोचते हो? मेरे वादों पर तुम्हें कितना यकीन है? मेरी कुदरत को तुम कहाँ तक मानते हो? और जब

हालात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चले जाएं, तब भी तुम अपने रब के बारे में वही हुस्न-ए-ज़न रखते हो या नहीं। अब इस सवाल के अंदर कई सारे सवाल पोशीदा हैं, और जब अल्लाह सवाल करता है तो उसे हमारी मालूमात की जरूरत नहीं, वो तो यालमु सर्र व अख्फा, राज को भी जानता है और उससे ज्यादा पोशीदा चीज को भी। लिहाजा अल्लाह का सवाल दरअसल हमें हमारे अपने दिल से मुतारिफ कराता है, वो पूछता है ताकि हम खुद अपना जवाब सुने, वो आजमाता है ताकि नतीजा उसे मालूम हो, ऐसा नहीं बल्कि ताकि हमें मालूम हो जाए कि हम कहाँ खड़े हैं। जरा इंसानी ताल्लुकात को देखिए, हम किसी अजनबी के लिए हमदर्दी महसूस कर सकते हैं, रास्ते में किसी जरूरतमंद को देखें तो मदद कर सकते हैं, कोई बे इरादा हमारे पांव पर कदम रख दे और फौरन माजरत खा निगाह से देखे तो हम उसे माफ कर सकते हैं, हत्ता कि कभी दुश्मन भी बेबस होकर सामने आ जाए तो दिल में रहम पैदा हो सकता है। इंसान बहुत से जज्बात आसानी से जाहिर कर देता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो वो आसानी से नहीं जाहिर कर सकता, वो है एतमाद। आप सड़क पर गुजरते हर शख्स पर एतमाद नहीं करते, आप किसी अजनबी से पहली मुलाकात में अपनी तमाम राज बयान नहीं कर देते, क्योंकि एतमाद मुफ्त नहीं मिलता, एतमाद तजुर्बात से बनता है, वफादारी उसे बढ़ाती है, सच्चाई उसे मजबूत करती है, और एक खयानत उसे बरसों बाद भी तोड़ सकती है। यूं समझ लीजिए कि एतमाद दिल के अंदर रखी हुई एक कीमती अमानत है, उसका दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो अपने किरदार से उसका मुस्तहक साबित हो। और अजीब बात यह है कि एतमाद बनने में वक्त लगता है और टूटने में सिर्फ एक लम्हा। अब उन लोगों को देखिए जिन पर आप एतमाद करते हैं, एक सच्चा दोस्त, आप उसके सामने अपने राज रख देते हैं क्योंकि आपको यकीन है कि वो कल उन्हीं राजों को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। एक शौहर अपनी बीवी पर एतमाद करके घर, माल और इज्जत की अमानत उसके हवाले करता है और काम या सफर के लिए निकल जाता है, ये एतमाद की एक सतह है। इससे आगे एक और मंजर देखिए, एक बाप अपने नन्हे बच्चे को हवा में उछालता है, बच्चा खौफ से नहीं चीखता बल्कि हंसता है, क्यों? क्योंकि उसे यकीन है कि मेरे वालिद मुझे गिरने नहीं देंगे। एक मुसाफिर जहाज में बैठता है, उसने पायलट को शायद कभी देखा भी ना हो, लेकिन अपनी जान उसके फन्ने एतमाद के हवाले कर देता है। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाता है, बेहोशी की दवा लेता है, अपना जिस्म जर्राह के हाथ में छोड़ देता है, उसे मालूम है कि एक मामूली गलती जान ले सकती है, लेकिन फिर भी वो खुद को उसके हवाले कर देता है। ये सब क्या है? इंसान का इंसान पर एतमाद। अब इसी मकाम पर कुरान का सवाल आता है, फमा ظنكم برب العالمين, जब तुम इंसान पर इतना एतमाद कर सकते हो तो रब العالمین के बारे में तुम्हारा गुमान क्या है? अगर तुमने अपनी जान ऐसे इंसान के हवाले कर दी जो गलती कर सकता है, बदल सकता है, भूल सकता है, थक सकता है, कमजोर पड़ सकता है, तो उस खालिक पर तुम्हारा एतमाद कितना होना चाहिए जो न भूलता है, न गलती करता है, न उसका इल्म कम होता है, न उसकी कुदरत में जवाल आता है। सामिन इकराम, जरा अपनी जिंदगी पीछे मुड़कर देखिए, कितनी बार कोई रास्ता मुकम्मल बंद दिखाई दिया और अल्लाह ने वहीं से रास्ता निकाल दिया, कितनी बार बीमारी आई फिर शिफा आई, कितनी बार थकन ने घेर लिया फिर सुकून आया, कितनी बार खौफ ने दिल को जकड़ा फिर ऐसी जगह से इत्मीनान आया जहां से आपने सोचा भी न था, कितनी बार आपने कहा अब शायद कोई रास्ता नहीं और फिर अल्लाह ने दिखाया, रास्ता तुम्हें मालूम ही नहीं था, मुझे मालूम था। फिर एक सवाल अपने आप से जरूर कीजिए कि अल्लाह कितनी बार मेरे साथ रहा और मैं कितनी बार अल्लाह के साथ रहा। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमूतन अहदुकुम इल्ला वहुव युहसिनु ज़न्न बिल्लाह, तुम में से कोई शख्स इस हाल में न मरे मगर ये कि वो अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखता हो। यानी मोमिन की जिंदगी का आखिरी सरमाया भी हुस्ने ज़न बिल्लाह होना चाहिए। ये हुस्ने ज़न कोई ख्याली खुशफहमी नहीं, ये ऐसा एतमाद है जो अल्लाह की मारिफत, उसके वादों, उसकी रहमत और उसकी हिकमत पर कायम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम का वो लम्हा याद कीजिए, अल्लाह ताला अंबिया के बारे में फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहुम मुक्तदी,
ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, बस उन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर फिराउन से निकले, आगे समंदर पीछे फिराउन का लश्कर। जाहिर के तमाम असबाब कह रहे थे बस अब बचने का रास्ता नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही बोल उठे, इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। ये महज खदशा नहीं था, लफ्ज में ताकीद है, उन्हें यकीन हो चला था कि अब हम बच नहीं सकते। सामने पानी, पीछे दुश्मन। जमीन के आम कवानीन में रास्ता वाकई नजर नहीं आता था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब आया, कल्ला इन्ना मअया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। ये है हुस्न ज़न, यानी हकीकत का इनकार नहीं, खतरे को झुटलाना नहीं, बल्कि खतरे को देखते हुए भी रब की कुदरत को खतरे से बड़ा समझना। फिर गारे सौर का मंजर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गार में हैं। ताकुब करने वाले इतने करीब पहुंच गए कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, अगर इनमें से कोई अपने कदमों के नीचे देख ले तो हमें देख लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो, परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ हैं, यानी सामने खतरा मौजूद है मगर दिल के सामने अल्लाह उस खतरे से बड़ा है। यही ईमान है। अब कोई कह सकता है कि अरे ये तो अंबिया है, अरे इनका मकाम ही कुछ अलग है। तो ये भी जान लीजिए सामने किराम, कुरान आम इंसान की कैफियत भी बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते थे सब गायब हो जाते हैं। शदीद खौफ में दिल अपनी असल पहचान लेता है, तब जबान से पर्दे उतरते हैं और इंसान अपने हकीकी रब को पुकारता है। लेकिन इम्तिहान ये है कि खुशकी पर वापस आने के बाद भी वही एतमाद बाकी रहे या नहीं। हुस्न ज़न का मतलब ये नहीं कि गुनाह करते रहें और कहें अल्लाह मुझे जरूर माफ कर देगा, ये गुरूर है, हुस्न ज़न नहीं। हुस्न ज़न ये है कि बंदा कोशिश करे, दुआ करे, तौबा करे, असबाब इख्तियार करे, फिर अपने रब की रहमत, हिकमत और वादे पर मुतमईन रहे। सालिह बंदा हो या खताकार, अल्लाह को सच्चे दिल, आजिज़ी और यकीन के साथ पुकारने का दरवाज़ा सब के लिए खुला है। अब इसी मकाम पर एक और नहायत बारीक मसला सामने आता है। कभी इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है मगर अपने बारे में मुतमईन नहीं होता। ये दोनों चीज़ें मुतजाद नहीं। बंदा अल्लाह की रहमत के बारे में बेहतरीन गुमान रख सकता है और अपने अमाल के बारे में खौफ भी रख सकता है। वो कह सकता है कि मेरा रब करीम है, लेकिन मैं अपने अमल को कबूलियत के लायक समझकर गुरूर नहीं करूंगा। यही अंबिया और सालिहीन का रास्ता है। कुरान अंबिया की सिफत बयान करता है, इन्नहुम कानू युसारिउन फिल खैरात वयदउननना रगबन वरहबा वकानू लना खाशिउन, वो नेकियों में मुसाबकत करते थे, एक दूसरे से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, हमें उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते थे और हमारे सामने झुके रहते थे। और कीजिए, यहाँ नेकी भी है, दुआ, उम्मीद, खौफ और खुशू भी, ये सब एक ही दिल में जमा है। दुनिया में कभी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो बड़ी कुर्बानियों, शदीद आजमाइशों या नहायत मुश्किल हालात में भी अल्लाह को पुकारते रहते हैं। उनकी जबान पर कबूलियत की दुआ होती है, मगफरत की दरख्वास्त होती है और दिल में ये खौफ होता है कि कहीं हमारा अमल रद्द ना हो जाए। तो असल बात यह है कि जितना इंसान अल्लाह के करीब होता है उतना ही अपने अमल पर गुरूर से बचता है। वो अपनी कुर्बानी को सनद नजात नहीं समझता, वो कहता है कि ए अल्लाह कबूल फरमा, ए अल्लाह माफ़ फरमा, ए अल्लाह मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल फरमा, मुझे अपनी रजा से महरूम न करना। यानी अमल बड़ा हो सकता है मगर दिल फिर भी झुका हुआ रहता है। उसके मुकाबले एक दूसरी कैफियत है कि कभी इंसान के पास नियमतें मुसलसल आती रहती हैं, रिज़्क वसी होता है, कारोबार बढ़ता है, मनसब मिलता है, घर और गाड़ी सब कुछ मिल जाती है, एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है, और फिर वो अपने दिल में एक खतरनाक नतीजा निकालता है कि अल्लाह मुझसे बहुत खुश है इसलिए मुझे ये सब मिल रहा है। देखिए, ये नतीजा लाजमन दुरुस्त नहीं। दुनियावी फरावानी बजात खुद अल्लाह की रजा की कतई सनद नहीं। इसीलिए कुरान सवाल करता है, अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ،
نسارع لهم

0: FM 107 Time Check. Time Check.
1: गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, समय हो चुका है 6:01, दिस इज़ योर कैप्टन स्पीकिंग, आपका बंटी एयरलाइंस में स्वागत है। आज की जो दूरी है दोहा से दोहा की, हम 3 घंटे में पूरी करेंगे। हालांकि हमारा जहाज़ 3 घंटे बादलों में रहेगा, गरजते बरसते बादलों के बीच।

आपका स्वागत है। इस जहाज से कूदने का कोई द्वार नहीं है, हमने सारे दरवाजों को बंद कर दिया है। जलपान की सेवा आपसे कुछ देर में शुरू हो जाएगी और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हमारे कैप्टन आज जहाज को आड़ा टेढ़ा उड़ाएंगे। गुड मॉर्निंग।

0: 15 मिनट का सिक्योरिटी गार्ड आज रे भाई साहब, और वीकेंड हो लिया, हफ्ता शुरू हो गया भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया। व्हाट्सएप उठा लो, 666-22-107 नंबर है, आपको तो पता ही है, यू नो व्हाट टू डू, 666-22-107। अच्छा, मेरी एक शिकायत है, मैं उसके बारे में थोड़ा खुल के बात करूंगा, लेकिन मैं भाई सीधा सीधा बात करना चाहता हूँ, मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब मैं देख रहा हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा गेमर मानता हूँ अपने आप को भाई, मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग वीडियो गेम को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, इतने वीडियोस मेरे सामने आते रहते हैं, ये वही लोग हैं जो खुद वीडियो गेम खेलते तक नहीं है। मोबाइल गेमिंग को ये लोग उठा के जज करते हैं गेमिंग को, मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गेमिंग को, वो खुद ना कभी खेले, ना इनको पता कि पीसी कंसोल पे गेमिंग कैसे होती है, मोबाइल के गेम्स के बेसिस पे लोग जज कर लेते हैं, मत क्या करो, सच में अच्छा नहीं लगता, वो लैक ऑफ नॉलेज लगती है भाई। मैं एक तो रोस्ट नहीं कर सकते क्या बताऊँ मैं, इतना कंट्रोल मेरे ब्लड प्रेशर के लिए, प्लीज़ ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता। और ये दूसरे किस्म के लोग जो है ना, वो कतर को कतार कतार बोलने वाले, मत क्या करो, नहीं अच्छा लगता प्लीज़ अजीब सा लगता, देसी इंसान बोलता हो ना कतार, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता भाई, प्लीज़ डोंट डू इट, हाथ छोड़वा लो आज मेरे, मैं टायर्ड हो चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया डिलीट कर दूंगा अपना। सुजीत भाई वालेकुम अस्सलाम, फ्रॉम मुमसराल मैसेज किया मैंने, एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार, अल्हम्दुलिल्लाह गुड मॉर्निंग, एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, गुड मॉर्निंग कैप्टन साहब, हाँ जी बढ़िया भाई, आसिफ असलम भाई का, आलम भाई क्या हाल है भाई के, और मैसेज है अब्दुल करीम भाई का, अस्सलाम वालेकुम भाई गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड, केड़ा वीकेंड भाजी, वो तो निकल गया अब कौन सा वीकेंड। मोहसिन भाई वालेकुम अस्सलाम, देखते हैं प्रेजेंट टू जी रोल नंबर टू, बहुत अच्छे बच्चे आ गए आप, मुबारक हो। अच्छा, आज की जो कहानी है भाई, बहुत ज़रूरी कहानी है, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी, मैं कुछ भी इसके बारे में बताऊंगा मामला ही ख़त्म हो जाएगा, सो मैं कुछ नहीं बताना चाहता। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी पन्ना है जो आज मैं आपको सुनाऊंगा, और आपको सुनना है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, वह प्लीज़ पता है कोई भी आपके आसपास बोले ना कतार, रोक देना उसे, देसी लोगों पर अच्छा नहीं लगता हम तो अच्छे से बोल सकते हैं, कतर है भाई, कौफ कतर, कतार नहीं है कतार। 6:05 मिलते हैं 10:33 के बाद, और फिर ज़रा बात को आगे बढ़ाएंगे, नहीं करो यार प्लीज़, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है ऐसी रीले देख देख के, सही में स्टे ट्यून्ड।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

के लीजिए, ये आपकी मर्जी है। बाकी अभी जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो कुछ हद से ज़्यादा है, 73%, ये कोई मजाक है, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा लग सकती है। बाकी ज़्यादा उम्मीदें लगाइएगा नहीं मौसम से, ज़रूरत है नहीं भाई। आज टेम्परेचर जो मैक्सिमम जाएगा वो 43 के आसपास जाने की संभावना है, दैट इज़ ऑल आई कैन से। इससे ज़्यादा कुछ मौसम में है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, व्हाट्सएप 666-22107 है। और मैं जैसे शुरुआत में कह रहा था, जो लोग आजकल गेमिंग को क्रिटिसाइज़ करते हैं उन्होंने कभी ना खुद गेम खेला है ना वो गेमिंग को जानते हैं, तो क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं मेरे समझ के बाहर है। मत बनाओ वीडियो यार मैं थोड़ा सा तंग आ गया हूँ बता रहा हूँ, इतना कंट्रोल करना पड़ता है, नाम से पहले आरजे लगा हुआ है, मेरे ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं रखते हैं लोग, मत बनाया करो वीडियो, अच्छा नहीं लगता। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे? मैं बढ़िया सलमान भाई। फरद भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या हाल है? शाहिद भाई, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। एंड देन तौफीक भाई का मैसेज, कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, तौफीक अल वखरे से, थैंक यू सो मच मेरे भाई मैसेज करने के लिए। एंड जैसे मैंने कहा ना, दूसरी पब्लिक वो है जो कतार बोलती है, मैं जी कतार से हूँ, आप कतार से नहीं, आप कतर से, दैट इज़ द राइट वे टू से इट। वो अंग्रेज़ों पर जचता है, अंग्रेज़ तो हमारी दिल्ली को कहते हैं डेल्ही, आई वांट टू डेल्ही, तो डेल्ही थोड़ी है, दिल्ली है ना, तो ओके वेल, ये सारी बातें अलग हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेक इट आउट, है ना, दिल का गुबार होता तो मैं आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा, दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट टाइम यू सी समबडी क्रिटिसाइजिंग अ वीडियो गेम, ज्यादा मत खेलो बच्चे इससे बिगड़ जाते, ये सारे मोबाइल गेमिंग खेल के और मेन गेमिंग को वो करते हैं लोग क्रिटिसाइज, और ऐसे बताते हैं जैसे बच्चा गेम नहीं खेल रहा, पता नहीं घर पे क्या कर रहा है बंदूक की नलियाँ साफ कर रहा है घर पे बैठा हुआ अरे यार, एनीवे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, एंड ये दिन जो है बहुत लोगों को क्या कहते हैं ट्रिगर करने वाला पर उससे पहले मेरे पास एक वीडियो है शहजादा सलीम का, आई थिंक सबके सब मिले हैं, शहजादा सलीम ने जो वीडियो भेजा है, हमारे बहुत सारे लिसनर्स एक दूसरे से मिले एंड चाय की पार्टी हुई है। शहजादा सलीम सुनो, मुझे बताओ डिस्कशन कितना हुआ मेरा, मेरे बारे में क्या क्या हुआ है, मुझे सब डिटेल चाहिए। शहजादा सलीम सब कुछ मुझे मैसेज में चाहिए, समझ गए आप? अगर आपने नहीं बताया ना शहजादा सलीम, मैं शहजादा सबसे पहले उड़ाऊंगा, उसके बाद सलीम, ठीक है? और अनारकली तो फिर दूर दूर तक नहीं दिखेगी, तो चुपचाप से मैसेज करके जितनी गॉसिप है सारी की सारी दे दो, ओके? आई एम वेटिंग। सुमुल बहन गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? बढ़िया चल लो है सब? देखो भाई, आज है 20 तारीख और आज की तारीख में एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है जो बहुत लोगों के काम आएगा, बहुत लोग बोलेंगे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आई नो दैट बहुत सारे लोग बोलने वाले, पर जिनका लेना देना है मुझे उनसे बात करनी है। आज है, रेडी, आज है वाइफ अप्रिसिएशन डे मैं अमूमन ऐसे दिन मनाता नहीं हूं, बट वाई नॉट, वाई नॉट, आज का दिन तो बनता है। तो जिनकी जिनका ब्याह हो चुका है, मैं उनसे नहीं कह रहा कि आज क्या कहते हैं तारीफ करिए भाभी जी की, नहीं, वो तो आपको करनी पड़ेगी जीवन का बेटे यही सार है। मैं आज ही जानना चाहता हूँ कि कौन सी एक क्वालिटी, क्योंकि हम 2026 में आ चुके हैं, आई वॉन्ट टू नो कौन सी एक क्वालिटी है जो आप बिल्कुल पार्टनर में चाहते नहीं, सिर्फ एक क्वालिटी आपको बतानी जो आप पार्टनर में बिल्कुल नहीं चाहते, सिर्फ एक क्वालिटी। अप्रिसिएशन तो आपको करना ही पड़ेगा, पूरे दिन आप नहीं भी करेंगे, आज वाइफ अप्रिसिएशन डे नहीं भी होता तब भी आपको करना पड़ता, आपके फरिश्ते भी करते हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि कौन सा एक ऐसा पार्ट है, कौन सी ऐसी नॉट अ क्वालिटी रियली, बट कौन सी ऐसी एक बात है जो एक पार्टनर में नहीं होनी चाहिए 2026 में। और सुम्बुल बहन तो डर गई, कह रही ओ माय गॉड, अब ये आदमी तारीफ भी नहीं करने देगा लड़कों को। एक मैसेज है, इग्नोरिंग बात बिल्कुल सही है भाई की, अब्दुल अहमद साहब कह रहे हैं इग्नोर, मुझे नहीं पसंद इग्नोर करें मुझे कुछ, भाई साफ भाई मैं आपके साथ कंप्लीटली अग्री। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू? अलीना गई हैं आप ये बताइए सबसे पहली बात, तो मम्मी को कन्विंस कर लिया था ना आपने जाने के लिए, सो व्हाट हैपेंड, जाना हुआ, बढ़िया रहा दिन? शहजादा सलीम कह रहे हैं वॉच ऑल वीडियोस, भाई एक ही तो वीडियो भेजा आप ना, इसमें कह देख लूँ मैं भाई, मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं देते आप शहजादा सलीम, बता रहा हूँ मैं, उठवा लिया करें भाई हम, कब्जा कर लेंगे अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि पार्टनर में कौन सी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब
नॉट रियली रिक्वायर्ड. ये नहीं हो तो भाई बेहतर है. बाकी हम सब होता है ना कि आप ये तो नहीं कह सकते कि परफेक्ट पार्टनर हो. ऑब्वियसली यू कांट हैव अ परफेक्ट पार्टनर, इट डज नॉट एग्जिस्ट.

0: लेकिन होता ना चलो सारी बुराइयां झेल लेंगे, ये वाली झेली नहीं जाएगी भाई। फरद भाई कह रहे हैं भाई बस शक करना छोड़ दें, दुनिया की सारी खुशी उसके नाम कर दूं। मेरा भाई एक तो मैं पता है वो चीज़ निकालना भूल गया मैंने जो तैयार करी है भाई, ये फरद भाई यू अर्नड इट भाई, बंदा भाई बनता है भरत भाई, बनता है बनता है। क्या बात कही है भाई ने, क्या बात कही, कह रहा मैं बस शक करना छोड़ दो यार, बाकी सब तो मैं झेल लूंगा, टेंशन नहीं मेरा भाई। अच्छा एक भाई ने बड़ी कमाल की मैसेज करी है, मैसेज करी है कमाल का मैसेज करी है करा है और इनका कहना है कि भाई बस मेरी होने वाली पार्टनर सोशल मीडिया पे वीडियो ना बनाती हो। अरे मेरा भाई क्या बात है, मैंने बताया था ना ये वाली जो चीज है ना, इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक जो है शादी होते होते टूट गई थी, क्योंकि वहां पे ये हुआ कि सामने वाली जो पार्टी थी मेरे ख्याल में लड़की की तरफ वालों ने कहा कि देखो भाई हमारी लड़की को कपल वीडियोस बनाने हैं सोशल मीडिया पे, तो लड़के ने कहा मुझे नहीं बनाने, तो उन्होंने कहा नहीं फिर तो शादी हो ही नहीं सकती तो शादी टूट गई जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू मेक वीडियोस ऑन सोशल मीडिया। वेरी गुड, ये जो आपने बात रखी है इफ्तकार भाई, वेरी गुड भाई। सुमुल भन कहती है मेरे से कोई लेना देना नहीं आज के टॉपिक का, क्यों मतलब आपको सारी क्वालिटीज़ मंजूर हैं, ये तो कोई बात नहीं। टीचर साहिबा ये बैकफुट पे खेलना बंद कीजिए नहीं चलेगा। और अरे माशाल्लाह माशाल्लाह ये ये ये जो फोटो क्लिक हुई है यस आई डिड गो एंड लेफ्ट एट 9, ये इतने प्यारी फोटो जो खींची है मुबारकबाद सबसे पहले तो। एंड अलीना डरी हुई क्यों है बेटे, क्या हो गया अलीना? अच्छा हाँ, तो मैं कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट येट इट रिक्वायर्स यू टू थिंक। हम कहते हैं ना कि सारे ऐब मंजूर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अपने पार्टनर की मैं नहीं कहूँगा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मगर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लॉट ऑफ सिचुएशन, इंसान कर भी लेता है, मगर कुछ चीज़ ऐसी होती है जिस पे कोई आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता भाई। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि कौन सी वो चीज़ है जो पार्टनर में नहीं होनी चाहिए, बस एक चीज़ जो नहीं चली जाएगी। और ये दूसरे शख्स से इनका भी यही कहना है भाई का, अब्दुल करीम भाई कह रहे हैं बस शक करना छोड़ दें, इतना दूर हूं फिर भी शक करते हैं यार। अरे रे रे बेचारा अब्दुल करीम भाई, काम खा रुला दिए मुझे सवेरे सवेरे जेवत के 24 मिनट में, कह रहे हैं इतना दूर तब भी भाई क्यों शक किया जा रहा है आप, मतलब इतनी दूर बैठे तो दिक्कत क्या है। मोहसिन भाई कह रहे हैं मेरे लिए नहीं क्यों, कभी शादी नहीं करोगे, मतलब क्या मसला क्या। सुम्बुल बहन कह रही है गुस्सा, वेरी गुड गुड पॉइंट सुम्बुल बहन, कह रही है गुस्सा नहीं होना चाहिए बस, मैं कुछ भी करूं जिंदगी में धनिया बोलूं तुम गुस्सा नहीं कर सकते सही है बहन, मैं आपके साथ हूं, क्या मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं। एक मैसेज है, 3 दिन से मुंह फुलाकर बैठी है यार, अब्दुल करीम भाई को टेंशन हो रही है भाई, अब्दुल करीम भाई क्या करें। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया
0: अब्दुल करीम भाई, रो रहे हैं आपको हंसी आ रही, वो कह रहे हैं कि 3 दिन से मुंह फुला के बैठी हूँ भाभी हमारी इंडिया में। हाँ वो क्या कोई सजेशन दीजिए, सो सॉरी से क्या चलेगा, बेचारे को मदद चाहिए,
1: हरकतें क्यों करते हैं ऐसी के गुस्सा होने की नौबत आए।
0: अब्दुल करीम भाई कोई नहीं है भाई हमारे दुनिया में, भाई कोई नहीं है
1: क्यों गुस्सा दिलाते हैं, क्यों हरकतें करते नहीं करते
0: सही है सही है सही है, तो ऑब्वियस सी बात है। सुमुल भाई क्या फिर क्या कहना है, कौन सी क्वालिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए,
1: पहले ही बताए सुबह सुबह कौन दोहा पहुंच गया था,
0: कौन दो, मैं नहीं गया था मैं नहीं गया था
1: जी जी हाँ, ये देखिए लोग ये जो राज है ना ये आप लोगों से छुपाते हैं।
0: अरे कौन सा
1: पब्लिक आवाम सुने कि ऐसे लोग होते हैं ना छुपे रुस्तम जो बीवियों को सुबह सुबह दोहा पोर्ट लेके जाते हैं मनाने।
0: अरे भैया हम
1: ये अपने राज नहीं बताते, ये अपने राज नहीं बताते, हम बता रहे हैं आपको
0: मैं आराम से सोया हुआ हूँ, गाड़ी जो है सिर्फ मैं ही नहीं चला सकता हूँ, आप भूल रही हैं इस बात को।
1: तो आप गए ना साथ में, आप तो थे ना।
0: अरे भैया यार हद हो गई, क्यों गए हम?
1: अरे भैया क्या देखिए देखिए ये वो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो
0: हाँ। मैं पुरुष आंदोलन में जाऊंगा, मैं पुरुष आंदोलन में जाऊंगा, आवाज उठाऊंगा मैं हाँ ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं नहीं नहीं अरे ये तो यार तो आप तो डायरेक्ट थ्रेट दे रही है, बताइए हद हो गई। वहाँ पे अब्दुल करीम भाई टेंशन में, आप मुझे भी टेंशन में डाल रही है, ये कौन सी बात होती है।
1: आप कहाँ टेंशन, देखिए अब्दुल करीम भाई देखिए आप मेरी बात सुने
0: हाँ।
1: ये जो आदमी बैठा है ना रेडियो के पीछे
0: जी जी जी
1: ये बंदा कोई कसर नहीं छोड़ता सारे ट्रिक करने में.
0: थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया.
1: हाँ
0: हाँ तो बताइए अब.
1: तो देखिए इनके ऊपर इनकी बातों पे भरोसा ना करें.
0: अच्छा
1: ये जो है ये अपनी बीवी को नाराज करने के लिए कोई भी सुराग वो और क्लू नहीं छोड़ते हैं.
0: अच्छा मेरे पे क्यों पर्ची पड़ रही है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ.
1: डोंट लिसन हिम.
0: थैंक यू अगेन. देखिए ये ना हम एक दूसरे का दर्द समझते हैं. हम इतने लोग हैं ठीक है, आप हमारे रिश्तों में दरार नहीं डाल पाएंगी. दरार नहीं डाल पाएंगी आप. मैं आवाज उठाता हूँ. मैं बिल्कुल हमारे ये जो हमारे भाइयों का रिश्ता है इसमें आप दरार नहीं डाल पाएंगे. सब पता
1: देखिए भाई लोग आप मेरी बात सुने. आप क्यों ऐसी हरकतें करते जो आपकी बीवी नाराज हो और शक प्लस बीवी इज इक्वल टू वाइफ.
0: वेरी नाइस. तो मतलब ये ओके ये मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है, ये होना ही चाहिए. अच्छा वैसा वाला सीन है.
1: प्लस बीवी इज इक्वल टू वाइफ.
0: वेरी नाइस. तो अब आप ये अपने
1: बीवी से राइट करा
0: है अपने एंगल से ही बता दीजिए आपके हिसाब से क्या क्वालिटी नहीं होनी चाहिए. आप चलो आप बता दो
1: किसमें नहीं होनी चाहिए.
0: पार्टनर में नहीं होनी चाहिए.
1: गुस्सा करना नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है.
0: तो
1: शक वक वो चलते ही रहते, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ.
0: गुस्सा नहीं होना चाहिए.
1: शक करेगा तो होना चाहिए.
0: तो घर में तो गुस्सा आप ही करती होंगी. मुझे लगता नहीं कि भाई साहब कोई गुस्सा करते होंगे. बेचारे कहाँ बोलेंगे.
1: हाय बेचारे.
0: हाँ है ना सही बोल दिया ना.
1: मैं क्या बोलूं.
0: हाँ
1: मुझे
0: पता मुझे पता है मैंने सही बोला. मासूम बेचारा.
1: हाय मासूम.
0: हाँ
1: सारी लड़कियों का नाम फिर मासूमा होना चाहिए भाई. मासूम को मासूमा मिल गई.
0: वाह वाह वाह वाह ये तो कुछ भी नहीं हुआ सुमुल बहन. आज मुझे लग रहा है कि आज भी टीचर का मन नहीं है जाने का. क्यों टीचर साहब
1: आज तो बहुत बड़ा टास्क है.
0: आज बहुत बड़ा टास्क है. वाई वाई
1: करो मैं सही सलामत वापस आ जाऊं.
0: अच्छा आज टास्क कुछ स्कूल में प्रोग्राम है कुछ.
1: आज टास्क आज बच्चों को लेकर ट्रिप पे जाना है.
0: अरे माशाल्लाह किधर जा रही है ट्रिप. ये
1: मत पूछे बहुत बहुत खतरनाक टास्क होता ही है.
0: क्यों पार्टी वाड़ी पे जा रहे हैं आप लोग. मतलब
1: कभी अपने दो बच्चों को लेके बाहर जाके ना संभाल पाए क्योंकि और वहाँ पे 40 बच्चों को लेके जाना.
0: पर किधर किधर जा रहे हैं बच्चों को लेके ये तो बताइए हमें.
1: ये भी बता दूं
0: दोहा को. अच्छा तो ठीक है अच्छी जगह. इसमें क्या है माशाल्लाह बच्चे अपने आप इंगेज हो जाएंगे. उसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है. अगर मेरे
1: जैसे तो इंगेज हो जाते हैं लेकिन वो साथ में हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं. टूटते फूटते तो हम प्रॉब्लम में आते हैं.
0: ऑल द बेस्ट टू यू. इसकी रिपोर्ट मैं कल लूंगा फिर. ऑल द बेस्ट. कल बताइएगा आप कैसा रहा.
1: प्लीज अपने पार्टनर से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो शक नहीं करेगी. शक करेगी उसकी फितरत में. और प्लीज अपनी वाइफ से कंप्लेन करना बंद करो जितने भी सुन रहे हो भाई. वो आपकी ही पसली से बनी है तो आपकी पसली में कोई वो होगा क्या इफेक्ट होगा.
0: दिक्कत तुम्हारी है मेरे दोस्तों. ठीक है मैं समझा देता हूँ. आप गुस्सा ना करें. मैं समझा देता हूँ. ठीक है
1: अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन कर.
0: मैं समझा देता हूँ. मैं बिल्कुल समझा देता हूँ. ठीक है मैं ओके जी अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. तो भाइयों बात सारी ऐसी है कि समझ गए होंगे आप कैसी है. एक और मैं सर दो तीन मैसेज पढ़ता हूँ. अस्सलाम वालेकुम भाई दिस इज कमकम खान. मेरी प्यारी सी आज मेरी प्यारी सी बीवी का क्या बर्थडे है. खुशबू विश माय हार्ट इन नेपाल. ओके क्या बात है जी. खुशबू भाभी को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे. कमकम भाई इतनी दूर से क्या गिफ्ट भेजा जा रहा है. कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं मेरा भाई. इनके बाद मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई. लिखते हैं बीवी कम टू द कार आई एम वेटिंग. हाउ मच टाइम विल यू टेक फॉर गेटिंग रेडी. हॉन्किंग हॉन्किंग. खाजा भाई कह रहे हैं मैं गाड़ी में बैठ लिया वेटिंग कर रहा हूँ अभी तक रेडी ना हुई तुम. हॉन्किंग हॉन्किंग पी पी पोम पोम. वेरी गुड. एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं अभी नहीं हुई ना शायद इसलिए. लेकिन ये तो बता सकते हैं कि पार्टनर में क्वालिटी कौन सी नहीं चाहिए ये पूछ रहा हूँ मैं. एक मैसेज है बहन ने शौहर का क्या हाल होता होगा. अल्लाह ही बेहतर जानता है. घर में दिन भर शायद हंसी मजा चलता रहता होगा माशाल्लाह. अबू अहमद साहब अच्छा हुआ आपने यू टर्न मार लिया. कह रहे हैं विश अगेन भाई खुशबू भाभी को हमारी तरफ से पूरे एफएम 107 की तरफ से बहुत सारा हैप्पी बर्थडे और कमकम भाई की तरफ से बहुत सारा प्यार। बहन गिफ्ट ले लेना कमकम भाई से, छोड़ना नहीं इस आदमी को बिल्कुल भी। तवसुम मैंने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम भाई कबीर भाई, कुछ कहने का रहा नहीं, अग्री टू सुम्बुल बहन, तुम्हारी ही पछली से बनी है, दिस इज द कंक्लूजन, लाफिंग डोज अर्ली मॉर्निंग। पता है ऑब्वियसली आप तो साइड लेंगी ही, तवसुम भाई मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम बब्बर शेर भाई, आज मेरी बेटी मायरा खान है ना, मायरा खान का बर्थडे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैस भाई आपकी बिटिया को, प्यारी सी बिटिया को हमारी तरफ से सबसे पहले तो म्यूजिक बंद करके बहुत बहुत सारा प्यार मायरा को, कितने साल की होंगे मुझे पता नहीं है, बट आपकी बिटिया को बहुत बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला उसे हमेशा अपने जुबान में रखे, बहुत खुश रखे, कामयाब रखे और सेहतमंद रखे मेरा भाई। बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, विशिंग हर टन्स ऑफ बर्थडे विशेज मेरे भाई, बहुत सारा भर भर के। देखिए ये बेटी वाले मामले में थोड़ा सा मैं वो जाता हूँ, मतलब इमोशनल, तो अच्छी बात है। एक मैसेज है, यू टर्न लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे भी घर वापस जाना है। अबू अहमद भाई सही जा रहे हो, ऐसी कामयाब आदमी की पहचान है ये, बहुत बढ़िया। एक मैसेज आया है अस्सलाम वालेकुम भाई, जो मर्जी कर लो गलती आदमी की निकलेगी। उसामा भाई ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसामा भाई कह रहे मुझसे मत बात करो भाई, मेरी गलती है ही। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मेमोरी वीक होनी चाहिए ये, और सालियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये मैसेज बड़ा कमाल का आया भाई, इनके लिए जो है मोटर बजाएंगे भाई। इन्होंने अपना नाम मेंशन तो नहीं किया, इनका कहना है कि देखो साफ सीधी बात है, कुछ लोगों में क्या होता है ना कि मैंने पूछा, मैं अपने पहले सवाल बताता हूँ, मैंने सवाल ही पूछा कि कौन सी क्वालिटी एक पार्टनर में नहीं होनी चाहिए, तो भाई कह रहे हैं ये साले और सालियां नहीं होनी चाहिए। ये कुछ अलग था, क्वालिटी तो नहीं है। एक मैसेज है क्या, कुड़ कुड़ ना करें, वहाँ क्यों गए, ये क्यों करें, ऐसा मत करो वगैरह, अपने काम से काम रखो बस, और ये क्वालिटी मेरे पार्टनर में ऑलरेडी है। सिद्धर मैंने बोला साफ सीधी बात है, एक क्वालिटी जो इंसान में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एज अ पार्टनर, वो ये है कि कुड़कुड़ तो करे मत भाई तू। और वहाँ क्यों गए, ना यूँ क्यों किया, ना वो क्यों किया, अपना काम से काम रखो भाई। आज तो भाई सब एकदम तलवार निकाल रखी है। एक मैसेज आया है मुझे मोहम्मद दिलशाद भाई का, दिलशाद भाई कह रहे हैं मुझे ऐसी पार्टनर चाहिए जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट की लिमिटेशन कहाँ है, बॉर्डर कहाँ पे भाई। एक मैसेज अब्दुल करीम भाई का, वो तो रो दिए भाई, अब्दुल करीम भाई मना लो भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज मुझे किया है बिलाल भाई ने। बिलाल भाई कैसे हैं, बिलाल भाई एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, क्या हाल है भाई, टॉपिक का तो नहीं पता क्या है लेकिन दिस इज़ द बेस्ट आंसर इन द हिस्ट्री ऑफ 107 सो फार, कि आपकी ही पछली से बने हैं, उसका कसूर नहीं, हमारी ही गलती है सब। बात ही ख़त्म कर गई बहन, सुम्बुल बहन ने बात ही ख़त्म कर दी, ये सैयद अली हैदर शाह साहब का कहना है। एक मैसेज है लव भाई ट्रेनर के, बहुत सारा प्यार जैस भाई, मायरा का मैं तुझसे बहुत सारा प्यार, कितने साल की हुई आपने बताया नहीं। अब्दुल अमजद भाई लिखा है मेरा मेरे बेटे का आज बर्थडे विश कर दीजिए, मोहम्मद शहजान खान। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों का आज बर्थडे, सो मोहम्मद शहजान खान को हमारी तरफ से अब्दुल भाई बहुत सारा प्यार, अल्लाह ताला उसे बहुत खुश रखे, कामयाब रखे और बाप के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, उम्मीद है यही चाहते हैं आप भी। 11 साल के हो चुके हैं, अच्छा माशाल्लाह। एक कॉल आ रही है भाई हमारे पास, कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: अगर शहजाद सलीम टॉपिक से इधर उधर हुए फिर बताऊंगा, बता रहा हूँ मैं, सनैया तक गाड़ी लेके आऊंगा, बता रहा हूँ अगर टॉपिक से इधर उधर हुए तो। अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ, बताओ अब।
2: मैं तो पहला अप्रिशिएट ना, क्योंकि जो वीकेंड में जो हुआ ना तो उसका थोड़ा सा मतलब एक लिसनर सब अभी कान खड़े रख के सुन ही रहे हैं कि कौन आएगा आगे, कौन आएगा कौन आएगा। तो बहुत जबरदस्त रहा इंट्रोडक्शन सबका, सब पहली बार अपना मुलाकात,
0: बहुत सारे लिसनर्स मिले, मैं लोगों को बता दूं किसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स मिले। ओके
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो सब एक दूसरे को देख के अक्के पक्के ना, अच्छा। किसका नाम कुछ और दिख कुछ रहा है।
0: नाम कुछ दिख कुछ, अरे पोकेमोन थोड़ी है, इंसानी तो है, कोई दिक्कत नहीं भाई।
2: और किसी पर्सनालिटी कैसी है और नाम इतना और पर्सनालिटी अजीब मतलब है ना, अरे बहुत अच्छा अलग अलग तरीके का है ना, सबको बड़ा जबरदस्त एक है ना।
0: ये बताओ मेरे बारे में क्या बात हुई, गॉसिप पे आओ, ये सब छोड़ो, मेरे बारे में गॉसिप बताओ।
2: इतने यकीन करे कबीर भाई, इतने तारीफ के फूल बनते गए। अच्छा। बनते गए माशाल्लाह, बहुत तारीफ के फूल बने। और एक अच्छा सरप्राइज लास्ट में मिला, मतलब थोड़ा देर हो गए थे, जुल्फिकार नैन भाई वो भी ज्वाइंट में, और फिर मगरिब में हमको एक बहुत बड़ा अच्छा सरप्राइज मिला।
0: क्या सरप्राइज मिला?
2: हमको साहिब सर मिल गए, साहिब रहमान सर है।
0: अरे माशाल्लाह,
2: हाँ उनसे मुलाकात हो गई ना।

0: अरे वो 4 चांद और लग गए। हाँ तो काफी टाइम दिया उन्होंने भी।
1: अच्छा।
0: और गले लगाए और काफी कुछ दुआएं दी।
1: अच्छा।
0: बड़ा मतलब बहुत एक
1: यादगार। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप शायद

0: करना है कि भाई ये थोड़ा सा ये भाई इसको है ना इस तरह करेंगे तो किस तरह रहेगा और ये कैसा आपका इसमें क्या है।
1: ईगो नहीं होना चाहिए शहजादे सलीम। ठीक है सलीम, पॉइंट टू बी टेकन, थैंक यू सो मच। और भी कॉल हम लेने जा रहे हैं, बहुत सारा प्यार भाई को और बहुत सारा प्यार तमाम लिसनर्स को जो मिले, थैंक यू सो मच।
0: लेकिन वीडियो
1: मैं लाजिम देखूंगा भाई, लाजिम देखूंगा अभी देखता हूँ। ठीक है ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। और इनके पास एक बच्चे की जरा मुझे कॉल आ रही है, मैं उनको जरा कॉल कर लूँ क्योंकि इन्होंने बोला है कॉल करने के लिए। एक सेकंड रुकना भाई, शायद ये वही है जिन्होंने उस दिन कॉल करी थी। एक सेकंड, जिनका पेपर नहीं था आपको याद होगा उन्हीं की कॉल है ये। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, क्या कोई है? हेलो,
2: मैं हूँ अहान।
1: अहान कैसे हो?
2: अच्छे हो
1: अहान? एग्जाम कैसा हुआ? तुम इतने डरे हुए थे यार, कैसा रहा एग्जाम ये बताओ मुझे।
2: अच्छा हुआ।
1: अच्छा हुआ, 60 नंबर का था, 40 हम उम्मीद कर रहे थे। कितने नंबर का करके आए हो?
2: नहीं 40 का नहीं था, 60 का था।
1: हाँ मतलब 60 का था, हम लोग 40 मान रहे थे ना कि 40 तो आ ही जाने चाहिए, तो कितने आ जाएंगे?
2: 41 आ
1: जाएंगे। अच्छा 41 आ जाएंगे, क्या बात है यार, एक नंबर दादा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। आज का क्या दिन है, आज क्या करने वाले हो?
2: आज का भी हिंदी का पेपर है।
1: अरे रे रे आन, हिंदी का कैसा जाएगा हिंदी का पेपर?
2: बहुत गंदा जाएगा, मेरे को हिंदी आती नहीं है।
1: अच्छा ये भी 60 नंबर का है, 60 नंबर का है ये भी?
2: हाँ ये भी 60 नंबर का है।
1: बेटे कितने नंबर आ जाएंगे?
2: मेरे दोस्त ने बोला था कि मैं कभी रेडियो पे नहीं आ सकता, अभी उसने बोला कि मैं संडे सुनूंगा, अगर आ गया तो आ गया।
1: अरे मेरा भाई क्या बात है, आन रेडियो पे आ गया फाइनली। किसने रोका था आन को रेडियो पे आने से? आन हमेशा रेडियो पे आओगे, तुम समझ में आ गए तुम्हारे? मैं हूँ,
2: मेरी बहन भी है, मेरे बहन से बात करो।
1: माशाल्लाह ओके। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या नाम है?
2: माहिरा।
1: माहिरा माशाल्लाह, माहिरा कौन सी क्लास में है आप?
2: फोर्थ।
1: अच्छा फोर्थ क्लास में आप, आपका भी एग्जाम है आज, कुछ टेस्ट है आपका?
2: हिंदी का है।
1: आपका भी हिंदी का टेस्ट है, कितनी तैयारी करी है माहिरा?
2: फुल
1: तैयारी, क्या बात है माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, माहिरा को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट माहिरा। एंड थैंक यू।
2: फुल तैयारी नहीं की, झूठी
1: उसने तैयारी पूरी करी है। तुम बेटे उसको छोड़ दो, तुम्हारी तैयारी पे ध्यान दो बच्चे।
2: अहन
1: हाँ हेलो जी भाई,
3: देखिए सर जैसे मियां बीवी का रिश्ता है ना, वैसे ही क्या बोलते हैं बहन भाई का,
1: हाँ।
3: ये लड़ते रहेंगे हमेशा।
1: अच्छी बात है भाई, ये मोहब्बत है भाई, इस लड़ाई के पीछे मेन मोहब्बत है, वरना लड़ाई भी नहीं होती, जब बात बंद हो जाएगी तब मामला खराब होता है, ऐसे चलते रहना चाहिए।
3: यही
1: पर काफी एंटरटेनिंग बच्चे भाई, ये बहुत एंटरटेनिंग बच्चे हैं ये, माशाल्लाह वेरी नाइस वेरी नाइस। इनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार भाई।
3: ठीक,
1: क्या कह रहे हैं?
2: एक और बात है, उसने बोला कि अगर रेडियो पे आ गया तो उसका नाम बोला, उसका नाम है आकिफ। ठीक है,
1: आकिफ नाम है उसका?
2: हाँ हाँ, आकिब
1: अगर अभी सुन रहे हो, देखो आहन आ गया रेडियो पे, आकिब चैलेंज नहीं करना आहन से, आहन इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स नाउ, आहन वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर द पीपल।
2: बेस्ट फ्रेंड्स
1: हूं मैं, ऑफ कोर्स आहन, बिल्कुल कोई रोकेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं आहन भाई को, आहन भाई एकदम क्या हिंदी का पेपर बढ़िया देना है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज। तो भाई आज आहन का पेपर है, डर मेरे को लग रहा है आहन बेटे, मेरे को एंग्जाइटी देके चलेगी बेटा आप मेरी। एक कॉल आ रही है, डर लग रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई,
1: क्या बात है प्रिंस साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं?
4: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसे हैं?
1: बस लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, टिक टिक टिक टिक टिक।
4: पता नहीं कहां कहां पे दौड़ा।
1: प्रिंस भाई ये तो आपसे मतलब आपकी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए इस पे, बताइए जरा हमें कौन सी क्वालिटी पार्टनर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक क्वालिटी बतानी है बस।
4: एक नहीं मैं कई सारी बता सकता
1: हूं। नहीं नहीं एक एक ही प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरे सवाल का सवाल है, एक ही प्लीज प्लीज।
4: एक से कैसे मजा आएगा?
1: नहीं हमें मजा आ जाएगा, हमारे मजे पे छोड़ दीजिए।

0: खाना कैसा बना है?
1: खाना कैसा बना है मतलब मैं एक्सप्लेन,
0: ये ना पूछें।
1: ये ना पूछें?
0: हाँ
1: अच्छा, तो वेरी अच्छा, ओके। ये इतनी बुरी क्वालिटी तो नहीं है प्रिंस भाई।
0: इतनी बुरी क्वालिटी नहीं है, मैं जनरल बात बता रहा हूँ।
1: अच्छा जनरल बात बता रहे हैं आप, ठीक है। तो
0: जनरल बात बता रहा हूँ।
1: अच्छा
0: मैं ये बिहाफ ऑफ ऑल द मेंस ये बात बता रहा हूँ, जो इन टॉर्चर से गुजरते हैं। एक, खाना कैसा बना है?
1: हाँ।
0: दूसरा, मैं कैसी लग रही हूँ?
1: तो तारीफ कर दो ना प्रिंस भाई, क्या दिक्कत है?
0: तीसरा
1: तीसरा
0: मैं क्या पहनूं, कपड़े नहीं है।
1: ये तो प्रिंस भाई फिर क्या ही कर सकते हैं। आपको ना ये पॉजिटिव अप्रोच रखने की जरूरत है, हर बात भी तारीफ करनी है आपने। ये मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, हर बात बहुत बढ़िया, अच्छा है।
0: चौथी चीज, जब हम पूछने जाते हैं, अच्छा क्या पहनूं, कुछ भी नहीं, मतलब क्या क्या पहनूं, इसे हम लोग चल रहे हैं ना, तुम ये पहन रहे हो ना, कुछ भी कुछ भी, इन द सेंस कुछ भी, आप कैसे भी लगो,
1: आप कैसे भी लगो, मतलब नहीं है। और सेल्फी में भी आप जैसे भी आ रहे हैं, मतलब नहीं है।
0: हाँ, हम लोगों को तो इस चीज की टेंशन है नहीं, क्योंकि सिंपली आप जानते हैं ट्रेडिशनल वेयर एक ही होता है,
1: एक ही होता है भाई, कुर्ता ही है हमारे केस में, तो और तो क्या ही पहन लेंगे।
0: क्या ही पहन लेंगे
1: भाई, क्या है, बड़ी मासूम किस्म की जात है आदमियों के, मुझे ऐसा लगता है प्रिंस भाई, क्या कहना है?
0: बिल्कुल एकदम भाई,
1: है ना, बहुत मासूम।
0: ऐसा क्या, हमें कोई चॉइसेस नहीं दी गई,
1: बताइए क्या करें, एसोसिएशन खोल लें कोई, क्या करें, मतलब प्रिंस भाई क्या फ्यूचर क्या है?
0: नहीं नहीं, इसी में हम खुश हैं भाई।
1: चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं
0: है ज्यादा।
1: अच्छा। वैसे प्रिंस भाई, वैसे एक एक क्वालिटी अगर आपको चुनना हो जो नहीं होनी चाहिए, जो बेचारे अभी जिनका ब्याह नहीं हुआ, उनको क्या चीज ऐसी ढूंढनी चाहिए जो नहीं हो? फॉर एग्जांपल, एक भाई ने बोला यार, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने वाली हो, तो ये भी एक है जो चीज लोग कह रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे, कौन सी क्वालिटी है?
0: बहुत ही छोटी सी डिमांड है भाई,
1: बताइए।
0: बीवी सवालिया नहीं होनी चाहिए,
1: सवालिया नहीं होनी चाहिए, मतलब शक की तरफ आपका रुझान ज्यादा है, ऐसा कहना
0: ना?
1: तो
0: किसी भी बात में, किसी भी किस्म में, कोई भी टॉपिक में बेफालतू वाले सवाल करने वाली नहीं चाहिए।
1: अच्छा, वो आप मतलब वो है वो परंपरा प्रतिष्ठा अनुसार
0: सवालिया, लफ्ज़ क्वेश्चन मार्क ना हो,
1: क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए। अच्छा,
0: ये हुई ना बात भाई,
1: क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, प्रिंस भाई मजा करा दिया आपने, क्या बात है। ये क्वेश्चन मार्क, ये मतलब शक नहीं है, आप कह रहे हैं कि मेरी जो मैंने कह दिया वो कह दिया, वैसी वाली चीज चाह रहे हैं
0: आपने कह दिया जी।
1: हाँ।
0: हमने सुन लिया
1: जी,
0: हम कर देंगे।
1: अच्छा वैसा, ओ अच्छा वैसा,
0: ये क्यों, वो कैसा,
1: हाँ।
0: ये किस लिए,
1: हाँ।
0: कब,
1: हाँ।
0: यार छोड़ो,
1: ठीक
0: सब चीजों में क्या लेना, तुमसे कह दिया ना कर दो,
1: क्या
0: बच्चन साहब का डायलॉग बोलना पड़ेगा फिर मुझे,
1: कौन सा,
0: कह दिया ना,
1: कह दिया ना, वो भी बोल दीजिए ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, एक बार कह दिया तो कह दिया वाला।
0: अरे भाई मेरी जबान उतनी
1: कोई बात नहीं, अरे मैं हूँ ना,
0: मेरे लिए टंग ट्विस्टर हो जाएगा,
1: अरे मैं हूँ ना अमिताभ बच्चन फ्रॉम चाइना, आप मुझे बोल दिया करें, कोई टेंशन नहीं, मैं बोल दूंगा आपकी तरफ से, बोल दूंगा,
0: बताएं क्या कहना है
1: जी,
0: बताएं क्या कहना है, बता कह देते हैं,
1: बताइए
0: आपके लिए डायलॉग बोल ही देते हैं
1: जी, बताइए,
0: तो आप बताए ना कि कैसे बोलते हैं, क्या क्या,
1: देखिए परंपरा,
0: परंपरा
1: प्रतिष्ठा,
0: प्रतिष्ठा
1: अनुशासन, अनु
0: अनु अनुशासन,
1: अनु
0: अनु
1: सा
0: शन, अनु शासन, एनीथिंग, चाहे जो भी,
1: कोई दिक्कत नहीं है कोई
0: भाई यार।
1: हाँ तो ट्राई करना चाहेंगे आप क्या? और प्रिंस भाई ने जो कह दिया वो तो कह दिया, अब मुझे कहना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, सोशल मीडिया अकाउंट ना हो, जहां जाओ पिक्चर लेने वाली क्वालिटी ना हो, ये मोइन भाई कह रहे हैं, साफ सीधी बात है, मेरे को ऐसी पार्टनर नहीं चाहिए जो हर जगह मेरी फोटो छाप दे, और आगे लिखा है दुखती नब्ज पे हथौड़ा मारा है तुमने भाई, थैंक यू सो मच भाई। ये तो मेरा फर्ज था। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, खैरियत?
1: खैरियत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम मेरे भाई?
2: अरे मेरे को

0: तो भूल जाते भाई, कब भी तुम, मैं
1: खाजा
0: भाई हैदराबाद से, अल्लाह
1: अरे खाजा माफी, खाजा भाई, खाजा भाई माफी, चार कोड़ों की सजा दोगे क्या?
0: हैं आफ्टरनून से हट गए आप, सुबह में आ गए।
1: आफ्टरनून में तो था ही नहीं भाई, मैं शाम में था भाई।
0: हमारा तो दोपहर में छे भाई, हमारा तो दोपहर।
1: अल्लाह खैर करे खाजा भाई, बताइए खाजा भाई।
0: सुबह में मिसेस को जो है ना स्कूल जाने छोड़ने जाता हूँ।
1: हाँ।
0: तो मैं बोला आपका डेली देख रहा था, डेली कॉल करेंगे करेंगे करेंगे, सोच रहा नहीं हो रहा, मतलब आज की टॉपिक बहुत हार्ड चल रही, बोल के कर दिया मैं कॉल।
1: बहुत सही फैसले किया खाजा भाई। तो मेरे को ये बताओ कि कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए पार्टनर में खाजा भाई, एक क्वालिटी गिनाने का क्या?
0: तो है ना भाई,
1: अच्छा गिनाओ।
0: हाइपर नहीं रहना,
1: हाइपर नहीं रहने का, अच्छा और
0: हाइपर नहीं रहना, और क्या बोलते तो अपनी सही नहीं बोलना। और एक एक एक बहन अभी एक बात बोल रहे थे कि औरत तुम्हारी फसली से बनी बोल के।
1: हाँ।
0: तो पूरे बिजनेस को एक बात क्लियर करता हूँ, औरत जो है ना, औरत की इजाद करना था तो आदम अलैहिस्सलाम की फसली से बनाए।
1: अरे कहाँ तक ले गए सुन, अरे इतना सीरियस नहीं बनाने का, अरे बाबा इतना, अरे नहीं सुनूंगा मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं सीरियस बनने नहीं दूंगा खाजा जी, मैं लड़ लूंगा आपसे मैं इस बात पे।
0: टॉपिक हमारे ऊपर आ जा रही ना,
1: अरे ठीक है आने तो, अरे मेरी बात सुनो रे बाबा,
0: पूरे जेंट्स के लिए डिफेंड करते हुए मैं बोल रही हूँ ये बात।
1: बच्चे को भी आपके बात पसंद नहीं आ रही, रो रहा है बैकग्राउंड में वो, करा अंकल इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? तो उसी का लिहाज करो, देखो मेरी बात सुनो, इसको रिलीजियस राउंड अबाउट पे ना ले जाए बिना आपको बताना है एक चीज जो नहीं होनी चाहिए, इतना बताना है।
0: बस बस बोल दिया ना मैं,
1: बस इतना।
0: हाँ बस, लड़े ना डेली ना लड़े बस,
1: वेरी नाइस। देखो बच्चा चुप हो गया ना, आपने रो रहा, देखो ये है क्वालिटी, देखा अभी शांत हो, बच्चा चुप हो गया। ये है बात खाजा जी, सारी की सारी बेहतरीन बात भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बस खैरियत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, ओके मेरा भाई, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो देखा आपने, मैंने एक साथ आदमी जो बैठे हुए हैं उनको भी, बच्चे को भी चुप करा दिया। मानते हैं आप, अभी भी अगर मेरी क्वालिटी पर आपको डाउट है ना भाई, तो दिक्कत है। एक कॉल आ रही है, अच्छा अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर,
1: क्या हाल है नदीम भाई?
2: आप झगड़े लगाने के काम करते हो रोज रात
1: में। थैंक यू थैंक यू नदीम भाई, तो मेरा फर्स्ट था मेरे भाई।
2: भाई कैसे लड़वाऊं मैं ये दोनों कम्युनिटी को, औरत और मर्द को लड़वाना ही है।
1: मेरा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, पर हो गया ऐसा थोड़ा बहुत। हो गया तो हो गया, तो ये आप बताइए नदीम भाई, क्या क्या कहें, एक क्वालिटी जो नहीं होनी चाहिए।
2: पहले तो मैं वो भाई को बोलूंगा, वो जो शक की बात कर रहे थे कि भाई अगर 30 प्लस हो गए उसके बाद भी अगर शक कर रही है ना, तो भाई जलवा है तुम्हारा,
1: तो जलवा है तुम्हारा। ये जो आप कह गए ना बात, बहुत डेंजर बात कह गया नदीम भाई, अंडरलाइन अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक कर दिया आपने फॉन्ट को, समझ रहे हैं आप, वेरी गुड।
2: तो उसमें खुश होना चाहिए, टेंशन नहीं लेने का कि भाई जलवा है, अभी भी जलवा है,
1: अभी भी जलवा आएगा, 30 साल के बाद भी शगोरेला हुआ है, आपका भाई सुपरस्टार है। क्या नदीम भाई कॉन्फिडेंस दे दिया आप उनको एक तरीके का है?
2: भाई अपन तो यही सोचते हैं कि अभी भी शक हो रहा है तो जलवा है ना, पैसे सही से है अपने पास, अभी शक्ल है उसके बाद भी चेक करो।
1: कहे ना पैसा है ना शक्ल है, फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो भाई मैं स्टार दो। जलवा है। यार नदीम भाई क्या बात कही नदीम भाई, लेकिन आपके केस में क्या कहेंगे आप, क्या चीज नहीं होनी चाहिए भाई?
2: और प्रिंस भाई के लिए भी एक बात बोल ली थी।
1: हाँ बोलो बोलो बोलो।
2: प्रिंस भाई बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर आप मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएंगे तो सवाल तो करेगी बीवी यार, क्यों करवा रहे हो?
1: अरे प्रिंस भाई आपको आज वजह पता लग गई कि आप पे शक क्यों किया जा रहा है, नहीं सवाल क्यों उठ रहे हैं?
2: जरूरी फिर सवाल तो हो गेड़ा कि यार ये किसके लिए, मैं तो
1: ये किसके लिए, इस आदमी को मेडिकल पेडिक्योर करने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ। कहाँ जा रहा है प्रिंसु?
2: हम अगर महीने में दो बार बाल कटाने, थोड़ा फेशियल वो जो दाढ़ी बनाते, फेस पैक वेस पैक लगा देते, उस पे चले जाए तो सवाल हो जाता है कि दो बार क्यों महीने
1: भाई साहब, दाढ़ी कटवाने के लिए अगर वो बोल दिया जाए तो बोले अच्छा क्यों ट्रिम क्यों करानी है, कहाँ जाना तुमको? तो नदीम भाई आप मेरा दर्द समझते हैं और अपना भी, ये क्लियरली पता लग गया, पर आप अपने लिहाज से क्या बोलेंगे, कौन सी क्वालिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए?
2: मेरे इसमें क्या है पता है, बच्चों पे जो किचकिच करते ना रेगुलरली,
1: बच्चों पे
2: किचकिच पड़े रहते हैं जो बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल बोल ये मत कर।

0: वो मत कर, ये क्यों किया, पढ़ाई करो, इसको छोड़ो, वो जो प्रेशर है ना वो मेरे को नहीं पसंद।
1: अच्छा, बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना डालने तो, डालना इज रॉन्ग। हाँ, ओके,
0: वो मेरे को नहीं पसंद है बिल्कुल।
1: मतलब
0: ठीक है, देखो हम भी थे बच्चे कबीर भाई, और हम भी ऐसे ही एक टाइम पे हमें भी आवारा बोला जाता था, लेकिन अल्लाह देख रहा है भाई, सब अपनी अपनी लाइन पे सेट हो जाते हैं एक एज के बाद।
1: बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। नहीं मैं क्या यार, क्या प्यारी बात, क्या
0: पढ़े रहते ना वो बहुत बहुत ज्यादा मेरे को इरिटेटिंग लगता है।
1: आज सारे बच्चे जो हैं आप आपकी प्रोफाइल फोटो लगाएं, कितने खुश होंगे सारे बच्चे नदीम भाई की बात सुन के। एक ही अंकल है नदीम भाई सारे बच्चों के लिए वकालत करे, माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: नहीं भाई, अहान भाई तो हैदराबाद के लग रहे हैं मेरे को, और बहुत प्यारी आवाज है,
1: बहुत प्यारी आवाज है ना। आज हिंदी का पेपर है दोनों का, देख रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस नहीं
0: है उसको। बोलने वाला था कि वो पढ़े ना पढ़े कुछ भी करे आरजे तो बनी जाएगा।
1: ये तो डन है भाई, ये तो मुझे पता है। इफ यू लिसनिंग टू मी राइट नाउ, नदीम भाई ने भी ठप्पा लगा दिया, बात तो सही कही आपने। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपके लिए मैसेज भी आया अब्दुल करीम भाई ने, लिखते हैं नदीम भाई लव यू है उनकी तरफ से आपको, हार्ट बनाया फरद भाई ने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई।
0: ओके
1: मेरा भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और जैस भाई ने मुझे फोटो भेजा है भाई, नाम है मायरा, अच्छा मायरा नहीं है, मेरा खान है, मेरा खान है। ओके, मुझे लगा कि वैसे मेरा, मैंने इससे पहले सुना नहीं था, आज दो साल की, माशाल्लाह स्वैग है भाई बिटिया में आपकी, माशाल्लाह बहुत प्यारा स्वैग है। और अभी मैं कॉल करूंगा, एक मैं कॉल उठा लूं जरा पहले। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कबीर भाई?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम चंगा भाजी, आप बताओ क्या हाल है?
2: चंगा, मेरे को लगा शायद आज कबीर भाई का क्लेश हो के आया, कबीर भाई बोला आज मैं सबका क्लेश करवाऊंगा।
1: आज कैसे छोड़ दूं भाई, मैं खुशी नहीं देख पाता मैं किसी की। आज तो धनिया कूट कूट
2: के, तो क्या सोच के ढूंढा था
1: भाई? आज एक्चुअली मैं ना, आज है वाइफ अप्रिसिएशन डे, तो मैंने क्या अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा इंसान को, घर जाना वापस, लेट्स मेक अ ट्विस्ट।
2: अभी तक तो जितने भी कॉलर्स है किसी एक ने भी अप्रिशिएट नहीं किया।
1: हाँ, क्योंकि मैंने सवाल ही बदल दिया ना, मैंने कहा अप्रिसिएशन तो होता रहेगा भाई, वो तो होता ही है, वो तो जीवन का सार है, लेकिन सवाल ये है कि हाँ कि कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए ये बताइए आप, सब छोड़िए। तो ये है सवाल, आप बताइए।
2: आपने उसके ऑपोजिट कर दिया।
1: ऑपोजिट कर दिया मैंने, क्या कहेंगे आप?
2: भाई एक जो गाड़ी में आके वेट करने का है ना, बस वो नहीं होना चाहिए।
1: क्या बात करो, गाड़ी में वेट करना पसंद भाई? मुझे पता क्या, मैं तो
2: नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। आप गाड़ी में जाके आप बोले आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं आती हूँ।
1: हाँ। मैं एक बार बताऊँ आपको, मुझे इसमें बहुत मजा आता है भाई, पूरी पूरी मूवी चेप लेता हूँ मैं गाड़ी में बैठे हुए।
2: हाँ, उसमें ये आपको
1: मी टाइम
2: मिल जाता है।
1: हाँ, वो जो मी टाइम होता है ना, वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, समझ रहे हैं?
2: मैं अभी 30 मिनट से वेट कर रहा था, मैंने 30 मिनट के बाद बोला, मैंने कहा कितना टाइम है, वो बोले आगे से जब आपको बोला है 5 मिनट में आ रही है, तो फिर हर 15 मिनट बाद क्यों पूछ रहे हैं?
1: द मैथ इज नॉट मैथिंग। तो आ गई फाइनली, मतलब 5 मिनट हो गए 20 मिनट बाद, नहीं हुआ अभी तक?
2: नहीं, अभी तक नहीं हुए ना।
1: चलिए आधे घंटे बाद 5 मिनट हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।
2: मैंने आपको कोई 20 मिनट पहले मैसेज किया था, जिस टाइम सबसे पहले कॉलर आए थे, हाँ। कॉलर आए थे ना, वो जो भाई गवर्नमेंट से पंगा ले रहे थे।
1: हाँ। तो मैं भाई देखो, दोनों को चुप कराना पड़ता है।
2: मैंने उनके रिप्लाई में बोला था कि भाई गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेने का।
1: भाई देखो, मैंने दोनों को ही चुप कराया, मैं इतना वो सीख चुका हूँ चीजों को, बच्चा भी चुप और अब्बा भी चुप। फुल ट्रेंड, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट
2: भाई। तो भाई आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर मार्क्स लिए ना, आपने 40 बोला था, भाई ने 41 लिए।
1: हाँ, मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, एक नंबर ज्यादा का उससे। आज मुझे डर है लेकिन अहान के लिए, आज हिंदी का पेपर है, मुझे लग रहा है कि आज गड़बड़ होने वाली है। तो भाई ऑल द बेस्ट आहान के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपके 5 मिनट जब हो जाए तो मैसेज कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर 5 मिनट्स मेरे भाई। कोई कोई मूवी कोई मूवी वूवी बता दो, जब तक आराम से गाड़ी में देखते रहना, कोई टेंशन नहीं है।
2: हाँ, जरूर
1: भेज दो। एक 3 घंटे की पिक्चर देख लोगे तो 5 मिनट हो ही जाएंगे भाई, उतने में क्या टेंशन है। मेरा एक्सपीरियंस है भाई इसमें बहुत बढ़िया वाला। मेरा भी डेली का है, हाथ में लाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और मैं जरा सारे के सारे मैसेज पढ़ता हूँ फिर उसके बाद कॉल लूंगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज जमा हो गए। इरफान भाई के मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, KBR 500 MG मेरा भाई लिखते हैं, हाउ आर यू इरफान हियर, क्या टॉपिक है, प्लीज़ प्रे फॉर माई सन, वो स्टूडेंट काउंसिल में सेलेक्ट हो जाए, हिज नेम इज़ जनान मुस्तफ़ा, एट दिस मोमेंट इज़ लिसनिंग टू यू। बहुत सारा प्यार ये इरफान साहब के साहबजादे को, एंड आई विश कि वो सेलेक्ट हो जाए, बढ़िया नेता वाली क्वालिटी है उनमें माशाल्लाह। आई लिव मी टाइम इन वेटिंग इन द कार, इरफान भाई याद मिलाइए, अस्सलाम वालेकुम। एक मैसेज ज़बरदस्त तरीके से रोक दिया भाई, आपको अप्रिशिएट कबीर भाई, थैंक यू भाई, भाई आपका बहुत तेज है भाई, स्टोरी बोल रहे हैं आप इन दिनों, जी भाई स्टोरी है 7:30 बजे, ख्वाजा साहब 7:30 बजे। हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है, मूवी देख लो मेरी बीवी का जवाब अभी जैस भाई कुछ देर में कॉल करता हूँ। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ये मुझे मैसेज किया है मोहम्मद भाई ने, अच्छा इनके बाद फरद भाई ने बहुत सारे मैसेज किया, फरद भाई बहुत सारा प्यार, क्या कह रहे हैं, उनको हर फंक्शन में नया ड्रेस चाहिए होता है और हम कुछ भी क्या इंसाफ की बात है, हम कुछ भी, हाँ इंसाफ की बात है कि आप क्या बोल सकते हैं क्या, आवाज़ नीचे। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, बेगम हो रेडियो नो हो के मतलब भाई, तौकीर अहमद भट्ट साहब किए गएगा भाई। एक मैसेज, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, आज बहुत दिनों बाद आपके शो में फिर से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लास्ट मंथ मुंबई कोलकाता घूम आया फैमिली के साथ, सुजीत तो सर बहुत सारा प्यार आपको सुजीत तो सर, एंड हाउ इज़ योर डॉटर, वो माशाल्लाह पढ़ाई कर रही है, मैंने सुना है उसकी जो हमने इंटरव्यू दिया था क्या कुछ साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है माशाल्लाह। एक मैसेज है, क्या है, गाड़ी में बैठ के डायरेक्शंस ना दें कह रहे मुझे ख्वाजा भाई, कह रहे मुझे ऐसी पार्टनर की तलाश, मतलब पार्टनर में एक क्वालिटी जो नहीं होनी चाहिए वो ये है कि गाड़ी में बैठ के डायरेक्शन मत दो कि लेफ्ट ले लो राइट ले लो, और लिखते हैं जुम्मे क्या गाड़ी, अच्छा ओके मैंने पढ़ दिया सॉरी, डबल डबल हो गया। शेख इरफान अल खासमी साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, वैसे आपकी क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं है बट फिर झगड़ा मत करो प्लीज़ कैसा लगेगा सुबह सुबह सौतन की तरह झगड़ा कराने लगे, थैंक यू सो मच। एक मैसेज है, नदीम भाई अपन 40 के रोज रोज इमिग्रेशन सिक्योरिटी से गुजरते, इस हिसाब से जलवा बिघेर रहे हम मोहिन अहमद भाई आज मूड में। एक मैसेज है, टुडे फातिमा गोइंग टू स्कूल विद न्यू स्कूल बैग, फील हैप्पी, फातिमा को नई भाई नई स्कूल बैग की खुशी बहुत होती है, फातिमा अपना स्कूल बैग भाई फोटो भी भेजना चाहिए था आपको। और मैसेज क्या है मुझे माज भाई ने, लिखते हैं, आई सपोर्ट प्रिंस भाई, ख्वाजा भाई हल्लू बैठ गए थे सही टाइम पे रोक दिया, थैंक यू। तब उसमें मैं लिखती हैं, मैन आर सो इनसिक्योर, यू नो सो मच डिस्कशन, आई गेस हाउ मच ऑफ डिस्कशन दैट पॉलिटी हैज़ टू बेयर, पसली पे बहस करने वाले के लिए, अच्छा उनके लिए। एक मैसेज है, क्या लिखा है, समझने वाली बीवी मिलती इंसान बहुत लकी है भाई, रोना नहीं बस, हाँ संभाल लो जज्बात को। आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं प्रेजेंट भाई ट्रैफिक में था इसलिए लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। मोहसिन भाई थैंक यू सो मच। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग भाई कैसे हो, मॉर्निंग एनर्जी इज बैक आफ्टर वीकेंड, माजिद भाई को बहुत सारा प्यार। एंड देन उस्मा जी ने मैसेज किया है, इनका क्या कहना है, सारे मर्द आज अपनी आखिरी ख्वाहिशें बता रहे हैं उन्होंने लिखा है, एज अ वाइफ वी नीड हस्बैंड्स से जब ही पैसे मांगे तो ये ना कहें कि पैसे नहीं है या कल तो दिए थे ये या सैलरी तो आएगी दे दूंगा, जब मांगे चुप करके दे दिया करें, यकीन माने सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। उज़्ज़ुमा बहन ने जो कहा है, अगर आप ये मानेंगे तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, तो चुपचाप कोई चुमू नहीं दे देने का, सॉरी गुड मॉर्निंग।

0: FM 107 टाइम चेक।
1: देखो जी घड़ी में हो गए 7:02, अभी मेरा साथ देते रहो, यूं ही यही तो मुझे कहना था, मैं इसीलिए तो सुबह आता हूँ। इरशादुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि कौन सी क्वालिटी पार्टनर में नहीं होनी चाहिए। इरशादुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, पार्टनर का मूड ख़राब हो तो ऐसे लगता है किसी का कर्ज लिया हो और वो घर पर बैठ जाए। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई कर्ज ले लिया हो मैंने, वो घर पे आके बैठ गई, लेने वाले निकालो उधार। जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? सलाम प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे भाई राव मुस्तफ़ा भाई, हाउ इज़ दैट टॉर्चर मैसेज क्या है? रिजल्ट जानना पड़ेगा मोना बहन, मुझे भी ऐसा लगता है रिजल्ट मुझे चाहिए आहन का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी एक मैसेज क्या है मुझे, समीरा बहन ने वो लिखती हैं कि ऑर्डर ख़राब नहीं, बॉडी ऑर्डर ठीक होना चाहिए, परफ्यूम छिड़क के रहना चाहिए बंदा बंदी को, दोनों के लिए कहा है। मोहसिन भाई लिखते हैं, आप भी बता दो अपना। मेरे को भाई बस मेरा क्या है अभी सोच के बताता हूँ मैं, लेट मी टेल यू। और ये हमारे माज भाई कह रहे हैं, अगर उसमें की बात माने तो आज शाम रोड पे भीख मांगने निकलना पड़ेगा। एक मैसेज है, ये हमारे भाई हैं मीत भाई, लिखते हैं गुड मॉर्निंग भाई, क्या खाना कैसा बना है ये तो चलेगा, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, 1000 कपड़े होने के बावजूद ये नहीं चलेगा, बस फोन उठा के हिडन जेम दिखाने वाली और मॉडर्न और मॉर्निंग रूटीन एज अ बिजनेस ओनर दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए। बाय द वे आप कौन सी क्वालिटी नहीं है भाई कह रहे हैं भाई। मीत भाई ने सारा गुस्सा निकाल दिया, मीत भाई कह रहा है ये जो है ना ये मॉर्निंग रूटीन के तौर पे आज मैं आपको दिखाऊंगी लाइफ एज ए बिजनेस ओनर ये वाली नहीं होनी चाहिए और हिडन जेम दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए। मीत भाई हाथ में लाइए भाई, थैंक यू सो मच भाई फॉर सेइंग दिस। एक मैसेज है भाई, 10 मिनट के बाद कॉल करना, वालेकुम अस्सलाम। और फरहत भाई ने भी कॉमिकल वे में रिप्लाई दे दिया है। और एक मैसेज है इरफान भाई का, इरफान भाई कह रहे हैं उज्मा बहन वो तो नहीं जिन्होंने 30,000 कतरियल की सेविंग करी थी, नहीं भाई वो नहीं है। और मैं ज़रा कॉल कर लेता हूँ अब। इतना गुस्सा भरा है लोगों में, माई गॉड, एक सेकेंड रुको भाई, एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, क्या हाल है? खैरियत?
1: मैं बढ़िया भाई, खैरियत? आप सुनाइए भाई, क्या हाल है भाई के?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो आपके कॉल ही नहीं लग रहा, मैं पिछले कई लगभग 15-20 बार कॉल कर चुका हूँ।
1: अच्छा,
2: ऐसा टॉपिक आपने छेड़ा है
1: कि आप छिड़ गए,
2: कॉल का बाढ़ आ गया आपके पास।
1: अब बाढ़ आ गई भाई, बाढ़ आ गई, लोग अंदर खुबार है आज, नाश्ते से पहले लोग कह रहे पहले इधर जाऊंगा,
2: जो भरा पड़ा अंदर में आज सब सारा निकाल देना है सब लोग।
1: तो आपका क्या कहना है?
2: आपने मौका दे दिया मौका।
1: हाँ, तो वही तो मेरा काम है भाई, मैं चिंगारी में थोड़ा सा केरोसिन छिड़क के दूर हो जाता हूँ। आप
2: तो अलहमदुल्ला 50% से ऊपर की वाइफ यहाँ रहती नहीं है, नहीं तो फिर तो 100% झगड़ा होना था।
1: कल सबके ऑफिस बंद होते, कहते मैं आ नहीं पाऊंगा, मालिक कह रहा मैं भी नहीं आ पाऊंगा। तो आप बताइए कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए भाई, ये बताइए।
2: आप शादीशुदा है तो क्वालिटी खोजना तो छोड़ दें, नहीं होना बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप ढूंढे मत,
1: डरो मत बताओ।
2: शक ना हो, क्योंकि जहाँ पे शक की सुई अटकती है वहाँ से रिश्ते में खटास शुरू हो जाता है।
1: अच्छा, तो आप पे शक किया जाता है, इसका मतलब ऐसा कुछ है?
2: नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही है,
1: अच्छा,
2: मुश्किल नहीं है, बस मैं ये सच ना हो। मैं ये
1: मेरा चश्मा देना, ये आदमी करप्ट लग रहा है मुझे, चश्मा पहन के देखो जरा। मैं
2: पर आपने अपना बताया नहीं, आप अपना घर बचा रहे हो
1: भाई। मेरा सिस्टम क्या यहीं पे है भाई। मुझे घर जाके 3 वक्त की रोटी खानी है मालिक।
2: जावेद नारी बहुत दूर है।
1: हाँ नहीं, मैं बताऊंगा, मैं हिम्मत कर रहा हूँ, अभी हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं, एक गाने के बाद हिम्मत आ जाएगी।
2: अगर आप दिल्ली में होते तो जावेद नारी के यहाँ चले जाते, अभी यहाँ कहाँ जाओगे?
1: यहाँ मैं कहीं जा भी नहीं सकता, बताइए, आपके तो मजे हो जाएंगे, मैं पिट जाऊंगा। तो आपके मजे के चक्कर में मैं क्यों बिल बनाऊ अपना? पर मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू सो मच भाई कि आपने कॉल करी और आपने बड़ी हिम्मत करके बताया, तो उसके लिए बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच भाई। ओके, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है, सुबह की चाय पीते अब्दुल करीम भाई ने मैसेज किया है, इरफान भाई ने क्या कहा है, ये नहीं होना चाहिए कि मैं इरफान भाई को कॉल ही कर लेता हूँ यार, रुको एक सेकेंड, इरफान भाई को कॉल लगाएंगे, कोई बीच में नहीं आएगा इरफान भाई।

0: और मेरा मुकाबला है आज इरफान तुम्हें कौन लगा दी मैंने, क्या गाना है, वाह। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: आपने मेरे सुर नहीं सुने, मैं बढ़िया हूँ। आपने मेरे सुर नहीं सुने कुछ देर पहले, आपके लिए लगाए मैंने।
1: अच्छा बताइए वापस मुझे।
0: आप दोबारा नहीं हो पाएगा, मैं वो सिंगर हूँ, एक ही बार के पैसे लेता हूँ पेमेंट। तो इरफान भाई क्या कहना है आप, कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
1: यार अगर मैं अपनी जात से मुतालिक, अच्छा अब जो लोग भी वो कॉल कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो एक जनरल बात कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं ओपनली ये बात कह रहा हूँ कि मैं अपनी जात से रिलेटेड कह रहा हूँ कि जब आप मी टाइम के लिए जा रहे हो ना, तो ये जो पर्टिकुलर सवाल है ना, कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, किसके साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, आते हुए ब्रेड ले आना या जाते हुए रोटी दे जाना, मेरा दिमाग खराब कर देते हैं सवाल।
0: कितने लोगों को आपने, कितने लोगों की आवाज बोली है, आपको पता है आपको कितने लोग रो रहे हैं मैसेजेस में, इरफान भाई जैसा हमारा नेता हो इरफान।
1: अच्छा पूरा दिन उनको कुछ याद नहीं आएगा जब मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, उनको कुछ भी, कोई रोटी लानी है कुछ, मिसाल के तौर पे कुछ याद नहीं आएगा। जब मैं जा रहा हूँ ना, सपोज जिम जा रहा हूँ या किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो वो स्पेशली उनको याद आएगा कि रोटी ले आना या रोटी दे जाना। तो मैं उसमें, मैं वाकई में मेरी हट जाती है, मैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता
0: है। तो इरफान भाई, इरफान भाई आज आज क्या लेके जाने वाले, धनिया पुदीना क्या सिस्टम है आज, क्या है
1: आज? कुछ भी नहीं, अभी तक तो ऑफिस ही नहीं, अभी तो शाम में पता चलेगा ना, शाम में अचानक कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज शायद लॉन्ड्री के कपड़े होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है।
0: डेफिनेटली मुझे कल जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस पर रिपोर्ट लेना चाहता हूँ। एक भाई ने आपके लिए मैसेज भी किया है, ये भाई हमारे उसामा भाई, वो लिखते हैं कि नदी, क्या कहते हैं, इरफान भाई ने दिल की बात करती है, समझ रहे हैं आप?
1: बिल्कुल। और एक जनरल मैं तमाम पर्सपेक्टिव से एक बात कहना चाहूंगा कि औरत पे ना एक चीज ये नहीं होनी चाहिए कि वो जो अपने हस्बैंड को जो माइंड मैनिपुलेट करती है ना, अपने फैमिली से, उनके उनके घर वालों से रिलेटेड, भाई बहन या अपने माँ बाप, वो जो माइंड उनका मेकअप करती है ना, ऐसी खातून नहीं होनी चाहिए किसी भी जिंदगी में।
0: तो कोई एक एग्जांपल दे पाएंगे आप?
1: या फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कि भाई तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, या तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, या तुम्हारी अम्मी ने ये कर दिया, तो ये सब जो चीजें होती हैं ये आदमी के माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि इससे आपस के ताल्लुकात भी खराब होते हैं और इख्तलाफ
0: वो संभाला भी नहीं जाता, बीच में आदमी पिस रहा है, उसका बर्गर के बीच में शामी कबाब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कौन खाएगा। आई अंडरस्टैंड,
1: ये आपकी बात बिल्कुल सही, ये सब चीजें जिंदगी का हिस्सा, और मैंने अपने एतराफ में ऐसे लोगों को देखा है। तो उसमें अच्छा सबसे ज्यादा जो कसूर होता है ना, वो खातून का नहीं होता, क्योंकि उसका तो वो तो बिल्ट इन है, उनको तो उनका उनकी तरबियत ही ऐसी हुई हुई होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉल्ट होता है ना, वो उस शख्स का होता है जो उनकी बातों में उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं तो फॉल्ट उसी आदमी का ही करार देता हूँ, लेडीज का इतना फॉल्ट।
0: पलट गया ये आदमी, पलट गया भाई पब्लिक। आज हमने इरफान भाई को पलटते हुए देखा है लाइव कॉल पे। इरफान भाई बहुत बढ़िया भाई, आपने बिल्कुल सही सही।
1: लेकिन मैंने जैसे आपने ये, मैंने ऐसी कोई डिप्लोमेटिक बात भी नहीं की, लेकिन मैंने जिनको मैं जानता हूँ ना, मैं उसको भी यही कहता हूँ कि यार उसमें तुम्हारी वाइफ का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा ही फॉल्ट है।
0: क्या बात है भाई, भाई को आज लॉन्ड्री कर ले जानी। इरफान भाई ऑल द वेरी वेलकम।
1: मैंने लॉन्ड्री का हल सोच लिया, मैं अपने बेटे से कहूंगा कि तुम लॉन्ड्री लेकर आ
0: जाओ। बड़े शाबाश, बाप की सुना करते हैं। Very nice. Okay, इरफान भाई, बहुत सारा प्यार भाई, थैंक यू सो मच। तो एंड में इरफान भाई ने थोड़ी कलाबाजी खाली है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, सभी को ये करना पड़ता है, आखिर सर्वाइवल की स्टोरी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम, अगली कॉल, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम?
2: जी मेरा नाम फिरोज खान है।
0: अरे फिरोज भाई, पिक्चर करना छोड़ दिया आपने। फिरोज खान साहब कैसे हैं आप?
2: जी सब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी फिरोज साहब बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
2: जी ये कहना चाहता हूँ कि आप जो वाइफ से सेठ की बात कर रहे हैं, तो हमारा कहना ये है कि सारी चीजें करो, यानी हर चीज बीबी ख्वाहिश भी पूरा करो, उसके बाद भी बीबी ये बोले आपने मेरे लिए किया क्या है, ये जो है मेरे को पता नहीं।
0: तो बताओ फिरोज, तुमने मेरे लिए किया क्या है फिरोज?
3: रियलिटी यही है, सच बता रहा हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मौका जो है, इतना साल हम लोग गल्फ में काट रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आई एक पल में लोग बोल देते हैं कि नहीं आपने आज तक किया क्या है।
0: फिरोज भाई के लिए दो रोटी एक्स्ट्रा, फिरोज भाई यहीं बैठो, मेरे साथ जाना नहीं भाई जब तक दो रोटी खत्म ना हो जाए। क्या है फिरोज भाई, आंखें नम कर दी भाई, आंखें नम कर दी मेरे
3: तरह।
0: जी भाई,
2: और सब बेहतर है?
0: बस बढ़िया भाई, आपने कॉल कर दी, बेहतर है। कितने टाइम से आप, हमारी पहली मरतब बात हो रही, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे?
2: जी फर्स्ट टाइम मैं कितने दिन से सोच रहा था कि कॉल करूं एक बार।
0: अब तो मुझे कहना चाहिए फिरोज भाई तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, अभी तक कॉल क्यों नहीं करी फिरोज, जवाब दो।
2: जी वैसे आपकी स्टोरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जैसे लगता है डीप, एकदम दिल की गहराई में एकदम डूब जाता है उसमें।
0: थैंक यू फिरोज भाई,
2: बहुत अच्छा,
0: बहुत प्यारे। फिरोज भाई कहाँ से हैं आप?
2: जी मैं वैसे इंडिया उत्तर प्रदेश से हूँ।
0: उत्तर प्रदेश में कहाँ से मेरा भाई?
2: डिस्ट्रिक्ट बलिया।
0: अरे बलिया से आप, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई क्या बात है, लखनऊ बलिया ये सारे आसपास के इलाके बड़े मतलब खास हैं हमारे दिल के करीब हैं, बहुत शुक्रिया।
2: मंगल पांडे जहाँ से हैं।
0: हाँ वो तो भाई क्या बात है, ये तो मुझे पे ताव दिया जाए फिर तो फिरोज भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। फिरोज भाई कनेक्टेड रहिएगा, कभी मन करे तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं कॉल कर लूंगा, लेकिन आप जुड़े रहिएगा शो के साथ
2: इंशाल्लाह।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, बहुत प्यार आपको, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो फिरोज भाई के बाद जो हम जरा कॉल पे ब्रेक लगाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेजेस अभी पढ़ने हैं। तो एक मैसेज इरफान भाई का लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आरजे कबीर भाई, होप यू वेल। फिरोज भाई ने दिल की बात जुबान पर लिया है, आपका अपना इरफान, ये दूसरा इरफान है, ये शेख इरफान काजमी साहब कहते हैं, आज का शो शादी शुदा वालों के लिए, मज़े ले लो जितना लेना है, बैचलर पार्टी वाले जाके मसाज करो, पार्टी करो, डिस्काउंट चाहिए तो लिंक भेजता हूँ। आप आज काशमी साहब थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, एक मैसेज नोमी साहब का, आज का टॉपिक ही ऐसा है, फर्स्ट टाइमर भी कॉल कर रहे हैं, ये तो है क्या, आज तुम अपनी आवाज़ उठाऊंगा, एक मैसेज है बेचारे फिरोज भाई, इरफान भाई आपके साथ हैं। फरोज भाई कह रहे हैं इंसाफ करो भाई, अल्लाह रहम करे। तो वो सुबह मैसेज करती हैं, कह रही हैं कि लगता है कॉल के बीच में उन्हें मैसेज आ गया, मुझे भी ऐसे लगता है, ये जो इरफान भाई थे जिन्होंने कॉल करी थी, जिन्हें मैंने कॉल लगाई थी, मतलब बीच में मुझे लग रहा कि रेडियो ऑन हुआ है। फाद भाई कह रहे हैं लगता है भाभी ने रेडियो ऑन कर लिया। पलट गए यार एकदम बात करते करते। और एक मैसेज है सुदीप तो सर का, कहते हैं जी आपको क्या बताऊं कबीर भाई, कल शाम को ही वाइफ डॉटर दोनों ने पूछा कि कबीर भाई की क्या खबर है, एंड थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग माय डॉटर, द गुड न्यूज इज दैट शी हैज कंप्लीटेड हर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन साइकोलॉजी फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंडन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक मुबारक सुदीप सर, मुबारक। और आगे लिखते हैं, द अदर गुड न्यूज़ इज़ दैट शी हैज़ बीन ऑफर्ड टू जॉइन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स स्टडीइंग इन साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। बाप रे मेरी जबान मुड़ गई कोर्स का नाम लेते हुए सुदीप सर, सो प्राउड ऑफ यू एंड योर फैमिली, आप सबकी दुआएं, वेरी गुड वेरी गुड। और आगे लिखते हैं, वाइफ्स क्वालिटी विच शुड नॉट बी देयर, क्वालिटी बता रहे हैं, व्हेनेवर वी गो ऑन अ ड्राइव शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, साइड में बैठी हुई हैं, शी डिमॉन्स्ट्रेट अ वेरी पर्टिकुलर बिहेवियर, एक अलग किस्म का बिहेवियर दिखाती हैं, कोई गाड़ी अगर हमारे लेन को दूर से क्रॉस करती है वो झट से दरवाजा पकड़ लेती हैं, मानो अभी खोल के कूद जाएगी। अरे बाप रे। आगे लिखते हैं और जो एंड की लाइनें लिखते हैं, मुझे बहुत टेंशन होती है यार सुनते तो सर क्या बात है यार। कह रहे जब भी कोई गाड़ी लेन में आती है ये गेट पकड़ के बैठ जाती है झट से, या मेरी सांसें भूल जाती है। अरे सुनते तो सर इनके लिए भाई सबसे पहले तो बहुत जरूरी है भाई, यू डिजर्व्ड इट कंप्लीटली। और ये उसमें मैंने मैसेज किया इरफान भाई को, मिसेस का मैसेज आया होगा कि भाई क्या कह रहे हो, धरती कांपेगी। सैयद हमजा साहब ने लिखा है, भाई लिखते हैं, सलाम कबीर ब्रो, ये रोटी वाला तो मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, और रही बात मैनिपुलेशन की, मैन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग टू स्टॉप सच काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, कहने की बात है ये, ठीक है। एक मैसेज, सलाम वालेकुम, आज फेमिनिज्म का भूकंप आएगा। एक मैसेज, सलाम वालेकुम, रोटी आई है फिर, हाँ मारिया जी आप भी इनको बिचारों को मत ले लो। एक मैसेज प्रिंस भाई लिखते हैं, नदीम भाई ये बीवी का प्यार नहीं तो और क्या है, मैंने pedicure, medicure, uske liye hi to kiya hai. By the way, I'm talking about in general, these things are not applicable for me. Woh to mujhe pata hai. इरफान भाई एक और है अली इरफान अली तो ये बड़े इरफान भाई ने घर भी वापस जाना है छोटे इरफान भाई अपने आप को बनाया टॉपिक पर एब्सोल्युटली नो कमेंट्स डर का माहौल है यहाँ भाई किया और एक मैसेज और आया है इरफान भाई यू टर्न मारा है एकदम वक्त बदल गया जज्बात बदल गया अब मुझे गाना चलाना पड़ेगा बिकॉज आज का टॉपिक बहुत बढ़िया गया है माशाल्लाह माशाल्लाह एंड ये उस ऑडियंस के लिए ये तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और माहौल सेट कर दिया यार माहौल सेट कर दिया आपके लिए क्या ऑडियंस मिली है भाई क्या ऑडियंस मिली है मुझे आई एम सो लकी राइट नाउ आप और इस ऑडियंस का तो जलवा है उस जलवे के लिए भाई मुझे तो कुछ चलाना ही पड़ेगा भाई ये ऑडियंस के जलवे के लिए ब्रो मॉर्निंग भाई बनता है 7:18 बाय द क्लॉक जैस भाई भी करूंगा कॉल में हाँ जी आ जाओ 666-22-107 मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और जिन्होंने सुबह से पार्टिसिपेट किया उनके लिए
4: जलवा
0: वॉल्यूम बढ़ा के वाजिद का म्यूजिक

0: ਜਿਲਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਭਾਈ 722 जी तो जल्दी फटाफट से मैं दो तीन कॉलें कर लूं क्योंकि भाई लोग लाइन पर हैं. मैं एक गुलरेज भाई को बता दूं, उनका मैसेज बहुत अच्छा खासा उन्होंने किया है. देखते हैं कबीर भाई, सलाम वालेकुम. टुडे यू पिक्ड अ मच अवेटेड टॉपिक. हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत है, बहुत ही पाक रिश्ता है जो आसमान में बना है, बाकी सारे रिश्ते जमीन पे बने. ठीक है, आगे लिखते हैं. अगर आपको अपने पार्टनर से रिश्ता बेहतर रखना है तो एक दूसरे की कंप्लेन करना बंद करें, आपस में ट्रस्ट बिल्ड करें, एक दूसरे को एक्सपेक्टेशन मत करें. ऐसा मेरे को नहीं बताया गया. अच्छा, रादर देन वॉट इज बेस्ट यू कैन डू टू योर पार्टनर शुड बी योर प्राइमरी गोल. कोई भी पार्टनर परफेक्ट नहीं होता, बट एक दूसरे की खुशियां चाहने से वो परफेक्ट बन सकता है. ठीक है, आपस में कन्फ्रंटेशन से बचें, और आपका पार्टनर नाराज है तो दूसरों को खामोश करें. भाई आपने तो मतलब पूरा माशाल्लाह पर्सपेक्टिव दे दिया, लेकिन मैं करूँ क्या इसका एक मैसेज. अच्छी बात है गुलरेज भाई, आई एम विद यू भाई. आप मुझे लग रहा है कि आज भाभी सुन रहे हैं गुलरेज भाई को. भाई ने बस प्यारी प्यारी बातें बातें कर दी. अच्छा, मैं एक ये बेचारे ने कॉल करने को बोला था, उन्होंने हमारे जैस भाई नाराज हो गए तो उन्हें गुस्सा बहुत तेज आता है, और आज इनकी बिटिया का बर्थडे तो आज तो बनता है. भाई ने बोला कॉल करने का तो करने का क्या. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह.
0: जैस भाई सबसे पहले तो बिटिया को हैप्पी बर्थडे. नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, नाम कैसे पढ़ेंगे, नाम बताइए जरा.
1: मिरहा खान.
0: मिरहा खान क्या मतलब है मिरहा का?
1: मिरहा का वो उन्होंने उनकी चाची है ये यार आलिमा, उन्होंने रखा था नाम.
0: तो आपने मेहनत नहीं करी नाम ढूंढने में, कमाल कर दिए.
1: मैंने जो है ना, मैंने आयत नाम रखा था क्योंकि मुझे पसंद है आयत नाम. जो है ना वहाँ की उसके पेपर्स वगैरह सर्टिफिकेट पे जो भी है ना उसका नाम आयत है, बट जो है पूरा नाम जो है उसका यही चलता है मेरा.
0: अच्छा ओके, ठीक है ठीक है. हाँ जैसे भाई आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप.
1: भाई टॉपिक तो बड़ा गजब का उठा के लेगा. भाभी ने कुछ कहा था क्या सुबह?
0: मैं क्यों यहाँ पे बोलूं, मेरे जवान नहीं है. हाँ तो बताए आप क्या कहना चाहेंगे.
1: आज लग रही है भाई. कहना तो भाई हमारा यही है, एक छोटी सी बात है बस, कि जो है ना देखो बीवी को जो है ना बस शक ही नहीं होना चाहिए.
0: अच्छा तो मतलब आप पे शक किया था क्या जैस भाई?
1: नहीं भाई, मैं तो पहले से बदनाम इंसान हूँ.
0: अच्छा,
1: मेरे पर तो कुछ ज्यादा ही था शुरू में जो है ना, बहुत ज्यादा था.
0: अभी कैसे
1: हम शादी वादी के बाद में, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंट्रोल में, क्योंकि हमने शादी के बाद ना भाई अपना फोन वोन सब कुछ उनके हवाले कर दिया. उनका देख लो ची है फोन.
0: बेहतरीन आदमी है. वाओ वाओ वेरी गुड जैस भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू.
1: नहीं मैंने तो भाई प्रॉपरली अपना फोन जो है ना पासवर्ड बिल्कुल, मन का ये पासवर्ड है, ये फेसबुक आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये गैलरी है, पूरा सब कुछ चेक कर लो. फोन अपने पास रखो, कोई कॉल आए मैसेज आए तो खुद.
0: तो आप उस दिन मेरा टैग, उस दिन मेरा टैग सुनते हुए क्यों पूछ रहे थे कि एप्स को हाइड कैसे करते हैं? कभी वो बताइए, वो आपने एक ऐप हाइड करने का बताया था, मतलब मेरे को यूज नहीं करना है पर मुझे बस जनरल नॉलेज. अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिर. बहुत बहुत शुक्रिया जस भाई.
1: और भाभी से आज भाभी से पता करूंगा क्या बात है, आज भाई को कुछ ना कुछ बात हुई है.
0: हाँ.
1: तो आज ये टॉपिक लेकर बैठे आज जाके.
0: माफ नहीं करेगा, ऊपर वाला आसमान में सब दिखता है बता रहा हूँ मैं. जैसू कहाँ जाओगे तुम? चलो ठीक है.
1: ना ना चलो याद नहीं पूछ रहे, भाई की साइड ले लेना.
0: बिल्कुल मेरी साइड ले लेना भाई, बहुत जम की तारीफ करना. ठीक है
1: भाई की साइड ले लेना, कुछ नहीं कहेंगे भाई.
0: थैंक यू सो मच यही उम्मीद है मुझे. बहुत बहुत शुक्रिया
1: भाई. क्यों तो भाई को तो सपोर्ट करेंगे, चाहे भाई गलत भी होंगे तब भी हम सपोर्ट करेंगे.
0: आप ज्यादा तारीफ करोगे तो मैं दिक्कत में आ जाऊंगा. ऐसा लग रहा है कि आप मैंने कुछ कहा है, कुछ अमाउंट पे किया है. नहीं ज्यादा तारीफ नहीं करो, वो नकली हो जाएगा फिर मामला. अभी अपन सही एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर नहीं करने का है. इतना ही हाँ, ज्यादा नहीं बाकी. हाँ ठीक है, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत प्यार भाई. ओके भाई, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. और भाई के बाद जो है एक दो मैसेज पढ़ दूं मैं. आसिफ भाई बहुत पूछ, आसिफ भाई मजे लेते हैं, हंस रहे हैं बढ़िया करके. एक मैसेज, सलाम भाई, टुडे कैन टॉक कबीर भाई, टुडे कैन टॉक अली भाई. कैसे हैं? सऊदी अरब से मैसेज किया. एक मैसेज है, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये मैसेज किया प्रिंस भाई ने.

0: शहजाद सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई फिक्रमंद है आपकी लाइफ पार्ट। अरे यार बोर मत करो ऐसी बातें करते। शहजाद सलीम इतनी सीरियस बात करते तो ना मजे आ रहे होते हैं बीच बीच में ऐसी। शहजाद सलीम ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर विद मी कबीर, आपने सीरियस नहीं होना शहजाद सलीम, ओके? नहीं तो मुझे पता है आपकी गाड़ी का नंबर। माजी हुसैन साहब कहते हैं ये सारा टेक्स्ट ऋतिक रोशन संजय दत्त के स्टाइल में बोल दें गुलरेज भाई वाला मैसेज। काश मैं बोल सकता हूँ माजिद भाई। एक भाई ने बड़ा स्वीटली मैसेज किया है, कहते हैं द ओनली शो इन ऑल रेडियो स्टेशंस ऑफ कतर जिसकी मैं बातें सुनता हूँ सॉन्ग से ज़्यादा, अदरवाइज आई स्किप, लव यू कबीर भाई। भाई भाई भाई मेरा दिन सेट कर दिया भाई आपने बता के। भाई मैं आपको लगातार दिल भेज रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ से भाई। दिस रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी भाई। एक मैसेज शॉपिंग करने की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए भाई, कह रहे शॉपिंग करने की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। शहजाद सलीम समझ गए, सियानी समझ गई। एक मैसेज है सैयद हमजा भाई लिखते हैं पर ये सब कॉल्स और मैसेजेस क्वालिटी सुन के लगता है कि ये पर्टिकुलरली एक किस्म की औरतें हैं जिसका नाम बीवी है। ये क्वालिटीज़ अक्सर औरतों में शादी के बाद पाई जाती हैं। सैयद हमजा भाई, हमजा भाई मुझे लग रहा है कि आप भी कुछ इस पर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। एक मैसेज आमा भाई मर्दों की खाना बन गए आज तो, मजलूम मर्दों की कहानियाँ सुन के लग रहा है हस्बैंड वेलफेयर एसोसिएशन बनानी पड़ेगी। ये महमूद भाई ने मैसेज किया। और एक मैसेज है एक बादशाह ने ऐलान, ये ज़रूर सुनिएगा, ये जो मैसेज आया मेरे पास, ये मुझे मैसेज किया है इरशादुल्ला यूसुफ जही साहब ने, लिखते हैं एक बादशाह ने ऐलान किया कि जो बीवी से नहीं डरता वो आके हरे झंडे के नीचे खड़ा हो जाए और जो डरते हैं वो लाल झंडे के नीचे खड़े हो जाए। बाकी सब लाल झंडे के नीचे आके खड़े हो गए, एक बंदा हरे झंडे के नीचे खड़ा था। सबने तारीफ करी कि वाह क्या आदमी है। उसने बोला कि बीवी ने बोला था खबरदार अगर लाल झंडे के नीचे गए तो। एक और मैसेज है सरफराज आलम साहब का, अस्सलाम वालेकुम भाई, इतना खतरनाक मैसेज मत पढ़ा करो भाई, गाड़ी से कूदने वाले हाथ से चाय गिर गई। ये क्या था? इनके बाद एक मैसेज है क्या कह रहा ना, आई मीन समवेयर औरतों को सोचते हुए मिर्ची के तसव्वुर किया गया। देखिए इरफान भाई आपके चक्कर में सब मैं दिक्कत में आ जाऊंगा, समझ रहे हैं आप, प्लीज़। अब मुझे आपके खिलाफ जाने मजबूर कर रहे हैं आप। एक मैसेज है क्या है, साल शादी के 5 साल, अच्छा शादी के पहले साल इन्होंने दिल बनाया, शादी के 5 साल बाद दुआ और शादी के 10 साल बाद हाथ जोड़ ली। अरसलान भाई, अरसलान भाई आपके अंदर एक आरजे वाली क्वालिटी इनके लिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, एकदम एक नंबर। एक मैसेज है मलिक वकास साहब का, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, बाकी आज टॉपिक के लिए मेरा मानना है हस्बैंड वाइफ में जितना ज़्यादा नोक झोंक हो उतना ही रिश्ता स्ट्रांग होता है। एक तो दूर हो मलिक वकास साहब, आप समझ में आ रही है, आप ये जो हिंट दे रहे हैं ना, ये वो जो पतली पतली गली में वो हकीमी इलाज करते वो हैं। मैं हकीम हूँ, मेरी दवा खाया करो, मजा आ जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। और लिखते हैं और जो कहते हैं हमारा रिश्ता ना नोक झोंक नहीं होती तो इम्पॉसिबल है, आप प्रमोट मत करो इस चीज़ को, ठीक है। एक मैसेज है भाई वैसे आज का सवाल आपने लायक नहीं है हमारा, तो क्या हम बस कहानी नहीं काम आएगा ये सवाल। एक मैसेज है अबू हमोर अंडर पास टू मच ट्रैफिक नियर मेडिकल कमीशन के पास, अबू हमोर के पास ट्रैफिक है। ये इरफान भाई ने मैसेज किया है सारे मर्द आज के प्रोग्राम के बाद भागते हुए नजर आएंगे। उस्मा बहन ने मुझे बाकायदा एक स्टिकर एक GIF भेजा है। एक मैसेज है मुमताज़ भाई का, वालेकुम अस्सलाम, और उन्होंने मैसेज किया है मैं चाहता हूँ मेरे पार्टनर मेरे बच्चे को ना मारे। हैं इतने मासूम बच्चे को कौन पीटता है, शक करना है तो उनकी परंपरा है भाई, बच्चों को तो पहले पीटा जाता था, मैं तो कहूँगा पीटो। एक मैसेज है आज आपका भोपू का, ये रहा भाई ये रहा माजिद भाई, दिस इज द थिंग नो, ये अर्न करना पड़ता है। जमाल भाई कह रहे हैं हाँ रे मर्दों की बीबीसी, एक मैसेज शो में गर्मी ज़्यादा हो चुकी है AC ऑन करें। ओके और एक मैसेज किया है भाई, अरे रे रे रे एक लास्ट कॉल कर लेते हैं क्योंकि भाई ने मुझे बाकायदा भेजा है कि इतनी सारी कॉल करी भाई, आई एम रियली सॉरी, आज ना बड़ा बिजी चल रहा था मामला कमाल भाई। और हमारे एक और भाई उन्होंने मैसेज किया, उनको भी कॉल नहीं उठा पाया, मैं माजरत चाहता हूँ, आज बहुत बहुत बिजी चल रहा है मामला। अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड रुको भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी भाई, क्या हाल है?
1: और कभी अरे हाल भाई पसीने हो गए कॉल कर करके।
0: अरे भाई सॉरी माजरत, आज मैं जानता हूँ आज सबके सब ना मतलब दौड़ भाग ज्यादा है यार, समझ रहे हैं ना?
1: नहीं दौड़ भाग तो ज्यादा है, इससे तो ये चीज पता चलता भाई, जैसे अभी बीच में खेल रहे थे
0: जी
1: पैसे के लिए वैसी कॉल चल रही है आजकल, बिजी
0: है ना, ऐसा लग रहा है मैं कुछ नोट वोट बांट रहा हूँ, मुझे
1: नोट वोट बांट रहे हैं। लेकिन भाई एक चीज है कबीर भाई
0: जी, भाई
1: जो लोगों ने अपने दर्द को एडजस्ट करना सीख गए,
0: बयां किया है,
1: आज उसको आप कुरेद रहे हैं, उसके साथ में जीना सीख रहे थे भाई और सीख लिए थे लोगों ने, और फिर आज अपने जो है कौन सी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए करके सवाल करके जो है अपने
0: ये
1: जख्मों को कुरेद के और जो नमक लगाया है
0: वो भी सी सॉल्ट, ऐसा वैसा थोड़ी, सी सॉल्ट।
1: हाँ, कल साइंटिस्ट बने थे भाई
0: जी जी जी,
1: सी सॉल्ट, उसके बाद जो है ब्लैक पेपर, उसके बाद जो है सुन रहा था मैं कल आपका,
0: थैंक यू,
1: जो आप जो साइंटिस्ट बने थे कल ना
0: जी, मजे आए आपको सुन के?
1: बहुत मजे आए भाई,
0: थैंक यू,
1: इस तरह से आपने जो है ना पानी को जो है दौड़ाया है
0: जी जी,
1: लिक्विड डाल के,
0: आज भी वही किया मैंने, एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट था,
1: एक्सपेरिमेंट था भाई,
0: एक्सपेरिमेंट था,
1: इंसान जो है ना एकदम समतल था, एकदम जो है रुका हुआ था आदमी, आपने जो उसको जो है ना दौड़ाया है लिक्विड सॉफ्ट डाल के,
0: थैंक यू थैंक यू,
1: सबके सब दौड़ के यहीं चले आए हैं,
0: ये तो आपको बड़प्पन है कमाल भाई, तो आपको बड़प्पन है, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात पे,
1: कहानी आज की क्या है, कुछ टॉपिक
0: आज आज आज, आज, आज की जो कहानी है, मैं इतना कहूंगा कि ये हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं, लेकिन जो कहानी के अंदर है वो बहुत जरूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाँ हो सकता है कि किसी को ये कहानी बोर भी लग सकती है, पर ये हिस्ट्री का चैप्टर आज तो पढ़ा के रहूंगा मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो बस शुरू कर रहा हूँ,
1: नहीं नहीं भैया आप पढ़ाइए, हम लोग को याद रहता है,
0: ठीक है, डन डन डन,
1: यही तो एक चीज है भाई, जब पढ़ते थे उस टाइम तो कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन आपकी जो सुनते हैं वो याद रह जाता है,
0: प्रोफेसर की फीस लेना चालू करनी पड़ेगी मुझे आज नहीं, पर थैंक यू कमल भाई, आपकी मोहब्बत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह बस मैं अभी शुरू करता हूँ कहानी सीधे आपके कॉल के बाद,
1: ठीक है, करिए
0: भाई, ओके
1: मेरा भाई, साथ
0: है, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़,
1: ओके अल्लाह हाफिज़,
0: और भाई के बाद बस मैं दो मैसेज पढ़ता हूँ, क्योंकि एक भाई ने बहुत देर से कॉल करी है, मैं माजर चाहता हूँ, आज जो लोग कॉल करें नहीं उठा पा रहा, मैं नहीं लग रही है कि बहुत बिजी चल रहा है, मैसेज कबीर भाई एक बात याद आ गई, बीवी ने हस्बैंड से पूछा अगर आपको दो तीन दिन नाराज ना नजर ना आऊं तो कैसा लगेगा, तो गलती से हस्बैंड ने कह दिया अच्छा ही लगेगा, तो फिर हुआ यूं कि पहले दिन बीवी नज़र नहीं आई, दूसरे दिन भी नज़र नहीं आई, फिर जब तीसरे दिन आंखों की सूजन कम हुई तो थोड़ी थोड़ी नज़र आई अच्छा था गुरु, ये बहुत बढ़िया था, ये सैयद अली हैदर शाह ने भेजा भाई, एक नंबर भाई एक नंबर था भाई, एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई लिखते हैं, आज सुबह सुबह कैसे आग से खेलने का शौक आ गया, सादिक भाई हम तो हीरो ही हैं, बस कोई हायर नहीं कर रहा मैं, एक मैसेज कबीर भाई ने खुद परमिशन ली है आज ये टॉपिक लाए हैं कमाल भाई इरशादुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, इतना सच नहीं बोलना चाहिए आपको, समझ रहे हैं आप, एक मैसेज इश्तियाक उस्मानी साहब का लिखते हैं, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट हस्बैंड ट्रस्ट एंड चैरिटी लिखते हैं, स्पेशली फॉर हस्बैंड्स हु आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल डैमेज, शॉपिंग ट्रॉमा एंड फेमस सेंटेंस, डू व्हाटएवर यू वांट, सबसे खतरनाक सेंटेंस है ये, जो मन में आए तुम करो, ठीक है, तभी आपको मन में जो आया नहीं करना है आगे लिखते हैं, द फंड विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल काउंसलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ सेफ प्लेस फॉर हस्बैंड्स टू रिकवर फ्रॉम देयर डेली हाउसहोल्ड स्ट्रगल्स, आगे लिखते हैं, डोनेशंस आर वेलकम फ्रॉम ऑल हस्बैंड्स हु हैव सर्वाइव्ड एंड वाइव्स आर ऑल्सो वेलकम टू कॉन्ट्रीब्यूट बिकॉज दे आर यूजुअली द रीजन द फंड इज नीडेड, इश्तियाक उस्मानी साहब आपका तो अलग हिसाब किताब होगा, एक मैसेज है कहीं कतर के छतों में ब्लू ड्रम्स नजर आए क्या कर रहे हो सादिक भाई, एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, हाउ आर यू प्रेजेंट सर आफ्टर वन मंथ, कैसे है मेरा भाई हैदर भाई, एक महीने बाद आए हैं आप, वेलकम वेलकम टू द शो, अब जरा एक गाने के बाद सीधा कहानी आएगी, तो आज की कहानी जैसे मैंने कहा इट इज़ हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज हम मजे करा देंगे आपको, ठीक है, तो एक गाने के बाद बोल रहे हैं, और गाना भी ऐसा कि आपको सच में बहुत अच्छा लगे, अमन भाई आपको वॉइस नोट भी सुनता हूँ, बढ़िया, बिफोर दैट एक गाना है, और ये गाने के बाद सीधा आज की कहानी है, एज आई मेंशन आज हिस्ट्री से जुड़ी हुई कहानी है, कुछ लोगों को हो सकता है कि बोरिंग सी लगे, पर अगर आप मेरे साथ देंगे कहानी में तो यू विल लाइक इट, एक मैसेज भाई दो अ लिटिल ऑफ टॉपिक, बट मेरी बेगम ने बहुत सारी शॉपिंग में थोड़ा सा हज किया, ऐसे भाई तो बहुत छुपे ऑफ टॉपिक नहीं है, तो बिल्कुल आप ऑन पॉइंट है भाई, ऑफ टॉपिक क्या है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक मैसेज और है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तला भाई फ्रॉम अलखोर, उन्होंने भी मैसेज किया था, तला भाई आई एम रियली सॉरी, आपका मैसेज भी शायद रह गया पढ़ना, मैं ढूंढ रहा हूँ उनका मैसेज, गुड मॉर्निंग ना बोलती हो और ना ही सुनती हो, ये शाहिद भाई ने मैसेज किया है। हाँ तो चला भाई मैसेज पढ़ता हूँ भाई। दोस्तों

खत्म कहानी। ये सुनाऊंगा सलमान भाई, तुम मजा नहीं आएगा, आपको लोगों को चाहिए मसाला, समझ रहे हैं आप। एक मैसेज, कबीर भाई जस्ट जॉइन, टॉपिक साउंड्स इंटरेस्टिंग, फैसल भाई टॉपिक इज गॉन नाउ। तो एक गाना, चार मिनट 38 सेकंड के बाद सीधा आपसे मुलाकात हो रही है। चाय वाय समोसे मुझे जो भी आपको सुबह इकट्ठा करना है इकट्ठा कर लीजिए, बिकॉज वी आर मीटिंग राइट आफ्टर द ट्रैक, और ट्रैक भी ऐसा कि आपकी वॉल्यूम बढ़ा देंगे भाई, एकदम नींद खोल देगा ये गाना, एकदम नींद खोल देगा आपकी, समझ रहे हैं आप। अभी आप देखो एकदम आंखें खुल जाएंगी भाई, बढ़िया वाली, आप बोलेंगे सब एकदम बढ़िया दिखे हैं मुझे। प्लीज ड्राइव सेफली।

बिकॉज ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, बट इतना कहूँगा ये बहुत ज़रूरी कहानी है बिकॉज मैं चाहता तो उसे इग्नोर कर देता कि भाई छोटी कहानी है मैं क्यों सुनाऊँ, मैंने कहा नहीं यार इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड आई हैव टू गो। एक मैसेज है आज तो रियली सब दिल निचोड़ दिया है इस टॉपिक के सब ने भाई, अमन भाई भी ये कह रहे हैं, बट एनीवे शुरू करता हूँ किस्सा एंड मीन वाइल मैं जो हूँ रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ। किधर गया भाई मेरा वाला रिकॉर्डर किधर गया भैया, मिल कहा नहीं रहा यहाँ। ओके ऑल राइट सो फिर शुरू करते हैं आज का मामला। सबसे पहले डिस्क्लेमर, कहने का मतलब किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, फिर उन्हें सेवन किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड ओ माई गॉड यू हैव टू इन्जॉय इट, बट हिस्ट्री का चैप्टर है तो उस लिहाज से सुनिएगा, ठीक है। चलो मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे और आज का जो किस्सा है जैसे मैंने कहा कि इतिहास के पन्नों में इस तरह से दर्ज है कि अभी तक पूरी तरह से ऊपर नहीं आए और लोगों तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो या तो उतने कमाल के नहीं है लेकिन उनके इर्द गिर्द कुछ कमाल हो गया है, या खुद लोग इतने कमाल के हैं लेकिन उनको उतनी तवज्जो नहीं दी गई है, तो ये किस्सा उसी के अराउंड इर्द गिर्द घूमता है। तो शुरू करता हूँ आज का किस्सा सुनाने के लिए मैं ज़रा आपको ले चलता हूँ कई साल पीछे, चलते हैं ज़रा 1941 में, सितंबर की 8 तारीख, और इस वक्त एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एलेक्जेंडर श्यूकिन एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और बहुत तेज़ी से चढ़ रहे थे, लिटरली हाँफ रहे थे, और इस वक्त तो सोवियत यूनियन की बिल्डिंग में चढ़ रहे थे। वो जल्दी में थे, उनके हाथ में एक बॉक्स था, एक उस बॉक्स में काफ़ी सारे सैंपल्स थे और ये सारे सैंपल्स उन्हें बहुत सेफली अपने लैब तक पहुंचाने थे, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। एलेक्जेंडर श्यूकिन काम करते थे एक वर्ल्ड नाउंड लैब एंड रिसर्च फैसिलिटी में, ये बहुत शानदार बहुत बड़ी लैब फैसिलिटी थी इन लेनिनग्राड आज की तारीख में कहलाता है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में है, बहुत खूबसूरत जगह है, इफ़ यू हैवंट बीन देयर कभी मौका लेके तो जाइएगा, बहुत कमाल की जगह है, और जिस जगह के बारे में बता रहा हूँ ये भी जगह आज भी मौजूद है वहाँ पे। एनीवे तो 8 सितंबर 1941 ये लैब ये फैसिलिटी ये बनाई गई थी एक बड़े से पैलेस में, और ये पैलेस था शहर के बीचों बीच। जब मिस्टर एलेक्जेंडर श्यूकिन सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो आप ये मत सोचिएगा कि पतली सी बिल्डिंग खड़ी हुई है, नहीं, दिस इज द होल पैलेस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो और शहर के बीचों बीच था ये पैलेस, एंड उनकी जो लैब थी बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ा लैब स्टोरेज था, फैसिलिटी थी, और एलेक्जेंडर उनकी टीम जो थी वो इतना काम कर चुकी थी अभी तक इस लैब में कि उनके हर काम का सबूत कोने कोने में नजर आ रहा था, मतलब नॉट फेलियर्स बट सक्सेस जो उन्हें मिली है वो सब कुछ इर्द गिर्द नजर आ रही थी। बेसिकली उनकी टीम एलेक्जेंडर की और उनके जो साइंटिस्ट की टीम थी वो काम करती थी जेनेटिक रिसर्च में, और पूरी दुनिया के लिए लोग काम करते थे, सिर्फ ऐसा नहीं कि रशिया में है तो सिर्फ रशिया के लिए काम करें, दे वर वर्किंग फॉर द होल वर्ल्ड एंटायर वर्ल्ड, और इस काम को दिल से लगा कर रखते थे वो, उनके लिए यही सब कुछ था, यही जिंदगी है, और वो मानते थे कि दुनिया में इंसानों के लिए बहुत काम आने वाली बहुत उनके काम आने वाली चीजें जो हैं वो इसी लैब से निकलेंगी। इस वक्त वो जल्दी में चढ़ रहे थे क्योंकि सिचुएशन बड़ी खराब थी, जैसे मैंने कहा कि साल 1941 था, ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर टू जारी थी और बहुत खतरनाक माहौल था उस टाइम पे, एंड क्योंकि इट वाज इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, तो बड़ा मुश्किल था चीज़ों को बचा के रखना, अपने कलेजे से लगा के रखना। कुछ महीने पहले ही जब जून का महीना था तो जर्मन आर्मी ने सोवियत यूनियन को लेनिनग्राड को जिस जगह पे ये पैलेस है इस पे एक तरीके से अपने कदम रख दिए थे, हमला तो अभी तक नहीं किया था, लेकिन एलेक्जेंडर जानते थे कि कभी भी जर्मन्स आएंगे उनकी लैब की तरफ और सब कुछ लूट के ले जाएंगे, तो इसलिए वो हर एक चीज को सेफ

भी रखना चाहते थे, सारे स्पेसिमेन वगैरह सब कुछ, पहुंच से दूर। अब इसके लिए ऐसा था कि वो जानते थे जर्मन्स कभी भी उनके लैब की तरफ आ सकते हैं, तो उन्होंने और उनकी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग फैसिलिटी के अंदर ही रुक जाएंगे ताकि हम सारा काम निपटा भी सकें और इस लैब की रखवाली कर सकें। दिलो जान से दे हैव डिसाइडेड कि हम घर जाएंगे ही नहीं, बिकॉज अगर हम चले गए तो हमारे दिल में यह रहेगा कि यार हमने लैब को अकेले छोड़ दिया। एंड उनकी रिसर्च चलती रही अनटिल द वॉर एंड्स, उन्होंने डिसाइड किया। अलेक्जेंडर भागते हुए टॉप पर पहुंचे, उनका जो ऑफिस था वो हॉल के आखिर में था। सांस उनकी तेज चल रही थी, दिल तेज धड़क रहा था और बाहर आवाजें आ रही थी जर्मन्स की। जब वो अंदर पहुंचे अपने ऑफिस के, उन्होंने जो सैंपल उनके पास था वो अपनी डेस्क पे रखा और फिर नोट्स निकाले। जब वो नोट्स निकाल के लिखने शुरू ही कर रहे थे तो बाहर से आवाज आई बूम, बिल्डिंग पूरी की पूरी, ये जो पूरा पैलेस था उसका एक एक हिस्सा हिलने लगा। अलेक्जेंडर ने बाहर खिड़की के देखा तो बाहर उन्हें नजर आए बहुत सारे जर्मन प्लेन्स जो लगातार इर्द गिर्द घूम रहे थे पैलेस के। वो बहुत डर गए थे क्योंकि उनका जो डर था वो उन्हें अब सामने नजर आ रहा था। फाइनली जर्मन्स ने अब अटैक करना शुरू कर दिया था। मगर अलेक्जेंडर उनकी टीम ने फैसिलिटी को अकेले ना छोड़ने का जो फैसला किया था वो उस पर डटे रहे। 2 महीने बाद दिसंबर 24, 1941, अलेक्जेंडर जैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे, अपनी डेस्क पे बैठे हुए थे ऑफिस में, स्वेटर मोटा सा स्कार्फ पहने हुए, बिल्कुल बंडल्ड अप, कांप रहे थे पूरी तरह से और ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। अब आप बोलेंगे पैलेस में क्या मतलब ठंड क्यों लग रही थी, मैं बताता हूं क्यों लग रही थी। सामने ना उनके बहुत सारे स्पेसिमेंस पैकेट्स रखे हुए थे जिन पे वो टेस्टिंग कर रहे थे। नोट्स बनाने तक में उनको दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनके हाथ कांप रहे थे, काले पड़ रहे थे फ्रॉस्ट बाइट्स की वजह से, पर वो अपने आप को जोर देकर जबरदस्ती से फोर्स करके नोट्स बना रहे थे। उन्हें पता था कि जान तो जाएगी मगर उन्हें ये प्रोजेक्ट खत्म करना है क्योंकि वो ये मानते थे कि दुनिया बदलेगी तो इसी से। इस पॉइंट तक हालात बहुत खराब हो चुके थे जिस वजह से इतनी ज्यादा हालत खराब थी अलेक्जेंडर उनकी टीम की। लेनिनग्राद घिरा हुआ था जर्मन से, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि विंटर का सीजन था, जो टेम्परेचर था वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच चुका था। बिलो फ्रीजिंग बाय दैट आई मीन -20, -25, -16, जो बहुत डेंजरस टेम्परेचर है। और इनके पास ना तो कोई कोल था जलाने के लिए, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना आग जलाने के लिए लकड़ियां थी, कुछ भी नहीं बचा था। रिसर्च फैसिलिटी पूरी की पूरी इतने वक्त से अनहीटेड थी, जो खिड़कियां थी वो टूट चुकी थी, और क्योंकि खिड़कियां भी टूट चुकी थी तो जो सब कुछ, जो पूरी हवा थी वो एक बहुत बड़ा इशू थी जो फैसिलिटी के अंदर डायरेक्टली आ रही थी। जस्ट इमेजिन कि आप ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं, दिसंबर का महीना है, -16 to 20 degrees टेम्परेचर है, माइनस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप खिड़कियां बंद कर सकें। फॉरगेट अबाउट वुड एंड कोल और आग वाग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, मगर आप खिड़की भी बंद नहीं कर सकते और आप कहीं जा भी नहीं सकते। और एक और परेशानी थी इन सब के ऊपर, लेनिनग्राद में इस वक्त खाने की सबसे ज्यादा किल्लत थी, भुखमरी का शिकार हो रहे थे लोग, राशन दुच्छा वो गिर चुका था, और हालात ये थे कि 300 कैलोरी पर पर्सन पर डे, बस इतना ही राशन था लोगों का। आप समझ रहे, दाना बराबर है, ये दाना बराबर है, ये सब लगा लीजिए कि बस जिंदा रहने के लिए वो जो आखिरी नुक्ता चीनी, मत कहते ना नुक्ता, बस वही है ये खाना। 300 कैलोरी पर पर्सन पर डे, पीपल ऑल ओवर द सिटी जो भी जिंदा थे वो धीरे धीरे धीरे धीरे दुनिया छोड़कर जा रहे थे। अलेक्जेंडर खुद इतने कमजोर हो चुके थे, इतने पतले हो चुके

के थे कि वो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। हाथ जैसे मैंने उनके कहा काले पड़ चुके थे फ्रॉस्ट बाइट से। वो अपनी मौत के बेहद करीब थे, फिर भी उन्होंने और उनकी टीम ने पहले से भी ज्यादा डेडिकेशन दिखाना शुरू किया, पहले से भी ज्यादा। आज मैं आपको बोलूंगी, अपनी टीम को बोलिए, अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, अपनी टीम को बोलिए कि नहीं अभी घर नहीं जाना है, अभी हमें काम करना पड़ेगा। तमाम फैसिलिटी होने के बावजूद, एसी वैसी सब होने के बावजूद, आपकी टीम जो है ना आपके मुंह पे सुना के चली जाएगी और आप रोक नहीं पाएंगे। अनटिल अनलेस वो मजबूर है तो बात दूसरी है, लेकिन आपकी टीम मन लगा के तो काम नहीं करेगी। मगर एलेक्जेंडर साहब ने अपनी टीम को कहा कि हमें ये काम खत्म करना पड़ेगा, और उनकी टीम ने भी हामी भरी, जबकि हालात इतने खराब थे कि भारत से आने वाली जो हवा थी वो अपने साथ बर्फ ला रही थी और आग जलाने का कोई भी रास्ता नहीं था। मगर टीम ने डिसाइड किया कि बाहर से चाहे जर्मन्स कुछ भी करते रहें, आ भी जाएं, मगर उनका प्रोजेक्ट उनकी जान से ज्यादा कीमती है। एलेक्जेंडर फाइनली स्पेसिमेन की तरफ बढ़े जो उनके सामने सैंपल्स रखे हुए थे। जैसे तैसे गहरी गहरी सांस ले रहे थे, जो बिल्कुल आखिरी सांसें जो होती हैं, उन्हें दिखना बंद हो रहा था, धुंधला धुंधला हो रहा था सब कुछ। उन्होंने स्पेसिमेन को, इस सैंपल को बहुत टाइटली अपने हाथों में पकड़ा, फिर अपनी चेयर पे पीछे हुए, अपनी आंखें बंद करी और बैठे रहे। अगली सुबह 25 दिसंबर 1941, 25th of December 1941, हेड ऑफ फैसिलिटी, इस पूरी लैब और फैसिलिटी के जो हेड थे निकोलाई आइवानोव, वो हॉलवे की तरफ भागे जा रहे थे एलेक्जेंडर की ऑफिस की तरफ। एलेक्जेंडर की तरह ही निकोलाई बहुत ज्यादा शिकार थे भुखमरी के, ठंड के, और अभी वो वॉक करते हुए, क्योंकि भागने की हालत तो थी नहीं, वो एक अच्छी खबर देने के लिए जा रहे थे अपने दोस्त एलेक्जेंडर को। सिटी ऑफिशियल जो थे उन्होंने दरअसल निकोलाई को खबर दी थी कि राशन बढ़ा दिया गया है, सबका राशन बढ़ा दिया गया, और जानते क्या बढ़ाया था, 4 extra slices of bread दिए जाएंगे, 4 extra slices पर पर्सन पर डे। यह आपके मेरी नजर में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब मिल रहा है, मगर निकोलाई और एलेक्जेंडर इन सबकी टीम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। 4 extra slices of bread पर पर्सन, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती थी उस टाइम। और निकोलाई रोता हुआ ये खबर लेता हुआ भागता हुआ जा रहा था एलेक्जेंडर की तरफ। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहला शख्स जिसे वो सब बता देना चाहता था। वो जानता था कि एलेक्जेंडर अपने काम के लिए डेडिकेटेड है और बीमार भी। वो पहुंचे, उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, नॉक किया एलेक्जेंडर के दरवाजे पे, मगर कोई नहीं आया। ही ट्राइड अगेन, कोई भी नहीं आया। फिर निकोलाई ने दरवाजे की नॉब को घुमाया और दरवाजे को खोला और उनको सामने दिखे एलेक्जेंडर अपनी चेयर पे बैठे हुए, आंखें बंद थी, ही वॉज नॉट मूविंग एट ऑल। उन्होंने धीरे कदम से चलना शुरू किया एलेक्जेंडर की तरफ बढ़े, उन्होंने चेयर घुमाई एंड वो समझ गए बॉडी पूरी ठंडी पड़ी थी। ही नोटिस्ड कि एलेक्जेंडर, ही वॉज डेड। और जब उन्होंने एलेक्जेंडर के हाथों को देखा, एलेक्जेंडर के हाथों में जो बैग था उसे देखा, उसे देखकर निकोलाई सिर्फ उदास नहीं थे, वो प्राउड भी थे। ये अलग फीलिंग थी, अजीब सी फीलिंग थी, है सैड एंड प्राउड, ये कितनी अजीब फीलिंग है एक साथ इसको महसूस करना। निकोलाई के साथ वही था, तो वो बेहद गमगीन थे लेकिन बहुत फक्र से देख रहे थे एलेक्जेंडर को, जो दुनिया में नहीं रहे, जिनकी जान भूख ने ले ली। अब एलेक्जेंडर के हाथ में क्या था, एलेक्जेंडर के हाथ में एक बैग था जिसके अंदर बादाम थे, और सिर्फ उनके हाथ में इस छोटे से बैग में सिर्फ बादाम नहीं, आसपास इस पूरी लेबोरेटरी में, इस पूरी फैसिलिटी में असॉर्टमेंट ऑफ फूड थे।

अलग अलग किस्म के मिक्सचर ऑफ फूड आइटम्स पूरी रिसर्च फैसिलिटी में थे, क्योंकि फैसिलिटी का नाम क्या था, प्लांट इंस्टीट्यूट। ये स्पेशलाइज्ड करते थे इन जेनेटिक टेस्टिंग और स्टोरेज एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स जैसे चावल, मटर, गेहूं, कॉर्न्स, नट्स, एलेक्जेंडर और उनके कलीग्स के आसपास भर के खाना था। वो चाहते तो खा लेते, मगर ये वो चीजें थी, ये वो क्रॉप्स थे जिनको जेनेटिकली प्रोड्यूस और ढूंढा गया था। सालों की मेहनत थी इसके पीछे। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और ऐसी सीड्स थी जो कहीं नहीं मिलती पूरी दुनिया में, और इन चीज़ों में पोटेंशियल था कि इनके ज़रिए बहुत सारी दवाइयाँ और सुपर क्रॉप्स बनाए जा सकते हैं, जिससे कि भुखमरी हमेशा हमेशा के लिए मिटाई जा सके। तो एलन, एलेक्जेंडर, निकोलाई और उनकी कलीग्स ने डिसाइड ये किया कि उनकी जान से ज़्यादा कीमती ये सारे क्रॉप्स हैं। ये जो लड़ाई थी चलती रही काफी वक्त तक चली। फिर साल 1944 आया, 1944, जर्मन्स फाइनली हरा दिए गए। सोवियत यूनियन ने जीत दर्ज करी, जनवरी का महीना था। एटलीस्ट 19 साइंटिस्ट्स की जान गई, पर ये जो अलेक्जेंडर उनकी टीम ने किया था वो काम नहीं मरा, वो काम सरवाइव कर गया। क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया कि ये काम सरवाइव करते करते सालों तक रहा, और बाय 1970 जब आया तो एक तिहाई रशियन फार्मलैंड, जो पूरे खेती बाड़ी थी रशियन फार्मलैंड, एक तिहाई इन्हीं सीड्स और प्लांट्स की वजह से बना जो अलेक्जेंडर और उसकी टीम ने मेहनत करके जेनेटिकली प्रोड्यूस और कलेक्ट किए थे, जो उनके इंस्टीट्यूट और उनके लेबोरेटरी से आए थे। उनके लेबोरेटरी से आने वाले हर एक सीड और प्लांट की वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर फेड वेल। ना सिर्फ रशिया तक महदूद रहा ये प्रोजेक्ट, उनके जो बनाए हुए क्रॉप्स थे ये बाकी दुनिया में भी काम आए, एंड बाकी आने वाले इनके बाद जो साइंटिस्ट थे उनकी भी बहुत मदद हुई। ये मदद इसलिए हो पाई क्योंकि चंद लोगों ने डिसाइड किया कि वो किसी और के कल के लिए अपना आज कुर्बान करेंगे। तो इतना ही कहूंगा कि जो लोग आरामदेह नौकरी में हैं और जो फौरन 7-8 घंटे पूरे होने के बाद घड़ी देखने लगते हैं कि चलो मैं चलता हूं, ये कहानी जरूर सुन लेना। उम्मीद है मोटिवेशन के लिए कहानी बहुत काम आएगी। और ये ऐसा साइंटिस्ट जिसके बारे में शायद लोगों को ना पता हो, एंड ये वो कहानी है जो बच्चों को भी पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस इन कहानियों से पैदा होता है। अलेक्जेंडर श्यूकिन इनका नाम था, आप इनके बारे में ढूंढ भी सकते हैं, बाकी कहानी में कुछ देर में अपलोड कर ही दूंगा एज यू नो मी। सो ये था किस्सा आपके हवाले। 666-22107 नंबर है, 666-22107, एंड डू लेट मी नो कि आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा। माइक कर रहा हूँ वेट आपके मैसेज का। स्टे ट्यून्ड।

0: Wake up. Hey, Doha wala mein Kabir.
1: हाँ जी
2: यही कहूँगा सुबह सुबह.
0: Wake up.
1: Assalamualaikum. मैं जी दोहा वाला कबीर 8:08 हो लिए और जो मेरे मैसेज आए कहानी को लेकर उसके पर तो बात करूंगा. आप कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पे. इफ यू लव द स्टोरी डू लेट मी नो.

0: आपका फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मॉर्निंग. ओके 666-22-107 फिलहाल व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस हैं. शहजादा सलीम लिखते हैं कहानी हमेशा की तरह सुपर, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको. तो बस मैंने लिखा है वेरी नाइस स्टोरी कबीर भाई, बेटी को सुनाऊंगी शाम को. ऑफकोर्स ये तो कहानी आप जरूर सुना. तो बसुन बहन ये बच्चों को सुनाने वाली कहानी है. दे शुड नो. ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं ना जिनके बारे में पता नहीं पढ़ाया नहीं जाता, या फिर इनका चैप्टर होता ही नहीं है, छोटा सा होता है, मेंशन नहीं होता. क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था अलेक्जेंडर श्यूकिन के बारे में इससे पहले, बट ये उनकी कुर्बानी की जो कहानी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने कहा कि वाई नॉट सुनाई जाए. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी बहुत छोटी और इमोशनल थी, लव्ड इट. थैंक यू सो मच मेरा भाई, बहुत सारा प्यार आपको. और एक मैसेज है, अलेक्जेंडर पॉजिटिव पॉइंट्स टुडे स्टोरी, आपका अलग ऑरा है जो स्टोरी के मोमेंट चेंज कर देते हैं, जो स्टोरी में वॉइस डाल के डिलीवरी अलग ऑरा है भाई कबीर का. थैंक यू सो मच मोहम्मद आलम सिद्दीकी भाई, बहुत सारा प्यार भाई आपको, थैंक यू सो मच भाई. ये कहानी पहले इग्नोर करने वाला था, मैंने कहा कि छोटी तो नहीं पड़ेगी, बट मैंने कहा नहीं, इट डजंट रियली मैटर बिकॉज कुछ कहानी सुनाई जानी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द स्टोरी. एक मैसेज है, मुझे तो बहुत सर्दी लगी कबीर भाई. अच्छा वो इतनी ठंड का सुन के इधर भाई, होता है आवाज़ में बस कन्विक्शन हो तो सब होता है. एक मैसेज है, आपको यहाँ सुनता हूँ कबीर भाई, लव यू, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई, नाइस स्टोरी लिखा है ये सैयद हाशिम रजा सामने. और एक भाई ने मैसेज किया, कबीर भाई किसी और के कल के लिए अपना आज कुर्बान किया. ये लाइन बड़ी मस्त थी, थैंक यू सो मच भाई, आई रियली मीन इट आनंद भाई, आई रियली मीन इट. उस टाइम पे भी एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, बहुत दिनों बाद आज मैसेज कर पा रहा हूँ, सॉरी ब्रो, ड्यूटी 9 AM को होता है इसलिए. मोहम्मद फराज भाई तो सिर्फ 9 बजे निकलते हो गए, उससे पहले निकलो थोड़ा सा, ट्रैफिक व्रैफिक डर नहीं लगता तुमको? एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए लेट उठा. अरे अरे अरे अरे, ख्याल रखो भाई, ख्याल रखो सुभाष भाई अपना. एक मैसेज है, और ये टी जी भाई, ये जो हमारे हैं परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तला भाई बहुत बहुत शुक्रिया. समीर भाई ने मैसेज किया, कलीम भाई ने मैसेज किया, बहुत दिनों बाद सुना, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम. सुमूल बन गए, दोबारा सुना दीजिए, ऐसा थोड़ी होता, दोबारा सुना दीजिए. अच्छा ये वो गन्ने का रस मिल रहा है भाई साहब, एक गिलास और बना दीजिए, मैं स्टोरी एक जगह भेजता हूँ, वहाँ मिल जाएगी आप स्टोरी भेज देना. अरे फलक कहने की बात नहीं है, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी. और नियाज भाई ने मैसेज किया, नियाज भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, पार्टी क्या हाल है. और एक मैसेज क्या है, लिखते हैं, कबीर भाई थैंक यू सो मच, जब जब कहानी सुनाते हैं तो मैं इतना खो जाता हूँ कि मुझे पता नहीं लगता कि आज जब कह रहे थे कि इतनी हवा चल रही थी तो मुझे ठंड लगने लगी, मैंने अपने गाड़ी का AC कम कर दिया. वेरी नाइस. अगर इस गर्मी में मेरी आवाज़ सुन के और ठंड के बारे में बात करके आपको ठंड लग रही है तो मैं जीत गया. इससे ज़्यादा कन्विंसिंग पावर किसी में नहीं होगी भाई. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. फरहत भाई कह रहे हैं, भाई सर्दी कब स्टार्ट होगी, अब तो कबीर भाई की स्टोरी में भी सर्दी आ गई. कुछ भाई बोलो स्टोरी अच्छी थी, कुछ भी बोलो स्टोरी अच्छी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार भाई. सर्दी अभी नहीं आने वाली भाई, मुझे लगता है जब छुट्टी से लौटूंगा तभी आएगी भाई. एक मैसेज है, बहुत अच्छी कहानी, इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार फरहान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज किया आपने. एक और मैसेज आया, कबीर भाई आज की कहानी बच्चों को सुनाने वाली है, रियली होप कि बच्चों को ये कहानी मैं सुना सकूं. आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहानी ढूंढते कैसे हैं, बिकॉज मुझे भी कहानी ऐसी मिलती नहीं है, वही मिलती हैं जो सुनी सुनाई होती हैं. आई अंडरस्टैंड भाई, ये कहानी मिलती क्यों नहीं है और सुनी सुनाई मिलती है, क्या है कि आप लोग थोड़े बिजी लोग हैं भाई, आपका प्रोफेशन आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप ज़्यादा इसमें घुसें. कोई टेंशन नहीं है, मैं हूँ ना पार्टी, आप पूछ ले करो मेरे से, कोई ऐसी बात नहीं है. मैं भी कोई ऐसा कुछ जादू नहीं कर रहा हूँ. मुझे भी ढूंढनी पड़ती है, बिकॉज मेरे पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, इसलिए ढूंढ लेता हूँ भाई. थैंक यू सो मच. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैंने स्टोरी मिस कर दिया इस गाने के माध्यम से. कतर में उर्वशी को ढूंढ तो नहीं रहे हो? क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ आप पिछले कुछ दिनों से आप ये फ्रीक्वेंटली, मैंने लगाया भी नहीं था फ्रीक्वेंटली, क्यों भाई करें. और आपने भाई एक दिन कहा था आज किसी उर्वशी ने मैसेज या कॉल नहीं, हाँ नहीं, वो उर्वशी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी आपको. मैंने कभी नहीं सुना उर्वशी नाम कतर के अंदर, होगी मैंने नहीं सुना. एक मैसेज, सॉरी कॉल आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: भाई साहब, क्या हाल है कमाल भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कबीर भाई, हाल तो अच्छी है. बस आपकी कहानी सुन के एक चीज याद आया
0: जी,
1: ये जो है ना हर देश में इतिहास के पन्नों में होनी चाहिए कहानी,
0: है ना, होनी चाहिए ना.
1: इससे जो है ना उन लोगों का जमीर जागेगा जो लोग जो है मिलावट कर रहे हैं, जो केमिकल डाल के जो है अलग अलग वो कर रहे हैं. देखिए एक साइंटिस्ट अपनी जान दे दी है
0: बचाने के लिए, पूरी टीम समेत.
1: तो

0: ये होनी चाहिए ताकि उन लोगों को भी जो है हर देश में कहानियों को जो है रिलीज करना चाहिए।
1: एब्सोल्युटली भाई, मैं वही तो कह रहा
0: हूं, कम से कम उन लोगों को जमीर जागे, उन लोगों के मुंह पे तमाशे पड़े जो है मिलावट कर रहे हैं।
1: हाँ, और ये ऐसे साइंटिस्ट हैं, पता नहीं इनका चैप्टर होता क्यों नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर शायद रशिया में पढ़ाया जाता होगा, मुझे पता नहीं है, बट हमने कभी नहीं सुना था इनके बारे में।
0: ये हर देश के लिए वो सबक होना चाहिए भाई, मालूम आज देखिए हर चीज में मिलावट है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और वो जो थे वो समाज के लिए भाग रहे थे, कुछ देना चाहते थे, आज लोग कुछ लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं।
1: उल्टा हो गया,
0: उल्टा हुआ है।
1: हाँ, नहीं आज
0: ये होना चाहिए।
1: आजकल तो मुझे लगता भी नहीं कोई इतना इतनी बड़ी कोई कुर्बानी देगा, इवन इफ वो साइंटिस्ट को ना, आज तो मुश्किल है।
0: मैं कहता हूँ मालूम है कबीर भाई की जो देने वाले है ना, जो नहीं कहना चाहिए लेकिन जो बैठे हुए हैं उसी पोस्ट पे ना, वो लोग जो है वो चाहते ही नहीं।
1: वही
0: लोग ज्यादा दिन जिंदा रहे।
1: हाँ, थिंग्स हैव चेंज्ड, अभी तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी। भाई कमाल भाई, कहानी कैसी लगी आपको? छोटी कहानी थी मगर
0: कहानी बहुत जबरदस्त भाई, एक सबक वाली कहानी थी।
1: थैंक यू सो मच,
0: और ये होनी चाहिए थी, अच्छी थी।
1: थैंक यू भाई,
0: आपने तो कभी क्यों ऐसा सोचा कि कहानी नहीं सुनानी चाहिए?
1: नहीं, मुझे ऐसी कहानी लगा छोटी
0: और भी लाई है।
1: अच्छा ठीक है, डन डन भाई, आई एम रियली हैप्पी आपको।
0: छोटी कहानी से मतलब नहीं है, कहानी सबक देके जा रही है ना।
1: हाँ,
0: एक विचार दे रही है आपको, एक समझने का जो तरीका दे रही है।
1: नहीं, मैं
0: क्या करना है मैं लोगों के लिए,
1: मैं उनके लिए भी, मैं क्योंकि आखिर में ये बोला था ना, बहुत सारे लोग जो काम कर भी रहे होते हैं वो सीधा घड़ी देखने लग जाते हैं और फिर शिकायत उनकी रहती है कि मैं अपने मेरा काम नहीं चल रहा है, बढ़िया नहीं हो रहा, क्योंकि कई मरतब आपको काम करते हुए, अपने काम करते हुए भी ये ज़्यादा घड़ी वड़ी दिखने नहीं चाहिए। अगर आपको सच में उस समय कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर आपका डेडिकेशन फुल होना चाहिए।
0: हम लोग ऑफिस में थोड़ी बैठे हैं भाई, घड़ी हम लोग तो 24 घंटे वाले ड्यूटी वाले।
1: आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर
0: नहीं बता रहा हूँ कि वैसा जो काम जो करने वाले हैं वो 10 घंटे की 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी दो ना।
1: हाँ, मतलब
0: कुछ कर रहे हैं बेहतर होने के चक्कर में,
1: एक्स्ट्रा लोग देते नहीं है फिर शिकायत रहती है कि एक्स्ट्रा मिला नहीं है, तो वो कुछ कहानी अलग है।
0: यहाँ तो फिर भी जो है टाइम टू टाइम है,
1: आपका तो
0: फिंगर लगा के चले जाना, अपने यहाँ तो फिंगर लगा और गायब हो जाओ।
1: सही जा रहा है कमाल भाई, आप थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपने कॉल करी। बहुत बड़ी कहानी है इंशाल्लाह इस वीक,
0: मतलब नहीं कहानी जबरदस्त।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई,
0: ओके कबीर भाई,
1: ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़।
1: तो ये कहानी जो है, आई होप सबको अच्छी लगी हो। फलक थैंक यू सो मच, उन्होंने पूछा था कैसे, मैं एकदम टनाटन बढ़िया चल रहा है, आप बताइए। 8:15 बाय द क्लॉक, और कहानी आपको कैसी लगी अभी भी बता सकते हैं, बिकॉज आज इस हफ्ते पूरी जो कहानी आएंगी बड़ी कमाल की भाई, मतलब लाइंड अप है। मैंने इस वीकेंड पे मैं गेमिंग करते करते ढूंढ रहा था कहानी, मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी मुझे मिली जा रही थी, वो धड़ल्ले से मिल रही थी, मुझे बड़ा मजा आया। फरद भाई ने मैसेज किया, वो खाली बुशर्ट पहन के आए हैं भाई, कह रहे हैं अजाब हो गया भाई, ब्लैक कलर पहन लिया। और निकलो गर्मी में, अब आएंगे मजे, गर्मी शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड टुडे भाई। बाकी मिलते हैं एक गाने के बाद, गुरु रंधावा, टू आईज, एक्सेलेंट भाई, एक नंबर लिखने जयस भाई, थैंक यू।
2: या तो मेरी किस्मत चंगी या फिर अब भी मर्जी,
1: चंगा गाना सीखा जी, 8:16 पे।

0: रूम कर शेक अप आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अप दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप
1: गुड मॉर्निंग
0: दोहा वाला मैं कबीर
2: यही कहूंगा
1: हाजी भाई
2: सुबह सुबह
0: वेक अप
1: भाई छोड़ो सारी चीजें आप मैसेज करा करो बस सारी चीजें सी ठीक हो जाएंगी अस्सलाम वालेकुम 8:19 बाय द क्लॉक और मैसेज क्या है मेरे भाई ने मेरे वीर क्या हाल है मेरे भाई हैं बृंदर जी ऑल्सो नोन एज नावी जी बहुत सारा प्यार एक मैसेज आया है क्या कह रहे हैं इरफान शेख इरफान कासमी साहब लिखते हैं भाई इमेजिन द स्टोरी हेड्स ऑफ टू यू इट माइट बी हिस्ट्री भाई इट इज अ वेरी नॉलेजेबल स्टोरी आपको क्या लगता है मैं सिर्फ फालतू की बातें करता हूँ अच्छी बातें भी कर थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जरा कुछ खबरों की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज बहुत सारी खबरें आपको बतानी है तो सबसे पहली खबर है कतर नेशनल स्विमिंग टीम की तरफ से जो शुरुआत कर रही है अपने कैंपेन एट 20th एशियन गेम्स आई जी रहा 2026 और ये शुरू हो चुका है आज से मेंस इंडिविजुअल इवेंट जो है वो अक्वाटिक सेंटर में होगा इन द जैपनीज कैपिटल और वही होस्ट करने वाले इस कंपटीशन को और ये कंपटीशन 4 अक्टूबर तक रहेगा आई लव द जैपनीज लैंग्वेज आजकल मैंने इतने गेम खेले ना जैपनीज वाले वो जो उनकी वो बोलने का तरीका है मुझे जैपनीज में जिंदगी में कभी नहीं सीख पाऊंगा आई नो पर वो जैसे बोलते हैं सेंसे ओ वो बात ही कुछ और है भाई ऐसा लगता है जैपनीज बोलना सीख गया हूँ मैं कॉम्पिटिशन आ जाता है ओला एक अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो अगली खबर है वो है कतर चेंबर से सो कतर चेंबर विच इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट एब्रीविएशन में QC उन्होंने डिस्कस किया है विद यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो तौर तरीके हैं किस तरीके से मजबूती लाई जाए और एक भरोसा बिठाया जाए बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस इनोवेशन को लेके टेक्नोलॉजी को लेके और AI की एथिक्स को लेकर भी बातचीत होने वाली है तो उसके रूल्स ले डाउन किए गए हैं इसमें और भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग प्रमोटिंग द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज स्पेशली प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में और जो दोनों साइड्स हैं ऑफकोर्स कतर चेंबर और यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के बीच में डिस्कशन जो है वो एक हिस्सा रहने वाला है इन द 4th ग्लोबल फोरम ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है बाय यूनेस्को इन रियाद सऊदी अरेबिया और बातचीत जारी है इसके अलावा तीसरी जो खबर है वो है कतर इस्लामिक बैंक से जुड़ी हुई QIB जिनको रैंकिंग मिली है तीसरे नंबर पे ग्लोबली तो भाई इनके लिए तो हूटर बनता है नहीं नहीं ये नहीं हूटर बेटा उर्वशी नहीं चलाना हूटर चलाना है हूटर फॉर QIB कतर इस्लामिक बैंक को रैंक मिली है 3rd ग्लोबली इन द Tier 3 अपर मिड साइज बैंक कैटेगरी इन फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स 2026 और ये जो रिकग्नाइजेशन है रिफ्लेक्ट करता है QIB का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो थ्रू आउट द ईयर रहा है और जो उनकी रेजिलियंस है जो कि मेजर्स उन्होंने लिए हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे ग्रोथ रहे और अर्निंग क्वालिटी बनी रहे साथ में कैपिटल और फंडिंग रेजिलियंस को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि खाता खुलने का वक्त आ गया है इसके अलावा कतर एयरवेज की तरफ बढ़ेंगे कतर एयरवेज ने भी अवार्ड जीते हैं और अगर कोई मुझे कतर एयरवेज का सुन रहा है इंक्लूडिंग नावी भाई कतर एयरवेज के लिए ब्रो कतर एयरवेज ने जीता है सक्सेसफुल स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2026 और ये 4 बार मतलब 4 टाइटल जीते हैं एंड रिटेन किया है 5 सितारा एयरलाइन रेटिंग को द 4 वर्ल्ड एयरलाइंस जो अवार्ड की गई हैं रिप्रेजेंटेड टू कतर उनमें से है जो अवार्ड मिले 4 अवार्ड उसमें से है वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस क्लास ये बाय द वे कतर एयरवेज ने 13वीं बार जीता है 13th टाइम लगातार इसके अलावा बेस्ट एयरलाइन इन द मिडिल ईस्ट का अवार्ड भी जीता है और ये

0: वाला अवार्ड कतर एयरवेज ने 14वीं मर्तबा जीता है। इसके अलावा वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास लाउंज का अवार्ड जीता है, ये इन्होंने 8वीं मर्तबा जीता है। और इसके अलावा वर्ल्ड्स बेस्ट ऑनबोर्ड वाईफाई का अवार्ड जीता है, और ये पहली एयरलाइन है टू एवर रिसीव दिस अवार्ड। मतलब जब भी मुझे लगता है एयरलाइन के अवार्ड होंगे, लोगों को सोचना नहीं चाहिए अवार्ड किसको देना, कहना चाहिए एंड द अवार्ड गोज टू ऑब्वियसली कतर एयरवेज। कूड़ों जाए, बहुत बढ़िया कतर एयरवेज, और जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आई एम प्रीटी श्योर आपको भी जो फायदा मिलता होगा आप हमें बताते तो है नहीं, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी हु इज वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। फरहत भाई कहते हैं कबीर भाई यहाँ पे पार्किंग में कोई कार में गाना सुन रहा है वो भी फुल वॉल्यूम, मेरी चाहते। अच्छा जो फिजा अरे देखो सुनने दो बेचारे को यार, ऐसे लोग बेचारे बहुत मासूम होते हैं। मैसेज है तेरी मिट्टी सॉन्ग चला दो, बगैर टिकट के पेशावर घूम आते हैं भाई सुबह सुबह जहाँ से, भाई बस ये मसला हो जाता है भाई, कुछ गाने ना ऑलरेडी सेट होते हैं भाई एनर्जी के हिसाब से, तो मैं हटा नहीं पाता हूँ। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसा रहा वीकेंड, आप बताइए कैसा रहा होगा मेरा वीकेंड। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगला जो गाना है अगेन ये आपकी गाड़ी के वूफर के लिए भाई, मौज करा देंगे आपकी गाड़ी के ऊपर, बम्पर भर भर करने वाले भर भर।
1: तेरी हसरत हो या इबादत हो,
0: 8:24 by the clock,
1: तुझको पाना है।
0: डिप्लो और साथ है मोहित चांद की आवाज, अब भर भर करेंगे स्पीकर आपके, देखना आप वाई वूफर फुल कर लो।

Oy Chahan, Harry met Sejal se gana. A 27. आपका स्पीकर के मजा आ गए होंगे अगर उसकी आपने वॉल्यूम बढ़िया रखी थी तो. एक मैसेज आया भाई, सबसे पहले बर्थडे विश करते हैं. ये भाई है, मेरे दोस्त का बर्थडे है, विश कर दो. फैसल भाई की तरफ से असद भाई को विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे. असद भाई पार्टी ले लेना भाई, छोड़ना नहीं है फैसल को. एक विश में नहीं कि आप बोलो अरे मेरा भाई तूने रेडियो

कुछ करवा दिया, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ पार्टी बढ़िया होनी चाहिए, सॉलिड सी, और प्रूफ मांग दिया अदालत। और एक मैसेज किया यूसुफ भाई ने, यूसुफ भाई क्या कह रहा है, मुझे तो पता है आपका वीकेंड कैसा गया होगा, एक कोने में सोफे की तरह पड़े हुए, सोफे नहीं फर्नीचर की तरह पड़े हुए, आई एम वेरी वेरी स्पेसिफिक, नॉट सोफा, एनी फर्नीचर यू कैन सी। और कहते हैं कहीं आए जाए करें कबीर, बाहर बाहर क्यों जाए कबीर, क्या करेगा, दुनिया बहुत देख ली, 30 साल का हो गया मैं, क्या करूँगा और दुनिया देख के, मेरा जी भर गया यूसुफ, ऐसा हौली हौली होता है मेरे दिल में, मैं कहीं नहीं जाऊँगी।

0: में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड मकर के आंखों को खोलो वेक अप दोहावाला में कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: और बाकी मैसेज किया जैस भाई कह रहे हैं भाई हिला डाला भाई थैंक यू सो मच भाई यही तो मेरा मकसद था कि आपके स्पीकर को मजा जाने चाहिए भाई सवेरे सवेरे एक मैसेज किया है भाई ने भाई मैंने आपको लेकिन बाहर देखा है नहीं देखा है प्रीटी श्योर जब से मैंने लुक बदला है मेरे को सामने खड़े खड़े मेरे घर वाले नहीं पहचान पाते आपने मुझे बाहर कहाँ देख लिया भाई गलत फहमी का शिकार हैं आप इसके लिए 10 इंजेक्शन लगते हैं पता है आपको फिर भी नहीं जाती बीमारी है ऑल द बेस्ट 8:30 हो रहे घड़ी में और वक्त है बताने का कि इंटरनेशनली कौन कौन से दिन जो है वो मार्क्ड किए गए हैं तो एक से बढ़कर एक दिन है भाई आज सबसे पहले तो बता दूं आज है पेपरोनी पिज्जा डे आई डोंट नो इफ यू गाइज लव पिज्जाज मेरी जिंदगी में मैंने दो लोगों को देखा जिन्हें पिज्जा पसंद नहीं है पता नहीं क्यों नहीं पसंद है होना चाहिए बड़ी प्यारी चीज़ है सो पेपरोनी पिज्जा डे है आज दोज हु लव पिज्जाज मुझे बहुत पसंद है आज है फ्राइड राइस डे सारा खाने पीने के दिन है भाई आज है कैसो डे कैसो जो है स्पेनिश कोई डिश है बड़ी शानदार है एक आज है वर्ल्ड पाएया डे पाए स्पेनिश आ गई आपके भाई को डबल एल हे हो जाता है मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ब्रिटिश और सही बोल रहा हूँ आसपास तो हूँ सही के आज है स्ट्रिंग चीज डे ये मुझे नहीं पता क्या होता है कौन सी चीज़ है ये चीज इतनी सारी है कि कैटेगरीज याद रखना मुश्किल है इसके अलावा है पंच डे नहीं अच्छा सॉरी ये मुख्य वाला पंच नहीं है मुख्य वाला पंच नहीं ये पंचो वाला ऑरेंज पंच ये वाला पंच फ्रूट वाला पंच वो वाला पंच है इसके अलावा है केयर फॉर किड्स डे ये किसने सोचा होगा कि आज का दिन हम बच्चों का ख्याल रखेंगे तो बाकी दिन का क्या ये मतलब ये स्पेसिफाई क्यों किया गया है केयर फॉर किड्स डे अच्छा इसके अलावा है वाइफ अप्रिसिएशन डे जिसके बारे में आज हमने बात करी अप्रिशिएट हर प्लीज इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड अगर आप पूरी जिंदगी अप्रिशिएट हर एक मैसेज है मैसेज बाद में आता हूँ पहले बताता हूँ आज एक और दिन है क्राइम एंड इंटेलिजेंस एनालिसिस अप्रिसिएशन डे जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं ऑफकोर्स उनको मेरा सलाम उनकी वजह से मुझे कहानी मिलती है तो जो लोग इस फील्ड में हैं इन्वेस्टिगेशन में इंटेलिजेंस में थैंक यू सो मच गाइज आप लोग काम करते हैं तभी मुझे कहानी मिलती है बहुत बहुत शुक्रिया इसके अलावा आज है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डे आज वैसे भी कई जगहों पर कई यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स डे और कई जगहों पर मनाया जा चुका है ऑलरेडी सो That is there. इसके अलावा है जर्मन वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आज जर्मनी में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है और आज मैं बता रहा था कि जर्मनी ने कैसे किया अटैक और इसके बाद है केयर फॉर किड्स डे ये तो बोल चुका हूँ चलो केयर फॉर किड्स डे मतलब ये तो हर दिन होता भाई क्या दिक्कत है एक मैसेज है आज मेरा एक दोस्त का बर्थडे है और यूएसए क्या क्या लिखा एक सेकंड रुको आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे है और उसे खाना बहुत पसंद है मैं कहूँ यूएसए खाना पसंद है उसे खाना बहुत पसंद है अच्छी बात है ना भाई क्या दिक्कत है इधर भाई क्यों दुश्मन बने हो उसके आर्य अंसारी भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप भाई आज रिक्वेस्ट है आपसे और लिसनर से मुझे ना क्या मेरे पास लाइट लाइसेंस है भाई मैं आपको ये प्रमोट नहीं कर सकता भाई आई एम रियली सॉरी क्योंकि मुझे ऑन एयर ये बताने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा ना तो मैं ये सीधा नहीं बोल सकता हूँ आई एम रियली सॉरी जुल्कनैन साहब वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं भाई कहानी भेज दो जुल्कनैन साहब अभी गिफ्ट रैप करा के देता हूँ आपको कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम जैस भाई कहते हैं लगता है भाई ने आपको देखा है उसकी आंखों का नंबर ज़्यादा बढ़ गया है मुझे लग रहा है

0: ये पहली बात तो मुझे, मैं कहीं गया नहीं तो उन्होंने देखा कहाँ से। यूसुफ भाई कह रहे हैं कबीर एड मी टू अंडर द लिस्ट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पिज्ज़ा। क्या बात कर रहे हो यार, आपको पिज्ज़ा नहीं पसंद है? यार यूसुफ भाई यार, मुझे आपसे उम्मीदें थी भाई, मुझे आप शुरुआत में चटोरे लगे थे, आपको पिज्ज़ा नहीं पसंद। एक मैसेज है, मैंने कभी नहीं खाया पिज्ज़ा। म्यूजिक रुको जरा, म्यूजिक रुको जरा। हाँ क्या नाम है आपका, क्या नाम बताया आपने? ये कह रहे हैं तारिक नवाज साहब, इन्होंने कभी नहीं खाया पिज्ज़ा। यार ऐसा भी मत करो आप, ठीक है तो अच्छा है, इट्स नाइस। आरिफ भाई कह रहे हैं भाई पिज्ज़ा तो मैंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया। क्यों, मतलब इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है? एक तो पता है लोग ना यहाँ पे, मैंने नोटिस किया, हवा बना देते हैं हर एक चीज़ का, बिल्कुल इतना बड़ा करके बताते हैं जिसकी याद नहीं है कि पता नहीं क्या ही हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, अभी कोई ना कोई आएगा और पिज्ज़ा के बारे में बोलेगा इट्स वेरी अनहेल्दी, पिज्ज़ा खाने से ये हो जाता। भाई ठीक है खा लो भाई, हफ्ते में महीने में एक मरतबा ट्राई करने से कुछ नहीं होता यार, पिज्ज़ा कैसे नहीं खाया आपने? इतना सीरियसली नहीं लेने का ज़िंदगी को, ज़िंदगी अगर आपको सीरियस लेने लगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। खाइए पिज्ज़ा, जिन्होंने नहीं ट्राई किया प्लीज़ ट्राई इट, जिनको नहीं पसंद वो बात दूसरी है। और यूसुफ भाई कहते हैं आई डोंट लाइक इट, बट फिर फातिमा उनकी बेटी हैं वो खाती हैं, इस वजह से मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है, वो भी रेयर, खा ले करो मुँह बना के। एक मैसेज है, आज भाई बर्थडे विश करते रहो, 24 को मेरी एनिवर्सरी विश कर दो। 24 को बिठे जैस बिठे, अगर आपने विश नहीं की ना तो बहुत याद आओगे। एक मैसेज है, फूड डे है आपने बताया, मुझे हंसी आ रही है सुन के। भाई अपने दोस्त को जरूर विश करना, खाने का शौकीन। एक मैसेज जुल्कनैन साहब का मैसेज है, मैं खुद डर गया भाई, दिन बन गया आज मेरा, जुल्कनैन साहब ने मुझे याद किया। जुल्कनैन साहब कह रहे हैं आई एम ट्राइंग टू कैच यू इन द मॉर्निंग, 85 किलो से अभी मैं 82 किलो का हूँ, यू कांट कैच मी जुल्कनैन साहब, कलाइयाँ टूट जाएंगी आपकी इफ़ यू आर ट्राइंग टू कैच मी इन द मॉर्निंग। देखो आज के दिन बुरा जोक तो बनता है, आज आज बैड जोक माफ होना चाहिए संडे के दिन, आई नो इट वॉज अ बैड जोक बट चलता है। एक भाई ने मैसेज किया है, मैंने भी पिज्ज़ा नहीं खाया। क्यों, मतलब इतनी कोई बुरी, अगर आपको किसी ने ये कहा है कि बहुत ही बुरी चीज़ है तो भाई खा के देखो खुद ही, और अगर आपको नहीं पसंद आया तो बात दूसरी है, बट किसी और के ओपिनियन मत लेना। जैसे मैंने आज आज सुबह सुबह मैंने शुरुआत में कह दिया था ना कि वीडियो गेम्स को क्रिटिसाइज करते जो लोग हैं ना, वीडियो गेम से ये होता है वो हो जाता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने वीडियो गेम खेला नहीं है। अक्सर वही लोग क्रिटिसाइज करते हुए मिलेंगे जिन्हें वीडियो गेम इंडस्ट्री के बारे में कख नहीं पता, 1% नहीं पता इन्हें। वीडियो गेम वो मोबाइल वाले उसके बेसिस पे पूरी इंडस्ट्री को जज कर लेते हैं। भाई मेरे को दिख मत जाना दिल्ली में स्पेशली। एक मैसेज है, आप तो मेरे लिए ऑर्डर कर दो, खा लेंगे जो भी मुफ्त मिलेगा, पिज्ज़ा बर्गर लग्जमबर्ग सब खा लेंगे। ये है मेरा भाई, भाई आपकी मेरी दोस्ती बहुत जमेगी भाई। ऐसे लोग पसंद हैं मुझे, बहुत शानदार बहुत शानदार। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप खिला रहे हो पिज्ज़ा? मोहसिन में मैं क्यों खिलाऊँ भाई, मैं का इंश्योरेंस करा रखा तुम्हारा। ओके तो 666-22107 नंबर है, 666-22107 ज़रूर मैसेज करते रहिएगा, ट्रैफिक कॉल बताइएगा। फरद भाई कह रहे हैं भाई हमसे पूछो किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ भाई वो जो नवंबर में रिलीज़ होने वाला है ना, काश मैं नाम ले सकता, 39 का हो गया हूँ फिर भी मैं भी फरद भाई प्री ऑर्डर करके बैठा हूँ। लेकिन क्या है कि वीडियो गेम को क्रिटिसाइज़ करने वाले कौन लोग हैं, वही जिन्होंने आज तक कोई गेम नहीं खेला। क्यों है, जिस रास्ते तुमने जाना नहीं, जहाँ का पता नहीं कि कितनी गलियाँ हैं क्या हाईवे है, वहाँ के बारे में जिक्र ऐसे करते हैं पूरा नज़ारा देख लिया हो बेटे, ऐसा नहीं करते। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ओनली, मेरे ही ब्लड प्रेशर का ख्याल रखो।
1: बच्चों की जहन पे असर पड़ता है।
0: अजी हाँ 5 साल का तुमसे खेल रहा हूँ मैं। 837

0: अभी गुड मॉर्निंग, एक कॉल आ गई भाई हमें आते के साथ ही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: मैं तो भाई बढ़िया हूँ, ये खराब कर सकता है क्या हाल है तुम्हारे? आप बताइए कैसे हैं?
1: बस बढ़िया, अल्लाह का एहसान। आज टॉपिक बहुत बढ़िया था, मैंने बहुत कोशिश की।
0: हाँ, क्या कोशिश
1: करी? कॉल मिलाने की, लेकिन आज कॉल लगी नहीं सुबह में।
0: हाँ, आज सब सबका दिल भरा हुआ था भाई, सबके सब ने दिल को निकाल के रख दिया,
1: भड़ास निकाल दी आज पूरी, निकाल दी
0: सबने, बेखौफ।
1: शाम को खैरियत नहीं है लेकिन उनकी
0: नहीं नहीं भाई, सबने कवर अप भी किया, आपने देखा नहीं सबने कैसे कवर किया, सबने कवर अप भी किया आखिर में, बहुत तेज है भाई।
1: इरफान भाई की तरह करना चाहिए, बिल्कुल यूटर्न मार दिया,
0: यूटर्न मार दिया उन्होंने, वो भी शार्प यूटर्न होता ना, स्पीड में जो मारते हैं
1: चलते चलते। ये क्या हुआ इरफान भाई, ये तो स्टोरी चेंज हो गया आपका तो।
0: पूरी कहानी, मैं उनके साथ था बहुत देर तक, फिर मैंने कहा ये आदमी तो यार बदल गया यार,
1: बिल्कुल यूटर्न मार दिया उन्होंने।
0: हाँ तो आप आपका क्या कहना है ये बताइए आप।
1: बस ठीक है, सुबह में तो मिलती नहीं यार कॉल, अभी मैं दो दिन पहले भी मारा।
0: मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या है, सिंपल। आप ना मुझे मैसेज कर दिया करो कि भाई कॉल करो, मैं सीधा कॉल कर दूंगा आपको, अगर कॉल ना लगी। और मैं सबको बता रहा हूँ आपके अलावा जो भी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है भाई, इससे बढ़िया इलाज नहीं हो सकता। और बताइए आप।
1: बस बढ़िया, टॉपिक बहुत बढ़िया था लेकिन आपका।
0: कहाँ निकली है सवारी आप, कहाँ निकले हैं अभी?
1: अभी तो दफना की तरफ जाएंगे।
0: क्यों?
1: सिटी सेंटर की तरफ।
0: क्यों?
1: मेरा काम उधर ही है।
0: अरे छोड़ो काम वाम यार, क्या एक दिन छुट्टी वुट्टी मार लो क्या क्या करो काम?
1: छुट्टी नहीं, छुट्टी बहुत भारी पड़ती है।
0: अच्छा भारी पड़ती है क्या? तो बीमारी की एक्टिंग नहीं कर पाते होंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा।
1: नहीं नहीं नहीं, बीमार खाली मैं आने के बाद में बहुत कम छुट्टी करता है कभी भाई।
0: अरे यार
1: क्यों, हॉस्पिटल जाओ तो उनसे हाँ। रिक्वेस्ट करना, हमारा थोड़ा सिस्टम अलग है।
0: अच्छा,
1: जाने दो टॉपिक को।
0: अच्छा,
1: क्यों उससे सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर से, ऐसा कुछ मसला है जो, लंबा मसला डाल देते हैं।
0: अच्छा ठीक है,
1: बस जुम्मा को मिल जाती है इंशाल्लाह, बहुत इनाफ है।
0: इनाफ है, चलो भाई ठीक है, बढ़िया है भाई, काम की तरफ, दिन आपका बढ़िया जाए। और

0: लेकिन बढ़िया, आप
1: सुबह सुबह हमें टोपी एकदम बढ़िया लेके आते हैं, एकदम मूड बना देते हैं। सही बात
0: भाई, मूड सेट कर देंगे यार, हमेशा
1: मजा आ जाता है।
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मजा आने चाहिए भाई। उसी बात तो पैसे
1: लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, मैं बोला अभी शायद लग जाए, ये टाइम थोड़ा सा रहता है।
0: देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर नहीं लग रही ना कॉल, एक बार मैसेज कर दिया करो, कबीर भाई कॉल नहीं लग रही, कॉल करो।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं तो सोचा काका वाला लट लेके आना पड़ेगा, मैंने
0: लट काट दूंगा भाई, टेंशन को नहीं भाई, मौसम बना देंगे पूरा, ठीक है।
1: काका का नंबर लिख दिया कि नहीं आपने?
0: अरे ताऊ का नंबर यो है भाई, जिस नंबर पे। हाँ जी भाई,
1: ताऊ तो हरियाणा में बैठा रहा है,
0: हरियाणा में बैठा रहा है भाई, हरियाणा बैठा रहा है, जमा जमा जहज हो रहा भाई, ठीक है। थमने तो मेरा भाई, ख्याल रखो, ठीक है,
1: चलो भाई,
0: ठीक है भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाई देखो, हंसते बजाओ, ये हमारा मकसद है, कॉल ना लगे तो मैसेज कर दिया करो कि भाई कॉल नहीं लग रही है, ऑर्डर किया करें, अब मैं कॉल कर लूँगा, टेंशन किस बात की। यूसुफ भाई कह रहे हैं, कल वो माउंटेन वाली स्टोरी मैंने सुना था थर्सडे को, लेकिन रात में फातिमा के साथ दोबारा सुनी और आज रात में उसके साथ सुनूंगा इंशाल्लाह। फातिमा को बहुत सारा प्यार, यूसुफ भाई अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार दिएगा हमारी तरफ से। और एक भाई ने मुझे मैसेज किया है, भाई जिसने पिज्ज़ा नहीं खाया या पसंद नहीं है वो मेरा एड्रेस ले लो प्लीज़, मुझे सेंड कर दिया करो, मुझे कैलोरीज़ की अनहेल्दी होने से कोई टेंशन नहीं है भाई, हाथ मिलाइए। तो सैयद अली हैदर शाह साहब कह रहे हैं, अगर आप गलती से आपके पास पिज्ज़ा आ जाओ और आपको पिज्ज़ा नहीं पसंद है तो आप मेरे द्वार भेज दिया करें, ज़्यादा सोचा ना करें, क्योंकि मैं हर किस्म की अनहेल्दी चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। वेरी गुड भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोगों की तो कमी है दुनिया में। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, वेरी गुड। और 666-2107 नंबर है, आप इसे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किधर है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक का हाल भी नंबर पे, बाकी आपको फील पूरी देंगे। ऐसा नहीं है कि वीकेंड थी तो बढ़िया गाने चल रही, आज भी भाई, आज भी ऐसा कि आपकी वॉल्यूम नीचे गिर ही ना पाए। मुझे भी तो कवर अप करना है आपकी टॉपिक के बाद, आज के टॉपिक के बाद तो मैं भी कवर कर देता हूँ ये चला के। सबको घर जाना है, हर परिंदे को अपने घोंसले की तरफ ही जाना है।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
2: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद RJ फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानून

0: मना है और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
4: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया इस्माइल ख़ान की ज़ुबानी और पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर ने नेपाल के सदर को उनके मुल्क के योम आइन के मौके पर मुबारकबाद का तहनियती पैगाम इरसाल किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर से कतर के दौरे पर आए फ्रांसीसी वज़ीर बराए मुसल्ला अफवाजों साबिक फौजियों के उमूर ने मुलाकात की। वजारत मेहनत ने तामीरात तामीराती मवाद और लकड़ी के शोबों के लिए बैनुल अक्वामी तंजीम बराए तामीरात और लकड़ी के कारकुनान BWI के तआवुन से दूसरे गोलमेज इजलास का इनेकाद किया। यह इजलास दिसंबर 2025 में मुनक्किद होने वाले पहले गोलमेज इजलास के दौरान होने वाली गुफ्तगू और हासिल होने वाले नताइज की बुनियाद पर मुनक्किद किया गया। और हज 1448 हिजरी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन आज बरोज इतवार से सरकारी हज पोर्टल के जरिए शुरू हो गई है और 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब समात की जो मुफस्सल नशरिया।

0: कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रेडर कूपर ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने गुज़िश्ता दो माह के दौरान आबन हुरमस से 1 अरब बैरल खाम तेल की महफूज तरसील में सहूलत फराहम की, जबकि 2000 से ज़ायद तजारती जहाज़ों को भी इस आबी गुजरगाह से गुजरने में मदद दी गई। सेंट्रल कमांड की जानिब से कल समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी करदा बयान में एडमिरल ब्रेडर कूपर ने मजीद कहा कि आबन हुरमस में जहाज़ों की आमद रफ्त के मरकजी रास्तों को बारूदी सुरंगों से पाक कर दिया गया है और हज़ारों जहाज बदस्तूर इस आबी गुजरगाह को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमरीका अपने शराकत दारों के साथ मिलकर आबन हुरमस से बहरी आमदरफ्त का हजम बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दो हफ्तों के दौरान आबनाए से मुंतकिल होने वाले तेल और सामान की मकदार गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रही है। ईरान के हवाले से एडमिरल ब्रेडर कूपर ने कहा कि अमरीका ईरानी तेल की बरामदाद पर सख्त पाबंदी बदस्तूर आयद किए हुए है और ईरान 1 बैरल तेल भी बरामद करने में कामयाब नहीं हो सका। अमरीकी महकमे खारजा ने यूक्रेन को 2.68 अरब डॉलर मालियत के फिजाई दिफाई साजो सामान की मुमकिन फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इस पैकेज में मुख्तलिफ मिज़ाइल लॉन्चर्स, ड्रोन शिकन रडार, ट्रेलर्स, मुतलका खिदमात और दीगर ज़रूरी सामान शामिल है। महकमा खारजा के मुताबिक मुजवज़ा मुआहदा अमरीकी कांग्रेस की नज़रसानी से मशरूत है। मुआहदा तय पाने की सूरत में यूक्रेन उसकी अदायगी यूरोपीय ममालिक की माली मुआवनत और अमरीकी गैर मुल्की फ़ौजी मालियाती प्रोग्राम के जरिए करेगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय ममालिक से यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद के खराजात में ज़्यादा हिस्सा लेने का मुतालबा कर रहे हैं, जिनमें साबिक सदर जो बाइडन के दौर में फराहम की गई इमदाद भी शामिल है। सामीन, खबरों के इस मरहले में अब समाप्त कीजिए बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस विद सरवर मिर्ज़ा। विद सरवर मिर्ज़ा।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रियासत कतर ने GCC इकॉनमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स अथॉरिटी की कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिशल्स के 16वें इजलास में शिरकत की, जो जुमेरात के रोज़ वर्चुअल तौर पर मुनक्किद हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी फॉर इकॉनमिक अफेयर्स डॉक्टर सऊद बिन अब्दुल्ला अलतिया ने कतर के वफद की सरबराही की। इजलास में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की ममालिक की मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस और इकॉनमी के अंडर सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन शेख बंदर बिन मोहम्मद बिन सऊद अलसानी ने हफ्ते के रोज़ अमेजोन के फाउंडर, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ बेजोस, लिबर्टी स्ट्रेटेजिक कैपिटल के फाउंडर स्टीव मिनिचिन और एशमोर ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क कूम्स से अलग अलग मुलाकात की। ये मुलाकातें कतर इकॉनमिक फोरम 2026 स्पेशल एडिशन के आगाज से पहले हुई, जो ब्लूमबर्ग के तामुन से आज न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 81वें इजलास में मुनक्किद हो रहा है। रियासत कतर और रशियन फेडरेशन ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्निकल कॉपरेशन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तजुर्बात का तबादला और डिजिटल टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाना है। मुआहदे पर जनरल टैक्स अथॉरिटी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जासिम अल जाहम अल क्वारी और रशियन फेडरेशन की फेडरल टैक्स सर्विस के कमिश्नर डेनील एग्रोगोव ने दस्तखत किए। कतर चैम्बर ने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को के साथ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और AI एथिक्स के मैदानों में तावुन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया है। मुज़ाकरात में प्राइवेट सेक्टर इदारों में उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को फ़रोग देने पर भी गौर खौस किया गया। रियासत कतर ने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के रुकन ममालिक की मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस के अंडर सेक्रेटरीज कमेटी के 76वें इजलास में शिरकत की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी फॉर इकॉनमिक अफेयर्स डॉक्टर सऊद बिन अब्दुल्ला अलतिया ने रियासत कतर की नुमाइंदगी की। इजलास में GCC ममालिक के मिनिस्टर्स और फाइनेंस के अंडर सेक्रेटरीज ने शिरकत की। ब्लूमबर्ग और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तावन से मुनक़िदा कतर इकॉनमिक फोरम ने फोरम की ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड के 2 को-चेयर्स का ऐलान कर दिया है, जहां

0: 1448 हिजरी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन आज बरोज़ इतवार से सरकारी हज पोर्टल के जरिए शुरू हो गई है और 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी मावुन सारा और न्यू स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्जा, युसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामईन किराम, आज की दुआ है नूह अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने अपने कौम के इनकार, तकजीब और जुल्म सितम के बाद अल्लाह की मदद मांगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सदियों तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने इनकार किया और हक के मुकाबले में सरकशी इख्तियार की। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने दिल की गहराई से पुकारा, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं मगलूब और कमजोर हूँ, या रब तू मेरी मदद फरमा। अन्नी मगलूबुन, ए अल्लाह मैं मगलूब हूँ, कौम ने मेरी बात न मानी, मैं कमजोर और बेबस हो गया हूँ। फंतसर, तू ही मेरा मददगार है, मेरी तरफ से फैसला फरमा और मुझे जालिमों के मुकाबले में फतह अता कर। सामने ग्राम, ये दुआ मजलूम की पुकार है जिसमें बंदा अपनी बेबसी का इतराफ करके अल्लाह की नुसरत पर भरोसा करता है। सामिन इकराम, आज की दुआ हमें ये सबक देती है कि मुश्किलात और मजालिम के वक्त सबसे बड़ी पनाह अल्लाह की है। जब बंदा कहता है इन्नी मगलूबुन फंतसर, तो गोया वो अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। आइए हम सब दिल की आजिजी के साथ ये दुआ पढ़ें, इन्नी मगलूबुन फंतसर। इसके शुरू में अगर रब्बी जोड़ देते हैं तो जुमला पूरा हो जाता है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, या रब मैं मगलूब और कमजोर हूँ, बस तू मेरी मदद फरमा।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और

0: रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री टॉप 10 में और कौन सा गाना हुआ इस हफ्ते लीग से बाहर। सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

दोस्तों फुटबॉल की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे गुजरे हैं जो सिर्फ गोल्स और ट्रॉफीज की वजह से याद नहीं किए जाते बल्कि अपने अंदाज खेल की वजह से हमेशा के लिए वो सबके दिलों में अभी भी जिंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे ब्राजील के उस लेजेंडरी फुटबॉलर की

ये सब मिलकर गरिंचा को दुनिया के सबसे एंटरटेनिंग फुटबॉलर्स में शामिल कर देते थे। बचपन में पोलियो की वजह से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट मुतासिर हुई और उनकी टांगों में भी डिफॉर्मिटी थी, लेकिन जिस चीज को दुनिया उनकी कमजोरी समझ सकती थी, गरिंचा ने उसी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना दिया। उनके पैरों की अनयूजुअल शेप और बॉडी मूवमेंट ने उन्हें ऐसा बैलेंस दिया जो डिफेंडर्स के लिए समझना मुश्किल था। जब गरिंचा गेंद लेकर विंग पर खड़े होते, डिफेंडर को अक्सर पता होता था कि वो अगला मूव क्या करेंगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें रोक नहीं पाता था। गरिंचा एक ही जगह खड़े खड़े डिफेंडर को कंफ्यूज कर देते, बॉडी एक तरफ, बॉल दूसरी तरफ, और अगले ही सेकंड में वो डिफेंडर को पीछे छोड़कर गोल की तरफ भाग रहे होते। उनके ड्रिबल्स में एक नेचुरल मैजिक दिखने को मिलता था। ब्राजील के फेमस क्लब बोटाफोगो में गरिंचा ने अपनी पहचान बनाई। वहां वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि फैंस के लिए एक सुपरस्टार बन गए। और फिर आया इंटरनेशनल फुटबॉल का स्टेज, 1958 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, पेले का डेब्यू वर्ल्ड कप। स्वीडन में ब्राजील ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और गरिंचा ने टीम की अटैकिंग ब्रिलियंस में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इसी टूर्नामेंट में दुनिया ने पहली बार उस ब्राजीलियन फ्लेयर को देखा जो बाद में फुटबॉल की पहचान बन गया। लेकिन गरिंचा की सबसे आइकॉनिक वर्ल्ड कप स्टोरी आई 1962 चिली वर्ल्ड कप में। चिली में ब्राजील के सुपरस्टार पेले टूर्नामेंट के दौरान इंजरी का शिकार हो गए और अब टीम को एक नए लीडर की जरूरत थी और गरिंचा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। एंड इट वॉज अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीम दैट वेंट ऑन टू जस्ट डैजल द फुटबॉलिंग सुप्रीमेसी, कंट्रोल, डोमिनेंस। ब्राजील वॉज ब्राजील और गरिंचा ने उन्होंने गोल्स किए, असिस्ट दिए, डिफेंडर्स को नचाया भी और ब्राजील को एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी तक पहुंचाया। गरिंचा इतने आउटस्टैंडिंग थे कि उन्हें 1962 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कहा गया। यानी जब पहले नहीं थे, गरिंचा ने दुनिया को बता दिया कि ब्राजील के पास एक और फुटबॉल जीनियस भी है। उनके ट्विस्टिंग रन्स और अनप्रेडिक्टेबल ड्रिबल्स बिल्कुल सांबा की तरह थे, रिदम भी, क्रिएटिविटी भी और सरप्राइज भी। गरिंचा का इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी जबरदस्त रहा है दोस्तों। ब्राजील के लिए उन्होंने 50 से ज्यादा मैचेस खेले और टीम को कभी वर्ल्ड कप मैच में डिफीट का सामना नहीं करना पड़ा जब गरिंचा और पेले दोनों ने साथ प्लेइंग 11 में स्टार्ट किया। लेकिन गरिंचा की ग्रेटनेस सिर्फ नंबर्स में नहीं थी, उनके लिए फुटबॉल एक हैप्पीनेस, एक खुशी थी। वो ग्राउंड पर मुस्कुराते थे, फैंस को एंटरटेन करते थे और फुटबॉल को एक सीरियस बिजनेस की बजाय एक सेलिब्रेशन समझते थे। दैट वॉज ब्राजीलियन फुटबॉल दैट टाइम। मगर ग्राउंड के बाहर उनकी जिंदगी इतनी सिंपल नहीं थी। फेम, रिलेशनशिप्स, इंजरीज और ऐसे कई मसाइल ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। करियर के आखिरी हिस्सों में वो पहले जैसी फॉर्म और फिटनेस मेंटेन नहीं कर सके, फिर भी ब्राजील के लोग उन्हें भूले नहीं। 20 जनवरी 1983 को सिर्फ 49 साल की उम्र में गरिंचा इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है माराकाना के फुटबॉल फैन से लेकर ब्राजील की गलियों तक। गरिंचा को एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है जो फुटबॉल को सिर्फ खेलता नहीं था, वो फुटबॉल को महसूस करता था। गरिंचा ने साबित किया कि हर लिमिटेशन के बावजूद अगर टैलेंट, कॉन्फिडेंस और जज्बा हो तो दुनिया के बेहतरीन डिफेंडर्स को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। गरिंचा द लिटिल बर्ड, जो फुटबॉल की दुनिया में हमेशा उड़ता रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: कोई वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है। कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107.8, वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। चलिए फिर आज आपको मैं वेबसाइट के साथ साथ एक कूल ट्रिक भी बताता हूँ जो आपके बड़ी काम आने वाली, इनकेस आपने टेक अपडेट्स फॉलो नहीं किए अभी तक। वेयर वर यू, सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर, FM 107 कतर, प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए, बिकॉज देखिए आपको होना बड़ा जरूरी है, वरना मैं बोलता ही रह जाऊंगा और सुनने वाली पब्लिक नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसी वेबसाइट से जो आपके बोर्डम को मिटा देगी। जैसा क्या कई बार ऐसा मन नहीं होता, बैठे हुए टाइम काट रहे हैं, पंचिंग का टाइम आने वाला है, तो उससे पहले टाइम पास आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये घर पे भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई भारी इंजन नहीं चाहिए आपको, सिंपली अपने लैपटॉप या पीसी पे से रन कर सकते हैं। इसका नाम है messenger.ebito.co, messenger messenger.ebito, ebito या जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहें .co। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने गेम आएगा और वो जो गेम है इतना जबरदस्त टाइम पास है, आप अपने दोस्तों के साथ भी उसको खेल सकते हैं और साथ साथ आप खुद भी इसे पार कर सकते हैं। उसमें कुछ मिशंस भी आपके सामने आएंगे, उन मिशंस को खेलिए, पार कीजिए। एंड मैं सही बता रहा हूँ आपको, लगा यार ये तो थोड़ा एडिक्टिव सा हो गया, तो बच्चों को जरा दूर रखिएगा इससे, क्योंकि ये एडिक्शन तो है। हालांकि गेम जो है बच्चे बड़े सब खेल सकते हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंटरेक्टिव गेम है। एंड इसके लिए कोई भी आपको भारी कोई ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 666-22107 इसमें आप शो के दौरान भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, इनकेस आपको कोई भी डाउट हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अ ट्रिक विच आई रियली लाइक्ड एंड मैं शेयर करना चाहूंगा, ये है इंस्टाग्राम की ट्रिक। जब आप कोई वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे और आपको उसको डाउनलोड करना होता है तो आप क्या करते हैं, आई डोंट नो आप क्या कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इजी ट्रिक दे देता हूं मैं। तो जब आप किसी वीडियो को पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पे तो उसका आप लिंक को उठा लें, कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जब आप पेस्ट करेंगे पूरी लिंक को तो इंस्टाग्राम जो लिखा हुआ है उसमें से RAM हटा दीजिए। ठीक है, लिंक पोस्ट करेंगे तो पूरा लिखा आएगा ना www.instagram.com/whatever तो उसमें जो इंस्टाग्राम का रैम होगा वो हटा दीजिए और आपके पास डाउनलोड के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप हाई क्वालिटी में उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सो या देयर यू गो, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी और ज्यादा लोगों को बताएं, फैला दें इसे, जो 3 लोगों को बताएं उनको बोलिए कि वो आगे 3 लोगों को बताएं, काम जरूर आएगी। ऑलराइट, तो अब मैं जरा एक खबर की तरफ बढ़ता हूँ जो खबर भी है और एक तरीके का फैक्ट बनता जा रहा है इन फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो न्यूज में सबसे पहली बात है चार्जिंग को लेकर, फोन की चार्जिंग को लेकर ना जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, कितने सारे पावर बैंक आ चुके हैं, रिट्रैक्टेबल टेबल केबल्स आ चुके हैं, लेकिन अभी यू ग्रीन एक कंपनी है तो उन्होंने इस पे काम किया कि लिक्विड कूल्ड मैग्नेटिक पावर को बैंक्स में कैसे यूज किया जाए। तो लिक्विड कूल्ड मैग्नेटिक पावर बैंक्स मार्केट में आने वाले, भी उनकी सिर्फ टेस्टिंग हुई है, बाकी एक कंपनी है बेल्किन करके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है काफी पतला और हायर कैपेसिटी वाला पावर बैंक, और उन्होंने उसके साथ साथ जो रिट्रैक्टेबल केबल्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जीत है आने वाले वक्त में, कि जितने कम हो सके उतना ही आसानी रहेगी आई थिंक। एंड इसके अलावा जो AI की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और मेजर मेमोरी चिप्स शॉर्टेज होती चली जा रही है, इसकी वजह से रैम और DRAM की जो कॉस्ट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लैपटॉप्स और गेमिंग डिवाइसेस एक्सपेंसिव होंगे थ्रू आउट 2027 जब तक कि इस जंग को जीता नहीं जाता। सो मेक श्योर कि आपके जो फेवरेट गैजेट्स हैं, इनकेस वो गेमिंग से जुड़े हुए हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं,

0: गेमिंग कंसोल है अभी ले लो भाई, इसके बाद ये सब चीजें महंगी होने वाली हैं फॉर श्योर, ठीक है। एंड इसके अलावा DJI ने लॉन्च किया था अपना DJI Osmo 360 और Hoover Air Versa, ये क्रिएटर्स के लिए एक नया खिलौना है। इसका जो रिव्यू है मैं इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि हर किसी का इसको देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। सो अपने अपने तरीके से परसीव करें इसे और मुझे बता दीजिएगा आपको कैसा लगा। आपके रिव्यू पे मैं काम करूंगा, ठीक है, बिकॉज क्या है कि ये क्रिएटर्स के लिए जो लोग यूज कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, ऑन दैट नोट दिस वॉज द अपडेट, दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी है। अस्सलाम।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट।
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं इत्तला कराता रहता हूं, रूबरू कराता रहता हूं, ताकि ना आपके साथ, ना आपके फैमिली मेंबर के साथ, ना फ्रेंड्स के साथ, ना ही किसी रिलेटिव के साथ फ्रॉड हो सके। वेल, आज जिस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बहुत आम हो गया है, वो है कलीग इन्वेस्टमेंट टिप्स। ये काम कैसे करता है इस पर हम नजर डालेंगे और साथ ही साथ इस तरह के फ्रॉड से बचने के क्या तीन उपाय हैं, क्या तीन सॉल्यूशंस हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, ये है कलीग इन्वेस्टमेंट टिप्स। काम कैसे करता है ये फाइनेंशियल फ्रॉड? पूरी तरह से हमारे अंदर रातों रात अमीर बनने के लालच और फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो का फायदा उठाकर डिजाइन किया गया है। इस स्कैम का सेटअप अक्सर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही आसानी से या उसके जरिए, उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए शुरू होता है। कोई इंसान जो पहले आपकी कंपनी में था या फिर आपसे किसी सोशल मीडिया पर एड था, कनेक्शन बना हुआ था, वो बड़ा ही फ्रेंडली होकर आपसे नॉर्मल बातें शुरू करेगा। धीरे धीरे वो चैट का रुख पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ देगा। वो बड़े ही कैजुअल अंदाज में आपसे कहेगा कि मैं ऑफिस के काम के साथ साथ एक नए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या सीक्रेट स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए हर महीने लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। आपको कन्विंस करने के लिए वो अपने फेक डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भी शेयर करेगा, जिसमें बड़ा प्रोफाइल लिखा होगा और प्रोफाइल दिख रहा होगा आपको, ऐसे में दिखेगा कि हाँ प्रॉफिट भी इसको हो रहा है। साथ ही ये दोस्त आपको भी टैग करेगा, वो आपको टारगेट करेगा कि तू क्यों मेहनत कर रहा है, बस एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जैसे कि 5,000-10,000 रुपए करो और इसका जो रिस्क है वो बिल्कुल कम है। उनके कहने पर जब आप उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके थोड़ा पैसा डालते हैं तो वो वेबसाइट आपको बिल्कुल रियल दिखेगी। वहां आपका जो पैसा है वो ग्रोथ ग्राफ हर दिन ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जिसे देखकर आप खुश होकर अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप उस पैसे को अपने रियल बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। स्कैमर्स विड्रॉल ब्लॉक कर देते हैं, बोलते हैं कि पहले 20% टैक्स जमा करो, और जैसे ही आप टैक्स देते हैं वो आपका अकाउंट परमानेंटली लॉक कर देते हैं और सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। तो यानी कि जो ग्रोथ आपको दिख रही थी वो फेक थी, लेकिन जो आपने 20% टैक्स दिया है वो आपने असली अमाउंट दिया है अपनी जेब से। तो आपने जो पेमेंट पहले करी थी, जो ग्रोथ दिखा रहा था, वो भी फेक थी। आपने वो पेमेंट ऑलरेडी कर दी और फिर 20% टैक्स के नाम पे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के तीन बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, सॉल्यूशन है, क्या है वो, उन पर जरा बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्राइवेसी। हमेशा ये रूल बना लें कि किसी भी एक्वेंटेंस, दूर के रिश्तेदार या ऑनलाइन मिलने वाले कलीग की पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस पर कभी भी आंख बंद करके अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और ट्रेडिंग के लिए हमेशा ऑथराइज्ड और रेगुलेटेड ब्रोकर्स का ही यूज करेंगे। दूसरा तरीका है या दूसरा सॉल्यूशन है वेरीफाई रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई आपको किसी नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या क्रिप्टो पोर्टल के बारे में बताता है तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट रिसर्च करें, चेक करें कि क्या वो पोर्टल कतर सेंट्रल बैंक से भी या किसी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल गवर्नमेंट रेगुलेटर या रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड और लाइसेंस्ड है या नहीं। अगर उसका कोई रेगुलेटरी रिकॉर्ड नहीं है तो वो वेबसाइट फ्रॉड है। उसके अलावा तीसरा तरीका है टेस्ट विथ स्मॉलेस्ट कैपिटल एंड रीड रिव्यूज। ऐसी किसी भी अनवेरिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपनी मेजर कैपिटल मत लगाएं। गूगल

0: और साइबर फोरम्स पर उस प्लेटफॉर्म का नाम डालकर स्कैम या विड्रॉल प्रॉब्लम कीवर्ड के साथ रिव्यूज चेक करें। अगर वहां नेगेटिव रिव्यूज हैं तो तुरंत अपना बचा हुआ कॉन्टेक्ट तोड़ दें और उनके इन्वेस्टमेंट ग्रुप से एग्जिट कर लें। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिनसे आप बच सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट अलर्ट।
2: क्रिकेट हो
3: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स फोर रन।
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
6: स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी।
7: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। व्हाई मनी एजुकेशन मैटर मोर देन एनीथिंग। देखिए आज के इस फास्ट चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल बन चुकी है। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो उससे पैसे को समझना नहीं बल्कि उसे पैसे को मैनेज करना, स्मार्ट डिसीजंस लेना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपकी बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। बहुत से लोग अच्छी इनकम अर्न करते हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से अपने पैसे को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाते। फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि आज हर शख्स रोजाना फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। जब हम शॉपिंग करते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम फाइनेंशियल डिसीजंस ही तो ले रहे होते हैं। और अगर इन डिसीजंस के पीछे प्रॉपर नॉलेज ना हो तो इंसान फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर सकता है जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सबसे बेसिक पार्ट है बजटिंग। और बजटिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखना। जब इंसान को पता होता है कि हर मंथ कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है तो उसके लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। बजटिंग से अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होती है और सेविंग्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए सेविंग्स भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत से लोग सिर्फ जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। सेविंग इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके काम आती है। अगर अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ जाए, जॉब चली जाए या कोई और इमरजेंसी तो ये आपको एक सपोर्ट देती है। भाई फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को भी सिखाता है। सिर्फ पैसा सेव करना या पैसा कमाना कभी कभी काफी नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वक्त के साथ पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है। जो वैल्यू कल 1 लाख की हुआ करती थी अब बिल्कुल भी नहीं है ना। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर अर्ली एज में बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप कर दी जाए तो फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने में आसानी होती है। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है बल्कि पैसे को वाइजली मैनेज करने के बारे में है। एक शख्स हाई सैलरी अर्न करके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करता है अगर उसे मनी को मैनेज करना ना आता हो। वहीं दूसरी तरफ एवरेज इनकम वाला पर्सन फाइनेंशियल सिक्योर हो सकता है अगर वो स्मार्ट डिसीजंस लेना जानता हो। तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडर्न लाइफ की सबसे वैल्यूबल स्किल्स में से एक है। यह हमें बजट, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट की पूरी थोरो नॉलेज देती है। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं वो अपने गोल्स अचीव करके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने में कामयाब होते हैं। बस जिंदगी का जो सबसे सिंपल फंडा है ना वो यही है। सबसे सिंपल लेसन ये हो सकता है कि जितनी जरूरी पैसे कमा

मैनेज करना है बस कोशिश कीजिए कि आप उसे प्रॉपर तरीके से कमाएं भी मैनेज भी करें मैनेज इन द सेंस सेव भी करें बजटिंग भी करें डेट को भी मैनेज करें और इन्वेस्टिंग भी करें चलिए फिलहाल अभी के लिए तो मैं आपसे इजाजत ले लेती हूँ इस वादे के साथ कि नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे कल तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए

0: totally.
1: अब हमारे कॉलर्स पर क्या सोच रहे हैं मुझे बहुत फिक्र है तो उनको ले लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी सैयद भाई, क्या हाल चाल जी?
2: हमारे बारे में तो अच्छा ही रखा.
1: मगर
2: वो कौन है को सुनानी चाहिए.
3: अरे भाई फिर मैं उनको मैसेज किया, फिर भी गाना नहीं बजाया. कोई ऑफिस का नंबर दे तो जाके पूछूंगा भाई क्या दुश्मनी है, मैसेज ऐसा क्यों कर रहे, किधर कंप्लेंट करना पड़ता.
2: मतलब नहीं, नहीं, नहीं, आप इतनी टेंशन नहीं ले. देखिए वैसे इंटरनेट का दौर है तो कोई बात नहीं, अगर वहाँ नहीं चला तो अपनी मर्जी से अपनी प्लेलिस्ट चला ले इंटरनेट पे जाकर.
3: इनको
2: ये दुख लगा हुआ कि मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, बायस हो रहे हैं मेरे साथ. नहीं नहीं, अभी अभी हमारा भी वीकेंड आ गया था ना, अमिता से मुलाकात
1: नहीं. मैंने अमिता से पूछा था और उसने मुझे कहा था कि वेंसडे वाले दिन उसने आपका गाना चलाया था लेकिन आप शायद मिस कर गए. तो शायद आप नहीं सुन पाए होंगे.
3: अपन अच्छे गुमान रखेंगे, चलिए उनके बारे में भी, बहुत स्वीट है बेचारे, जाने दीजिए.
2: नहीं अमिता वैसे ही बहुत स्वीट है, अमिता बहुत स्वीट है.
1: नहीं उसने मतलब ये कहा है मुझे कि मैंने उनका गाना चलाया था फयाज सैयद का वेंसडे वाले दिन, तो शायद वो मिस कर गए. जी तो सैयद भाई,
3: और मैं उनके लिए भी दुआ, आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा, उनके लिए भी दुआ करूंगा. मेरी जो बदगुमानी थी वो खत्म कर दी, अल्लाह माफ करे, उनको भी अल्लाह अच्छा रखे, आप लोगों को भी अच्छा.
1: गुड, जबरदस्त.
2: अच्छा भाई ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है.
3: जरूरी नहीं है सबको बताना भाई, मगर लोग ड्रैग करते हैं जानबूझ के. एक्चुअली नहीं, ये सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड दिखते हैं मुझे तकरीबन. तो क्योंकि जो सोसाइटी में होता है कि अपने माशरे में और खासतौर पे वालों के करीब और रिश्तेदारों के करीब, महल्ले वाले तो खैर उतना नहीं करते हैं, अपने ज्यादा लोग जो होते हैं ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो हर चीज का एक्सप्लेनेशन दो, बैठे तो बोलो, उठे तो बोलो, खाए तो बोलो, पिए तो बोलो, समझ रहे ना.
2: ये बहुत बहुत ज्यादा है ये.
3: अच्छा दो फुप्पू, दो खाला, दो लड़े हुए है. एक फुप्पू कहने गए, उन्होंने बोलते अरे मैं उनसे लड़ी हुई हूँ तुम उनके पास क्यों. सो मुझे भाई ये सब नाटक है,
2: ये तो मैं मानती हूँ. ये मैंने समझ रहे ना, से देखा
3: मैं तो उनसे लड़ी हुई थी, आप उनके पास क्यों गए. अरे भाई साहब आप लड़े होंगे, मैं तो नहीं लड़ा हूँ ना.
2: हमारा भी जाना बंद.
3: जी तो ये लोगों को बहुत मुश्किल है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मगर आंसर मैं ये दूंगा कि एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, माँ बाप को देना है. चलिए माँ बाप का हक है कि माँ बाप को बोल सकते हैं समझा के देखिए मैंने ये इसलिए किया, मैंने इसलिए किया. और जो अपनी प्यारी अपने क्या बोलते हैं लाइफ पार्टनर होते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, रिश्ता अल्लाह ताला बनाए. हस्बैंड वाइफ को, हस्बैंड को बोलना चाहिए कि देखिए भाई ये इसलिए ऐसा हुआ, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग में तो ये इसलिए ऐसा हुआ, क्लियर करना चाहिए.
1: हाँ ये बात आपने सही की है.
3: दूसरे लोग औलाद को भी, औलाद तो इम्पोर्टेंट है, औलाद को क्लियर करना चाहिए, उनको भी अपन अहमियत देना चाहिए. देखिए भाई ये मैंने इसलिए किया बेटा, ये इसलिए ऐसा हुआ ताकि उनको भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए, माँ बाप की तरफ से बदगुमानी ना हो जाए, क्योंकि फितने का दौर चल रहा है. जो बाकी के जो बेकार के, जो बेकार के लोग है ना, अल्लाह माफ करे, वो ये ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों, ये कपड़ा क्यों पहन गया, ऐसा क्यों किया, ये होटल खाना क्यों चला, उधर क्यों बैठे.
2: लोग असल में अंडरस्टैंडिंग को अप्रूवल के साथ मिक्स कर देते हैं. अगर आप उनसे कोई बात करें ना तो बजाय इसको समझने कि वो ये वो ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा आपके साथ बिहेव करते हैं, सिर्फ आप उनकी अप्रूवल मांग रहे हो. गड़बड़ वहाँ होती है.
3: अच्छा ठीक, तो क्या खुश हो गया, मैं सुनिए क्यों, शायद रेडियो पे बोल सकता हूँ इतना तो अलाउड है. कल हमारे सलमान खान का शो चल रहा था बिग बॉस पे, यही टॉपिक था. कोई बेचारे नाराज हो गए, लोग ट्रोल करते हैं क्यों करते हैं इतना, वही टॉपिक था कल बिग बॉस. आप लोग जो टॉपिक लाए.
1: अच्छा
2: अच्छा अच्छा, मैंने मैंने मैंने नहीं देखा. ओके
3: जी, हम लोग तो रेगुलर देख, मैं तो रेगुलर देखता हूँ शो. अच्छा है तो और बेचारों की तबीयत भी खराब हो गई, स्टेज पे गिर गए हमारे सलमान भाई.
1: अच्छा ओहो,
2: अच्छा काफी काफी टाइम से ना, काफी टाइम से ये चीज चल रही थी कि तबीयत खराब उनकी दिखाई सोशल मीडिया. मैंने देखा था, मेरे तो खुद फेवरेट स्टार रह चुके हैं एक एक टाइम पर, तो मैंने देखा था काफी टाइम से लोग कह रहे हैं तबीयत खराब चल रही है बहुत ज्यादा.
3: जी सलमान भाई का तो स्टाइल ही अलग है ना, आपको पता है.
2: भाईजान को
3: ये शिकायत थी कि भाई लोग ट्रोल कर रहे हैं, बूढ़ा हो गया, 60 साल का हो गया, बाल निकल गए, पेट निकल गया, ये निकल गया. बोले अच्छा ट्रोल करने अभी बताऊंगा, बोल के वो तो एक्सपोज करके बता दिए कल नेशनल टेलीविजन पे.
1: अच्छा.

0: ओहो
1: एक पता है सोशल मीडिया का सबसे सबसे जो मुझे मैं कहूंगी ड्रॉबैक नजर आता है ना सबसे बड़ा वो ये कि लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है किसी चीज की. आबे हयात किसी ने नहीं पिया हुआ.
0: एग्जैक्टली.
1: अगर आपको मैंने थी एक खूबसूरत वर्डिंग पढ़ी थी कहीं पर कि इफ इट वाज इम्पोर्टेंट टू यू बिफोर इट विल रिमेन इम्पोर्टेंट टू यू ऑलवेज. चाहे फिर वो कुछ भी हो वो चीज आपको इम्पोर्टेंट रहेगी. अगर कोई चीज आपको खूबसूरत भी लगती है तो वो हमेशा आपको लगेगी खूबसूरत फिर वो चाहे कैसे भी हो. तो वो सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है कि बस ये फैन अलग अलग किस्म के होते हैं ना. ट्रॉल करने वाले तो हर चीज को ट्रॉल करते हैं रहने दे.
2: जी जी ट्रॉल करके ना वो बहुत सारा उसमें कल उस पे ही टॉपिक था तो मैं को आपका रिलेटेड देखा टॉपिक और वो बोले वुमेन की इसके लिए भी बहुत अच्छा बोले बेचारे कि भाई वुमेन को ऐसे ऐसे ट्रॉल कर देंगे तुम्हारा वेट बढ़ गया ये हो गया ये हो गया तुम्हारा तो कैरियर खत्म हो गया तुम्हारा बच्चा हो गया ये सफला. बोले मेरे सामने तो एक एक का मत बताऊंगा और बोले आप अपने आप को पहले आईने में जाके देख लोगे तुम क्या हो
1: तुम्हारे
2: घर. जी उसने बहुत सीरियस ले लिया कल बहुत बोला कल.
0: अच्छा सही.
1: लोगों का ये इशू है दिमाग और आजकल के जमाने में ना कुछ ज्यादा ही हुआ. पहले तो फिर भी लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं मुरव्वत होती थी ना एक किस्म की. अब वो मुरव्वत भी खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर. पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है उनका दिल नहीं है. ऐसा नहीं होता. ये एक दो दफा एक दो दफा शाहरुख खान का भी यही हुआ था कुछ सीन के शाहरुख खान ने भी ऐसी बातें कही थी. सेलिब्रिटीजें होता है सबको लगती है भाई इंसान है
0: और हर बंदे ने एक अपना पीक देखा है ना. मतलब उसने ये देखा है कि उसकी एक जमाने में उसको लोग कॉपी किया करते थे और अब ये हो रहा है कि लोग उनको ये जता रहे हैं कि एज बढ़ी. तो एज तो हर किसी की बढ़नी है यार. मतलब कौन ऐसा है जिसकी एज नहीं बढ़ेगी. हर मतलब अगर इस वक्त कोई जेन ज़ी में से बैठ के बोल रहा है तो जेन ज़ी में भी डेफिनेटली अभी आप उच्च से के बाद आप भी उस जगह पे खड़े हुए होंगे.
1: एग्जैक्टली वही वाली बात है कि आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कोई.
2: बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. बोले बस अपना अपना करो और बोलते नेगेटिव बात बोलने वाले ये ट्रॉल करके हमारा मतलब गलत काम कर रहे हैं. लोगों का दिल दुखा रहे हैं इसकी वजह से लोग कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं तो उसकी तरफ से पैसा भी कमा रहे हैं उल्टा बोलते हैं. बोल रहे यार क्या बोलो ट्रॉल करके पैसा कमाते. कहते हो मैं तो नहीं हूँ सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं जाता हूँ. कल मैं सुन रहा था भाईजान का लेक्चर तो खैर उन्होंने तो जो उनके खिलाफ ट्रॉल हो रहा था वो तो एक्सपोज करके बता दिए नेशनल टेलीविजन पे. सबका मूवी बंद हो गया भाई. अभी भी 25 है माशाल्लाह.
1: एज इज जस्ट अ नंबर. नहीं जब आप किसी से
2: आप लोग बड़ा मजे का है.
1: नहीं मैं मेरे घर वाले देखते मैं नहीं देखती. मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं देखती. मैं इतना रेगुलरली नहीं देखती. मैं घर वालों में से किसी से पूछूंगी क्या हुआ था. वो देखते हैं बड़ा रेगुलरली आपकी तरह.
2: कोशिश करिए कल का एपिसोड देखिए बड़ा अच्छा था आपको.
1: नहीं ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि हमें हर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी. जिसको जो समझना है वो शुरू में से मैंने कहा जिसको जो समझना है ना वो तो वो ही करेगा. चाहे आप उसे लेक्चर दो चाहे आप उससे उसके आगे रो लो चाहे आप उसको कुछ समझा लो. लोग समझते हैं कि वही कन्फ्यूजन है कि अंडरस्टैंडिंग को ना अप्रूवल से जोड़ दिया जाता है कि हाँ हम इसको अप्रूव नहीं करते. भाई तुम्हारी अप्रूवल की किसको जरूरत है.
2: अच्छा सफा मैडम इसके पीछे नियत भी बहुत लोगों की खराब होती है. मतलब जानबूझ के किसी को ड्रैग करे और उसको मतलब तकलीफ दे जहनी तकलीफ दे ऐसे भी लोग.
1: हमारे ज्यादा दूर नहीं जाएं सेलिब्रिटीज तक. हमारे अपने सगे रिश्तों में ऐसे मसले आ रहे होते हैं. बस ये है कि सामने वाला हमसे आगे ना निकले इसलिए हम मतलब हम नहीं अल्लाह का शुक्र है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने उसी थाली में खाते हैं और उसी में ना छेद कर देते हैं कि भाई नहीं इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे. आपके घर बैठ के खाना खा रहे होंगे.
0: पैसे वैसे कमाने की बात कर रहे हैं ना तो उसमें मेरा ख्याल से मैंने कहीं सुना था ऐसा कि दूसरे लोग करवाते हैं. मतलब जो समझो कि कॉम्पिटिटर हैं हाँ तो वो भी कुछ लोगों को पैसे वैसे दे के इस तरह की चीजें करवाते हैं ताकि ना डीमोटिवेट हो जाए अगला बंदा.
2: बिल्कुल बिल्कुल यही है कि बोलने की जरूरत नहीं है. अपने अपने जो खास रिश्ते जैसा मैंने रिपीट किया फिर से अल्हम्दुलिल्लाह उनको बोल दें काफी है और आप अपने आप में सेटिस्फाइड हैं कि भाई कुछ आप सही कर रहे हैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे. तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. हर चीज का इन्फॉर्मेशन भी देने की जरूरत नहीं है कि अपने चीजों को अल्लाह सुब्हान तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए के अपने चीजों को मतलब आप आपका हक है आप छुपा सकते ताकि लोगों की नजर नहीं लगे और काम होने से पहले बोलने की जरूरत नहीं.
1: और ये बात तो मैं तो भाई आंखें बंद करके ये बात मानता हूँ.
2: तलवारें निकल जाते हैं इसके ऊपर तलवारें निकल जाते हैं भाई. वो बोला नहीं ये कर दिया बोलना था
1: ये आजकल चल
0: बताया नहीं. शादी हो रही थी बताया नहीं. रिश्ता हो गया बताया नहीं. अब जाके बता रहे हो ये हो रहा है
1: इसलिए नहीं क्योंकि नहीं बताया था.

0: सही बात है। चलें सैयद भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप लोगों का बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने, सॉरी सॉरी।
0: कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चले दी। थैंक यू,
1: सो स्वीट ऑफ यू ऑल ऑफ थ्री।
0: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर हैं और उनको देखते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: कॉलर, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हम पहले कॉलर हो सकते थे लेकिन हम जानबूझ के हम बोले नहीं, सिक्स नहीं लगाना है हमें, छोड़ो। यार पहले कॉलर बन सकते थे क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोगों को

0: क्योंकि हमारे दोस्त जो मिले अभी पिछले जुमा को, पिछले जुमा को मतलब गुजरे हुए, जितने थे हमारे मतलब समझ लो कि लिसनर में से जो हमारे फ्रेंड्स हैं, सारे हम लोग जाके बिल दिए थे, ये सुफेल भाई का ये सबका है सारा, कि सारे लोगों को मतलब जोड़ के ले जाके
1: तौफीक भाई, इसीलिए नंबर मांगे जा रहे थे सबके एक एक करके, उसका नंबर दे दो, उसका नंबर दे दो,
0: हाँ एक दो मिस हुए हैं, नहीं तो मतलब हम लोग नजमा में पहुंच के और बड़ी देर तक बातचीत हुई और फोटो शोटो भी हुआ, गप सप हुए। फिर सबसे बड़ा नेमत हम लोगों को ये मिला कि सैफुर रहमान साहब से जाके मगरिब की नमाज के बाद में बड़ी देर तक मिले और गुफ्तगू किए और बड़े उम्दा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज का बात था।
1: चले माशाल्लाह,
0: उनके साथ में बैठ के मस्जिद में बहुत देर तक मतलब हम लोग गुफ्तगू किए, बल्कि वो बोलने लगे कि यार बस छोड़ दो रेडियो वाली बात, अभी दूसरी बात करो। तो उन्होंने मतलब बताया जो हकीकत है आप लोगों का जो ये है सारा, कि अब वो इस पे नहीं बयान करना अच्छा नहीं है, ये जो मेन ओनर लोग हैं भाई बोलने लगे, अरबी लोगों का उसमें सब अपना या वो शेड्यूल सब रहता है, तो ये सब हम लोग आपस में शिकायत जो करते हैं ये ऐसा नहीं है।
2: रईस भाई मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर हमारा जो मुद्दा चल रहा है ना अभी वो ये चल रहा है कि जरा ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग हासिल होना या हर किसी का हमारी हाँ में हाँ मिलाना या हर किसी का हमें समझना जरूरी है
1: हम जो कर रहे हैं उस चीज के हवाले से?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं,
2: कुछ लोगों को होता है ना बड़ा गिल्ट फील होता है कि नहीं भाई फलाने ने मुझे गलत समझ लिया, फलाने ने मुझे ये ले लिया, फलाने मेरी बात गलत समझ ली।
0: मेरे महवज की बहस होती है, महवज समझती है मुझे बहुत बढ़िया से।
1: किस बात पे?
0: वो छोड़ो, वो महवज को मालूम है, ये रहने दो, राज रहने दो, वो महवज से पूछ लेना। ये भी बात कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो लंबा मुद्दा हो जाएगा, हम सैफ साहब की तारीफ में थोड़ा बात को आगे ज्यादा लेके चले गए थे।
1: अच्छा मैं बोलने वाली थी आपसे कि आपसे उनकी मुलाकात हुई ना, तो जरा कभी अगली दफा मुलाकात हो तो उनसे उस बारे में बात कीजिएगा जिस पे आप मुझसे बहस करते हैं।
0: नहीं, मैं पूछने वाला था।
1: चले आप नेक्स्ट टाइम पूछे, चले नेक्स्ट टाइम पूछे, इंशाल्लाह
0: वो मिल लेंगे, बात कर लेंगे, वो सब टॉपिक छेड़ना अच्छा नहीं है।
1: जी,
0: और जो आप लोग मतलब एक दूसरे के ऊपर जो तनकीज और तरह तरह की मतलब ये करना, ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। बंदे को उस हिसाब से जितना ज्यादा उसमें आप कुरेदोगे उतना ज्यादा बात बढ़ेगी, उतना ज्यादा अपने मर्जी से अपने हिसाब से आप नहीं करवा सकते हो। हाँ अगर आप कुछ मतलब बात है अपने को, जैसे आपने अपने बच्चे को हम नहीं मतलब ये कर सकते अपने मर्जी के हिसाब से कि भैया तुमको इसे करना है इसे करना है और ऐसे ही चलना है, जैसे हम मतलब नहीं मान लो कुछ चीज हम नहीं पा सके तो वो तुम्हें पाना है, तो ये गलत बात है। हाँ उनको राय दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि हमारे लाइफ में ये सब चीजें हमारे सामने आई, पेश इससे तुम बच के रहो, ये करके रहो,
2: समझा सकते हैं आप, लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि हर कोई हमें जाना समझे। हम समझा सकते हैं लेकिन हर किसी का अप्रूवल नहीं मिलता, समझते हैं
0: नहीं समझते, आजकल तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। सभा मैम ये मैं तो देख रहा हूँ कि अपने बच्चे खुद के हम अपने उसमें हम अपनी मर्जी से अपने अपने तरीके से नहीं ढाल सकते हैं कि हम जो फ्यूचर में थे हमने इतनी परेशानियां उठाई और ये करके हम यहाँ तक, ये करके।
2: रईश भाई कितनी मजे की बात है कि हर जनरेशन पुरानी जनरेशन, हम भी पुराने हो गए ना, हम भी 90s के हो गए, तो वो हर पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को यही कह रही होती है कि हमारे जमाने में तो ये था। ये सबका है, हमें भी कहीं ना कहीं अपने अपने वालिदैन के साथ इख्तलाफ रहा होगा बातों पर,
0: वो थॉट उस टाइम के लिए कुछ अलग अलग मतलब आदमी के अंदर वो अलग ही वहीं तक समझ लो बंदा का पहुंच वहीं तक, वहीं से मतलब आगे नहीं जा सकता था, लेकिन आज जिस तरीके से और आगे भी फ्यूचर में भी ये दिन ब दिन हर एक दूसरे को हकीर समझा जाएगा, ये लाजिम सी बात है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे उनके साथ जो हमारे बच्चे हमें मतलब मान लो थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि इनको इतना नॉलेज नहीं है मिसाल के तौर पे, तो वो उनकी आने वाली नस्ल भी उनको ऐसी समझेगी, क्योंकि दुनिया का ये सिस्टम है ऐसा, इस तरीके से ग्रोथ हम जो पहले 90 के उसमें हम लोग सोचे नहीं थे कि ये ऐसा भी हो जाएगा, वो हमारे सामने है, बिल्कुल हमारे सामने है, वो बिल्कुल हम उसको देख रहे हैं। तो ये चीजें अब आज का सोचने का नजरिया और पहले के सोचने के नजरिए में बहुत फर्क है। हाँ हम लोगों ने मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जद्दोजहद बहुत मशक्कत की, वो अपने बच्चों से हम करवाना चाहें नहीं करेंगे, वो ये पक्की बात है। हाँ बहुत

0: हर कोई हमें अच्छा समझे.
1: Yeah, exactly. For example, people usually feel comfortable and value around you, right? So being respectful is the main thing. What you are doing and aap kya karne ke liye jata hum tujhko batane ki zarurat nahi hai. Just be honest and be respectful.
0: So you need, if I say, does a person, does a human being needs everybody's approval or everybody's understanding?
1: Yeah, everybody. For out of your house, these two things should be common.
0: Mm-hmm. अज्जू भाई थोड़ा डिफरेंट बात कर रहे हैं. अज्जू भाई कह रहे हैं सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सबकी अप्रूवल होनी चाहिए.
1: ऑफ कोर्स आपका माइंडसेट कैसे नहीं होगा, आपका ऑपोजिट वाला को माइंडसेट कैसे आपको पता नहीं है, तो कैसे हैंडल करने का आपका कोई बिहेवियर में भी उसको अच्छा नहीं लगता है, मेरा भी आपको उसका बिहेवियर मेरे को अच्छा नहीं लगता है. सो जस्ट बी हॉनेस्ट वे एंड बी रेस्पेक्टफुल ओनली. Sometimes you know the be quiet and if you want to keep distance it will be okay.
0: So that means right, that you don't need their approval or their understanding. That means that okay fine, I did my part of the.
1: For example, I don't want to anyone approval. I'm going to do this thing.
0: Yeah. Haan, so that's exactly what we are talking about. We are talking about today is that let's say you're doing something or there is something in life going on. Do you actually need everybody's approval on it? Do you need everybody to understand it? No, right?
1: No need. Yeah, see, I'm hungry. I want to eat. I need anyone approval?
0: No.
1: No.
0: I need my approval only. What's in the fridge? I need fridge approval and my approval. मैं फ्रिज खोलूंगी खाऊंगी. आई डोंट केयर व्हाट अदर्स आर थिंकिंग. हाय ये इतना खाती है, हाय ये मोटी हो गई है, हाय इसको ये हो गया है, हाय इसको वो हो गया है. आई डोंट केयर.
1: आपको भूख लग रहा है, इफ यू आर फीलिंग हंग्री एंड यू आर ईटिंग फूड, बट दैट टाइम यू आर वेस्टिंग फूड और यू आर सच बैड थिंग्स आर हैपन, ओके पीपल आर अनकंफर्टेबल, बट फॉर ईटिंग यू डोंट वांट टू आस्क एनीवन अप्रूवल.
0: ना ये भी एक बड़ा संगीन इशू है. ये हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में भी होता है, भगुओं के ऊपर जुल्म हो रहे होते हैं, फ्रिज लॉक कर दिया जाता है.
2: हाँ.
0: और जो है ना उनको खाने को नहीं दिया. ये बहुत ज़्यादा खाती है, पूरा घर का राशन ये खा गई है. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नो देयर कम्स अ सम पीपल डील विद दिस दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस कि उनके माइंड को ऐसा प्लॉट कर दिया जाता है कि अगर उन्होंने खाना भी खाना ना, लिटरली आई हैव सीन सच पीपल कि अगर उन्होंने खाना भी खाना है ना, दे आर सो स्केयर्ड ऑफ अदर्स क्रिटिसिज्म just because of their weight or just because of their position, ki that they need an approval from somebody just for having food. And this is the ground reality. It happens.
1: Yeah. For example, joint family hai to aap kisi ko approval lene ka maybe 50% chance hoga. For if you are alone or wife and husband and wife only, no need for approval. Just do it whatever you need, but don't hurt anyone. Be honest with
2: you. सही हो गया. चलें दी. Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जू.
1: Thank you.
2: Bye bye. अच्छा, और अब हमें लगता है कि हमें एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हम पहले ये सॉन्ग प्ले करेंगे, फिर हम वापस आएंगे.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
2: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीन एवरी संडे एंड थर्सडे एट 1 PM लाइव ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम,
5: पुलिस और अवाम,
3: जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
6: आप सुन रहे हैं यू मैटर
7: RJ सफा और RJ महविश के साथ
6: FM 107 पर। दिल से देसी।
8: बैग दी गोपियां फूलों आज जी खुशबू लगा के आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर और मैसेज भी भेज सकते हैं 666221।
9: मैसेज हमारे पास है मोहम्मद यूसुफ खान का और मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग मावा जी, सफा जी, आप दोनों को कैसे हैं आप लोग?
8: बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं।
9: हैप्पी संडे मॉर्निंग, कैसा रहा वीकेंड आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत दौड़ता सीरियसली, मतलब वीकेंड आता है मैं सोचती हूँ वीकेंड की अलग ड्यूटीज होती है।
8: हाँ,
9: ना
8: हाँ।
9: तो खैर जी, मेरे लिए जरूरी नहीं है हमें सब समझें, बस हमारे अपने हमें अच्छा अच्छी तरह समझ लें वही काफी है।
8: अच्छा, अपनों की कुछ लोगों की ना अपनों की फहरिस्त बड़ी लंबी चौड़ी होती है भाई। वो दूर के पुप्पा जो है ना, वो जो फलानी के अंकल के चाचा के मामू के ताए के जो बेटे हैं वो भाई वो नहीं आते, वो नहीं।
9: मोहम्मद यूसुफ हिसाब किताब नहीं है तो अंदाजा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम।
8: अच्छा, कोई है हमारे साथ?

0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो सही बात थी वैसे, मतलब ये बात एक तरह से सही है कि कुछ लोग जो मैटर करते हैं उन लोगों को एक्सप्लेनेशन देने में अगर मैं सही हूँ तो मुझे कोई हर्ज भी नहीं है, है ना, कि मतलब उनको एक्सप्लेन कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई मैटर ही नहीं करता और दिल नहीं चाह रहा है भाई, वो अगला कुछ भी समझता रहे, अगर उसने गलत समझना है कुछ भी करना है तो समझे, तो सही बात है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी करीम भाई, क्या हाल चाल है?
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्लाह पाक से राजी हूँ। बहुत अच्छे के बाद एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। कहाँ गायब थे आप?
1: मैं यही पर हूँ, हकीकत तो ये है कि मैं यही पर हूँ।
2: मैं यहाँ हूँ, यहाँ
0: हकीकत तो यही है।
1: बिल्कुल, मतलब हालात कभी कभी आप लोगों को पता है, इंसान के जो अपने हालात है ना, वो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं ना कि आप चाहकर भी किसी से राबिता नहीं कर सकते।
0: ये तो है।
1: तो ये कहते हैं ना कि बस कुछ मसले होते हैं ना ऐसे, अल्लाह माफ कर, से बड़े मसले नहीं है, मतलब रहन सहन की, मतलब कुछ दिमागी हालात, कुछ घर के मसले मसाइल, कुछ इधर की जो है ना काम में तब्दीली। और मैं चाहता अभी तो कर सकता था रबिता, लेकिन मेंटली भी रेडी नहीं था। मैंने कहा चलो पहले जो चीज जरूरी है इनको कर ले। बहरहाल अच्छा वक्त गुजर रहा है, और जो गुजरा भी वो भी बड़ा अच्छा था। तो कभी कभी हो जाता है आप चाहते हुए भी किसी से रबिता नहीं कर पा सकते हैं।
2: हाँ, ये भी होता है, मसरूफ है हालात जिंदगी।
1: हाँ, लेकिन आप उनको, आपको मतलब आप उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगला कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। आपके पास यानी 5 मिनट भी टाइम नहीं था, लेकिन हकीकत यही है, आप चाहते हुए भी कभी कभी आपसे वो मौका हाथ से निकल जाता है, तो अगला सोच रहा होगा कि पता नहीं बंदा चेंज हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है,
2: दिन में 10 दफा दिमाग में चीजें घूमती हैं, लोग घूमते हैं, एहसास घूमते हैं, लेकिन बस वो ये है कि पहुंच नहीं पा रहे हो। असल में मसला ये भी ना, लोगों को जब से फोन नाम की चीज आई है ना दुनिया में, तब से लोगों को एक्सपेक्टेशन हायर हो गई है कि एक मैसेज करने में क्या ही जाएगा, एक वॉइस मैसेज करने में। अभी माविर से मैं अभी यही डिस्कस कर रही थी कि मेरी अपनी जो है एक कजन सिस्टर है, और उस कजन सिस्टर का मेरा मामला ये है कि वो शिकायत कर रही थी कि कितने टाइम से ना तुमने ना फोन किया ना बात की। और हम लोग कजन सिस्टर का, हम लोग बहनों से भी ज्यादा अटैच हैं, लेकिन अब वो कैसे समझाया जाए कि जिंदगी में बस जिंदगी भाग रही है, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये बड़ा एक मसला है।
1: यही वो चीजें हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र की कि कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती, उससे जब बंदा खुद गुजरता है ना उस हालात से, तब उसको इस चीज का
2: एहसास होता है
1: कि हाँ, वो बंदा तो इस जगह पे था जो हमसे रابطہ नहीं कर सकता था, यानी कोई वजह।
2: और एक्सप्लेनेशन देना ना, उस चीज की एक्सप्लेनेशन देना और किसी से एक्सपेक्ट करना कि वो समझेगा, बेशक आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो,
0: लेकिन करीम भाई हमने तो पूछा ही नहीं, हमने पूछा ही नहीं, हम तो सिर्फ आपकी खैरियत पूछ रहे थे।
1: एक्सप्लेनेशन यहाँ पे काफी सारे लोग सुन रहे हैं।
0: अच्छा, वो सोच रहे होंगे, सही सही, ये करीम भाई कहाँ चले गए, सही सही सही सही, ठीक हो गया।
1: इससे बड़ा फायदा उठा सकता है, बड़ा फन उठा सकता है।
2: तो अच्छा ये बताएं कि क्या क्या आपको लगता है कि क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर कोई हमें समझे? मैं कह रही हूँ कि करीम भाई देखिए, आज बात नहीं हो सकती, बहुत मसरूफ चल रही है जिंदगी, और मैंने 2-3 एक्सप्लेनेशन दे दी करीम भाई को। क्या ये इम्पोर्टेंट है कि करीम भाई भी मेरी बात को उसी लेवल तक समझें जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है?
1: देखो जरूर, मैं तो अभी वो भाई बात कर रहा था, मैं आ गया लाइन में, मैंने कहा चलो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मौजू क्या है, लेकिन आपने, मैं समझ गया कि आप क्या समझाना चाह रही है। यानी देखो इंसान के अंदर ये चीज होता है, बहुत कम इंसान है जो वो इस चीज को जरूरी नहीं समझता कि हर कोई आपको समझे। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ये कहें कि हमें कोई समझे, यानी अगर आप एक बार फिर एक्सप्लेन करें तो मैं इसके ऊपर सही बात कर सकता हूँ।
0: मसला ये है, हम ना एक्सप्लेन करते, लेकिन अब हमारा वक्त ही तमाम हो गया है तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। करीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, इंशाल्लाह ताला आप जो है,
1: हाँ मैं आखिरी बात कहता हूँ, बस किसी को बस छोड़ दे मसला, फिर वो आगे आधे
2: आधा अधूरा रह जाएगा।
0: कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है करीम भाई। नेक्स्ट टाइम कॉल कीजिएगा तो हम बात करेंगे।
2: कल कल कल
0: कल कॉल कीजिएगा,
2: कल जल्दी कॉल कीजिएगा,
0: ठीक है?
1: पक्का पक्का पक्का।

0: चले नहीं, चले नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे लग रहा है करीम भाई के साथ कुछ तो मसला है, कुछ बताना चाह रहे थे ये, मतलब गायब के रहे, हकीकत में तो मैं यहीं पर हूँ लेकिन मैं कॉल नहीं कर रहा था, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो है भाई चक्कर, मतलब जिसकी वजह से कॉल नहीं कर रहे थे, किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया करीम भाई को?
1: करीम भाई इतने माशाल्लाह से अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे, अच्छे स्वीट इंसान है।
0: करीम भाई ने मुझे लग रहा है कोई बात तो दिल पे लिए, कोई थोड़ी बहुत बात दिल पे लिए,
1: किसी की लग गई इनको बात दिल पर।
0: अच्छा जी यूसुफ कहते हैं कि जी बिल्कुल सही मामा जी, समझ गए ये कौन के कौन अपने हैं, नॉट एज सफा जी सेड। और मुबीन बुखारी गुड मॉर्निंग मुझे तुम्हें और सब लोगों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मुबीन बुखारी आपको वालेकुम सलाम, और तौफीक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के मैसेजेस का। और इसी के साथ हमारा वक्त हो गया है जाने का, तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है कल, और कल फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और उसको फिर समझेंगे समझाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कि कितना किसकी समझ में।
1: और बस ये याद रखें कि देखें लोगों को कन्विंस करना जरूरी नहीं होता, जो लोग हमारे करीब होते हैं ना वो हमें खुद ब खुद समझ जाते हैं, जो रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलते हैं, वो एक्सप्लेनेशन के ऊपर नहीं चलते।
0: एग्जैक्टली जैसे मुझे समझ में आ गया करीम भाई का कुछ तो मसला है, हम समझ गए हैं बिल्कुल,
1: एग्जॉस्टेड हो गए कहीं से।
0: इंशाल्लाह फिर बात करते हैं आप लोगों से कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को संवार दें।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने के प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के सफर में आपका खैर मकदम है। आज हम गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी पिछले हलके से, और इसका ताल्लुक है इंसानी खताओं के हवाले से कि हमसे लग्जिश होती है, कोताही होती है, गुनाह सरजद होते हैं, लेकिन हम सब अल्लाह के पर्दा सतर के मोहताज हैं। हम में से कौन है जो अपने आमाल के हर गोशे को खोल कर देखे और अपने आप को बिल्कुल यानी पाक पाए। कितनी कमजोरियां ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने लोगों से छुपा रखा है, कितने गुनाह ऐसे हैं जिन पर उसने फौरन गिरफ्त नहीं की, कितनी लग्जिशों के बावजूद उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। इसीलिए शरीयत हमें बार बार बताता है कि अगर गुनाह हो जाए तो वापसी का रास्ता क्या है, इस्तग़फ़ार करो, तौबा, बुराई के बाद नेकी का काम करो। कुरान कहता है इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई को उस तरीके से दफ़ा करो जो सबसे बेहतर है, और फरमाए इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियाँ बुराइयों को मिटा देती हैं। सामने कराम हम सब खता करते हैं, हम सब कभी ना कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, सब बराबर नहीं। एक शख्स वो है जो गुनाह में उतरता है फिर उसमें रहने का फ़ैसला कर लेता है, न शर्मिंदगी, न वापसी, न तौबा, और दूसरा वो है जो फिसलता ज़रूर है मगर उसी वक्त उसे अपने रब का मकाम याद आ जाता है। कुरान ऐसे लोगों की तस्वीरियों खींचता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون। जब वो किसी भी हयाई का इर्तिकाब कर बैठते हैं या अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह माफ कौन कर सकता है, और जानते बूझते अपने किए पर इसरार नहीं करते। तो फर्क है गुनाह हो जाने पर और गुनाह पर जम जाने के दरमियान। मोमिन की खूबी यह है कि लग्जिश उसे अल्लाह से दूर ले जाने के बजाय अल्लाह की तरफ वापस ले आता है। गुनाह हुआ साथ साथ इस्तग़फ़ार, कोताही हुई तौबा, दिल

पर दाग आया, नेकी से धो लिया, रास्ता छूटा, फौरन लौटे। और यहीं पर शैतान की एक बहुत ख़तरनाक चाल समझने की ज़रूरत है, जिस पर हमने तफसीली गुफ्तगू भी की थी। खुलासा यही है कि अगर कोई ये समझता है कि मैं गुनाहगार हूँ, तो उसे कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि अब मैं कैसे इबादत कर सकता हूँ, इबादत किस मुँह से करूँगा, कुरान पढ़ता हूँ और फिर मेरे लिए नाफरमानी कैसे मुमकिन है। इस तरह की जो शैतान की चाल है, इससे हमें दूर रहना है। देखें, शैतान चाहता है कि पहले लिबास गंदा करे, फिर कहे उसे धोने का क्या फ़ायदा। मोमिन कहता है कि दाग आया है तो धोना और भी ज़रूरी हो गया। मजीद सामने कराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहायत गहरी मिसाल के हवाले से भी हमारे पिछले हलके में गुफ्तगू हुई थी कि फितने दिलों पर एक एक तिनके की तरह पेश किए जाते हैं। जो दिल उन्हें कबूल करता जाता है, उसमें एक सियाह नक्ता पड़ जाता है, और जो उन्हें रद्द करता है, उसमें सफ़ेदी और नूर बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि दिल दो तरह के हो जाते हैं। एक दिल ऐसा रोशन और मजबूत कि फितना उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुँचाता, और दूसरा सियाह उल्टा हुआ बर्तन, न मारूफ को मारूफ समझता है, न मुनकर को मुनकर, सिवाय उसके जिसे उसकी ख्वाहिश कबूल करे। तो उल्टे बर्तन का तसव्वुर यानी एक अजीब तसव्वुर है कि आप इस पर पानी डालना चाहें मगर पानी कैसे ठहरेगा, यानी कहाँ ठहरेगा, बर्तन ही उल्टा है। इसी तरह जब दिल मुसलसल गुनाह, ख्वाहिश और फितनों को पीता रहे, तो एक वक्त आता है कि हिदायत उसके सामने आती है मगर अंदर उतरती नहीं है। तो गुनाह इब्तिदा में बहुत छोटा लग सकता है, गोया सफ़ेद कपड़े पर राख का एक छोटा सा जर्रा हो। पहली मरतबा दिल चौंकता है, ज़मीर कहता है कि ये गलत था, लेकिन अगर इंसान उसे साफ न करे बल्कि अगला दाग भी कबूल कर ले, फिर एक और, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल की हसासियत कम होने लगती है। पहले गुनाह के बाद नींद नहीं आती थी, फिर वही गुनाह मामूल बन गया। पहले झूठ बोलते हुए ज़बान कांपती थी, फिर झूठ गुफ्तगू का हिस्सा हो गया, और असल ख़तरा आगे जाके ये बनता है कि गुनाह महसूस होना बंद हो जाए। और जब दिल गंदगी से मानूस हो जाए, तो अगली गंदगी पर एहतजाज भी नहीं करता, वो अपने मालिक को दलदल की तरफ खींचने लगता है। समीन कराम, एक खूबसूरत मिसाल आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही देख लीजिए। एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने गैर मामूली सल्तनत अता फरमाई, इंसानों के लश्कर, जन्नात, परिंदे, अजीम नज्म व इख्तदार, और इसी शान के दरमियान एक छोटी सी चींटी अपने कौम से कहती है, या अय्युहन नमल उदखुलु मसाकिनकुम ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशुरून। ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रोंद न डाले। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर मुस्कराए। चींटी ने भी क्या खूब हुस्न ज़न रखा, उसने ये नहीं कहा कि सुलेमान जुल्म करेंगे, कहा वहुम ला यशुरून, अगर नुकसान हुआ तो बेखबरी में होगा। और फिर उसी मकाम पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल सल्तनत में गुम नहीं होता, बल्कि वो अपने रब की तरफ वापस आता है या अपने रब की तरफ रुख करता है। वो दुआ करते हैं, رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين। اے میرے رب مجھے توفیق دے, میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کیا, میرے والدین کو عطا کیا, مزید ایسے صالح عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو, اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ سامعین کرام, ذرا دیکھیے, सल्तनत अपने अरूज पर, ताकत अपने अरूज पर, ख्वाहिश किया है कि मुझे सालिहीन में शामिल कर दे। गोया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत भी उसे एक नस्बत के सामने छोटी हो गई, इबादक सालिहीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के मंजरनामे को भी देखिए, उनकी ज़िंदगी में हालात कितनी बार पलटे, बाप की मोहब्बत से कुआं, कुएं से ग़ुलामी, ग़ुलामी से महल, महल से आजमाइश, आजमाइश से कैद खाना, कैद से इख्तदार, और फिर एक दिन बिखरा हुआ खानदान दोबारा जमा हो गया। वो मिस्र में इख्तियार रखते हैं, वालिदैन सामने, भाई सामने, वो ख्वाब जिसे बचपन में देखा था अपनी ताबीर के साथ सामने। ऐसे मौके पर इंसान क्या मांगता है, मजीद इख्तदार, मजीद उम्र, मजीद दौलत। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, رب قد آتيتني من الملك وعلمتني

0: FM 107 पर पैगाम।
1: अल्लाह सुभान व तआला ने हमें जो अता किया है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अपने से कम हैसियत वाले लोगों पर नजर डालिए। कितने लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी मैसर नहीं, वो लोग भी हैं जिनके शबो रोज हॉस्पिटल्स में गुजरते। कितने लोग हैं जो दायमी अमराज का शिकार हैं और अजियत में मुब्तला है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे और अपनी सलामती की दुआ मांगता रहे।
0: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
5: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी ये आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
6: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।

0: قصة بناتي رهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: tebe.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
2: दोस्तों, हमारी ट्रैफिक सेफ्टी तभी बेहतर हो सकती है जब हम सब कानून का एहतराम करें. ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 43 के मुताबिक अगर कोई व्हीकल ट्रेलर या सेमी ट्रेलर टो कर रही है तो उसे लेफ्ट लेन यूज करने की इजाजत नहीं होती. लेफ्ट लेन फास्ट मूवमेंट्स और ओवरटेकिंग के लिए होता है. जब कोई हैवी व्हीकल या टोइंग व्हीकल लेफ्ट लेन में आ जाती है तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है और इमरजेंसी व्हीकल्स को भी रास्ता नहीं मिलता. इसलिए कानून ये कहता है कि ट्रेलर टो करते वक्त हमेशा राइट हैंड साइड पर रहें, किसी भी व्हीकल को ओवरटेक ना करें, अपनी स्पीड और डिस्टेंस का ख्याल रखें और याद रखें कि ये सिर्फ कानून ही नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम सब मिलकर लेन डिसिप्लिन मेंटेन करें तो हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। चलिए फिर आज आपको मैं वेबसाइट के साथ साथ एक कूल ट्रिक भी बताता हूँ जो आपके बड़ी काम आने वाली है, इनकेस आपने टेक अपडेट्स फॉलो नहीं किए अभी तक। वेयर वर यू, सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 कतर, FM 107 कतर, प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए, बिकॉज देखिए आपको होना बड़ा जरूरी है, वरना मैं बोलता ही रह जाऊंगा और सुनने वाली पब्लिक नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसी वेबसाइट से जो आपके बोर्डम को मिटा देगी। कई बार ऐसा मन नहीं होता, बैठे हुए टाइम काट रहे हैं, पंचिंग का टाइम आने वाला है, तो उससे पहले टाइम पास आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये घर पे भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई भारी इंजन नहीं चाहिए आपको, सिंपली अपने लैपटॉप या पीसी पे से रन कर सकते हैं। इसका नाम है messenger.ebito.co, messenger.ebito एबिटो, या जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहें, .co। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने गेम आएगा और वो जो गेम है इतना जबरदस्त टाइम पास है, आप अपने दोस्तों के साथ भी उसको खेल सकते हैं और साथ साथ आप खुद भी इसे पार कर सकते हैं। उसमें कुछ मिशंस भी आपके सामने आएंगे, उन मिशंस को खेलिए, पार कीजिए। एंड मैं सही बता रहा हूँ, आपको लगेगा यार ये तो थोड़ा एडिक्टिव सा हो गया, तो बच्चों को जरा दूर रखिएगा इससे, क्योंकि ये एडिक्शन तो है। हालांकि गेम जो है बच्चे बड़े सब खेल सकते हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंटरेक्टिव गेम है। एंड इसके लिए कोई भी आपको भारी कोई ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 666-22107 इसमें आप शो के दौरान भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, इनकेस आपको कोई भी डाउट हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अ ट्रिक विच आई रियली लाइक्ड एंड मैं शेयर करना चाहूंगा, ये है इंस्टाग्राम की ट्रिक। जब आप कोई वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे और आपको उसको डाउनलोड करना होता है तो आप क्या करते हैं? आई डोंट नो आप क्या कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इजी ट्रिक दे देता हूं मैं। तो जब आप किसी वीडियो को पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसका आप लिंक को उठा लें, कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जब आप पेस्ट करेंगे पूरी लिंक को, तो इंस्टाग्राम जो लिखा हुआ है उसमें से RAM हटा दीजिए। ठीक है, लिंक पोस्ट करेंगे तो पूरा लिखा आएगा ना, www.instagram.com/whatever, तो उसमें जो इंस्टाग्राम का रैम होगा वो हटा दीजिए और आपके पास डाउनलोड के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप हाई क्वालिटी में उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सो या देयर यू गो, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी और ज्यादा लोगों को बताएं, फैला दें इसे। जो 3 लोगों को बताएं उनको बोलिए कि वो आगे 3 लोगों को बताएं, काम जरूर आएगी। ऑलराइट, तो अब मैं जरा एक खबर की तरफ बढ़ता हूँ जो खबर भी है और एक तरीके का फैक्ट बनता जा रहा है इन फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो न्यूज में सबसे पहली बात है चार्जिंग को लेकर, फोन की चार्जिंग को लेकर ना जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, कितने सारे पावर बैंक आ चुके हैं, रिट्रैक्टेबल टेबल केबल्स आ चुके हैं, लेकिन अभी यू ग्रीन एक कंपनी है तो उन्होंने इस पे काम किया कि लिक्विड कूल्ड मैग्नेटिक पावर को बैंक्स में कैसे यूज किया जाए। तो लिक्विड कूल्ड मैग्नेटिक पावर बैंक्स मार्केट में आने वाले, भी उनकी सिर्फ टेस्टिंग हुई है, बाकी एक कंपनी है बेल्किन करके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है काफी पतला और हायर कैपेसिटी वाला पावर बैंक, और उन्होंने उसके साथ साथ जो रिट्रैक्टेबल केबल्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जीत है आने वाले वक्त में, कि जितने कम हो सके उतना ही आसानी रहेगी आई थिंक। एंड इसके अलावा जो AI की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और मेजर मेमोरी चिप्स शॉर्टेज होती चली जा रही है, इसकी वजह से रैम और DRAM की जो कॉस्ट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लैपटॉप्स और गेमिंग डिवाइसेस एक्सपेंसिव होंगे थ्रू आउट 2027 जब तक कि इस जंग को जीता नहीं जाता। सो मेक श्योर कि आपके जो फेवरेट गैजेट्स हैं, इनकेस वो गेमिंग से जुड़े हुए हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं और गेमिंग कंसोल हैं, आप ही ले लो भाई। इसके बाद ये सब चीज़ें महंगी होने वाली हैं फॉर श्योर। ठीक है, एंड इसके अलावा DJI ने लॉन्च किया था अपना DJI Osmo 360 और Hoover Air Versa, ये क्रिएटर्स के लिए एक नया खिलौना है। इसका जो रिव्यू है मैं इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि हर किसी का इसको देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। सो अपने अपने तरीके से परसीव करें इसे और मुझे बता दीजिएगा आपको कैसा लगा, आपके रिव्यू पे मैं काम करूँगा। ठीक है, बिकॉज क्या है कि ये क्रिएटर्स के लिए जो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ओके, On that note, this was the update. This is Kabir signing off. Apna khayal rakhiye. Aap behad behad zaruri hai. Maasalam.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर दिल से देसी
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं एक एहसास है कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है
4: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है बस मेरे लिए
1: तो कभी नए सपने दिखाता है मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द रिक्वेस्ट शो चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक हम बनेंगे आपकी आवाज डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास

0: क्वेस्ट शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ
3: Maximum music, maximum fun. On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं इत्तला कराता रहता हूं और रूबरू कराता रहता हूं, ताकि ना आपके साथ, ना आपके फैमिली मेंबर के साथ, ना फ्रेंड्स के साथ, ना ही किसी रिलेटिव के साथ फ्रॉड हो सके। वेल, आज जिस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो बहुत आम हो गया है, वो है कलीग इन्वेस्टमेंट टिप्स। ये काम कैसे करता है, इस पर हम नजर डालेंगे और साथ ही साथ इस तरह के फ्रॉड से बचने के क्या तीन उपाय हैं, क्या तीन सॉल्यूशंस हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, ये है कलीग इन्वेस्टमेंट टिप्स। काम कैसे करता है ये फाइनेंशियल फ्रॉड? पूरी तरह से हमारे अंदर रातों रात अमीर बनने के लालच और फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो का फायदा उठाकर डिजाइन किया गया है। इस स्कैम का सेटअप अक्सर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही आसानी से या उसके जरिए, उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए शुरू होता है। कोई इंसान जो पहले आपकी कंपनी में था या फिर आपसे किसी सोशल मीडिया पर एड था, कनेक्शन बना हुआ था, वो बड़ा ही फ्रेंडली होकर आपसे नॉर्मल बातें शुरू करेगा। धीरे धीरे वो चैट का रुख पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ देगा। वो बड़े ही कैजुअल अंदाज में आपसे कहेगा कि मैं ऑफिस के काम के साथ साथ एक नए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या सीक्रेट स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए हर महीने लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। आपको कन्विंस करने के लिए वो अपने फेक डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भी शेयर करेगा, जिसमें बड़ा प्रोफाइल लिखा होगा और प्रोफाइल दिख रहा होगा आपको। ऐसे में दिखेगा कि हाँ, प्रॉफिट भी इसको हो रहा है। साथ ही ये दोस्त आपको भी टैग करेगा, वो आपको टारगेट करेगा कि तू क्यों मेहनत कर रहा है, बस एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जैसे कि 5,000-10,000 रुपए करो और इसका जो रिस्क है वो बिल्कुल कम है। उनके कहने पर जब आप उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके थोड़ा पैसा डालते हैं तो वो वेबसाइट आपको बिल्कुल रियल दिखेगी। वहां आपका जो पैसा है वो ग्रोथ ग्राफ हर दिन ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जिसे देखकर आप खुश होकर अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप उस पैसे को अपने रियल बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। स्कैमर्स विड्रॉल ब्लॉक कर देते हैं, बोलते हैं कि पहले 20% टैक्स जमा करो, और जैसे ही आप टैक्स देते हैं वो आपका अकाउंट परमानेंटली लॉक कर देते हैं और सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। तो यानी कि जो ग्रोथ आपको दिख रही थी वो

0: पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस पर कभी भी आंख बंद करके अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ट्रेडिंग के लिए हमेशा ऑथराइज्ड और रेगुलेटेड ब्रोकर्स का ही यूज करेंगे। दूसरा तरीका है या दूसरा सॉल्यूशन है वेरीफाई रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई आपको किसी नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या क्रिप्टो पोर्टल के बारे में बताता है तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट रिसर्च करें, चेक करें कि क्या वो पोर्टल कतर सेंट्रल बैंक से भी या किसी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल गवर्नमेंट रेगुलेटर या रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड और लाइसेंस्ड है या नहीं। अगर उसका कोई रेगुलेटरी रिकॉर्ड नहीं है तो वो वेबसाइट फ्रॉड है। उसके अलावा तीसरा तरीका है टेस्ट विथ स्मॉलेस्ट कैपिटल एंड रीड रिव्यूज। ऐसी किसी भी अनवेरिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपनी मेजर कैपिटल मत लगाएं। गूगल और साइबर फोरम्स पर उस प्लेटफॉर्म का नाम डालकर स्कैम या विड्रॉल प्रॉब्लम कीवर्ड के साथ रिव्यूज चेक करें। अगर वहां नेगेटिव रिव्यूज हैं तो तुरंत अपना बचा हुआ कॉन्टेक्ट तोड़ दें और उनके इन्वेस्टमेंट ग्रुप से एग्जिट कर लें। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिनसे आप बच सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

दोस्तों फुटबॉल की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे गुजरे हैं जो सिर्फ गोल्स और ट्रॉफीज की वजह से याद नहीं किए जाते बल्कि अपने अंदाज खेल की वजह से हमेशा के लिए वो सबके दिलों में अभी भी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे ब्राजील के उस लेजेंडरी फुटबॉलर की जिनका असल नाम था मैनुअल फ्रांसिस्को डोस सांटोस लेकिन दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती है गरिंचा। गरिंचा का मतलब पोर्चुगीज में एक छोटी सी परिंदे जैसी चिड़िया से जोड़ा जाता है और ये नाम उनकी पर्सनालिटी पर बिल्कुल फिट बैठता था। उनकी छोटी सी परिंदे जैसी चाल, वो अजीब और गरीब रनिंग स्टाइल और डिफेंडर्स को चकमा देने की उनकी एबिलिटी, ये सब मिलकर गरिंचा को दुनिया के सबसे एंटरटेनिंग फुटबॉलर्स में शामिल कर देते थे। बचपन में पोलियो की वजह से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट मुतासिर हुई और उनकी टांगों में भी डिफॉर्मिटी थी लेकिन जिस चीज को दुनिया उनकी कमजोरी समझ सकती थी गरिंचा ने उसी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना दिया। उनके पैरों की अनयूजुअल शेप और बॉडी मूवमेंट ने उन्हें ऐसा बैलेंस दिया जो डिफेंडर्स के लिए समझना मुश्किल था। जब गरिंचा गेंद लेकर विंग पर खड़े होते डिफेंडर को अक्सर पता होता था कि वो अगला मूव क्या करेंगे लेकिन फिर भी वो उन्हें रोक नहीं पाता था। गरिंचा एक ही जगह खड़े खड़े डिफेंडर को कंफ्यूज कर देते, बॉडी एक तरफ बॉल दूसरी तरफ और अगले ही सेकंड में वो डिफेंडर को पीछे छोड़कर गोल की तरफ भाग रहे होते। उनके ड्रिबल्स में एक नेचुरल मैजिक दिखने को मिलता था। ब्राजील के फेमस क्लब बोटाफोगो में गरिंचा ने अपनी पहचान बनाई। वहां वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि फैंस के लिए एक सुपरस्टार बन गए और फिर आया इंटरनेशनल फुटबॉल का स्टेज 1958 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, पेले का डेब्यू वर्ल्ड कप। स्वीडन में ब्राजील ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और गरिंचा ने टीम की अटैकिंग ब्रिलियंस में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इसी टूर्नामेंट में दुनिया ने पहली बार उस ब्राजीलियन फ्लेयर को देखा जो बाद में फुटबॉल की पहचान बन गया। लेकिन गरिंचा की सबसे आइकॉनिक वर्ल्ड कप स्टोरी आई 1962 चिले वर्ल्ड कप में। चिले में ब्राजील के सुपरस्टार पेले टूर्नामेंट के दौरान इंजरी का शिकार हो गए और अब टीम को एक नए लीडर की जरूरत थी और गरिंचा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली एंड इट वॉज अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीम दैट वेंट ऑन टू जस्ट डैजल The footballing supremacy, control, dominance. Brazil was Brazil. और गरिंचा ने उन्होंने गोल्स किए, असिस्ट दिए, डिफेंडर्स को नचाया भी और ब्राजील को एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी तक पहुंचाया। गरिंचा इतने आउटस्टैंडिंग थे कि उन्हें 1962 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कहा गया। यानी जब पहले नहीं थे गरिंचा ने दुनिया को बता दिया कि ब्राजील के पास एक और फुटबॉल जीनियस भी है। उनके ट्विस्टिंग रन्स और अनप्रेडिक्टेबल ड्रिबल्स बिल्कुल सांबा की तरह थे, रिदम भी, क्रिएटिविटी भी और सरप्राइज भी। गरिंचा का इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी जबरदस्त रहा है दोस्तों। ब्राजील के लिए उन्होंने 50 से ज्यादा मैचेस खेले और टीम को कभी वर्ल्ड कप मैच में डिफीट का सामना नहीं करना पड़ा जब गरिंचा और पेले दोनों ने साथ प्लेइंग 11 में स्टार्ट

लेकिन गारिंचा की ग्रेटनेस सिर्फ नंबर्स में नहीं थी, उनके लिए फुटबॉल एक हैप्पीनेस, एक खुशी थी। वो ग्राउंड पर मुस्कुराते थे, फैंस को एंटरटेन करते थे और फुटबॉल को एक सीरियस बिजनेस की बजाय एक सेलिब्रेशन समझते थे। दैट वाज ब्राजीलियन फुटबॉल दैट टाइम। मगर ग्राउंड के बाहर उनकी जिंदगी इतनी सिंपल नहीं थी। फेम, रिलेशनशिप्स, इंजरीज और ऐसे कई मसाइल ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। करियर के आखिरी हिस्सों में वो पहले जैसी फॉर्म और फिटनेस मेंटेन नहीं कर सके, फिर भी ब्राजील के लोग उन्हें भूले नहीं। 20 जनवरी 1983 को सिर्फ 49 साल की उम्र में गारिंचा इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। माराकाना के फुटबॉल फैन से लेकर ब्राजील की गलियों तक गारिंचा को एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है जो फुटबॉल को सिर्फ खेलता नहीं था, वो फुटबॉल को महसूस करता था। गारिंचा ने साबित किया कि हर लिमिटेशन के बावजूद अगर टैलेंट, कॉन्फिडेंस और जज्बा हो तो दुनिया के बेहतरीन डिफेंडर्स को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। गारिंचा द लिटिल बर्ड, जो फुटबॉल की दुनिया में हमेशा उड़ता रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: यार लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
4: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain Culture Moment. Main hoon aapki RJ Mahavish. Is 5 minute ke

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीज only on FM 107 dil se desi
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इट्स अ गोल शो में आप सभी का इस्तकबाल है और अच्छी खबर के साथ आप लोगों का इस्तकबाल कर रहा हूं और आप लोगों को पता है कि एशियन गेम्स का ओपनिंग सेरेमनी एशियन गेम्स ऑलरेडी स्टार्टेड यस्टरडे और आज मुख्तलिफ इवेंट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं एंड सबसे खुशखबरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और वो है कतर के हवाले से कतर का पहला गोल्ड मेडल जी हाँ दोस्तों कतर का माफ़ कीजिएगा गोल्ड मेडल नहीं बल्कि मेडल सिल्वर मेडल और ये 60 kg कैटेगरी कराटे कॉम्पिटिशन्स में अब्दुल रहमान मुस्तफ़ा ने कतर के लिए पहला मेडल हासिल कर लिया है और आज ऑफिशियली अगर देखा जाए तो आज फर्स्ट डे है एशियन गेम्स का हालांकि नो हॉकी क्रिकेट के मैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे लेकिन अगर एथलेटिक्स की बात करूं या एथलेटिक्स इवेंट्स की बात करूं ओलंपिक इवेंट्स की बात करूं तो आज से शुरू हो चुका है एंड ये बहुत अच्छी खबर है अगर आज 1:03 पर मैं आप लोगों के सामने ये पेश कर रहा हूं इट्स अ गोल्ड शो तो कतर हैज़ won a silver medal at the Asian Games जो जापान और नागोया में अभी जारी है और अब्दुलरहमान मुस्तफ़ा याद रखिएगा नाम अब्दुलरहमान मुस्तफ़ा जो हैज़ etched his name into the record books by winning the first silver medal यानी first medal at the 2026 Asian Games जो कि अभी जापान में चल रहा है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कतरी टीम एंड कतर के जितने भी एथलीट्स मौजूद हैं और एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और करंट न्यूज़ है ये कतर के स्विमर आली तामिर उन्होंने 100 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में जगह बना ली है एंड ये कतरी रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड जो है उसको तोड़कर सो उम्मीद की जा सकती है कि आली तामिर कुछ एक मेडल ले आए पोडियम फिनिश कर ले या गोल्ड भी हो सकता है सिल्वर भी अगर हो जाए कोई मतलब बुरी बात नहीं है ब्रॉन्ज भी हो जाए लेकिन हम ब्रॉन्ज के बारे में क्यों सोच रहे हैं जब गोल्ड मेडल के चांस हो सकता है तो आली तामिर के लिए हमारे जितने भी तमाम लिसनर्स हैं एफएम 107 के जितने भी लिसनर्स हैं वी कैन ऑलवेज सेंड हिम आवर बेस्ट विशेस कि आप गोल्ड ही ले आए तो आज बेसिकली देखा गया है कि एशियन गेम्स के जो इवेंट्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्टेड एंड वी आर थ्रिल्ड इनफैक्ट कतर में अगर आज की बात करूं कतर के लिए आज पहला मेडल जो है अब्दुल रहमान मुस्तफ़ा इन द 60 kg कैटेगरी ऑफ कराटे कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने आज पहला मेडल जीतकर वाह वाह कर दिया है सो बेस्ट ऑफ लक फॉर कतर द रेस्ट ऑफ द एथलीट्स काफी कुछ बाकी है दोस्तों जैसे कि बीच वॉलीबॉल बाकी है बास्केटबॉल है क्रेमिन देर आर लॉट ऑफ एथलेटिक्स इवेंट्स हैं अब्दुलरहमान सांबा जो 200 मीटर रेस पर भी हैं वो एक वन ऑफ द दावेदार हैं टू विन अ गोल्ड मेडल बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया सो इसी बेस्ट विशेस के साथ अपना इट्स अ गोल प्रोग्राम शुरू करते हैं मुख्तलिफ और भी कई ऐसे इवेंट्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को बता दे रहूँगा लेकिन फिलहाल आज का जो क्विज़ है वो क्विज़ को आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा और उस क्विज़ में ये है कि क्रिकेट के हवाले से मैं पूछूँगा पाकिस्तान का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था आपको ये से बताना है 6662107 पर पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन यानी मैं आपको साल भी बता देता हूँ 1952 में पाकिस्तान मेड द डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया इंडिया का दौरा करने टीम करने गई थी और उस वक्त जो क्रिकेटर जिस बल्लेबाज ने पाकिस्तान को लीड किया था यानी कप्तान साहब का आपको नाम बताना है 6662107 पर आप सुन रहे हैं FM 107 मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन अच्छा दोस्तों एशियन गेम्स तो चल ही रहा है और साथ साथ आज भी बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं जैसे कि क्रिकेट के बारे में आपको बताऊं क्रिकेट में पाकिस्तान को शिकस्त मिली है फ्रॉम अगेंस्ट श्रीलंका सो पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन लेकिन हाँ ब्रॉन्ज मेडल मैच भी बाकी है सो उसमें पाकिस्तान हो सकता है कि जीते और अगर दूसरे सेमीफाइनल की बात करूँ इंडिया वॉज प्लेइंग बांग्लादेश आज सुबह मैंने जब I saw the Indian team was really, really, really on the top. So 195 for 4 when India batted or Bangladesh was bowled out for 81 runs. So a massive victory hai for the Indian women's cricket team. Ke liye 114 runs per jeet aur final mein ab India ka samna hone ja raha hai Sri Lanka ka. So in the cricket, women's cricket final of Asian Games, India playing Sri Lanka. So that is the best and Shefali Verma, jo one of the leading batsmen hai for India. Unhone 49 gendon par 100 run and Harmanpreet Kaur jo kaptan hai India ka Indian team, it was really doing good and 33 gendon par unhone 40 run banayi and Smriti Mandhana unhone 19 gendon par 37 run. So this is all the टॉप परफॉर्मर्स फॉर इंडिया. और बॉलिंग में देखा जाए तो दीप्ति शर्मा 7 रन देकर 3 विकेट, नंदिनी शर्मा 25 रन देकर 3 विकेट और श्री चरणी 7 रन देकर 2 विकेट. सो ये और देखा जाए कि इंडियन टीम अभी रिसेंटली दे वॉन द एशियन कप ऑल्सो अभी लास्ट वीक और बांग्लादेश को हरा कर क्रश कर दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल अगेन इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जो कि पिछले हफ्ते एशिया कप फाइनल में इंडिया डिफीटेड श्रीलंकन वीमेंस टीम. सो ये एशियन गेम से एक और अपडेट आप लोगों को दिया. और जापान कोरिया का आज बास्केटबॉल, मेंस बास्केटबॉल में मैच होने जा रहा है जापान वर्सेस साउथ कोरिया. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है बिकॉज जापान एंड कोरियन टीम्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. अगर वीमेंस बास्केटबॉल की बात करूँ तो यहाँ पर जापान की टीम ने साउथ कोरिया को मात दी है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द बास्केटबॉल टीम एंड बास्केटबॉल रिजल्ट्स. अच्छा, कल जो ओपनिंग सेरेमनी के दौरान लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर सीन, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो देखने को मिला तो वो है कि यू नो जापान सो नाइसली, सो यू नो वंडरफुली दे हैव प्रिपेयर्ड दिस एशियन गेम्स. हालांकि देर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि कंटेनर वाले बॉक्सेस में एथलीट्स को रखा गया है, कोई कह रहे हैं कि ये नहीं है, कोई कह रहे हैं वो नहीं है. बहुत सारे देखे कंप्लेंट्स तो बहुत होते होंगे. देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल जो कि हर चीज़ को बड़ा करके दिखाएगा कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया. लेकिन ओवरऑल कॉम्पिटिशन के मामले में अगर देखा जाए, जापान हैज़ रियली डन वेल और दे हैव रियली शोड टू द वर्ल्ड दैट दे कैन डू. वहाँ पर यह भी है कि आंधी तूफान वेदर फोरकास्ट में भी बताया गया कि कुछ भी यू नो हो सकता है. लेकिन देखिए, जापान हैज़ रियली प्रिपेयर्ड सेल्फ टू होस्ट दिस कंपटीशन. एंड ये मेजर कॉन्टिनेंटल कंपटीशन है जहाँ के एशिया के सारे जितने भी ममालिक हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एंड यस्टरडे यानी कल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो सदर हैं, जो प्रेसिडेंट है शेख जोआन बिन हमद अल थानी, उन्होंने जो मेन प्रेस सेंटर है और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर है उस

दोनों जगहों का उन्होंने दौरा किया एंड ही वाज हिज स्पीच वाज सो ब्रिलियंट. उन्होंने कहा ये है एशियन गेम्स जहां पे खेल और खिलाड़ी मौजूद रहते हैं. उनका एक ओपनिंग स्पीच में अभी सुन रहा था एंड इट वाज सच अ ब्रिलियंट स्पीच दैट वाज गिवन इन अरबिक में था. सो बेसिकली ही इज द हेड ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया. सो एशियन गेम्स कम्स अंडर द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया. सो ही इज द हेड ऑफ एवरीथिंग जो भी कुछ हो रहा है वहां पे. सो ही उनके ही अगर देखा जाए ही इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं हूँ यहाँ पे, तो उनके निगरानी पे जापान इज होस्टिंग इट. एंड बेसिकली जो एशियन गेम्स के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एशियन गेम्स की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, दैट फॉल्स अंडर द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया. वहीं अब अगर बात करूं कि लोकली क्या हो रहा है, अंडर 16 बास्केटबॉल लीग, कतर का अंडर 16 बास्केटबॉल लीग में आज अल वकरा का अल गराफा से होगा और अल अहली का मुकाबला अशमाल से होगा. बाकी खबरों के साथ मैं, अपडेट्स के साथ मैं आऊँगा, लेकिन एक सवाल जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, पूछ चुका हूँ, वो सुन लीजिए एंड 666-22-107 पर ज़रूर अपना जवाब लिखें और अपने नाम के साथ. क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली दफ़ा इंडिया का दौरा करने गई थी 1952 में, और पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन था. आपको सिर्फ लिखना कप्तान साहब कौन थे, उनका नाम लिखिए और मुझे भेज दीजिए आपके नाम के साथ. आई विल अनाउंस इट जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द शो. तो अभी आप लोग बने रहिए और FM 107 सुन रहे हैं आप. इट्स अ गोल्ड शो. मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक.

0: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: वेलकम बैक टू इट्स अ गोल्ड शो. जी हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा हूँ, थोड़ा सा हंस रहा हूँ इस बात पे कि एक खबर जो है मैं फोकस कर रहा हूँ जिस पे है कि जापान में क्रिकेट, जैसे मैंने आपके अभी शेयर किया कि वुमेन्स क्रिकेट सेमीफाइनल्स हो चुके हैं और मेंस क्रिकेट भी शुरू होने जा रहा है. सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जापान के जितने भी स्टेडियम्स हैं जहाँ पर मैचेस होंगे, तो वहाँ के जो स्टाफ हैं वो कुछ पैम्फलेट्स, इन्होंने वो बेसिकली पैम्फलेट्स बांट रहे हैं और लोगों को, यानी फैंस को जो आ रहे हैं, जो जापानीज फैंस हैं जो नॉन क्रिकेटिंग नेशन से हैं, उनको बांट रहे हैं कि बता रहे हैं कि ये होता है सिक्स और रन आउट कैसे होता है, कैसे आप बैटर को आउट कर सकते हैं और बेसिक रूल्स क्या है, स्टंपिंग क्या है. तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ा, यू नो, एनी न्यू गेम और न्यू कंट्री में अगर प्रमोट किया जाए तो कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चैलेंजेस हैं. लेकिन ये भी अच्छी बात है कि सीखने के कोई लिमिट नहीं है एंड लोग सीख भी रहे हैं इन जापान में. एंड जापानीज क्रिकेट टीम, जैसे मैंने आप लोगों को बताऊं कि जापानीज क्रिकेट टीम विल प्ले अ हिस्टोरिक फर्स्ट एवर मैच अगेंस्ट इंडिया. और ये समथिंग कि अब बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट जैसे देसी लोगों का खेल है, देसी लोगों के लिए है क्रिकेट. और ये गेम कई जमाना पहले अंग्रेज़ों ने इंडिया और पाकिस्तान में दे मेड इट पॉपुलर, खेलते थे एंड उस टाइम में यू नो क्रिकेट वाज नंबर वन. लेकिन आज देखिए कैसा, आई मीन ट्विस्ट एंड टर्न है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड अफगानिस्तान, ये जितने भी है सब एशियन कंट्रीज, अब भीड़ है, एकदम भीड़ है कि ऑल साउथ एशियन कंट्रीज, आई मीन अफगानिस्तान को मैं साउथ एशियन नहीं कहूँगा, सेंट्रल एशिया कहूँगा. सो इसके साथ साथ क्रिकेट अब इधर उधर चलते चलते जापान तक हैज़ रीच्ड. सो दिस इज़ समथिंग मुझे बड़ा ही फैसिनेट किया है कि इन्फॉर्मेशन को जिस तरह शेयर किया जा रहा है आउटसाइड द क्रिकेट स्टेडियम इन जापान, और वहाँ पर पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं. इसमें लगता है कि बहुत जल्द जापान विल बिकम अ सुपर तो नहीं कहूँगा, मतलब एक फोर्स टू रेकॉन विथ. एंड यहाँ पर बात वही है कि नो जापानीज वुमेन टीम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मेंस टीम भी प्लेइंग क्रिकेट. एंड ये अच्छी बात है, मुझे सही लगा कि यू नो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू वॉच इन द कमिंग डेज. और 24 सितंबर से ये जो मैचेस शुरू होंगे एंड उसमें इंडियन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, जापान एज अ होस्ट कंट्री मैंने कह दिया, हांगकॉन्ग, मलेशिया, तो ऑब्वियसली मलेशिया दे आस्क टू प्ले क्रिकेट, ओमान, उनके पास भी क्रिकेट है, नेपाल भी क्रिकेट में माहिर है, बांग्लादेश तो ऑब्वियसली उनके मेन्स टीम भी इतने स्ट्रांग है. तो देख लीजिए आप कि अफगानिस्तान जो ICC टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, एंड ये जो ICC टेस्ट प्लेइंग नेशंस में तो यही इतने हो गए हैं. तो रेस्ट ऑफ द टीम्स, जापान, जैसे मैंने कहा इनॉगरल मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस जापान का T20 मैच. सो ये देख, ये एक तरह से ये दिखा रहा है कि यू नो कि क्रिकेट इज रियली ऑन द राइज, क्रिकेट इज रियली ऑन द राइज. और कहाँ पे खेला जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में, ये जापान में है और यहाँ पे ये मैचेस होंगे. एंड दैट इज व्हाट आवर स्केड्यूल. अगर थोड़ा सा देखें कि मेंस स्केड्यूल को अगर देखा जाए तो कब से है कि 24 तारीख से, जब मैंने बताया 24, 25, 26 को है, 27 को ब्रेक है और क्वार्टर फाइनल, और जो है 28, 29 सितंबर को है फर्स्ट सेमीफाइनल, दोनों सेमीफाइनल से 1 अक्टूबर को, और फाइनल जो है 3 तारीख यानी 3 अक्टूबर को होने जा रहा है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए. सो दैट रियली हैज़ कॉट द अटेंशन ऑफ द जापानीज पीपल. अच्छा एक बात आपको बता दूं कि आज जो एशियन गेम्स का पहला जो मेडल जो हासिल करने वाला जिस एथलीट ने किया है उनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं. एंड ही इज़ फ्रॉम जापान की हैं एंड उन्होंने ये मेडल हासिल किया है एंड उनका नाम है ताकुमी होजो. उन्होंने

basically triathlon event mein, men's triathlon event mein, won the first gold medal of the Asian Games. Aichi Nagoya, Asian Games 2026 ka pehla gold medal jo hai Japan ke hi Takumi Hojo ne ye medal jeet kar unke desh yani unke mulk ko बहुत बहुत एक यू नो जबरदस्त स्टार्ट दिया है. अब थोड़ा फॉलो करते हैं कि गोल्ड मेडल्स में कौन कौन सी टीमें कौन कौन आई मीन टीम तो नहीं मुल्क है यहाँ पे मेडल्स टैली देख लेते हैं कि क्या है, हो चल रहा है एंड देन वी विल गेट इट टू नो कि उसमें कतर का नाम भी शामिल हो चुका है जैसे मैंने शुरू में बता दिया एंड कतर हैज डन इट एंड कतर हैज डन इट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ सिल्वर मेडल. और आज मेडल्स टैली में देखते हैं मेडल स्टैली अपडेट हो रहा है. मेडल स्टैली में चीन हमेशा की तरह 11 गोल्ड मेडल्स लेकर एंड 6 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 20 टोटल मेडल्स के साथ फर्स्ट पोजीशन. जापान 6 गोल्ड 6 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ 19 मेडल्स. कोरिया जो है 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 13 मेडल्स के साथ दे आर देयर. एंड कतर के पास वाहिद सिल्वर मेडल जैसे मैंने बताया कराटे कॉम्पिटिशन में वी हैव वन अ सिल्वर टुडे. एंड फाइनल ऑफ द 100 मीटर फ्री स्टाइल ऑफ स्विमिंग में कतर हैज ऑल्सो क्वालिफाइड. कतर तामिर जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए तो वहां पर भी मेडल के एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं. चलिए आप देखते हैं अब क्वेश्चन पर जाते हैं और क्वेश्चन पर कौन कौन है थोड़ा सा देख लेते हैं. एंड सवाल ये था कि पाकिस्तान का फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट कैप्टन हु वाज द पर्सन जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे. तौफिक साहब वालेकुम अस्सलाम वकरा से नाम आप लोगों ने पूरा नहीं लिया है एंड नाम आप लोगों ने पूरा नहीं लिया एक साहब ने लिया है अफरीदी साहब आपने पूरा नाम लिया बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब का. तो इसको थोड़ा सा खींचते हैं. पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन का नाम आप लोगों को बताना था. आप लोग बताइए कि पाकिस्तान को पहली मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में जो कि 1952 में अगेंस्ट इंडिया के साथ खेला गया था इन इंडिया उस टीम का कप्तान कौन था. एंड इट्स अ हिस्टोरिक ये तारीखी बात है कि पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट मैच जिन साहब ने पाकिस्तान को लीड किया था उनका नाम आपको बताना है. तो एनीवे आप लोगों को बता देता हूं उनका नाम जो है अब्दुल हाफिज करदार साहब. अब्दुल हाफिज करदार साहब इज वन ऑफ द आइकॉनिक क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियाद रखी. एंड अब्दुल हाफिज करदार साहब आगे जाकर ही बिकेम द सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने पीसीबी के भी हेड बने. और सबसे बड़ी बात यह है कि अब्दुल हाफिज करदार साहब जावेद मियांदाद को डिस्कवर किया था. जावेद मियांदाद नाम तो सुना होगा. जावेद मियांदाद को डिस्कवर करने वाला जो शख्स की बात मैं कर रहा हूँ अब्दुल हाफिज करदार साहब थे. उन्होंने अपने अपने एक लेवल था उनका एक वो ऑरा था. सच अ हैंडसम यंग आई मीन बॉलर ही वॉज. एंड पाकिस्तान की जो मैंने हमेशा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बुनियाद जो रखी गई थी वो थ्रू अब्दुल हाफिज करदार साहब के जरिए. सो ही वॉज द फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हु लेड अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया 1952 वाली सीरीज. एंड अगर मैं बात करूँ तो उनकी पैदाइश लाहौर में हुआ था 1925 में जनवरी 17 में. और ही वॉज रियली आइकॉनिक फिगर ऑफ पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि फादर फिगर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हिस्ट्री में पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में. जैसे यू नो ही बिकेम ही रिजाइंड ऑल्सो फ्रॉम द पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड 1977 में. और ही वॉज रियली अ डैशिंग प्लेयर. 26 मैचेस में 42 इनिंग्स में 3 नॉट आउट्स 927 रन और हाइस्ट रन का 93 रहा. और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो 26 इनिंग्स 26 मैचेस 21 विकेट्स बेस्ट बॉलिंग उनका रहा है 3 for 35 और बेस्ट बॉलिंग इन द मैच है 5 for 33. सो अब्दुल हाफिज करदार साहब इज रियली स्टिल बीइंग रिकॉल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री. तो उनका आखिरी टेस्ट जो है वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के साथ था एंड दैट इज़ वॉट डेब्यू किया था. यू नो अगर देखा जाए डेब्यू की बात करूँ मैं उन्होंने मज़ेदार बात यह है कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया उनका डेब्यू मैच था. बिकॉज उस जमाने में यू नो इंडिया वॉज अ कंट्री आई मीन टोटल यू नो वन कंट्री. सो इंग्लैंड वर्सेज इंडिया के जो मैच के दौरान लॉर्ड्स में हुआ था जून 22 से लेकर 25

1946 में उस मैच में उनका डेब्यू हुआ था और बाद में ही बिकेम अ लेजेंडरी फिगर इन पाकिस्तान क्रिकेट। उनका लास्ट मैच जैसे मैं बताया कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ था एट पोर्ट ऑफ स्पेन 1958। तो 1943 से 44 और 1965 से 1966 इन 20 नो अगर फर्स्ट क्लास के करियर में ही वॉज अ लेजेंडरी फिगर। पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पर है, आज उसकी जो बुनियाद रखी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट, द फाउंडेशन ईयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, अब्दुल हाफिज करदार साहब इज स्टिल बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर दिस कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज आप लोगों से यहाँ से मैं तब इजाजत चाहूंगा इस शो में, लेकिन एक बार थोड़ा सा नजर डाल देते हैं कि यानी अपडेट हज काम और नॉट। हाँ, एक मैच कल हुआ था जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो बड़ा ही मुझे फुटबॉल मैच हुआ था, नॉट फ्रॉम एशियन गेम्स बट फ्रॉम टर्किश लीग। टर्किश लीग में कल एक मैच हुआ था गलातासारे वर्सेस ट्राबंसपोर। एंड ट्राबंसपोर और गलातासारे के मैं आप लोग तो बड़े बड़े क्लब्स को फॉलो करते हैं, लेकिन ये मैच में मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ट्राबंसपोर में मोहम्मद सलाह ने ज्वाइन किया इस सीजन में और गलातासारे इज वन ऑफ द ब्रिलियंट एंड टॉप क्लब्स हैं तुर्की के जो कि यूएफए चैंपियंस लीग में खेलते हैं। लेकिन कल इस मैच में गलातासारे को 4-0 से ट्राबंसपोर ने हराया और उसमें मोहम्मद सलाह ने हैट्रिक की और उस मैच में लिवरपूल के फैंस आए हुए थे इंग्लैंड से सिर्फ एंड सिर्फ मोहम्मद सलाह को देखने के लिए। और नॉट ओनली दैट, जो टॉप डिग्निटरीज हैं तुर्की के, जो टॉप यू नो ऑफिशियल्स हैं, वो भी कल इस मैच में इतना पूरे जोश के साथ देवे मौजूद एट द स्टेडियम जस्ट टू वॉच मोहम्मद सलाह। देखिए बाकी 10 खिलाड़ियों का नाम आप मत पूछिएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मोहम्मद सलाह इज एन आइकॉनिक नेम फ्रॉम इजिप्ट, फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, और इन दिनों तुर्की फुटबॉल में वो छाए हुए हैं मोहम्मद सलाह। एंड वी ऑल होप कि मोहम्मद सलाह की ये परफॉर्मेंसेस हमें भी देखने को मिलेगा कभी ना कभी। तो इसी उम्मीद के साथ लेते हैं इजाजत। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन फ्रॉम द इट्स अ गोल्ड शो। मिलते हैं बहुत जल्द ही आपसे। कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 1:31
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
4: हाँ जी दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। और पूरे दो दिन के बाद आज हम पूरे एक घंटे के लिए वापस से हाजिर हो चुके हैं। हम दो लोग एक घंटा रहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन बिफोर दैट आप हमें बताइए कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं, क्या हाल चाल है आपके और क्या कुछ कुछ खास किया अपने वीकेंड पे। वेल, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर्स हैं 666-22107 या फिर आप हमें कॉल कीजिए, नंबर है 443-443-77।
2: भाई जिस तरीके से नाजिया ने शुरुआत कर दी है नए हफ्ते की, और हमारे लिए तो नया नया अभी शुरू हुआ है, आप लोगों का सुबह से शुरू हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा पहला दिन हफ्ते का, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला ये वाला हफ्ता भी अच्छा गुजरे। नादिया, कैसा रहा आपका वीकेंड?
4: मेरा बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह।
2: कुछ खास खास बात जो शेयर करना चाहती हूँ वीकेंड के हवाले से, कुछ नया हुआ इस वीकेंड पे?
4: हाँ, एक नई चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, बड़ी खुशी मिली मुझे।
2: अच्छा।
4: और वो इसलिए अच्छा लगा कि मैंने कह रहे वाह, किसी का ना होना भी कितनी खुशी दे देता है कई बार।
2: तो मतलब
4: मतलब किसी चीज का ना होने
2: की वजह से।
4: सर्वे मिर्जा, मैंने कोई कहा नहीं, कितने नेगेटिव इंसान है। मैंने कहा काम कोई ऐसा जो आप नहीं कर रहे हैं बट आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब अपनी लेजीनेस को मैं कह रही हूँ, मैंने बहुत एंजॉय किया।
2: अच्छा।
4: दो बड़ा मजा आया। और आज नहीं, पूरा वीक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग वीक भी है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज से लेके 25th ऑफ सितंबर तक इंटरनेशनल वीक ऑफ हैप्पीनेस एट वर्कप्लेस।
2: वाह वाह,
4: क्या बात है भाई। तो बात
2: उम्मीद ये करते हैं कि अल्लाह ताला ये पूरा हफ्ता जो है, और एक बहाना, मतलब बहाना होता है वैसे तो इंसान के अपने अंदर की जो दिल की खिड़की उसको खोलना चाहिए, तो फिर माफियां तलाफियां और इसी के मतलब दूसरी तरफ से भी समझा जाती है ये बात। तो ये पूरा हफ्ता है आप लोगों के पास अपने सही सारे करने।

0: मैंने आपको अब कभी भी आपको परेशान
1: किया, माफी मांग सकते हैं, मैं अभी कभी माफ
0: कर दूं, मैं तैयार हूं बिल्कुल। आपको जब भी मैंने परेशान किया, आपकी गीबत करी है, आपको आपकी कभी भी मैंने टांग पकड़ के खींची है, मुझे अच्छा तो बहुत लगा है एक्चुअली, मजा मुझे बहुत आया उसके अंदर।
1: देखा दोस्तों, देखा आप,
0: मजा मुझे बहुत आया, यकीन नहीं है, मतलब उससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिली होगी, बट फिर भी है कि मैं माफी मांगता हूँ आपसे और उम्मीद करता हूँ कि आप, बड़प्पन आपका ऐसा है कि आप मुझे माफ कर देंगे।
1: सरवर मिर्जा, चलिए आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है और माफी के साथ आज की शुरुआत हुई है।
0: जग, बस जग के सामने माफी मांग रहा हूं।
1: मेरी दुआ है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली माफी मांगने का मौका ना मिले, मतलब आप गीबत बदी से बचे।
0: ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा है वाकई यार। ये तो
1: अच्छा, हमारे साथ कॉलर हाँ जी, नहीं मैं चाहूंगी दिल से कि आपको ये मौके कम मिले जहाँ बार बार आप सबके आगे शर्मिंदा।
0: अच्छा, मतलब माफ तो कर, पिछला तो आज तक का अकाउंट क्लियर है, ये तो करवा दीजिए कम से कम।
1: नहीं, ये तो चलिए आपने माफी मांगी,
0: जग के सामने मैंने माफी मांगी,
1: जग के सामने आपने माफी मांगी और फिर माफी के बाद वापस नहीं करना है।
0: ये भी अहद करता हूँ, मैं तो माफ कर दिया,
1: माफ कर,
0: पिछला माफ हो गया, पकड़ेंगे तो नहीं आप मुझे,
1: माफ नहीं किए उधार वाले,
0: नहीं वो तो चलिए वो इंशाल्लाह ताला जब ऐसा कोई आएगा उसमें माफ करवा लूंगा, काम सारे करवा के जाऊंगा जाने से पहले।
1: अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पे जुड़ गया। हेलो,
2: कोई माफ करे या ना माफ करे, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे।
1: हम तो बिल्कुल माफ नहीं करेंगे।
0: वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अच्छा, नहीं करेंगे, सही है, चलिए ये भी अपनी
2: बहन और सरवर भाई
1: कैसे हैं भाई
2: आप लोग? सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब खैरियत
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: मैंने रेडियो ऑन किया और आप लोगों की ये वो क्या, वो इसको उर्दू में क्या कहते हैं अभी, नोक झोंक क्या बोलते हैं?
0: नहीं नहीं, अभी तो माफी तलाफी चल रही थी खादिम साहब, और कोई तो नोक नहीं, कोई झोंक नहीं अभी तक की,
1: अभी टोक टोक
0: अभी
1: टोक,
0: टोक, तीन चार मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, आप ये नहीं बताया आपने कि आप नाजिया को माफ क्यों नहीं करेंगे?
2: नहीं नहीं, सरवर भाई को, सरवर भाई जनाब, जनाब मोहम्मद सरवर मिर्जा भाई को।
0: अजीब बात भी है यार, इसको लोग माफ नहीं कर रहे, कौन है ये, है कहाँ आजकल?
2: ये एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा बंदा है जो लोगों को हमेशा तंग करके रहता है, हमेशा हमेशा।
0: मैं जानिए, मेरा इसके पीछे कोई ऐसा इरादा नहीं होता, बस मैं मतलब मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है वाली बात।
2: असल में आदत से, आदत है ना, आदत से मजबूर हूँ।
1: वही वही
0: यार, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ और तमाम ऑफिस वालों से जो मुझे अभी नहीं सुन रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं बाद में बात कर लूंगा। बहरहाल माफी तलाफी करते रहना चाहिए। वैसे खादिम
1: सरवर, मैं मुझे क्या लगता है सरवर भाई, एक चीज आप करिए, माफी के साथ साथ लोगों को पैसे दीजिए, फिर आप इंशाल्लाह रिपीट ही नहीं करेंगे गलतियां।
0: मैंने सोचा था शायद माफी मिल जाएगी, अब ये आपने ऐसी बात कह दी,
1: आप जब पैसे,
0: मुझे नहीं लग रहा मैं माफी ले पाऊंगा।
2: चले चले, कोई बात नहीं, अभी ये बताइए कि टॉपिक क्या है।
0: टॉपिक यही है माफ करना सबसे पहले तो, और दूसरा ये बताइए कि आपको अपनी काम की जगह पे सबसे अच्छी और सबसे बेहतर एक, यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई कि हम फ्री बांट रहे हैं कुछ, हाँ। एक चीज आपको लेनी पड़ेगी, हाँ। और वो ये
1: आज हमारे जो सवाल है वो ये है कि हाँ। काम की जगह को खुशगवार बनाने वाली सबसे अहम चीज आपके लिए क्या है?
0: काम मतलब काम,
1: वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम करते हैं, तो क्या आपको सबसे ज्यादा खुशगवार बनाने वाली चीज क्या है? क्या अच्छी सैलरी, क्या आपके अच्छे बॉस, या फिर अच्छे आपके कलीग्स?
0: मुझे तो यही लगती है यार, मुझे तो,
1: आप बताइए सबसे ज्यादा खुशगवार।
2: मैं सबसे ज्यादा खुशगवार जो सबसे ज्यादा अच्छे कुलीग होते हैं,
0: वाह,
2: उसके बाद अच्छे बॉस मेरे लिए।
1: अच्छा,
0: मतलब ये तीनों अच्छा डिफाइन कर रहे हैं,
2: और उसके बाद जो है सैलरी है,
0: आखिर में रखी तनख्वाह।
1: अरे इन्होंने आखिर में रखी,
2: इसलिए
1: सर्वर भाई आपने सबसे पहले
2: अच्छे हो, कुलीग अच्छे हो
1: तो अपनी भी दे देते हैं,
2: बॉस जो है वो बॉस भी आपके साथ अच्छे रहेंगे।
0: नहीं, कोई अपने पैसे नहीं देता नाजिया,
1: यही मैंने कहा कि अपने पैसे भी दे देते हैं, कि अपनी सैलरी भी दे देते हैं।
2: सरवर भाई हर वक्त खाने और पैसे की बात नहीं करो।
0: अच्छा अच्छा,
2: हर वक्त
0: नाजिया हद हो गई सैलरी की, कोई बात करता है काम की जगह पे, कोई सैलरी मांगता है तुम्हें मिली है? मतलब मिल तो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्लाह का शुक्र है,
1: अल्लाह का शुक्र
2: है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है सरवर भाई, कभी कभी आपके साथ भी ऐसे हंसी मजाक होती है ना,
0: मजाक भी ऐसे ही कुछ वो कहना। चलिए साहब भाई,
1: आपने बहुत ही अच्छी बात की, और हमें
0: हफ्ते की शुरुआत इतनी शानदार कॉल के साथ हुई, इतनी हाँ। अच्छी बातों

0: वही उम्मीद करते हैं कि वाकई
1: ये हम सेलिब्रेट
0: कर पाएंगे नाजिया। देखो पूरे हफ्ते नाजिया मेरे को परेशान नहीं करना मुझे,
1: यही मेरा भी कहना है।
2: मैं नाजिया बहन से पूछूं कि नाजिया बहन आपके ख्याल में क्या है?
1: मेरे भी ख्याल में अच्छे कलीग्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए ही चाहिए ऑफिस में ना। अब सर्वर भाई जैसे लोग हो,
0: प्लीज प्लीज
1: क्या
0: मतलब मेरे जैसे आपको 5 आइटम मिल जाए ऑफिस में
1: तो और मैं तो रिजाइन करके
0: निकल जाऊं, आपकी तनख्वाह 5 गुड़ी बना दी जाए तो आप मुझे बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगी?
1: सर्वर साहब मुझे पत्थर भी लाना पड़ेगा साथ, दिल पे रखूंगी।
2: सर्वर भाई मैं इधर एक, अगर आपके जैसे 5 और मिले FM 107 को, आप यकीन करें कि इधर आसपास में जितने लोग रहते हैं
1: वो
2: नहीं एयर प्लग लगा देंगे,
0: अरे भाई इतनी तारीफ है बस अल्लाह ताला कभी गुरूर ना करवाए।
2: सर्वर भाई ये तो ऐसे मजाक में हमने बोला, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए।
0: सेम हेयर खादिम भाई, सेम हेयर, और इसी लाइटर नोट के साथ।
1: बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और आप आते हैं जुड़ते हैं वो बहुत बड़ी बात है।
2: और सर्वर भाई यकीन करें आप इतने प्यारे हो, इतना प्यार बांटते हैं आप।
1: अच्छा।
2: नहीं मैं बात मेरी नाजिया बहन।
1: अच्छा, मैंने कहा बात मेरी बात कंप्लीट। हां से प्यार
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं, मतलब ये कि बहुत अच्छे हैं,
0: बहुत अच्छे हैं भाई, मान लो यार बहुत अच्छे हैं। कॉल लंबी हो रही है,
1: पैसे लगे,
0: बेचारों के पैसे लग रहे हैं।
2: ओके नहीं पैसों की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना ले पैसों
1: के मामले में है।
0: ऑलराइट खादिम भाई, थैंक यू सो मच,
1: एंड पूरे
0: ही हफ्ते में साथ वालों को बिल्कुल माफ करते रहिए। सेम हियर, थैंक यू सो मच। तो भैया ये थे खादिम भाई हमारे साथ, और जैसे कि नाजिया ने बताया और अब आप लोगों को भी पता चल गया कि पूरा हफ्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। क्या क्या क्या
1: इंटरनेशनल वीक ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस।
0: हाँ, सुनने में कितना देखिए मीठा लग रहा है, मुझे मालूम है कि मीठा
1: नहीं
0: होता नहीं है, सुनने में तो लग रहा है। देखिए सुनने में तो
1: वर्क प्लेस पे अगर खुशी आपको मिल रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपके अच्छे कलीग्स हैं, आपके जो बॉस हैं वो बहुत हम्बल और काइंड हैं, और सैलरी भी ठीक ठाक डिसेंट है, ओहो ये तो एकदम परफेक्ट मतलब वाली आपकी ड्रीम जॉब हो गई।
0: राजा जी गाना चला दूं, दिल कर रहा मैं। और ये क्या है भाई, सलाम सरो भाई या नादिया बहन,
1: वालेकुम सलाम, ऐसा डर क्यों है?
0: मैं हूँ या ये मेरे जैसे दिख रहे हैं
1: या आप ही लग रहे हैं सरो भाई?
0: पटानी वटानी पहना के भाई मुझे एकदम
1: 80s में ले गए।
0: अरमान मलिक, अरमान यार ये क्या आप हैं या ये मैं हूँ
1: भाई? आप हाँ दो या अपनी शक्ल भी अपनी
0: नहीं, AI का लग रहा है मामला इसके अंदर मुझे नहीं, मगर आप देखिए ना इसको करीब से।
1: अरे आप ही हैं
0: हाँ यार, मतलब मैं इतना खूबसूरत कैसे हो सकता हूँ?
1: चलिए कभी तो सच्चाई निकली आपके मुंह से। कुछ आई थिंक मैसेजेस भी हमारे पास, तो अच्छा, वो ले लेते हैं।
0: बिल्कुल, हम मैसेज के ऊपर ही थे, और अरमान भाई ने यहाँ पर मेरी फोटो भेजी है या अपनी फोटो भेजी है, लग बड़े प्यारे रहे हैं।
1: और अरमान भाई हैं
0: तो, और अगर मैं हूँ तो मैं तो खैर प्यारा हुई तो आपको मालूम है, राज दुलारा हुई हूँ। खादिम भाई हैं यहाँ पर, और एक वीडियो

0: आमिर जफर साहब कह रहे हैं ये बात। जफर भाई यार मेरी तारीफ तो बनती बनती है, खैर अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, मगर आपने ये दोनों को उसके अंदर आप समझ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सरवर जी,
1: अभी कहा कि माहौल बेहतर
0: मोहतरम हमारे सुन तो लो यार, मुझे किस नाम से सरवर जी मोहतरम, बस यहीं तक है ये मैसेज, इसके आगे है ही नहीं एक्चुअली।
1: फिर पढ़ लीजिए, सरवर जी का मोहतरम दोनों साथ में कम ही देखे आपने।
0: कहते भाई सिटी सेंटर के आसपास घूम रहे हैं, मैं रोड में सर डबल इंडिकेटर लगाए हुए कभी इधर जा रहा हूँ स्लो स्लो, कभी उधर जा रहा हूँ, सारा ट्रैफिक जाम क्यों हुआ है, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे
1: हैं?
0: और सर माफ करना गलती है, बस छोड़ देना सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप जिसको माफ करोगे वो गलती वो दोबारा भी करेगा सर, तो इसकी वजह से छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, अरबाज खान तजाक है हमारे साथ, सलमान खान के छोटे भाई अरबाज भाई, मैं बताऊंगा क्या कहना चाहते हैं अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
2: हेलो
1: हाय गुड आफ्टरनून।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है हमारे साथ?
2: हानिया।
1: हानिया कैसी हैं हानिया आप?
2: I'm fine. How are you?
1: We are good. Alhamdulillah. आज हम बात कर रहे हैं कि वर्कप्लेस पर सबसे ज्यादा आपको जो चीज एक्साइट करती है या जो आपके मूड को सेट कर देती है वो क्या है? क्या अच्छी सैलरी है, अच्छे बॉस हैं या फिर अच्छे कलीग्स हैं?
0: Hania, do you speak Urdu, Hindi or something?
1: I think she do.
0: Hania?
2: Yes.
0: Do you speak Urdu? Can you speak Urdu?
2: Yeah, I can.
0: Okay.
1: Well, let her reply in English.
0: हाँ, it's fine. आप जवाब दे सकती हैं।
2: But the thing is, I don't have a job.
0: हाँ, तो पढ़ती हैं मुझे लगता है।
1: ये तो पढ़ती हैं। Okay, that way. तो फिर क्या पूछना चाहिए इनसे?
0: खैरियत पूछे तो पहले।
1: पहले।
0: Hania, how are you today? Okay, तो आप हमें सुनती हैं? Do you listen this program or any other program? I mean, in FM 107.
2: When I'm coming from school to home.
0: Alright, so you are calling for the first time or आपने पहले भी call किया है?
2: This is my second or third time.
0: Okay, तो पहले किससे बात हुई थी आपकी? नाजिया मैम से?
2: What?
0: पहले आपने call किया था, first time when you called, किससे आपकी बात हुई? नाजिया से? कुछ और भी कहना चाहती है? Is there any question or something? Hania?
2: Yes.
0: Okay, go ahead.
2: A question for you guys.
1: Sir, what are you?
0: Is there any? अपने आप से नहीं, कुछ बनाना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है. And it's fine. चलिए ना, Hania ने ऐसे प्यार मोहब्बत में कॉल कर दिया.
1: Okay, let's ask this thing, Hania. What is happiness to you?
0: Baba.
1: Your parents, your family, or is there any other thing?
2: Can you repeat the question again?
1: The question is, what is happiness to you?
2: Oh, happiness is family.
1: Oh, nice. This is a beautiful answer. Beautiful, beautiful. Mashallah. God bless you. Thank you so much for your call. Have a fantastic evening. Thank you once again. Take care. Bye. And lots of love
0: Hania,
1: to your family as well.
0: Bye. Ye naam mere dil ke bahut zyada kareeb hai.
1: And we know that.
0: ऑलराइट, तो नाजिया क्या कहती हैं? ब्रेक ले लिया जाए, पहला नगमा सुन लिया जाए या फिर मैसेज लिया जाए या फिर कॉल ली जाए? क्या
1: मैसेज ले लीजिए?
0: पूरा हफ्ता मैं ऐसी गुलामी करूंगा आपकी कि मैं बता नहीं सकता, आप जो कहेंगे।
1: सर भाई, उसके बाद भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं माफ नहीं करूंगी पैसे अपने।
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: मत बोलिए।
0: अच्छा नहीं बोल रहे तो इधर आ जाते हैं वापस। तो भाई ये कहना चाहते हैं अपने अरबाज भाई के माफ कर देना बेहतर है, हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे थे अरबाज भाई, हम एक्चुअली बात कर रहे थे।
1: अच्छा अरबाज, एक बात बताइए, अगर कोई आपसे पैसे उधार ठीक ठाक लेके चला गया हो उसको भी आप माफ कर देंगे?
0: I don't know.
1: मतलब पैसे माफ कर देंगे?
0: इफ किसी ने गौर किया है या नहीं इस बात पे कि ये सरवर भाई हूँ भाऊ उबैद ताहिर भाई की तरह साउंड करते हैं, यार ये तो मुझे बहुत लोगों ने कहा एक्चुअली. ओके आई एम सॉरी मैम, ये मुझे बहुत लोगों ने कहा एक्चुअली. और पहले तो बहुत लोगों ने कहा है.
1: सर्वर में कहिएगा मैं तो बताइए सर को.
0: जहां बिंत मोहम्मद शफीई हमारे साथ हैं और ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मेरे उस्ताद से मेरी आवाज़.

0: आवाज मिलती है, और अगर कोई उनको एक पैगाम पहुंचाना चाहता है तो पैगाम पहुंचा के झट से भाग लेगा, क्योंकि उनका रिप्लाई मत सुनिएगा उसके बाद कि वो कह क्या रहे हैं। उमेद भाई उसके बाद क्या कहते हैं कोई मत सुने, पक्का मत करिए और वहां से निकल लिए, कही जरूर नहीं है कहा है। ओके तो मुमताज हमारे साथ है, कहते हैं सलाम अलैकुम सर भाई, नाजिया मैम कैसे हैं आप दोनों, गुड आफ्टरनून। सबसे ज्यादा खुशगवार फर्स्ट सैलरी अच्छी होनी चाहिए, बाद में बॉस या इंजीनियर हो और मैं अच्छा बना लूंगा।
1: ओह मैं खुद अच्छा कलीग बन जाऊंगा।
0: वाह, या बॉस को भी अच्छा बना लूंगा, इतनी मोहब्बत है भाई के पास।
1: क्या बात है भाई,
0: मैं नहीं बोला ही देखो
1: नसीम भाई।
0: सरवर एंड नाजिया अस्सलाम वालेकुम, तौफीक अलवाकरा से, खादिम भाई का नंबर प्लीज।
1: अच्छा पहले ये तो बताइए, आप सब मिलने वाले थे ना वीकेंड पे, आप लोगों ने प्लान किया था, मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइक तौफीक जी ने ही सबको इनवाइट किया था।
0: हाँ कुछ चल रहा था,
1: तो था ना?
0: और मुझे
1: कैसा रहा आप लोगों का,
0: मैं भी जाना चाहता था बट अगर मैं होता
1: अगर इनविटेशन आता तो
0: अरे ये बात कोई कर ही नहीं रहा ना, बताओ मत ना पब्लिक को। अच्छा? अपनी बात आदमी कहते हैं कि भाई मैं होता तो काश मैं भी आप लोगों को।
1: नहीं तो आप कहाँ चले गए थे?
0: FM 107 में एक ही तो काम का बंदा है और वो है सरवर भाई। यार कम ऑन भाई, बंद करो भाई, शटर डालो, दुकान बंद करो। कौन है ये, नाम बताओ इनका पहले तो। मोहम्मद भाई पूरा नाम लिखते हैं।
1: मोहम्मद जी कितने लोग बैठे हैं जो
0: काम
1: कर रहे हैं
0: आगे नहीं सुनना ना, जैसे उबैद भाई का मैंने बताया ऐसे आपको इसके आगे नहीं सुनना है। आप हैं सरवर भाई, यार दिस इज मी। नाजिया देखिए कितना खूबसूरत लग रहा हूँ मैं, चलना मत यार,
1: तो
0: माशाल्लाह को जल्दी से
1: लग नहीं रहे आप लेकिन चलिए हैं आप।
0: MBB है हमारे साथ, खूब सारे वॉइस नोट, खूब सारे स्टीकर, अजीब से स्टीकर हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं, फनी है।
1: आपके लिए
0: कहाँ से शुरू करूँ MBB, ये मैसेज आपका मैं
1: कहाँ तमाम करूँ।
0: हाँ वाकई यार, बट थैंक यू सो मच कि MBB आप साथ हैं और इतने प्यारे मैसेज, इतनी प्यारी बातें आपकी। नाजिया बहुत सारे मैसेज हैं, हम इंशाल्लाह ताला जरूर
1: लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार रिपीट कर दीजिए आज का हमारा जो टॉपिक है।
0: बिल्कुल रिपीट कर देते हैं भाई, क्या बात है नाजिया जी की।
1: अरे पहले बता दो दीजिए,
0: तारीफ आपकी कर रहा हूँ यार, अभी मैं फिर बिगड़ जाऊंगा। तो भाई कहना यह है कि ये हफ्ता
1: झूठी अच्छी नहीं लग रही थी आपको,
0: पूरा हफ्ता चल रहा है कि आप अपने कलीग्स को माफ करें, उनको प्रेस करें, उनकी बातें सुने, उनकी बातें दूसरों तक अच्छी पहुंचाएं,
1: दरगुजर करें
0: और खुद भी खुश
1: जो है वो चुकता करें।
0: ये क्योंकि हफ्ता चल रहा है तो इसी हवाले से हमने कहा हफ्ते की शुरुआत इसी बात से कर देते हैं कि आप के ऑफिस में आपके लिए सबसे ज्यादा खुशगवार माहौल कौन सी चीज बनाती है, क्या वो आपकी तनख्वाह है, क्या वो आपका बॉस है या वो सरवर मिर्ज़ा है। एंजॉय कीजिए ये गाना, क्या बात है 2.0 हाली और निखिल।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी, वेलकम बैक एलन वर्स एलन, खुश आमदीद, स्वागत है। एंड भैया, यहाँ पर अभी मैंने और नाजिया ने कुछ ऐसा देख लिया कि वही हमारा दिल जो है खुश हो गया। और वो ये कि हमें शहजादा सलीम साहब ने एक वीडियो भेजा, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि हम देख लेंगे, हमने कोशिश करी कि देख लिया जाए।
2: हाँ जी।
1: क्योंकि उस पे और भी कुछ सवाल आए, वो क्या मैं आपको बताता हूँ अभी। और उसमें हमने चार पांच चेहरे अभी तक देखे हैं नाजिया,
2: जिनसे हम बात करते हैं, हमारे
1: मीट्स ही यार, क्या बात है, फैमिली यार।
2: और जितने ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई कैसे टीम को हम जाने, हमें भी इतनी होती है, जो हमारे बहुत ही कंसिस्टेंट लॉयल लिसनर्स हैं, हम चाहते हैं कि हम उन्हें देखें पहचाने। तो आज हमें पहली बार मौका मिला है
1: यार, यूसुफ भाई को देखा मैंने।
2: अच्छा, ये इस तरह से दिखते हूं, दिख रहे हैं
1: यूसुफ भाई को तो देखा तो ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये तो कोई पॉलिटिशियन है भाई,
2: हमारे दिमाग में कुछ और ही पिक्चर बनी हुई थी। आई डोंट नो, मतलब अपने आप सबके जहन में एक पिक्चर बन जाती है। चलिए खैर, उस पे अभी और हम फर्दर डिस्कशन
1: करेंगे, क्योंकि अभी हम पूरा भी देखेंगे। हमारे साथ कोई कनेक्टेड है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी कौन है हमारे साथ?
3: आसिफ अंसारी।
1: आसिफ भाई, अहलन वसहलन, कैसे हैं आसिफ भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: कैसा रहा वीकेंड?
3: आराम से
1: अच्छा आराम से अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको आराम जो है और ज्यादा दे, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी नेमत है कि आराम से गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है, वरना लोगों का तो भागा दौड़ी में भी गुजरा। तो आसिफ भाई, क्या कहते हैं, क्या चीज ऐसी है जो आपको लुभाती है वर्क प्लेस पे? वो क्या पैसे हैं, ज्यादा तनख्वाह है, या मेरे जैसे अच्छे अच्छे कलीग्स हैं, या तीसरा ऑप्शन? वो तो कह रहे हैं सुनना ही नहीं,
2: या अच्छे बॉस।
3: तीसरा ऑप्शन बॉस, बॉस तो एक सिंगल पर्सन है, लेकिन कलीग जब साथ में होते हैं ना तो ज्यादा अच्छा दिन गुजरता है।
2: जहर भी अच्छे से भर देते हैं
1: आप। ये मैं दो लोगों से घिरा रहता हूँ दिन भर में, एक मुझे सुबह मिलता है, मिलते हैं, जरा खुलूस से बात करूंगा मैं ताकि एक हफ्ता भी जरा अच्छा गुजर जाए। तो आरजे कबीर साहब सुबह मुझे मिलते हैं, फिर आरजे नाजिया मैम हमारी उस्तानी, हमारी सीनियर, हमारे साथ। तो ये जो सुबह के 15-20 मिनट उनसे मेरी मुलाकात होती, जाते सलाम दुआ वक्त, वो इतनी भारी पड़ जाती मुझे। फिर ये
2: भारी तो आते,
1: एक घंटा ये मुझे भारी पड़ जाता है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं आसिफ भाई कि अच्छे कलीग जो हैं आपका दिन अच्छा?
2: अरे भाई, उनके अच्छे कलीग हैं, आपको क्यों काम है?
3: मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अच्छे कलीग होंगे तो अच्छे दिन, अच्छा टाइम पास होगा,
1: अच्छे दिन गुजर जाएंगे।
3: आप अपने लोगों के लिए गलत बोलो।
2: आपने आसिफ जी, आपने बिल्कुल सही समझा। देखिए जैसे ये खुद है ना, वैसे ही इनको सब नजर आते हैं। हम ये देखिए कितनी बुराई कर रहे हैं, दो तो इन्होंने लपेट लिए बैठे बैठे सुबह और शाम तक।
3: आपका एक प्रोग्राम शायद इस्लाम है नूर, क्या है वो भी प्रोग्राम?
1: जी जी, मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि क्यों हंस रही है यार।
3: फ्राइडे को शायद रेडियो ऑन किया तो
1: बिल्कुल
3: आपका नाम आया था, या क्या था
1: नाम आया था? तो फिर तो कुछ और मसला होगा अगर
2: आपकी गवाही ली गई
1: है। हाँ, मतलब उस प्रोग्राम में मेरा नाम आ रहा है तो किस वजह से आ सकता है? तो तला कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा होगा मेरे ख्याल में।
3: ओह माय गॉड
1: यार, ये कौन सा हफ्ता गुजर रहा है मेरे साथ, मेरे कलीग ही। ओह माय गॉड,
2: आपकी बेहतरी के लिए जो है ना वो काम कर रहे हैं।
1: उस प्रोग्राम में आपको फुरकान मिलेंगे, नफीस मिलेंगे, तलहा शरफ जमान मिलेंगे, सैफ और रहमान
2: से भी नहीं मिलेंगे,
1: साफ के सैफ और रहमान साहब के बाद उन लोगों ने वो दौर बाग जो है वो संभाली है। हाँ, वैसे अल्लाह का शुक्र है, मैं आप मुझे रमजान में भी देख सकते हैं, आप मुझे मतलब सुन सकते हैं, आप मुझे दूसरे जो पाक दिन है उनमें भी सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
3: मतलब तो जितने डेंजर प्रोग्राम है उसमें आप दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। उछल पान करने वाले।
1: आसिफ भाई मोहब्बत है आपकी, तो आसिफ भाई का कहना ये है कि भाई
2: अच्छे कलीग्स।
1: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, सारे प्रोग्राम सुनते रहिए, इंशाल्लाह ताला वक्त निकाल के अल्लाह ताला आपका दिन अच्छा गुजारे। थैंक यू सो मच।
2: अल्लाह हाफिज़। ओके, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बात कर लेते हैं, और एक मैसेज उसके बाद उनसे बात भी कर लेते हैं। ये मैसेज, ये वीडियो जो है हम जरूर देखेंगे। यहाँ पर कहते हैं, सलाम 107 की शान है सर।

0: आप और नाजिया मेरी बात हो रही है, ये जो मैडम आपके साथ हैं उनके बगैर आप रन कर गए प्रोग्राम, रहने बात टॉपिक की, अच्छा बॉस हो ना अच्छा बॉक्स चाहिए। मैंने गलत पढ़ दिया कुछ लग रहा है मुझे।
1: इसमें आपकी तारीफ ज्यादा थी, आप कम पढ़ गए। चलिए फिर से पढ़िएगा,
0: ऐसा लग रहा है
1: ज्यादा तारीफ।
0: मैंने तारीफ मेरी ये गलत तो नहीं कर दी?
1: नहीं आपकी ज्यादा थी, आप थोड़ा कम पढ़ गए मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक और कॉलर है।
0: हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम
1: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: अरे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। आप कैसे हैं भाई जान?
1: ये तो जैस जी लग रहे हैं।
2: भाई बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सब।
0: क्या बात है भाई जैस भाई की, अच्छा गुजरा वीकेंड लग रहा है? आवाज तो बड़ी खनकती हुई निकल रही है जैस भाई।
2: ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अपना तो हर दिन बढ़िया ही गुजरते हैं, और वैसे भी आज मेरी बेटी का बर्थडे है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह,
0: हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। क्या नाम है उनका?
2: मिरहा खान।
0: नाजिया
1: सॉरी फिर से बताइए। सॉरी
2: मिरहा खान।
1: क्या बात है भाई, बहुत बहुत हम दोनों की तरफ से ढेरों मुबारकबाद उन्हें। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, कामयाब करे, और आपको हमेशा मौका मिले कि आप अपनी बेटी पर प्राउड फील करें इंशाल्लाह।
0: क्या आपने जबरदस्त बात कही है।
2: बहुत शुक्रिया।
0: तो आज कितने साल की हो गई मिरहा, बताया आपने ना?
2: जी आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई,
0: अगर हम जान सके,
2: 2 साल की हो गई।
0: छोटू है?
1: छोटी सी है माशाल्लाह
0: माशाल्लाह।
1: सो ये आपका फर्स्ट बेबी है? शी इज योर फर्स्ट चाइल्ड?
2: जी जी जी।
1: अच्छा अच्छा
0: माशाल्लाह। 2 साल तो आज तो सेलिब्रेशन होगा भाई, मुझे ऐसा लगता है आज तो
1: होना चाहिए। आज तो होना चाहिए
2: भाई, चल रहा है सेलिब्रेशन, चल रहा है।
1: ओह
0: वाह, और हम नहीं है उसमें,
1: तभी तो हो रहा है सेलिब्रेशन।
0: ये कैसा सेलिब्रेशन है जैस भाई?
1: आप नहीं है तभी तो सेलिब्रेशन हो रहा है।
0: अच्छा इससे ही हो रहा है?
2: नहीं नहीं, अरे क्या बात, वो देखो
1: सर्वर भाई क्यों नहीं है?
0: अरे आपको परेशान कर रहे हैं जैस भाई, वैसे यार अल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे।
1: वो कह रहे हैं आप तैयारी कर लीजिए, मैं आ जाऊं उधर।
0: अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और अल्लाह ताला आपकी बिल्कुल आग की ठंडक बनाए, और इसी तरीके से आप ये दिन जो है बार बार इंशाल्लाह ताला साथ खरीद देखते रहें। तो जैस भाई क्या कहते हैं, वर्क प्लेस की अगर बात करें, काम करने की जगह पे, वो कौन सी चीज है जो आपको घेरे रखती है, आपका दिल लगाए रखती है? क्या वो आपके दोस्त हैं? क्या वो आपका बड़ा अमाउंट है सैलरी का, या वो आपके बॉस है?
2: नहीं बॉस
0: नहीं, बॉस
2: बॉस है मेरे लिए,
1: अच्छे बॉस।
0: ओके
1: अच्छा, क्या फायदा होगा आपको, आपके बॉस अच्छे होंगे तो क्या क्या फायदा
0: या हो सकता है? एक्चुअली हो नहीं है,
2: 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल होने वाले हैं मुझे, अभी हाल फिलहाल में 3 साल हो जाएंगे, और 3 साल में ना मुझे अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी है ना, अगर उनसे मैंने कहा है तो मिनट से पहले वो चीज हाजिर हुई है, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करा।
1: कौन सी कंपनी है ऐसी?
0: नाजिया का तो आया है निकल गया, कौन सी कंपनी है भैया?
2: घर में काम करता हूँ ना मैं।
1: अच्छा अच्छा, देखा घर में है।
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। चलिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, और जाहिर बात है सभी के बहुत अच्छे होते हैं जी
2: भाई। कसम से जितना है ना, जितना भी उनके लिए बोलू ना, कम ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज तक कभी किसी चीज की परेशानी नहीं हुई है
0: माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको खुश रखे भाई।
2: कभी अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी ना, खाली अगर मैंने मजाक में कहा होगा ना, उन्होंने सीरियसली करके दिया है।
0: वाह क्या बात है भाई, ये देखिए इसी तरीके से पूरी टीम जो है वो खुश रहती है, और उसको लीड भी किया जाता है, एक अच्छा एग्जांपल भी है। अल्लाह ताला खुश रखे उनको भी और आपको भी जैस भाई, और आपके लिए तो माशाल्लाह खूब सारी दुआएं और खूब सारी खुशियां भी आपके इर्द गिर्द हैं, अल्लाह ताला नजर से बचाए और इसी तरीके से आप खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई।
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे जैस भाई, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यूं गए दोनों और यूं वापस आए। सुनते रहिए क्या, ये देखिए मैं अभी बता रहा हूँ क्या सुनना है आपको।

0: बहुत लंबा मैसेज भेजा है, कौन है, पूरा लेटर लिखा है यूसुफ भाई है, और यहाँ पर खूब सारे फोटोज शेयर करें यूसुफ भाई ने एक्चुअली। ये मैं पढ़ता हूँ यूसुफ भाई, जैसे अपने यूसुफ भाई हमारे बॉलीवुड वाले, या आप फोटो तो देख ही लीजिए मैसेज उनका इंशाल्लाह,
1: ये तो वो
0: बहुत ही ज्यादा लंबा है।
1: अरे वो तो मैं लग रही हूँ ऊपर कहीं,
0: आप ही हैं, खुदा ना खास्ता आप ही हैं शायद वर्ल्ड कप के दौरान का होगा, महविश है, महविश है।
1: अरे मुझे याद है, दरबल साई ये हम गए थे,
0: ओके,
1: ये मैं और महविश गए थे बहुत।
0: यार यूसुफ भाई आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, बॉलीवुड से आपका पुराना नाता लग रहा है, वो खिलाड़ी ना आखिर में चचा नहीं निकले थे मर्डर करने वाले, मतलब हैंडसम मैन मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एकदम आखिर में कहता चचा तुम बड़ा वाला डब्लू। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। नहीं भाई कर लो बात, हम तो वेटिंग कर रहे हैं।
0: अना आसिफ
1: खाने बाद आसिफ
0: यार, खाने के बाद तो वैसे भी कोई सॉरी नहीं कहता। आसिफ भाई क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई हम लोग बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे और फ्राइडे सैटरडे भी अच्छा गुजरा होगा आपका। मशगूल होंगे आप, मुझे एहसास है इस बात का, मगर वो जो मशगूलियत है एक फैमिली के साथ, एक काम के साथ, एक अपनों के साथ, वो अच्छा वक्त गुजर ही रहा होगा, उम्मीद ये करता हूँ। आसिफ भाई ऐसा ही है?
2: जी बिल्कुल मजे में गुजर रहा है
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। तो क्या कहते हैं आसिफ भाई, आपके साथ में भी जिम्मेदार लोग होंगे, शख्सियत होंगी, जो आपका नेचर है काम का उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ, आपके साथ के भी लोग, जैसे आप गालबन ड्राइविंग की खिदमत अंजाम देते हैं, फिर इसी तरीके से और भी लोग साथ में होंगे, तो उनका साथ आपके लिए विकास है, या फिर जो आपके बॉस हैं वो, या फिर तीसरी चीज क्या रखी थी हमने, तो भूल भी गया, अच्छा तनख्वाह भूल जाता
1: है,
0: तो या फिर पैसा, मनी क्या चीज ऐसी है जो आपको
1: वैसे आपने बहुत ऑनेस्ट जवाब दिया, देखो सारा मोटिवेशन आता तो वहीं से, सैलरी ठीक ठाक है तो आप थोड़ी बहुत डांट भी खाने के लिए तैयार हैं, कलीग्स लगे मिले ना मिले,
0: चलो क्या बात कही है, देखिए भाई क्या बात कही।
1: हाँ जी हाँ जी जी जी,
2: मुंबई में एक कहावत है, पैसा है तो तू कैसा है,
0: वाह अच्छा पॉइंट मिला। चलिए यार आसिफ भाई, और जैसा कि आसिफ भाई की बातें होते हैं हंसमुख है माशाल्लाह से, और
1: बहुत ही सच्चा, जरूरी नहीं काबा जी के बाद इनका भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही रहती है।
0: देखिए जरूरी नहीं कि हर शख्स ये ढूंढे कि मुझे कौन हंसाए, कोई हंसाने वाला होना चाहिए, कोई
1: रुलाने वाला होना चाहिए,
0: जिम्मेदारी उठाने वाला भी।
2: तुम तो भाई बात बात में शायरी मार रहे हो, फेंक फेंक के दम जोर जोर से
0: गिर जा रही, लग नहीं रही किसी के भी, मार तो जोर से रहा हूँ,
1: घायल में बैठी तो हूँ और कितना चुटियल
0: घायल हो जाती मेरी शायरी से, तो बात ही क्या थी,
1: मैं चुटियल बैठी हूँ।
0: चलिए साहब आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू
1: सो मच आपकी आमद।
0: और अभी क्या कहती है नादिया, वेदर का हाल अहवाल तो भाई जान लें एटलीस्ट क्या हो रहा है।
3: वेदर का हाल 107 दिनाल।
0: भाई वेदर खूबसूरत हो रखा है, मुझे तो हवाएं दिख रही हैं चलती हुई बेहतरीन, और उसमें ये कि अब मौसम जो है और भी ज्यादा बेहतर होता चला जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: और अगर आज बात करें तो 39 डिग्री इस वक्त दिख रहा है,
1: बट यू विल फील लाइक 49। और मिनिमम आज का
0: लंबा वाला एक साथ अब अच्छा
1: और मिनिमम 31 है, तो बस ये आज है गर्मी, लेकिन अब इंशाल्लाह धीरे धीरे वेंसडे जो है वो काफी अच्छा मौसम है, थर्सडे बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
0: क्या बात है,
1: तो देखिए बस धीरे धीरे बेहतर
0: इंशाल्लाह। हवाएं जो इस वक्त हैं वो 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हैं, तो हवाएं जो चल रही है ना उस वजह से एहसास जो है गर्मी का ज्यादा नहीं हो रहा है।
1: 43%
0: वाह, इनको मैंने जोड़ लिया जल्द से जल्द, मैंने कहा ऐसा ना हो अल्लाह हाफिज कर जाए, क्योंकि अभी टाइम कम है।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: और भाई और नाजिया जी कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन है हमारे साथ?
2: जी अशफाक बात कर रहा हूँ जी।
0: अशफाक भाई अहलन व सहलन,
1: कैसे हैं आप, खैरियत से?
0: कैसा गुजरा आपका वीकेंड?
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजरा भाई
0: माशाल्लाह। क्या नहीं ताजे है, कुछ खास हुआ इस वीकेंड जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं?
2: कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं।
1: अच्छा
0: तो कुछ खास करा करो ना वीकेंड में, मुझे बुलाया करो ना अशफाक भाई, ताकि कुछ खास हो लाइफ में, कुछ अलग हो, क्यों नहीं बुला रहे?
2: अगर हम बुलाएंगे कौन सा आएंगे भाई?
0: अरे नहीं यार ऐसे आप बुलाते, अरे इस हाउस में ना आप बुला पा रहे ना,

0: आप आ रहा हूँ, बिरयानी वही की वही है।
1: चले कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट वीक आए ना,
0: है
1: 7:30 बजे का टाइम है।
0: पिकअप ड्रॉप सर्विस भी देते हैं आप?
2: सुबह के 7:30 का टाइम
1: है जी,
0: पिकअप ड्रॉप सर्विस भी देते हैं?
1: हाँ दोस्त देंगे भाई, देंगे।
2: कह रहे हैं मैं क्रेन लेके आऊंगा, डोंट वरी।
0: अरे मेरे भाई को बस ऐसी हंसता हुआ देखना चाह रहा था मैं, अशफाक भाई को, हसमुख भाई हमारे। तो क्या कहते हैं अशफाक भाई, काम करने की जो जगह है वहाँ पर कैसा माहौल बनाना पसंद है आपको, या कैसा माहौल बने रहे ये पसंद है?
2: अच्छा अशफाक जी, एक चीज मैं और ऐड करूंगी, अभी अभी मैं देख रही थी कि अमेरिकन्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपने पेट्स को साथ में लेकर आए, कैट डॉग जो भी है, और उसके बदले उन्होंने बकायदा इस पोल में ये कहा भी कि हम चाहेंगे कि हमारी सैलरी थोड़ी सी कम कर ली जाए, लेकिन हमें इजाजत दी जाए कि हम अपने पेट्स को लेकर आएं।
0: पहले मैं कहूंगा मुझे जरूरत ही नहीं महसूस होती। लादिया आप साथ में हो तो किसी और, मैंने खुदा ना खासा मैं वो बात नहीं कह रहा, वैसा मैं ये कह रहा हूँ कि
2: आपका साथी,
0: सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ किसी और चीज की जरूरत महसूस होगी क्यों, जब दिल लगा रहेगा दोस्त अहबाब के साथ में ही तो क्यों जरूरत महसूस होगी। तो बहरहाल अशफाक भाई क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से,
1: भाई
0: पेट्स की बात हो रही है,
1: सब कह रहे थे पेट्स की बात,
0: ये तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था,
2: ये तो अभी आ गया
0: मगर खुल गया है तो मुझे बहुत याद आ गए लोग। जी
1: नहीं, मैं पहले सवाल का पहले जवाब देता हूँ जो पहले आपने किया, लेकिन सब कह रहे थे कि हाँ जो ना वो एक दो भाई ने कहा कि भाई जो ना वो पैसा ना, पैसे का क्या है, आता जाता रहता है,
2: क्या है बताओ,
0: लेकिन क्या है पैसे का, कौन है पैसा,
1: आता जाता रहता है
0: पैसा,
1: लेकिन फिर भी मैं पैसा ही चुनूंगा।
0: बड़ा अफसोस हुआ, बेहद अफसोस के साथ ये सुनना पड़ा। बहरहाल चलिए,
2: कितना अच्छा बोला अशफाक जी आपने, जबरदस्त बोला,
0: पैसा ही चुनेगा मेरा भाई आखिर में, कौन है पैसा, क्या है पैसा,
2: मैं पैसे के साथ जाऊं,
0: मैं मांगता पैसा भाई, मैं मांगता पैसा। चलिए अच्छा है भाई, ये भी अच्छा।
2: अच्छा आप दूसरा बताइए,
0: अच्छा आप दूसरा बताइए, जैसे मैंने नाजिया के हवाले से बात करी, आपका क्या कहना है, मतलब समझ रहे होंगे आप कहने का मतलब, नहीं मतलब जो आपका सवाल है,
2: मैं तो पेट्स के हवाले जवाब ही मत दीजिएगा अशफाक जी, जवाब मत दीजिएगा।
0: यार कॉल काट दी तुमने अशफाक भाई की, यार व्हाट इज दिस नाजिया, यार सुनो हाजा
2: सरवर भाई, आप कम से कम जिंदगी में पहली बार तो सच बोलिए,
0: कभी तो बोलिए। ये क्या कहती है, मैम है हमारे साथ कोई, और कौसर जहां है हमारे साथ, आई डोंट नो इफ किसी ने गौर किया है कि ये नहीं इस बात पे कि ये सरवर, अच्छा ये तो उबैद भाई से जुड़ा, कहते हैं ये आसिफ भाई का सुन के बड़ा मजा आता है, लगता है बॉम्बे पहुंच गए। ओ
2: ये तो
0: कौसर
2: है।
0: ये कहती है भाई आसिफ भाई, ये
2: कौसर ये बात तो सच है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है,
0: ऐसा लगता है कि बॉम्बे से ही है। कहते हैं पर्सन हु कैन मेक अ मिस्टेक वंस कैन मेक द सेम मिस्टेक अगेन, सो इफ समवन हर्ट्स यू वंस इट इज बेटर टू लेट देम गो रादर देन फॉरगिव देम। इतने पैसों में
2: प्लीज ओपन द डोर एंड कैन लीव,
0: नहीं ये तो ना हमें समझ में आ रहा भाई,
2: प्लीज ओपन द डोर,
0: ना हमने ये क्यों लिया मैसेज आपसे ये समझ में आ रहा भाई, और
2: वो ये कह रहे हैं ऐसे कलीग्स को माफी मत करो, उन्होंने मुझे एक तरह से जो है वो एक अच्छी एडवाइस दी है बिफोर आई से दिस, कि हाँ मैंने माफ किया, अब मैंने वापस लिया अपने अपना वर्ड्स वापस लिए। सर भाई आपने मैंने माफ कर दिया, आपने पेट्स की बात छेड़ के वापस से अपने ऊपर ले लिया।
0: नहीं देखिए अब मैंने बताया ना कि दिल लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत मार पड़ी बेचारे को। बयानी एंड हार्डी एक साथ हैं, बयानी हैं ये शायद, हाँ मेरे ख्याल में वही हैं। एंजॉय कीजिए ट्रैक सर्वनादी आपके साथ ओनली ऑन FM 107।

0: क्या बात है भाई, क्या बात है। यकीन जानिए मैं यही कहता कि राबिया
1: आपकी तो कोई बात ही नहीं है।
0: मेरी क्या बात है, अच्छा वो आप बीच में बोल दी, क्योंकि ये तो मैं कभी नहीं कहता कि आपकी बात है और आप ही की बात है, बात तो मेरी है।
1: क्या बात है मेरी है, हाँ। आपकी ये क्या बात है।
0: तारिक जमील साहब हमारे साथ जुड़ गए, जल्दी से रुपट्टे डाल दो सर पे ना दिया।
1: मैं तो
0: अस्सलाम वालेकुम सर भाई, बस सुपरवाइजर ठीक ठाक रहे और टाइम पर रिस्पॉन्स दे दे। और ये आवाज एकदम मेरी बढ़ गई है, क्या हुआ, ये हुआ क्या, कुछ तो हुआ है अभी यहाँ पर, कुछ तो हुआ है, टक टक। ओके, तो कहते हैं कहाँ थे हम, फिर से मजा नहीं आएगा वरना। कहते हैं सरो भाई बस सुपरवाइजर ठीक ठाक रहे और टाइम पर रिस्पॉन्स दे दे और मुदीर से वक्त पर सैलरी मिल जाए, काश ये सुपरवाइजर या मुदीर सुन ले तो हमारा काम भी बन जाए।
1: चलो इन्होंने कलीग का तो कोई जिक्र नहीं किया, ये भी अच्छा है।
0: इरफान अल कासमी
1: साहब, हर आदमी का एक अलग एंगल होना चाहिए। ऑफिस में जो सबसे ज्यादा अनोइंग होती है वो सर्वर भाई जैसे कलीग्स होते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बट चलिए, बहुत लोगों के ऑफिस का जो वर्क प्लेस है,
0: कैसी कैसी है, नाजिया मैं सुन ही नहीं रहा, मैं सुन ही नहीं रहा। प्रोग्राम बंद करने का टाइम आ गया। कह रहे हैं सर्वर भाई मैं तो चाहता हूँ सर्वर भाई जैसा बॉस होना चाहिए, मैं तो सर्वर भाई जैसा बॉस चाहता हूँ। मेरी आंखें भराई, मेरी आवाज भारी हो गई, मेरा हलक जो है वो मतलब बोल नहीं पा रहा है।
1: मैं कह रही हूँ दिल पे भी तो कुछ असर होना चाहिए आपके।
0: अरमान भाई अल्लाह ना करे, अल्लाह का शुक्र है
1: भावुक हो जाए, कुछ
0: गुलदस्ता भेजा ना दिया। कहते हैं सलाम और सूफिया, ये भेजा गुलदस्ता आपने,
1: नाइस, बहुत ही अच्छा है
0: यार। ये जो मुर्गी आपने लगा रखी है अपनी डीपी में, इसका क्या मसला है, ये कोई ट्रेंड है या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ गया
1: फ्राई करने वाले हैं शाम में।
0: हाँ, ये तो फ्राई करने वाली है वाकई, समझ गया मैं। 3-4 लोगों ने लगा रखी है, मैं अब समझा कि ये, अब मैं समझा तेरे नुकसान पे मुर्गी का मतलब। ओके, कहते हैं थैंक यू सो मच सरवर भाई और सर फोड़ना है अपना कासिम भाई पोल से, यकीन जाए नहीं है बेचारे क्या हो गया यार, काश इनको भी रुखसार मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम बॉस भाई, मस्का लगा रहे हैं आप नाजिया जी को। सर्वर भाई रजिस्टर में नाम चढ़ा दो, लेट हो गया हूँ, माफी चाहता हूँ। कौन है ये, तो आसिफ भाई है यार, आपसे तो बात हो गई थी, अगर ये वही आसिफ भाई है और दूसरे वाले हैं तो क्यों है?
1: दो आसिफ हो गया ना, दो है कि तीन है
0: आसिफ, पता नहीं, सॉरी बहुत है, सॉरी हमारे पास बहुत है,
1: हम भी कंफ्यूज हैं।
0: और यहाँ पर आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई आप कौन सी चीज चुनना चाहेंगे। नादिया एक बार सवाल आप अपनी तरफ से।
1: आज जो हम डे स्पेशल, मतलब पूरा वीक है इंटरनेशनल वीक ऑफ हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे पूछा जाए कि वर्क प्लेस पर सबसे ज्यादा हैप्पीनेस आपको किस चीज से मिलती है। क्या आपको लगता है कि अच्छी सैलरी होती है तो आप हैप्पी रहते हैं आप जहाँ भी काम करते हैं, जो भी एक्स वाई जी आपकी जगह है, या फिर अच्छे बॉस होते हैं, काइंड एंड हम्बल एंड ऑल दैट, आपका अच्छा उनसे गुड इंट्रैक्शन हो जाता है तो आपको लगता है कि आपका एकदम दिन टाइम मन सब सेट है, या फिर अच्छे कलीग हैं जो आपको कहीं ना कहीं खुशी देते हैं,
0: ये खुशगवार
1: माहौल बनाते हैं। सर भाई हम लोग का माहौल बहुत अच्छा रहता है, मी, सना, रुमना एंड फायजा, फिर हो जाती है सर्वर भाई की एंट्री। कितने बजे होती है, 12:13
0: इनकी सुनिए मत, 12:13। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: तेरा करूं गिन गिन गिन के शहजाद आ गए हैं हमारे पास, कैसे भाई यार मैं मालूम है क्यों इतना खुश हूँ, आपने जो हमें ये एक गिफ्ट दिया है शहजादा सलीम साहब इस वीडियो में, और इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने रंगीन, इतने दिल फेक, नहीं मतलब दिल वाले लोग
1: मिल नहीं रहे,
0: मिल नहीं रहे, इतने ज्यादा दिल वाले लोग,
1: मोहतरम लोगों के साथ, इज्जतदार लोगों के साथ।
2: सरवर भाई, नाजिया मैम, सारा क्रेडिट जो है ना जाता है तौफीक भाई को,
0: अल्लाह सबको तौफीक दे, अल्लाह तौफीक भी दे, अल्लाह तौफीक भाई जैसा तौफीक भी दे, दोनों ही चीजें दे।
2: वो आए सनैया, मेरे को पिकअप किया,
0: उसके बाद पिकअप ड्रॉप सर्विस, ये तो मैं ढूंढ रहा था, यही ढूंढ रहा था। अच्छा,
2: उनको मुमताज भाई को पिकअप किए,
1: सर्वर भाई आपकी दोस्ती में एक और इजाफा हुआ,
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, नहीं और
1: माशाल्लाह,
0: ये तो टॉप पे, ये तो सबसे ऊपर है, मतलब आप कबीर सब पीछे रह गए, ये तो तौफीक भाई अब सबसे टॉप पे हैं।
1: अब मैं भी दोस्ती करूं तौफीक भाई से, पिक तो करवा लूंगी, ड्रॉप बताऊंगी।
2: कतर में थे नहीं फ्राइडे को, फ्राइडे रात में आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने बहुत ज्यादा मिस किया आपको। जिस वक्त आप खाने पे बैठे थे, नहीं उस वक्त जब खाने, हिचकी आ रही थी आपको, हिचकी आई दो तीन,
2: लेकिन सबने याद किया कि सरवर भाई है ना आउट ऑफ कतर है, लेकिन वगरना वो आते जरूर वहाँ पे। और उसके बाद है ना लेट आए, थोड़े देर आए, दुरुस्त आए, जुल्खे मैन भाई आए थे।
0: अच्छा हुआ मैं नहीं आया, मतलब मैं अच्छा हुआ मैं होना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ मुझे होना चाहिए था। तौफीक साहब, जुल्खे मैन साहब, यार मुझे तो होना चाहिए था यार, मुझे क्यों हिचकी आ रही थी।
1: नहीं हिचकी की बात नहीं है, मैंने आपको सही बताया, इन लोगों को हिचकी नहीं आई, इनको बदहजमी हुई।
0: जब भी कहूँ कैसे परेशान से लग रहे हैं शहजादा सलीम साहब।
2: तौफीक भाई ने ना अपने घर से बना के लेकर आया था, कोई जो स्पेशल है ना, तो वो हमने ना उधरी जो वर्ल्ड टी है ना उसमें हमने बैठ के ना उसको हमने एंजॉय किया।
1: अच्छा क्या लाए थे स्पेशल, पूछो पूछो,
2: मिला था बड़ा सरप्राइज।
1: नहीं क्या चीज स्पेशल,
2: हम लोग सैफुर रहमान सर से मुलाकात हुई।
0: अच्छा अरे वाह,
1: ऐसा कैसा सरप्राइज हो गया,
0: माशाल्लाह।
2: हमारे पास एक घंटा स्पेंड किया क्योंकि मगरिब टाइम हो गया, तो मस्जिद है ना टोयटा शोरूम के पीछे बड़ी मस्जिद, हम वहाँ नमाज पढ़ने गए तो वहाँ उनसे मुलाकात हो गई।
1: अरे सर भाई टोयटा शोरूम में तो गाड़ी आप धो रहे थे उस वक्त।
0: सर हाँ मैं मतलब हर पर्दा उठाने की जरूरत नहीं होती गालिब, कुछ पर्दे डले भी रहने दो,
1: टायर पॉलिशिंग
0: चेहरा भी अभी हुआ है।
2: और ये पहली दफा सब लिसनर जो सिर्फ देना सुना करते थे और हुबा
0: सुना कर देते थे, नहीं नहीं
1: सुना
0: कर दे,
2: और पूरा 107 की मतलब जाता है क्रेडिट 107 की टीम को ही जाता
1: है। नहीं नहीं मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट दीजिए आप तौफीक जी को, उन्होंने इनिशिएट तो किया ना, उन्होंने एटलीस्ट इनिशिएट किया, सबको जोड़ा।
2: आपके लिए खुशखबरी है सरवर भाई, अभी तौफीक
0: अभी भी खुशखबरी आ रही है मेरे लिए। हाँ क्या है,
2: अभी तीन भरा नहीं है उनका,
1: नहीं चाहिए।
0: हाँ भाई बस करो,
1: चार पांच तो हुई,
0: इनकी भी सुन ले।
1: अच्छा बोलिए फिर से बताइए,
0: फिर से शुरू से, ना ना ना वही वो जो कॉल तीन मिनट पहले लगाई थी वहां से शुरू करो शहजाद भाई, मजा नहीं आया।
2: सरवर भाई उनका भी दिल भरा नहीं है, बोले घर पे ना खाने खाने के लिए आना है वहाँ पे, तो वकरा पे।
0: अच्छा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह तो लगाई
1: इंशाल्लाह, इनको बोला है शहजादा जी को, आप इंशाल्लाह
0: मुझे लाने के लिए,
1: आपको नहीं शहजादा जी को,
2: सरवर भाई को आना है। हां कैसा भी सरवर भाई,
1: अच्छा सरवर भाई,
0: नहीं उन्होंने खाली आना नहीं, उन्होंने कहा लाना है,
1: खाना है, खाना है,
0: लाना है, खाना है, तो आपको लेके चलना है, मुझे याद रखिएगा ठीक है।
1: बस लाइएगा बस।
0: अच्छा आप जल्दी से ये बता दो शहजादा भाई के ऑफिस में वो कौन सी चीज है जब सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। मैं मेरा मतलब ओ एक मिनट कुछ और कह देंगे भाई, किसी का नाम नहीं, नहीं सुनो तो
1: अच्छी सैलरी आपको खुश कर देती है, अच्छे बॉस है
0: हमारी तो,
1: अच्छे कलीग्स
0: हैं, तीन चीजें हैं भाई। हां ये इनमें से ही बताना और कहीं नहीं, किसी का नाम मत लेना।
2: सबसे बेस्ट है ना, सबसे बेस्ट ये वीकेंड एंजॉयमेंट है और इस तरह से मिलना है, और
1: ये चौथा लाए ये नहीं टॉपिक पे नहीं बात कर रहा।
0: अच्छा ये तो वो मैंने जो पर्चा दिया था वो खत्म हो गया, अब अपनी तरफ से उसमें कुछ मत जोड़ो, बस वो इतना ही था, उतने में उतने पैसों में उतना ही। अब ये वाला नया सवाल आया मार्केट में, पांच पांच मार्क्स मिलेंगे इसके, और छोड़ दिया तो पांच माइनस हो जाएंगे, चार मिनट हमारे पास कुल रह गए। जल्दी से ये बताइए कि ऑफिस में तीन लोग कौन से, नहीं तीन लोग नहीं, तीन
1: तीन लोग
0: वो ना सुनेंगे भाई आज,
1: आज नहीं
0: शेख प्यार किया तो डरना क्या, लगा दो भी गाना, लगा दो उनके लिए अनारकली का।
1: चलो आज एक्साइटेड है शहजादा जी, चलिए हमें खुशी हुई कि आप लोग सब मिल पाए और बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: आगे भी इस तरह से जो है
0: हाँ, मिलते
1: गेट टुगेदर अपना जो भी मीटअप है
0: खाने वाने ज्यादा हो, एक

0: पॉट लक वगैरह या दूसरी इस तरीके की चीजें?
1: पॉट तो हम लोग, क्योंकि लक आपका बनेगा।
2: अरे भाई लेकिन आप आउट ऑफ कतर हो जाते हो, ऐसा क्यों होता है पता नहीं
1: यार। अच्छा, ये आउट ऑफ कतर में निकल गए थे
0: और फिलहाल के लिए इजाजत लेते हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जाने का टाइम है।
0: नादिया के जाने का टाइम है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे। मैसेज यही है,
1: चाहते तो यही कहना, चाहते ही
0: अपने कलीग से बहुत ज्यादा मोहब्बत करिए, बहुत ज्यादा प्यार करिए, उन लोगों को माफ कीजिए। पूरा हफ्ता है आपके पास, एक ढेर सारा टाइम पड़ा हुआ।
1: अल्लाह ताला सरवर भाई को भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन।
0: मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैंने पिछले सारे माफ करवा लिए इंशाल्लाह ताला।
1: मैंने माफ किए जैसे आपने मुझे पेट कह के कहा है, उसके बाद
0: आपको यार कैसी बात कर रही
1: है, आपने फौरन मुझे बोल दिया।
0: नहीं नहीं, आपसे मतलब ही नहीं नादिया, कैसी बातें कर रही है। कसम से मैं आपको कुछ कहूंगा ऐसा यार, मैं तो कह रहा हूँ कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं दिल लगाने के लिए। तो फिलहाल हम आपको इस गाने के साथ छोड़ जा रहे हैं, बीबी के साथ। तो इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने कलीग्स का ख्याल रखिए।
1: बिल्कुल, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। सेहत मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल आसान हुई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खुशी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी यही नेमत किसी इंसान के जरिए हम तक पहुंचती है। किसी ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, किसी उस्ताद ने हमें सिखाया, किसी दोस्त ने वक्त दिया, किसी साथी ने हमारा काम आसान किया, किसी ने एक मुश्किल वक्त में सिर्फ इतना कहा, फिक्र न करें मैं आपके साथ हूँ। तो क्या सिर्फ दिल में खुश हो जाना काफ़ी है, या उस शख्स को ये बताना भी चाहिए कि आपने मेरे लिए जो किया मैं उसकी कदर करता हूँ। इस सिलसिले में एक गहरा उसूल सिखाते हैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। अब हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यश्कुरुन्नास

दोस्तों फुटबॉल की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे गुजरे हैं जो सिर्फ गोल्स और ट्रॉफीज की वजह से याद नहीं किए जाते बल्कि अपने अंदाज खेल की वजह से हमेशा के लिए वो सबके दिलों में अभी भी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे ब्राजील के उस लेजेंडरी फुटबॉलर की जिनका असल नाम था मैनुअल फ्रांसिस्को डोस सांटोस लेकिन दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती है गरिंचा। गरिंचा का मतलब पोर्चुगीज में एक छोटी सी परिंदे जैसी चिड़िया से जोड़ा जाता है और ये नाम उनकी पर्सनालिटी पर बिल्कुल फिट बैठता था। उनकी छोटी सी परिंदे जैसी चाल, वो अजीब और गरीब रनिंग स्टाइल और डिफेंडर्स को चकमा देने की उनकी एबिलिटी, ये सब मिलकर गरिंचा को दुनिया के सबसे एंटरटेनिंग फुटबॉलर्स में शामिल कर देते थे। बचपन में

गोलियों की वजह से उनकी फिजिकल डेवलपमेंट मुतासिर हुई और उनकी टांगों में भी डिफॉर्मिटी थी। लेकिन जिस चीज को दुनिया उनकी कमजोरी समझ सकती थी, करिंचा ने उसी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना दिया। उनके पैरों की अनयूजुअल शेप और बॉडी मूवमेंट ने उन्हें ऐसा बैलेंस दिया जो डिफेंडर्स के लिए समझना मुश्किल था। जब गरिंचा गेंद लेकर विंग पर खड़े होते, डिफेंडर को अक्सर पता होता था कि वो अगला मूव क्या करेंगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें रोक नहीं पाता था। गरिंचा एक ही जगह खड़े खड़े डिफेंडर को कंफ्यूज कर देते, बॉडी एक तरफ, बॉल दूसरी तरफ, और अगले ही सेकंड में वो डिफेंडर को पीछे छोड़कर गोल की तरफ भाग रहे होते। उनके ड्रिबल्स में एक नेचुरल मैजिक दिखने को मिलता था। ब्राजील के फेमस क्लब बोटाफोगो में गरिंचा ने अपनी पहचान बनाई। वहां वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि फैंस के लिए एक सुपरस्टार बन गए। और फिर आया इंटरनेशनल फुटबॉल का स्टेज, 1958 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, पेले का डेब्यू वर्ल्ड कप। स्वीडन में ब्राजील ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता और गरिंचा ने टीम की अटैकिंग ब्रिलियंस में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इसी टूर्नामेंट में दुनिया ने पहली बार उस ब्राजीलियन फ्लेयर को देखा जो बाद में फुटबॉल की पहचान बन गया। लेकिन गरिंचा की सबसे आइकॉनिक वर्ल्ड कप स्टोरी आई 1962 चिली वर्ल्ड कप में। चिली में ब्राजील के सुपरस्टार पेले टूर्नामेंट के दौरान इंजरी का शिकार हो गए और अब टीम को एक नए लीडर की जरूरत थी और गरिंचा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। एंड इट वॉज अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी of a team that went on to just dazzle the footballing supremacy, control, dominance. Brazil was Brazil. Aur Garincha ne unhone goals kiye, assists diye, defenders ko nachaya bhi aur Brazil ko ek aur World Cup trophy tak pahunchaya. Garincha itne outstanding the ki unhe 1962 World Cup ka player of the tournament bhi kaha gaya. यानी जब पहले नहीं थे, गरिंचा ने दुनिया को बता दिया कि ब्राजील के पास एक और फुटबॉल जीनियस भी है। उनके ट्विस्टिंग रन्स और अनप्रेडिक्टेबल ड्रिबल्स बिल्कुल सांबा की तरह थे, रिदम भी, क्रिएटिविटी भी और सरप्राइज भी। गरिंचा का इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी जबरदस्त रहा है दोस्तों। ब्राजील के लिए उन्होंने 50 से ज्यादा मैचेस खेले और टीम को कभी वर्ल्ड कप मैच में डिफीट का सामना नहीं करना पड़ा जब गरिंचा और पेले दोनों ने साथ प्लेइंग 11 में स्टार्ट किया। लेकिन गरिंचा की ग्रेटनेस सिर्फ नंबर्स में नहीं थी, उनके लिए फुटबॉल एक हैप्पीनेस, एक खुशी थी। वो ग्राउंड पर मुस्कुराते थे, फैंस को एंटरटेन करते थे और फुटबॉल को एक सीरियस बिजनेस की बजाय एक सेलिब्रेशन समझते थे। दैट वॉज ब्राजीलियन फुटबॉल दैट टाइम। मगर ग्राउंड के बाहर उनकी जिंदगी इतनी सिंपल नहीं थी। फेम, रिलेशनशिप्स, इंजरीज और ऐसे कई मसाइल ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। करियर के आखिरी हिस्सों में वो पहले जैसी फॉर्म और फिटनेस मेंटेन नहीं कर सके। फिर भी ब्राजील के लोग उन्हें भूले नहीं। 20 जनवरी 1983 को सिर्फ 49 साल की उम्र में गरिंचा इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है माराकाना के फुटबॉल फैन से लेकर ब्राजील की गलियों तक। गरिंचा को एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है जो फुटबॉल को सिर्फ खेलता नहीं था, वो फुटबॉल को महसूस करता था। गरिंचा ने साबित किया कि हर लिमिटेशन के बावजूद अगर टैलेंट, कॉन्फिडेंस और जज्बा हो तो दुनिया के बेहतरीन डिफेंडर्स को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। गरिंचा द लिटिल बर्ड, जो फुटबॉल की दुनिया में हमेशा उड़ता रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक नए लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: सिंपली अपने लैपटॉप या पीसी पे से रन कर सकते हैं। इसका नाम है messenger.ebito.co messenger m e s s e n g e r .ebito Ebito या जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहे .co। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने गेम आएगा और वो जो गेम है इतना जबरदस्त टाइम पास है, आप अपने दोस्तों के साथ भी उसको खेल सकते हैं और साथ साथ आप खुद भी इसे पार कर सकते हैं। उसमें कुछ मिशंस भी आपके सामने आएंगे, उन मिशंस को खेलिए, पार कीजिए। एंड मैं सही बता रहा हूँ आपको, लगेगा यार ये तो थोड़ा एडिक्टिव सा हो गया, तो बच्चों को जरा दूर रखिएगा इससे, क्योंकि ये एडिक्शन तो है। हालांकि गेम जो है बच्चे बड़े सब खेल सकते हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंटरेक्टिव गेम है। एंड इसके लिए कोई भी आपको भारी कोई ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 666-22107 इसमें आप शो के दौरान भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, इनकेस आपको कोई भी डाउट हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अ ट्रिक विच आई रियली लाइक्ड एंड मैं शेयर करना चाहूंगा, ये है इंस्टाग्राम की ट्रिक। जब आप कोई वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे और आपको उसको डाउनलोड करना होता है तो आप क्या करते हैं, आई डोंट नो आप क्या कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इजी ट्रिक दे देता हूं मैं। तो जब आप किसी वीडियो को पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पे तो उसका आप लिंक को उठा लें, कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जब आप पेस्ट करेंगे पूरी लिंक को तो इंस्टाग्राम जो लिखा हुआ है उसमें से आर ए एम हटा दीजिए, ठीक है। लिंक पोस्ट करेंगे तो पूरा लिखा आएगा ना www.instagram.com/whatever तो उसमें जो इंस्टाग्राम का रैम होगा वो हटा दीजिए और आपके पास डाउनलोड के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप हाई क्वालिटी में उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सो या देयर यू गो, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी और ज्यादा ज्यादा लोगों को बताएं, फैला दें इसे। जो तीन लोगों को बताएं उनको बोलिए कि वो आगे तीन लोगों को बताएं, काम जरूर आएगी। ऑलराइट, तो अब मैं जरा एक खबर की तरफ बढ़ता हूँ जो खबर भी है और एक तरीके का फैक्ट बनता जा रहा है इन फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो न्यूज में सबसे पहली बात है चार्जिंग को लेकर, फोन की चार्जिंग को लेकर ना जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, कितने सारे पावर बैंक आ चुके हैं, रिट्रैक्टेबल टेबल केबल्स आ चुके हैं, लेकिन अभी यू ग्रीन एक कंपनी है तो उन्होंने इस पे काम किया कि लिक्विड कूल्ड मैग्नेटिक पावर को बैंक्स में कैसे यूज किया जाए। तो लिक्विड कूल्ड मैग्नेटिक पावर बैंक्स मार्केट में आने वाले, भी उनकी सिर्फ टेस्टिंग हुई है, बाकी एक कंपनी है बेल्किन करके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है काफी पतला और हायर कैपेसिटी वाला पावर बैंक। और उन्होंने उसके साथ साथ जो रिट्रैक्टेबल केबल्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए हैं। आई थिंक ये एक एक बहुत बड़ी जीत है आने वाले वक्त में कि जितने कम हो सके उतना ही आसानी रहेगी आई थिंक। एंड इसके अलावा जो एआई की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और मेजर मेजर मेमोरी चिप्स शॉर्टेज होती चली जा रही है, इसकी वजह से रैम और डीरैम की जो कॉस्ट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लैपटॉप्स और गेमिंग डिवाइसेस एक्सपेंसिव होंगे थ्रू आउट 2027 जब तक कि इस जंग को जीता नहीं जाता। सो मेक श्योर कि आपके जो फेवरेट गैजेट्स हैं इनकेस वो गेमिंग से जुड़े हुए हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं और गेमिंग कंसोल है आप ही ले लो भाई। इसके बाद ये सब चीज़ें महंगी होने वाली हैं फॉर श्योर, ठीक है। एंड इसके अलावा DJI ने लॉन्च किया था अपना DJI Osmo 360 और Hoover Air Versa, ये क्रिएटर्स के लिए एक नया खिलौना है। इसका जो रिव्यू है मैं इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि हर किसी का इसको देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। सो अपने अपने तरीके से परसीव करें इसे और मुझे बता दीजिएगा आपको कैसा लगा, आपके रिव्यू पे मैं काम करूँगा, ठीक है। बिकॉज क्या है कि ये क्रिएटर्स के लिए जो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ओके। ऑन दैट नोट दिस वॉज द अपडेट, दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी है। अस्सलाम।
1: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं इत्तला कराता रहता हूं, रूबरू कराता रहता हूं, ताकि ना आपके साथ, ना आपके फैमिली मेंबर के साथ, ना फ्रेंड्स के साथ, ना ही किसी रिलेटिव के साथ फ्रॉड हो सके। वेल, आज जिस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो बहुत आम हो गया है, वो है कलीग इन्वेस्टमेंट टिप्स। ये काम कैसे करता है, इस पर हम नजर डालेंगे, और साथ ही साथ इस तरह के फ्रॉड से बचने के क्या तीन उपाय हैं, क्या तीन सॉल्यूशंस हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। दोस्तों, ये है कलीग इन्वेस्टमेंट टिप्स। काम कैसे करता है ये फाइनेंशियल फ्रॉड? पूरी तरह से हमारे अंदर रातों रात अमीर बनने के लालच और फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो का फायदा उठाकर डिजाइन किया गया है। इस स्कैम का सेटअप अक्सर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही आसानी से या उसके जरिए, उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए शुरू होता है। कोई इंसान जो पहले आपकी कंपनी में था, या फिर आपसे किसी सोशल मीडिया पर ऐड था, कनेक्शन बना हुआ था, वो बड़ा ही फ्रेंडली होकर आपसे नॉर्मल बातें शुरू करेगा। धीरे धीरे वो चैट का रुख पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ देगा। वो बड़े ही कैजुअल अंदाज में आपसे कहेगा कि मैं ऑफिस के काम के साथ साथ एक नए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या सीक्रेट स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए हर महीने लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। आपको कन्विंस करने के लिए वो अपने फेक डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भी शेयर करेगा, जिसमें बड़ा प्रोफाइल लिखा होगा और प्रोफाइल दिख रहा होगा आपको, ऐसे में दिखेगा कि हाँ प्रॉफिट भी इसको हो रहा है। साथ ही ये दोस्त आपको भी टैग करेगा, वो आपको टारगेट करेगा कि तू क्यों मेहनत कर रहा है, बस एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जैसे कि 5,000-10,000 रुपए करो और इसका जो रिस्क है वो बिल्कुल कम है। उनके कहने पर जब आप उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके थोड़ा पैसा डालते हैं तो वो वेबसाइट आपको बिल्कुल रियल दिखेगी। वहां आपका जो पैसा है वो ग्रोथ ग्राफ हर दिन ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जिसे देखकर आप खुश होकर अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप उस पैसे को अपने रियल बैंक अकाउंट में विथड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। स्कैमर्स विड्रॉल ब्लॉक कर देते हैं, बोलते हैं कि पहले 20% टैक्स जमा करो।

0: और जैसे ही आप टैक्स देते हैं वो आपका अकाउंट परमानेंटली लॉक कर देते हैं और सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। तो यानी कि जो ग्रोथ आपको दिख रही थी वो फेक थी, लेकिन जो आपने 20% टैक्स दिया है वो आपने असली अमाउंट दिया है अपनी जेब से। तो आपने जो पेमेंट पहले करी थी, जो ग्रोथ दिखा रहा था वो भी फेक थी, आपने वो पेमेंट ऑलरेडी कर दी और फिर 20% टैक्स के नाम पे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के 3 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, सॉल्यूशन है, क्या है वो, उन पर जरा बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्राइवेसी, हमेशा ये रूल बना लें कि किसी भी एक्वेंटेंस, दूर के रिश्तेदार या ऑनलाइन मिलने वाले कलीग की पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस पर कभी भी आंख बंद करके अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ट्रेडिंग के लिए हमेशा ऑथराइज्ड और रेगुलेटेड ब्रोकर्स का ही यूज करेंगे। दूसरा तरीका है, दूसरा सॉल्यूशन है वेरीफाई रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई आपको किसी नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या क्रिप्टो पोर्टल के बारे में बताता है तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट रिसर्च करें, चेक करें कि क्या वो पोर्टल कतर सेंट्रल बैंक से भी या किसी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल गवर्नमेंट रेगुलेटर या रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड और लाइसेंस्ड है या नहीं। अगर उसका कोई रेगुलेटरी रिकॉर्ड नहीं है तो वो वेबसाइट फ्रॉड है। उसके अलावा तीसरा तरीका है टेस्ट विथ स्मॉलेस्ट कैपिटल एंड रीड रिव्यूज। ऐसी किसी भी अनवेरिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपनी मेजर कैपिटल मत लगाएं। गूगल और साइबर फोरम्स पर उस प्लेटफॉर्म का नाम डालकर स्कैम या विड्रॉल प्रॉब्लम कीवर्ड के साथ रिव्यूज चेक करें। अगर वहां नेगेटिव रिव्यूज हैं तो तुरंत अपना बचा हुआ कॉन्टेक्ट तोड़ दें और उनके इन्वेस्टमेंट ग्रुप से एग्जिट कर लें। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिनसे आप बच सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी
3: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा क्या एआई सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है डरिए नहीं समझिए आरजे ए फॉर अमिता के साथ एआई लॉक्ड पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए तो सुनिए एआई अनलॉक्ड आरजे ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
4: अस्सलाम वालेकुम मरहबा मरहबा

0: Logged और मैं हूँ FM 107 पर आपकी A for अमिता। तो जनाब, चाहे आप कतर के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, किसी काम में व्यस्त हो, लेकिन रेडियो आपका स्विच ऑन है, या फिर दुनिया के किसी भी कोने से स्ट्रीम कर रहे हो, वेलकम है उस फ्रीक्वेंसी पे जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिंपल भाषा में समझाते हैं और उसकी असली ताकत सीधे आपके हाथों में डाल देते हैं, या यूं कहे आपके हाथों तक पहुँचा देते हैं। वेल, भूल जाइए वो साईफाई फिल्मों वाली बातें जहाँ मशीन्स दुनिया पे कब्जा कर लेती हैं। यहाँ हम सिर्फ एक ही बात पे फोकस करते हैं, दैट इज कि एआई कैसे आपकी जिंदगी को आसान बनाने में मदद कर रहा है। एक छोटा सा स्मार्ट शॉर्टकट एक बार में कैसे आपकी लाइफ को आसान करता है। तो आज हम उन तीन डेविल से लड़ने वाले हैं जो आपका पूरा दिन निकल जाते हैं। पहला वो ओवरवेलमिंग स्केड्यूल जो कभी खत्म ही नहीं होता। दूसरा वो ओवरफ्लोइंग ईमेल इनबॉक्स जिसमें मैसेजेस का ना अंबार लगा होता है। और तीसरा वो रहस्य कि हर महीने तनख्वाह आखिर जाती कहाँ है। तो जनाब, आज का एपिसोड पूरी तरह से डेडिकेटेड है एआई इन डेली प्रोडक्टिविटी, आपका स्केड्यूल, आपकी ईमेल्स और आपका फाइनेंस संभालना। तो अपनी चाय या कॉफी उठाइए, एक लंबी सांस लीजिए और चलिए आज के हमारे कमाल के सेगमेंट्स की तरफ। सो एआई अनलॉक्ड पर अगली बात जो हम करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है।
1: AI Unlocked.
0: तो जनाब, एकदम बिल्कुल सच सच अब हम बात करेंगे। आखिरी बार कब आपने अपना पूरा इनबॉक्स खाली देखा है, या कब आखिरी बार ऐसा हुआ कि पूरा हफ्ता बिना दो मीटिंग्स के एक साथ बुक किए गुजरा हो, या महीने के आखिर में बैंकिंग ऐप खोला और दिल में थोड़ी सी भी ना घबराहट नहीं हुई हो, ऐसा कब हुआ है? हाँ, सच्चाई ये है कि दशकों से हमारी प्रोडक्टिविटी हाथ के काम पर चलती आई है। जरा सोचिए, कुछ साल पहले हम कैसे काम करते थे। स्केड्यूल के मामले में हम फिजिकल प्लानर्स लेकर घूमते थे, या फिर ईमेल पे एंडलेस पिंग पोंग खेलते थे। क्या आप ट्यूसडे 3 बजे फ्री है, ये सवाल हम पूछते थे, या फिर थर्सडे 4 बजे कैसा रहेगा। और इस पिंग पोंग में कभी कभी पूरा हफ्ता निकल जाता था सिर्फ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए। ईमेल्स के मामले में हम रोज एवरेज 2.5 घंटे सिर्फ पढ़ने, सॉर्ट करने, लिखने और स्पैम फिल्टर करने में गुजार देते हैं, यानी हफ्ते में तकरीबन 12 घंटे मतलब एक पूरा दिन सिर्फ इनबॉक्स के सामने बीत जाता है। और फाइनेंस के मामले में हम मेहनत से CSV फाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं, रिसीट्स को रंग बिरंगे एक्सेल शीट्स में टाइप करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि वीकेंड के डिनर पे कितना खर्चा हो सकता है या कितना खर्चा करना सेफ होगा। अक्सर तो हम महीने के 20 तारीख को ही घबराने लगते हैं कि सैलरी अगली तनख्वाह तक चलेगी या नहीं। लेकिन अब आ चुका है प्रैक्टिकल एजेंटिक AI का दौर। यस, आज AI सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रहा जो आपके सवाल का इंतजार करे, ये अब एक ऐसा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अवेयर डिजिटल को-पायलट बन चुका है जो चुपके से बैकग्राउंड में आपके लिए काम करता रहता है, बिल्कुल उस खामोश साथी की तरह जो आपकी जरूरत से पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि आपको क्या चाहिए। तो चलिए तीन हिस्सों में इस रेवोल्यूशनरी आइडिया को समझते हैं। सबसे पहला है स्मार्ट कैलेंडर ऑर्केस्ट्रेशन। पुराने जमाने के स्टैटिक कैलेंडर्स सिर्फ आपको उन मीटिंग्स की याद दिलाते थे जिनसे आप डरते थे। यस, एक रिमाइंडर बजाता था और बस, उससे ज्यादा वो कैलेंडर कुछ नहीं करता था। लेकिन आज के AI नेटिव स्केड्यूलिंग इंजन्स सिर्फ आपके घंटों का नहीं, आपकी एनर्जी का भी इंतजाम करते हैं। मॉडर्न स्केड्यूलिंग प्लेटफॉर्म्स सिर्फ एक खाली स्लॉट नहीं ढूंढते, ये आपकी पुरानी आदतों का एनालिसिस करते हैं। अगर AI देखता है कि आप सुबह 9 से 11 बजे के बीच सबसे क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये खुद ब खुद उस वक्त को डीप वर्क के लिए महफूज कर देता है और टीम के चेक-इन्स को दोपहर में शिफ्ट कर देता है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, अगर अचानक कोई क्लाइंट इमरजेंसी आ जाए तो ये एजेंट खुद ही कम जरूरी कामों को रीशफल कर देता है, आपके जिम सेशन 1 घंटे पहले कर देता है और जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उन्हें खुद ही बता देता है बिना आपके एक भी माफीनामा ईमेल्स भेजते हुए। सोचिए जरा, एक वक्त था जब ऐसी छोटी छोटी जो तब्दीलियां थी उसके लिए हमें खुद 5-5 लोगों को मैसेज करना पड़ता था। अब ये सब कुछ एक

नजर में एक क्लिक में हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ एडवांस सिस्टम तो आपकी नींद के पैटर्न और ट्रैवल टाइम को भी ख्याल में रखते हैं। अगर आपकी फ्लाइट रात देर से पहुंच रही है तो AI खुद ही अगली सुबह की मीटिंग्स को थोड़ा लेट कर देता है, यस, ताकि आप आराम से उठ सकें। अब दूसरी बात कि जो इनबॉक्स में वो बहुत जहरीला सांप रहता है ना, कभी कभी हम उसे अजगर भी कहते हैं, उसे काबू में कैसे करें, चलिए आपको बताती हूँ। अब बात करते हैं उस डर वाले इनबॉक्स की। वैसे अरब दुनिया में जहाँ प्रोफेशनल ईमेल्स और तेज रफ्तार व्हाट्सएप चैट्स के बीच की लकीर अक्सर धुंधली हो जाती है, एक्शन आइटम्स को ट्रैक करना काफी मुश्किल हुआ करता था। कभी एक जरूरी जवाब व्हाट्सएप में खोया रहता था, हाँ, और कभी ईमेल्स पर। वेल, आज के इंटीग्रेटेड जेनरेटिव मॉडल्स एक हाइपर एफिशिएंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। ये लंबे उलझे हुए ईमेल थ्रेड्स को, जिनमें इंग्लिश और अरबिक मिक्स्ड होती है, पढ़ते हैं, उनके खुलासा 3 बुलेट पॉइंट्स में बना लेते हैं और आपको रेडीमेड जवाब पेश करते हैं, बिल्कुल आपके अंदाज में, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट पार्टनर के लिए फॉर्मल हो या किसी करीबी साथी के लिए दोस्ताना मैसेज। अब आपको 200 लफ्जों का ईमेल खुद नहीं लिखना पड़ता, बस एक तैयार ख्याल को अप्रूव या थोड़ा सा तब्दील करना होता है, एंड देन वर्क इज डन। वेल, ये फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपके लिए पहले से खाना बना के रख दे, है कि नहीं, और आप सिर्फ नमक मिर्च चेक करके सर्व कर ले। और इस सब के पीछे जो असली जादू है, द रियल मैजिक, वो है प्रायोरिटाइजेशन। यस, आज के AI मॉडल्स सिर्फ ईमेल पढ़ते नहीं है, ये समझते है कि कौन सा ईमेल जेन्युइनली अर्जेंट है और कौन सा सिर्फ FYI के नाम पर भेजा गया है। तो आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पर जाता है जो वाकई जरूरी होती है। तीसरा है प्रोएक्टिव ऑटोनॉमस फाइनेंस। अब बात करते हैं सबकी फेवरेट और कभी कभी सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज की, पैसा। पुराने फाइनेंस एप्स सिर्फ एक पैसिव आईना हुआ करते थे, ये बताते थे कि मुबारक हो आपने अपनी तनख्वाह का 40% बाहर खाने में उड़ा दिया है, लेकिन ये बात होने के बाद बताना उफ किसी काम की नहीं होती है कि नहीं, नुकसान तो हो ही चुका होता है। AI फाइनेंस इंजिन्स अब प्रेडिक्टिव मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं GCC के मॉडर्न फाइनटेक हब्स में, और दुनिया भर में AI आपके रेकरिंग बिल्स, आने वाले पैसे और बदलते खर्चों को एनालिसिस करता है। ये आपको बताता है कि देखो अमिता, आपके वीकेंड पैटर्न्स और आने वाले बिल साइकिल के हिसाब से आज आप 200 रियाल सेफ्टी इन्वेस्ट कर सकती हैं बिना अगले हफ्ते के यूटिलिटी बिल को मिस किए। अब ये खुद ब खुद माइक्रो सेविंग्स करता है, छुपे हुए सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक्स को फ्लैग करता है, और एक तस्वीर खींचते ही मल्टी लिंगुअल रिसीट को कंप्यूटर विजन से कैटेगराइज कर देता है। यानी अगर आपने अरबिक में लिखी एक रिसीट का फोटो खींचा तो AI उसे खुद ब खुद समझ कर सही कैटेगरी में डाल देगा, चाहे वो ग्रोसरीज हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर एंटरटेनमेंट। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ आपके पास्ट खर्चे नहीं दिखाता बल्कि आपके फ्यूचर के फैसलों में मदद करता है। यानी अब आप सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बन जाते हैं अपने पेंशन के मामले में या और भी कई सारे मामले में। सबसे बड़ा फायदा कॉग्निटिव लोड कम करना है, यस, तो असली फायदा क्या है? ये सिर्फ 10 मिनट इधर उधर बचाना नहीं है, ठीक है, ये है डिसीजन फटीग का खात्मा। जरा सोचिए कि हर दिन हम सैकड़ों छोटे छोटे फैसले लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब कौन सा डिसीजन यू झटके में हमने ले लिया। वेल, कौन सा ईमेल पहले पढ़ना है, कौन सी मीटिंग रीशेड्यूल करनी है, कितना पैसा आज खर्च करना सेफ होगा, ये सब छोटे छोटे फैसले मिलकर हमें मानसिक तौर पर थका देते हैं, ठीक है। फिर चाहे हम खुद इस थकान को महसूस ना करें, लेकिन बैकएंड में ये काम कर रहा होता है। तो जब AI जिंदगी की एडमिनिस्ट्रेटिव झंझट संभाल लेता है, तब आप अपनी मेंटल एनर्जी को उस चीज के लिए बचा लेते हैं जो इंसान सबसे बेहतर करते हैं, दैट इज स्ट्रेटजी, सोचना, क्रिएटिविटी और लोगों से सच्ची तरह जुड़ना। और यही है असली मायने में AI का तोहफा। ये हमें मशीन नहीं बनाता बल्कि हमें ज्यादा इंसान बनाने में मदद करता है, क्योंकि जब रूटीन का बोझ कम होता है ना जनाब, तब हम अपना सबसे बेहतर हिस्सा, अपने इमेजिनेशन, अपना दिल और अपने रिश्ते उन चीजों को दे पाते हैं जिनके वो हकदार हैं। अब जनाब बात करेंगे AI अराउंड द वर्ल्ड।
सबसे पहले अपने ही रीजन की हम बात करते हैं दैट इज UAE एंड सऊदी अरेबिया सोवरेन हाई इंपैक्ट AI इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना जोर शोर जारी रखे हुए हैं रीजनल टेक समिट्स के हाल ही के डेटा के मुताबिक छोटे और जो कहते हैं ना मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस या मीडियम इंडस्ट्रीज में लोकलाइज्ड अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अपनाने में पिछले साल के मुताबिक 45% का जबरदस्त इजाफा हुआ है अपनी कस्टमर कम्युनिकेशन और डेली वर्कफ्लोस को ऑटोमेट करने के लिए रियाद के रिटेल से लेकर दुबई के लॉजिस्टिक्स हब तक बिजनेसेस पुराने भारी भरकम CRM सिस्टम्स को हटाकर नेटिव अरेबिक बोलियों वाले AI वर्कफ्लो एजेंट्स अपना रहे हैं जो रीजनल लैंग्वेज अडॉप्शन के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उधर सिलिकॉन वैली और यूरोप में साल 2026 के आखिर में ध्यान शिफ्ट हो चुका है एजेंटिक मल्टी मोडालिटी की तरफ बड़े बड़े रिसर्चेस जो AI रिसर्चेस हैं वो ऑन डिवाइस पर्सनल एजेंट्स लॉन्च कर रहे हैं जो आपके स्मार्टफोन के अंदर ही रहेंगे सारी एप्स में सिक्योरली काम कर सकते हैं बिना पर्सनल डेटा को सेंट्रल क्लाउड सर्वर्स पर भेजे इसका मतलब है कि आपका कैलेंडर आपकी बैंकिंग और आपकी कम्युनिकेशन सब कुछ आपके फोन के चिप पर ही बातचीत कर सकते हैं जिससे वो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की चिंता खत्म हो जाती है जो पहले बहुत से लोगों को परेशान करती थी और उन्हें पीछे छोड़ देती थी और आखिर में टोक्यो में रिसर्चर्स ने एक ऑटोनॉमस वर्कप्लेस स्ट्रेस रिडक्शन सिस्टम पेश किया है ईमेल की रफ्तार और स्केड्यूल की डेंसिटी को मॉनिटर करके ये सिस्टम मैनेजर्स को अलर्ट करता है जब पूरी टीम का स्केड्यूल बर्नआउट थ्रेशहोल्ड पार कर जाता है और खुद ही मीटिंग फ्री फोकस डेज सजेस्ट करता है यस और ये एक ऐसा AI इम्प्लीमेंटेशन है जिसे हर कोई पसंद कर रहा है अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं टूल ऑफ द वीक की तो जनाब अब वक्त आ गया है हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का जिसमें हम अपनी लाइफ को और आसान करते हैं या हम आपको एक बड़ा ही शानदार सा प्रैक्टिकल टूल देते हैं जो आप आज से ही इस्तेमाल करके फौरन नतीजे पा सकते हैं इस हफ्ते की स्पॉटलाइट है reclaim.ai पर एक इंटेलिजेंट कैलेंडर असिस्टेंट जो सीधे गूगल कैलेंडर या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से जुड़ जाता है ये काम कैसे करता है आइए जानते हैं पुराने ट्रेडिशनल बुकिंग लिंक्स के जैसे आपके कैलेंडर्स को सख्त ब्लॉक्स में बंद नहीं करता रिक्लेम अडैप्टिव हैबिट्स बनाता है आप इसे बताइए मुझे रोज 30 मिनट टेक न्यूज पढ़नी है और हर हफ्ते में 3 घंटे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए चाहिए रिक्लेम इन टास्क को खुद ब खुद खाली जगहों में फिट कर देता है अगर कोई जरूरी मीटिंग अचानक आपके रीडिंग टाइम के ऊपर बुक हो जाए तो रिक्लेम उसे डिलीट नहीं करता बल्कि अगली बेहतरीन खाली जगह पे फौरन शिफ्ट कर देता है और अब बारी है प्रो प्रॉम्प्टिंग टिप की तो जब भी आप चैट GPT, क्लॉड या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशंस लिखने के लिए करते हैं तो सिर्फ ये मत कहिए एक ईमेल लिख दो जिसमें मीटिंग मना कर दी जाए है कि नहीं जेनेरिक प्रॉम्प्ट सिर्फ जेनेरिक रोबोटिक जवाब देता है इसके बदले रोल कॉन्स्टेंट आउटकम यानी RCO फ्रेमवर्क इस्तेमाल कीजिए रोल दीजिए एक डिप्लोमेटिक बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह काम करो कॉन्स्टेंट ये होगा कि 3 लाइन का ईमेल लिखो पोलाइट और गर्मजोशी भरे अंदाज में जिसमें इस थर्सडे की पार्टनरशिप मीटिंग के लिए मना किया जाए ये जरूर मेंशन करो कि मेरा इस क्वार्टर का कैलेंडर पूरा भरा हुआ है और आउटकम क्या होगा एक अल्टरनेटिव भी दो उन्हें कहो कि वो एक पेज का ब्रीफ ईमेल पर भेज दे और जनाब आज ही ये फ्रेमवर्क ट्राई कीजिए और देखिए कैसे आपका ईमेल रिप्लाई टाइम 10 मिनट से घटकर सिर्फ 30 सेकंड रह जाता है तो जनाब आज का हमारा एपिसोड AI अनलॉक्ड का अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है तो याद रखिए कि AI आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट लेने नहीं आया है ये तो बस एक अल्टीमेट नेविगेशन सिस्टम है जो सारा ट्रैफिक संभाल लेता है ताकि आप सफर का मजा ले सके और वहां पहुंच सके जहां आप पहुंचना चाहते हैं तो इस हफ्ते आई एम वेरी सर्टेन कि हम अपने डेली रूटीन

0: स्पेशल टून है कि नहीं. और इसी के साथ अब आप मुझे देंगे इजाजत क्योंकि वक्त हो गया मेरे जाने का. एआई अनलॉक्ड में कुछ और नई बातों के साथ मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस. सो डोंट मिस इट. तब तक के लिए क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ जाइए FM 107 के और अपनी एफ अमिता को भी वहां से ढूंढ सकते हैं. और कोई सजेशन है देन 666-222-107 पर आप शेयर कर सकते हैं. तो अभी अपना ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून टू FM 107 दिल से देसी.
1: RJ A for Amita ke saath sirf FM 107 par dil se desi.
2: Qatar ka pehla desi radio station FM 107 dil se desi.
3: दोस्तों आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है. अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और जहनी तरक्की के मुताबिक हों. गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं अगर सही इंतखाब किया जाए. आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
4: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
0: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की. व्हाई मनी एजुकेशन मैटर मोर देन एनीथिंग. देखिए आज के इस फास्ट चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है. जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो उससे पैसे को समझना नहीं बल्कि उसे पैसे को मैनेज करना स्मार्ट डिसीजंस लेना ये इम्पोर्टेंट होता है. इसमें आपकी बजटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग डेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग ये सारी चीज़ें शामिल हैं. बहुत से लोग अच्छी इनकम अर्न करते हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से अपने पैसे को इफिशेंटली मैनेज नहीं कर पाते. फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि आज हर शख्स रोजाना फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है. जब हम शॉपिंग करते हैं सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम फाइनेंशियल डिसीजंस ही तो ले रहे होते हैं. और अगर इन डिसीजंस के पीछे प्रॉपर नॉलेज ना हो तो इंसान फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर सकता है जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सबसे बेसिक पार्ट है बजटिंग. और बजटिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखना. जब इंसान को पता होता है कि हर मंथ कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है तो उसके लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. बजटिंग से अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होती है और सेविंग्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. देखिए सेविंग्स भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. बहुत से लोग सिर्फ जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करते हैं. सेविंग इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके काम आती है. अगर अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ जाए जॉब चली जाए या कोई और इमरजेंसी तो ये आपको एक सपोर्ट देती है. वही फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को भी सिखाता है. सिर्फ पैसा सेव करना या पैसा कमाना कभी कभी काफी नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वक्त के साथ पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है. जो वैल्यू कल 1 लाख की हुआ करती थी अब बिल्कुल भी नहीं है ना. मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर अर्ली एज में बजटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप कर दी जाए तो फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने में आसानी होती है. देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है बल्कि पैसे को वाइजली मैनेज करने के बारे में है. एक शख्स हाई सैलरी अर्न करके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करता है अगर उसे मनी को मैनेज करना ना आता हो. वहीं दूसरी तरफ एवरेज इनकम वाला पर्सन फाइनेंशियल सिक्योर हो सकता है अगर वो स्मार्ट डिसीजंस लेना जानता हो. तो बस आखिर में मैं

करूंगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडर्न लाइफ की सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक है। यह हमें बजट, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट की पूरी थोरो नॉलेज देती है। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं वो अपने गोल्स अचीव करके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने में कामयाब होते हैं। बस जिंदगी का जो सबसे सिंपल फंडा है ना, वो यही है। सबसे सिंपल लेसन ये हो सकता है कि जितनी जरूरी पैसे कमाना है दोस्तों, उतना ही जरूरी पैसे को समझना और मैनेज करना है। बस कोशिश कीजिए कि आप उसे प्रॉपर तरीके से कमाएं भी, मैनेज भी करें, मैनेज इन द सेंस सेव भी करें, बजटिंग भी करें, डेट को भी मैनेज करें और इन्वेस्टिंग भी करें। चलिए फिलहाल अभी के लिए तो मैं आपसे इजाजत ले लेती हूँ इस वादे के साथ कि नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। कल तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

हम बात करेंगे, जहां पर आप रिक्वेस्ट करेंगे बिगेस्ट मूवीज के हिट्स या फिर अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस नंबर्स या वो टाइमलेस एंथम्स जिन्हें सुनकर हमें लगा कि हाँ भाई, इस गाने को तो हम कभी भी सुन सकते हैं, इसमें कभी भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सबकी जिंदगी में वो गाने होते हैं, तो आपकी जिंदगी का वो गाना कौन सा है जो कि आपका हिट नंबर है? हाँ, हिट नंबर होना चाहिए, नो सैड सॉन्ग्स, हिट नंबर्स। तो शेयर कीजिए 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ, और फिर हम उन्हें फुल वॉल्यूम पे यहाँ बजाने वाले हैं। वैसे अभी शो का आगाज करते हैं एक ऐसे गाने के साथ जो कि जब रिलीज हुआ तो हर किसी के दिल की आवाज बन चुका। सैयारा का रिमिक्स वर्जन, आई पर्सनली लव इट, सो लेट्स एंजॉय। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप। द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है और अभी रिक्वेस्ट की झड़ियां से शुरू हो गई है, क्या बात है। और अभी सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज ऑफ मुमताज अहमद, और क्या गाने की रिक्वेस्ट कर दी है इन्होंने, मतलब सुनकर मजा आ जाता है। सोनू निगम एंड जसपिंदर नरूला की आवाज, गेस द सॉन्ग गाइस, समझ तो गए होगे कौन सा गाना है। गोविंदा रवीना टंडन, आहा, अखियों से गोली मारे, मतलब क्या कमाल का गाना है। मतलब जब ये गाना आया ना तो हर शादी में हर परफॉर्मेंस में ये गाना ना बजे हो ही नहीं सकता था। वैसे ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, मूवी थी दूल्हे राजा, कि इस अखियों से गोली मारे नाम की भी फिल्म आई जिसमें गोविंदा एंड रवीना टंडन थे। सो या दिस इज अ सॉन्ग जो कि मैं पूरा पूरा आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। और उसके बाद मुझे आरिफ की रिक्वेस्ट आई है एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग, इट्स द टाइम टू डिस्को। कल हो ना हो फिल्म से, ओहो हो, शो का आगाज इतना कमाल का होगा मैंने सोचा नहीं था। क्या रिक्वेस्ट आई है भाई साहब, तो चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए, इंजॉय कीजिए FM 107 पर, और अपने डेडिकेशंस, अपनी रिक्वेस्ट 666-222-107 पर हमसे शेयर करें, 666-222-107 पर। और थीम है सारे हिट नंबर्स। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
4: Cricket ho.
5: And he's hooked that away. That's four runs.
4: Football ho. या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
6: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
6: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
4: आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए, या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और आवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम। पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
7: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
8: Yes, and now welcome once again, FM 107, सुन रहे हैं आप द रिक्वेस्ट शो पर, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और अभी अगली जो रिक्वेस्ट है दैट इज अब्दुल वहाब की, एंड जरा हटके जरा बचके फिल्म का ये गाना है, इट्स अ रियली अडोरेबल क्यूट सॉन्ग, क्या बात है, वरुण सचिन जिगर का कॉम्बिनेशन, इट्स अ ब्यूटिफुल रोमांटिक सॉन्ग। और ये गाना एक्चुअली ये भी जताता है कि यू नो कि जब किसी से मोहब्बत होती है तो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे वादे उतने मायने नहीं रखते, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी टुगेदर, है कि नहीं। तो ये गाना पूरा पूरा आपकी राहों में आएगा और उसके बाद रिक्वेस्ट आई है अहमद की और रबीर की, और वो सुनना चाहते हैं जूली फिल्म का गाना दिल क्या करे, मतलब उसका रिक्रिएटेड वर्जन सुनना चाहते हैं। ओरिजिनली तो ये जूली फिल्म का गाना था, किशोर कुमार ने गाया था, उसके बाद जो सबसे पहला इसका रिक्रिएटेड वर्जन आया वो शान ने गाया, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है दैट इज़ सनम बैंड का। सो ये गाना हम आपके लिए प्ले करेंगे, आई होप यू गोना लव इट, तो ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, आपका वो हिट गाना कौन सा है जिससे आप हफ्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, सो 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने सॉन्ग डेडिकेशंस भेजें। और अभी बने रहे FM 107 पर दिल से देसी।

0: QA.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
2: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत, उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है. और ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप. ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर. एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
3: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की.
4: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल.
3: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
5: Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. और अब अगली जो रिक्वेस्ट है, मतलब ये एकदम नए गानों की तो नहीं है, लेकिन ये वो गाने हैं जो जब रिलीज हुए थे तब ऐसे पॉपुलर हुए थे कि उफ क्या कहना. तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है इमरान की और फिल्म का नाम है कोयला. अलका याग्निक एंड कुमार सानू की आवाज. द सॉन्ग इज देखा तुझे. तो वैसे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित की पेयरिंग बड़ी प्यारी सी लगी है इस फिल्म में ना. और हम अक्सर जब फिल्मों की बात करते हैं तो स्टंट्स के लिए हमेशा अक्षय कुमार का नाम बहुत ज़्यादा यू नो पॉपुलर है. लेकिन इस फिल्म में जब फायर के बीच से भागना था तब ये सारा स्टंट शाहरुख खान ने खुद किया विदाउट एनी बॉडी डबल. सो यस, ये काफ़ी चैलेंजिंग था लेकिन ही डिड इट. उसके बाद अगली रिक्वेस्ट है आसिफ एंड रहमान की. और क्या कमाल की रिक्वेस्ट है. वांटेड फिल्म का है ये गाना. वाले गाना पूरा पूरा खुद ही सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. और आप कौन सा हिट गाना सुनना चाहते हैं, कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है, तो थिंक अबाउट इट. 666-2107 is our number. उस पर आप अपनी हिट लिस्ट हमसे शेयर कीजिए, या किसी को अगर आप गाना कोई डेडिकेट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं. और अभी कोयला फिल्म का ये गाना आपकी डेडिकेशन पर. लेट्स एंजॉय. स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है एंड डेफिनेटली आप अपने हिट हिट गाने एंजॉय कर रहे हैं अपनी पसंद के। तो कैसा लग रहा है अभी तक, कैसा लगा? हाँ, वेल आई कैन सी कुछ मैसेजेस में हमारे लिसनर्स की कुछ, वो कहते हैं ना, दिल से प्यारी प्यारी सी शिकायतें आई। आई शुड से इट्स अ वेरी क्यूट मैसेज जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अमिता ये वाला गाना क्यों नहीं प्ले कर रहे हो। देखो, मैं आज रेडियो पे बताना चाहती हूँ, डेफिनेटली वी आर प्लेइंग ऑल द सॉन्ग्स और हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पसंद के गाने हम प्ले कर सकें, लेकिन कुछ गाने इस तरह के होते हैं जिनके रूल्स के हिसाब से हम नहीं प्ले कर सकते। सो डोंट माइंड इट, यहाँ पर गानों का एकदम जजीरा है, कुछ भी कम नहीं है, तो आप कोई भी गाना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर मोहम्मद फारूक की रिक्वेस्ट है एंड द सॉन्ग इज गलियां, अंकित तिवारी की आवाज़। ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इस गाने को मैं साजिद जी को भी डेडिकेट करने वाली हूँ, आई एम वेरी सर्टन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और ये वो गाना है जिससे अंकित तिवारी एकदम लाइम लाइट में आ गए थे, सो यू गोना लव दिस सॉन्ग। और इसके बाद ओ हो हो हो, कुमार सानू का औरा और ये वाला एरा मोहम्मद यूसुफ खान की रिक्वेस्ट है एंड व्हाट अ सॉन्ग। यस, पहली बार जब प्यार किसी से होता है, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। तो ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आएंगे और उसके बाद हम क्विज टाइम लेकर आएंगे जहां पर आपका फिल्मी नॉलेज चेक होगा। सो डू लेट मी नो कि अभी आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, कौन सा वो हिट गाना है जो कि आपके जहन में हमेशा रहता है। सो 666-22-107 इस पर मैसेज करें अपने डेडिकेशंस अपनी स्टोरी के साथ, या किसी खास को डेडिकेट करना है तो भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से फिर से इस्तकबाल है। पहले टाइम है क्विज टाइम, जहां पर हम आपका फिल्मी नॉलेज चेक करने वाले हैं, तो चलो आ जाओ
0: क्विज टाइम।
1: और यहाँ पर अभी हम एक गाना आपके लिए प्ले करने वाले हैं, आपको गाना पहचानना है। और ये जो जोड़ी है ना, ये रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की इतनी कमाल की जोड़ी थी इस गाने के वीडियो में कि गाना जब रिलीज हुआ तो ये सुपर डुपर हिट हुआ। अब गेस करो कि ये गाना कौन सा है।

कमऑन कमऑन, थिंक थिंक, कौन सा गाना है, सोचें इसके बारे में. और 666-2107, 666-2107 पर हमें लिखकर बताएं तो ये पूरा पूरा गाना आपके नाम हो जाएगा. और इसी बात पर हमें एक मैसेज आया है ऐश का, जो कि हमारी एफएम 107 की टीम से काफ़ी खुश हैं और काफ़ी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो ऐश, थैंक यू सो मच. और कहते हैं कि कोई भी गाना जो आप अगला प्ले करोगे वो मेरी तरफ से आप सबके लिए डेडिकेशन है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. अगला गाना, उफ व्हाट अ ट्रैक, मतलब एक तो फोक स्टाइल, ऊपर से बंजारा धुन. किसी ने सोचा नहीं था कि जब ये गाना रिलीज होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये ब्लॉकबस्टर हिट होगा, इतना ज़्यादा फेमस होगा. और सारे प्रोड्यूसर्स ने, स्टेक होल्डर्स ने बेट लगाई थी. और जब ये गाना हिट हो गया, तब जो पार्टी मनी और जो सिंगर्स और बाकी लोगों को डबल अमाउंट मिला, उसके बारे में क्या कहना. इट्स जस्ट अ थिंग, जो हमें पता चली तो हमने कहा चले आपसे भी शेयर करें. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक. और इस गाने की रिक्वेस्ट की है मोहम्मद सादरी आलम ने. सो डू एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी.

0: बिल्कुल आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते हैं द रिक्वेस्ट शो पर फिर से हाजिर हो चुके हैं
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
0: तो यस जनाब बहुत-बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर द रिक्वेस्ट शो का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है और हमने थोड़ी देर पहले क्विज टाइम में एक गाना आपको बीच से सुनाया और कहा कि गाना जल्दी से पहचानो क्या बात है अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान की ये शानदार सी आवाज है और रणबीर कपूर और हमारी जो दीपिका पादुकोण है उन पर ये गाना पिक्चराइज किया गया और शानदार गाना है वैसे इस गाने को पहचाना कितने लोगों ने है मुश्किल से 4-5 लोगों ने ही पहचाना है ज्यादातर लोग बलम पिचकारी लिख रहे हैं नो द सॉन्ग इज दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड और इस गाने को पहचाना है आसिफ ने और अहमद ने पहचाना है अरबाज ने पहचाना है और आरिफ ने भी पहचान लिया है क्या बात है और साजिद ने भी पहचाना है तो भाई इनके लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं क्या बात है और इसी के साथ ये गाना पूरा पूरा भी आपकी राहों में आने वाला है तो इसे एंजॉय कीजिए और आज का जो हमारा द रिक्वेस्ट शो है भाई यहाँ पर ख़त्म होता है कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 4 बजे सो डोंट मिस इट और इस दौरान अगर थोड़ी बहुत याद आ जाए ना हमारी तो क्या करना है एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए आर जमीता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं और जाते जाते ये कहना तो बनता है हम है राही प्यार की फिर मिलेंगे चलते चलते स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: भी हमारे सारे कतर को सलाम. मैं हूँ अमिता आपके साथ और हम है यहाँ इस जगह जहाँ आज दोहा की बिल्कुल वो कहते हैं ना दिल से डिजिटल रेवोल्यूशन की धक धक साफ हमें सुनाई दे रही है सफा. और एक चीज बताओ कि क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि आजकल जब हम अपना सोशल मीडिया फीड खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी बहुत बड़ी शोर शराबे वाले मार्केट में आ गए. इट्स गेटिंग अ बिट क्राउडेड. तुम्हें नहीं लगता?
1: एक हकीकत बात है, मैं ये सोचती रहती हूँ. मैंने सोचा सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है अमिता. वो जो ग्लोबल विलेज का ख्वाब था ना, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है मुझे लगता है. इट्स टू नॉइजी. हर जगह एड्स हैं, हर जगह एल्गोरिथम्स, हर जगह अनजान लोग भी मौजूद हैं. इसीलिए आज नेक्स्ट जेन पर हम बात कर रहे हैं एक मैसिव शिफ्ट की. देखो भाई, हम ग्लोबल सोशल मीडिया के बिग स्टेज से हटकर अब अपने छोटे प्यारे और प्राइवेट से माइक्रो कम्युनिटीज के बारे में बात करेंगे आज.
0: एब्सोल्युटली. एंड इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. हाँ, ये चीज का हमेशा ख्याल रखना. पर आज हम बात करेंगे उन प्राइवेट नेटवर्क्स की, उस कमाल की टेक्नोलॉजी की जो बिना इंटरनेट के भी आपको कनेक्टेड रख सकती है. एग्जैक्टली. हम बात करेंगे मैश नेटवर्किंग की और कैसे आप इन डिजिटल ट्राइब्स के लीडर बन सकते हैं, इसका भी हम जिक्र करेंगे.
1: तो भाई, चाहे आप ल्यूसेल में बैठे हुए कोई गेमर हो, मुशर्रफ की क्रिएटिव स्टूडियो में आर्टिस्ट हो, या फिर QSTP यानी कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में एक टेक फाउंडर हो, भाई ये एपिसोड आपका रोड मैप है कि डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर के लिए आपने क्या करना है. तो भाई, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि नेक्स्ट जेन का ये सफर अब शुरू होने लगा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड.
0: तो सफर शुरू हो गया है और आप सभी का फिर से इस्तकबाल है. FM 107 पर हमारा नेक्स्ट जेन शो चल रहा है. मैं हूँ अमिता आपके साथ और हमारी सफा भी. और अब बारी है बात करने की व्हाट्स ट्रेंडिंग. तो सफा, चलो अब थोड़ी ना दिल से बात करते हैं हम कि लिसनर्स, तो आप सब भी सोचिए कि क्या आपने नोटिस किया है कि हमारी डिजिटल लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है. और सफा, तुमने देखा ही होगा कि लोग अब अपनी पब्लिक वॉल्स पर ना या सोशल मीडिया फीड्स पर, मतलब ये मैंने कुछ ही दिनों में ऑब्जर्व किया है कि जो पोस्ट है ना वो करना थोड़ा सा कम कर चुके हैं. यू नो, मतलब वो जो पहले हर लंच की फोटो आ गई, हर वेकेशन की अपडेट आ गई, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वो चीज हो रही है. ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, बट इट्स लेस नाउ. तो मुझे लग रहा है कि ये जो शौक था ना, वो धीरे धीरे लोगों का खत्म होते जा रहा है.
1: हाँ हाँ, बिल्कुल अमिता, ये बात तो मुझे ऐसा लगता है तुमने सही पकड़ी है. अच्छा, अब तो ऐसा लगता है कि पब्लिक फीड पर पोस्ट करना थोड़ा सा क्रिंज हो गया है.
0: राइट.
1: या फिर लोग थोड़ा डरने लगे हैं शायद. अच्छा, अब ना लोग प्राइवेट DMs या आप कह लें कि जो वो चैटिंग के ग्रुप्स होते हैं,
0: right.
1: वो या वो जो छोटे छोटे टेलीग्राम सर्कल्स में ज्यादा एक्टिव हैं. इनफैक्ट अमिता, वो जो 2025 और 2026 के डिजिटल ट्रेंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना,
0: right.
1: वो इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दे रहे हैं. पता है क्या?
0: क्या?
1: डिजिटल कैंप फायर.
0: वाओ, डिजिटल कैंप फायर्स. वाह सफा, मतलब ये सुनने में कितना सुकून भरा लग रहा है ना. मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ठंडियों के दिन है और हम अपने दोस्तों और फैमिली के साथ कैंप फायर कर रहे हैं और बारबेक्यू खा रहे हैं. एनीवे, थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, ये बेसिकली क्या है?
1: देखो भाई, इमेजिन करते हैं. ठीक है,
0: ठीक है.
1: इमेजिन करें जैसे पुराने जमाने में ना, या आज भी हमारे कतर के डेजर्ट्स में लोग आग के जो चारों तरफ बैठते हैं ना, वैसे बैठे हुए, ठीक है, और एक दूसरे को किस्से सुना रहे हैं, जिसे मजलिस भी कहते हैं. अक्सर औकात होता है ना, मजलिस में बैठते हैं,
0: right.
1: एक दूसरे के इर्द गिर्द बैठते हैं,
0: right.
1: वहाँ हर कोई नहीं होता, सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं या जिनसे आपका कोई कनेक्शन होता है. अच्छा, अब वही चीज डिजिटल दुनिया में भी हो रही है,
0: राइट.
1: हम बड़े शोर शराबे वाले ग्लोबल स्क्वायर से हट कर अपने छोटे छोटे कबीले या ट्राइब्स बना रहे हैं.
0: एग्जैक्टली. और ये सिर्फ ना, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि यूं ही बात नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है, ये एक रिएक्शन है जो लोगों का आया है. कतर के यंग लोग अब डिस्कॉर्ड, जिनेवा और स्पेशलाइज्ड सर्कल्स की तरफ मूव कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा वो कहते हैं ना रीजन, पता है क्या है? वो है एल्गोरिदम फटीग. और सफा, मैं तो सच में ना कभी कभी थक जाती हूँ, मतलब एक्चुअली बताना चाहती हूँ वी लव टेक्नोलॉजी कि एआई से जो हर वक्त हमारा जो स्क्रीन है वो बात करता है और कहता है कि आप ये करो, यहाँ बैठो, मतलब वो जो सारी कभी कभी लिस्ट आती है ना, ऐसा लगता है बस करो यार, नहीं बात नहीं करनी. ऐसी फीलिंग आती है.
1: ओह माय गॉड, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन इट गर्ल.

0: Oh my god,
1: क्या एक्सिट है भाई. हाँ जी,
0: तो भाई वो फॉर यू पेज वाला जो सिलसिला है, अब फॉर यू, या हम लोग कह रहे हैं कि वो जो एक सिलसिला था वो हम कहते हैं फॉर यू पेज,
1: राइट.
0: अब फॉर यू लगता ही नहीं है इसके, आप कोई पोस्ट लगाएं तो लोग नहीं लगाते फॉर यू पेज. इट फील्स लाइक अब आप कह रहे हैं कि बिल बोर्ड हो जाता है ना. देखिए, हम बोर्ड हो गए उन वीडियोस से जो सिर्फ वायरल होने के लिए बनाई जाती हैं. ये एक सीधी सी बात है. सब कुछ ना अब मार्केट में एक जैसा लग रहा है, वही ट्रांजिशंस हैं, वही म्यूजिक है, वही फेक स्माइल्स हैं, तो सब अब उससे उकता गए.
1: ये बात तो सही कही तुमने. और इस नॉइस से ना बचने के लिए अब ये जो माइक्रो कम्युनिटीज है इसका कल्चर शुरू हुआ है. हम वापस हाइपर नीश इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं. अब सफा, जब मैं हाइपर नीश बोलती हूँ ना तो उसका मतलब सिर्फ हॉबीज नहीं होता है.
0: हैं? तो फिर क्या होता है? मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे फैशन पसंद है,
1: ओके,
0: तो क्या वो नीश नहीं होगी?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं सफा. सो मैं बताती हूँ कि फैशन बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है. अब लोग ढूंढते हैं कतरी सस्टेनेबल फैशन के ग्रुप्स. सो ऐसे सर्कल्स जहाँ लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने ट्रेडिशन को एनवायरमेंट फ्रेंडली कपड़ों के साथ जोड़ सकते हैं. लोग सिर्फ गार्डनिंग नहीं करते, दोहा की गर्मी में वो लोकल हाइड्रोपोनिक्स इन दोहा के बारे में भी बात करते हैं.
0: सही.
1: और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की दुनिया क्या सोच रही है, उन्हें बस उन वो 50-100 लोगों से मतलब है जो उनकी तरह मिट्टी और पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं.
0: आहा, मतलब कम्युनिटी ओवर सेलिब्रिटी. सही, राइट राइट राइट. अच्छा, और मजे की बात ये, मैंने भी ये देखा है कि कतर में ना ई स्पोर्ट्स का भी एक अलग ही क्रेज आ रहा है.
1: राइट राइट.
0: अच्छा, पर अब लोग सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स नहीं देखते, वो नीश ई स्पोर्ट्स ग्रुप्स में स्ट्रेटजी बनाते हैं भाई. अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक चीज देखी थी, नोटिस की थी, जो कि मुझे बड़ी, मैंने सोचा शायद मैं ऐसी हूँ, लेकिन मुझे बड़ी अमेजिंग लगी ये चीज कि मैंने लुसेल में एक ग्रुप को देखा. वो ना सिर्फ रेट्रो गेमिंग पर फोकस कर रहे थे.
1: वाओ.
0: अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ ऐसी हूँ कि जो पुराने कंसोल्स पसंद करती थी, लेकिन वो पुराने कंसोल्स ढूंढते और उन्हें फिक्स करते. It's so specific.
1: Wow, सुनने में सच में बहुत अच्छा लगता है. और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है मेंटल पीस. जब आप एक माइक्रो कम्युनिटी में होते हैं ना, तो आपको वो लाइक, कमेंट्स, ये काउंटिंग की ना चिंता नहीं होती. आपको ये डर नहीं होता कि कोई स्ट्रेंजर आकर आपको ट्रोल तो नहीं कर देगा या आपको कुछ और तो नहीं कह देगा.
0: हाँ, बिल्कुल सही. अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कही. और अमिता, 2026 का जो सबसे बड़ा ट्रेंड हम देख रहे हैं ना,
1: राइट,
0: उसे आप कह लें कि टेक एक्सपर्ट्स आइडेंटिटी स्लेइंग कह रहे हैं. ये सुनने में थोड़ा सा डेंजरस लगता है वर्ड ना, आइडेंटिटी स्लेइंग, पर एक्चुअली ये बहुत लिबरेटिंग है.
1: हाँ, एंड आइडेंटिटी स्लेइंग मतलब इसका मतलब क्या, हम अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं? अब इसका जवाब हमारी सफा देगी.
0: अच्छा, नहीं नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता इसका ऐसा कुछ मतलब है. ऐसा नहीं कि हम अपनी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं, बल्कि सिंप्लीफाई कर रहे हैं.
1: right.
0: देखें, इन माइक्रो कम्युनिटीज में आपको अपना जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स होती हैं, यानी वो प्रोफेशनल और परफेक्ट बंदा, या अपना जो कोई हम लोग सोशल मीडिया पर सेल्फ यानी खुद को हम पोर्ट्रे करते हैं ना, वो हमेशा खुश रखने वाला इंसान बनाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, आपको वो परफेक्ट फोटो या परफेक्ट सीवी नहीं दिखानी, ठीक है, आप बस एक एंथुजियास्टिक बनकर सीख सकते हैं, रह सकते हैं. अगर आपको विंटेज वॉचेस का शौक है तो उस ग्रुप में आप सिर्फ एक वॉच लवर हैं. No judgments, no status, only pure passion.
1: Wow, मतलब ये तो बहुत जरूरी है सफा, कि आजकल के यूथ पर इतना प्रेशर है. मतलब ये जो भी आपने अभी एक्सप्लेन किया कि इस प्रेशर में पर्सनल ब्रांड बनने की जो जद्दोजहद होती है उसको लेकर हर कोई परेशान है, हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है. लेकिन ये जो माइक्रो कम्युनिटीज हैं, मतलब आई फील इट कि थोड़ा सा बेनिफिट, थोड़ा नहीं मतलब मेंटल पीस के लिए तो पूरा बेनिफिट है. सो ये जो माइक्रो कम्युनिटीज हैं, ये हमें इजाजत देती हैं कि हम एवरेज हो और हम सीखने वाले हो और हम बस हम हो.
0: और भाई इसका असर हमारे दोहा के लोकल कल्चर पर भी पड़ रहा है.
1: राइट.
0: अगर हम लोकल लेवल पर जानने की कोशिश करें ना, तो कतर में हाइपर लोकल एप्स का एक नया वेव आया हुआ है.
1: राइट.
0: पर्ल या लुसेल के अगर आप टावर्स में रहने वाले लोगों को देखें, तो वो भी अब एप्स यूज कर रहे हैं ऐसी वाली जो सिर्फ उनकी बिल्डिंग्स के नेबर्स को कनेक्ट करती हैं.
1: हाँ, ये मुझे पता है कि बहुत शुरुआती दौर में जब मैं वकरा में रहती थी तो वहां पर भी यही होता था.
0: सही.
1: कि लोग अपने ही ग्रुप्स बनाकर उन पर बातें करते थे.

0: वेल मैंने सुना है कि यू नो ये जो चीज है ये सिर्फ मैंने अब जो कि अब हम बात कर रहे हैं तो वकला तक सीमित नहीं है, इट्स एवरीवेयर. और जैसे कि किसी को अपनी ड्रिल मशीन शेयर करनी है या किसी को सुबह जॉगिंग पार्टनर चाहिए, ये चीजें भी आप उन ग्रुप्स में लिखते हैं एंड सी व्हाट आपको बेनिफिट होता है.
1: अच्छा एग्जैक्टली मैं बात मानती हूँ, रिसोर्स शेयरिंग हेल्प या बस एक कॉफी प्लान, सब कुछ प्राइवेसी फर्स्ट है. ये हमारे दोहा के सोशल फैब्रिक को बिल्कुल नए तरीके से जो है ना वो बंद कर रहा है. अच्छा पहले हम सिर्फ पड़ोसी होते थे, अब हम एक डिजिटल मैश में जुड़ रहे हैं. और क्योंकि ये ग्रुप छोटे हैं इनमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई होता है भाई. ये बड़ी अच्छी चीज है, हमें पता है कि हम किससे बात कर रहे हैं. वो जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग कहते थे ना कि नहीं हमें नहीं पता सामने वाला कौन है, वो एटलीस्ट जो है ना चीज उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है.
0: एब्सोल्युटली सफा. और मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि हमारी एक लिसनर है फातिमा, वो मुशहरे में रहती है और उसने हमें बताया था कि एक सीड एक्सचेंज माइक्रो कम्युनिटी ज्वाइन की थी उन्होंने कतर में. और उनका कोई पब्लिक पेज नहीं है, सिर्फ एक प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर है और वो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को ऑर्गेनिक सीड्स देते हैं और दोहा के क्लाइमेट में सब्जियां उगाने के टिप्स शेयर करते हैं कि भाई क्या करें जिससे यू नो थोड़ा सा ग्रीनरी भी हो और खाने पीने का भी आइटम हमको इजिली मिल सके. और फातिमा ने कहा कि उसे जितना सुकून उन 20 लोगों से बात करके मिलता है वो 20,000 फॉलोअर्स से नहीं मिलता. हालांकि ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई सोशल मीडिया पर है, हम भी सोशल मीडिया पर हैं, बट व्हेन जब हम बात करते हैं ना कभी कभी वो मेंटल पीस की तो ये माइक्रो कम्युनिटीज बहुत हेल्पफुल हो जाती.
1: मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि फातिमा और मेरी थिंकिंग एक जैसी है.
0: एब्सोल्युटली.
1: अच्छा, कितनी प्यारी बात है. जो लोग इसको समझ सकें, सुकून की जो इवैल्यूएशन है ना वो ऐसे नहीं होती कि आपके पास 20,000 लोग हैं. समटाइम्स यू फाइंड इट इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी. ये तो हम सब ढूंढ रहे हैं सुकून जो चीज है. देखिए डिजिटल अफरा तफरी और ये जो केओस मचा हुआ है ना इससे हटकर हमारी लाइफ कुछ और ढूंढ रही है और माइक्रो कम्युनिटीज हमें वो पुराना मोहल्ला वो फील वापस दिलाती हैं पर एक अलग अंदाज में. मतलब ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो हमें जो ना कनेक्ट करती हैं.
0: एब्सोल्युटली सफा. लेकिन ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इस पर ना एक सवाल भी आता है कि क्या इन छोटी कम्युनिटीज में रहने से हम वो कहते हैं ना एको चैम्बर्स में तो नहीं फंस जाएंगे. मतलब कि अगर हम सिर्फ उन लोगों से बात करेंगे जो हमारी तरह सोचते हैं तो क्या हम आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे, हमारी ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं, या हम लाइफ में अपडेटेड रहेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है.
1: अच्छा ये सवाल बड़ा भी बहुत गहरा भी है अमिताभ. मैं इस बात को मानती हूँ. रिस्क तो हर जगह होता है भाई. देखो अगर हम सिर्फ अपनी पसंद की बातें सुनेंगे ना तो शायद हमें नई चीजों के लिए कोई वैसे कहते हैं ना वी डोंट हैव इयर्स फॉर इट, हमारे कान बंद हो जाएंगे उन चीजों के लिए. पर एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि 2026 में लोग मल्टी ट्राइबल हो जाएंगे. मतलब ये कि भाई मतलब यूं कह लें कि मैं एक ही वक्त में एक गार्डनिंग ग्रुप का हिस्सा भी बन सकती हूँ, एक एआई कोडिंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हूँ और एक लोकल कतरी पोएट्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती हूँ. मतलब ये कि हर ग्रुप में मेरी पर्सनालिटी मेरी शख्सियत का एक अलग पहलू उजागर होता है.
0: वाओ आई गेट इट कम्प्लीटली. तो हम एक बहुत सारे छोटे और इंटरेस्टिंग हिस्सों में बढ़ जाएंगे और ये बिल्कुल उस मोज़ेक की तरह है जो हमें लाइफ में ग्रोथ भी देगा और सुकून भी.
1: हाँ परफेक्ट वर्ड. वैसे तो मोज़ेक वाली क्रॉकरी भी मुझे पसंद है लेकिन मोज़ेक डिजिटल मोज़ेक हाँ ये अच्छा.
0: राइट तो कहीं ना जाएं, बने रहे एफएम 107 पर दिल से देसी.
2: वक्त रुका नहीं है वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. सिंपल स्टाइल बिग इंपैक्ट. पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही.
1: अच्छा और हमारे कतर के जो फंडर्स के लिए ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अब आपको आप कह रहे हैं कि अगला कोई सोशल मीडिया बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जो कतर के स्पेसिफिक ट्राइब्स को सर्व करे. देखें चाहे वो कोई फैल्कनरी हो, पर्ल डाइविंग की हिस्ट्री हो या मॉडर्न टेक स्टार्टअप हो, लोग उसको एंजॉय करते हैं भाई. जब आप स्पेसिफिक कर दो ना किसी चीज को तो लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं.
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, लोकल लैंग्वेज और लोकल

0: यही तीन चीजों से ना फ्यूचर की डिजिटल ट्राइब्स बनेगी. अब दोहा के लिसनर्स, आप भी सोचिए कि आपका ट्राइब कौन सा है. ठीक है, ये जितनी भी हमने बातचीत किया, थिंक अबाउट इट. क्या आप भी उस एल्गोरिदम की भीड़ में खोए हुए हैं, या आपने अपना डिजिटल कैंप फायर ढूंढ लिया है? नहीं ढूंढा है तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट.
1: अच्छा भाई, अगर नहीं ढूंढा ना तो कोई फिगर की बात नहीं है. हाँ. इतना कोई वो नहीं है, ना टेंशन लो ना टेंशन दो.
0: राइट.
1: लेकिन नेक्स्ट जेन पर आज हम आपको यही सिखाएंगे कैसे कम्युनिटीज का हिस्सा बनना है और कैसे मैश नेटवर्किंग इन्हें और भी सिक्योर बनाती है.
0: ओके. और अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत ही की है. ट्रेंडिंग तो ये है कि स्मॉल इज द बिग न्यूज, है कि नहीं? मतलब एक छोटी सी बात बहुत बड़ी न्यूज की तरह होती है. तो हम आगे बात करने वाले हैं कि कैसे ये कम्युनिटीज टेक वाइज ऑपरेट करती हैं.
1: तो भाई चले आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और अमिता से और जानने की कोशिश करते हैं. अमिता, थोड़ी बहुत और हमें अच्छी अच्छी बातें बताओ ना.
0: हाँ बिल्कुल, चलो बता ही देते हैं. वेल सफा, अगर किसी को अपनी माइक्रो कम्युनिटी शुरू करनी हो, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, स्पेशली 2026 के हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक?
1: मैं बताती हूँ. सबसे पहला स्टेप है पर्पस ओवर प्लेटफॉर्म. भाई देखो, ये मत सोचो कि चैटिंग प्लेटफॉर्म्स पर ही ऐसी चीजें बनानी है. ये सोचो कि आपका मैग्नेट क्या है. देखो वो कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को खींच कर लेकर आ जाती है. और भाई कतर में लोग ऑथेंटिसिटी को बहुत वैल्यू देते हैं. देखो अगर आपका मकसद, आपका गोल जो है वो साफ है, तो लोग जुड़ते चले जाएंगे आपसे. आपको टेंशन ही नहीं होगी कि आपने कोई मार्केटिंग करनी है, कुछ करना है. वो वर्ड ऑफ माउथ से खुद ही फैलता चला जाएगा.
0: अच्छा, लेकिन सफा एक सवाल है कि प्राइवेसी का क्या होगा, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं.
1: तो भाई देखो, प्राइवेसी जो है ना, वो एक ऐसा मामला जिसको मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी करेंसी प्राइवेसी है. 2026 में अगर आप किसी को गारंटी दे सकते हैं ना कि उनका डाटा सेल नहीं होगा और उनकी बातें सिर्फ उस सर्कल तक रहेंगी, तो आपका ग्रुप हिट है भाई, मैं बता रही हूँ. इसीलिए मैश नेटवर्किंग और डिसेंट्रलाइज्ड एप्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं. नो सेंट्रल अथॉरिटी, नो स्पाइन.
0: ट्रूली फैसिनेटिंग चल रहा है, मतलब ये सुनकर तो मजा आ गया. हाँ. और डिजिटल दुनिया वापस इंसानियत की तरफ भी लौट रही है जब हम बात करते हैं माइक्रो कम्युनिटीज की. तो छोटे ग्रुप, सच्ची बातें और गहरे रिश्ते.
1: बिल्कुल भाई, उनका कहना ये था कि जब हम किसी दूसरे फोन से कनेक्ट होते हैं ना, तो हम एक डिजिटल नेटवर्क सा, एक डिजिटल जाल, या आप कह लें कि मैश बनाते हैं, जिसे कोई पावर शट डाउन नहीं कर सकता. इन फाउंडर्स की एक बात जो मेरे दिल को वाकई में छू गई ना, उन्होंने कहा कि पहले कनेक्टिविटी का गैप खत्म करो, कम्युनिटी अपने आप बन जाएगी. उन्होंने टेक को सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि एक सर्विस समझा.
0: क्या बात है, मतलब कितनी गहरी ये चीज जो आपने शेयर करी. अगर हम देखें तो कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, ये तो मानते भी हैं. और हमारा 5G नेटवर्क दुनिया में सबसे तेज है.
1: हाँ.
0: पर फ्यूचर का स्टेप ये है कि हम सिर्फ इस इंफ्रास्ट्रक्चर के यूजर्स ना रहे बल्कि उसके पार्ट बन जाए. जैसे कि QSTP के रिपोर्ट्स भी यही कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन अब सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं रहा है, ये कतर की डिजिटल इकोनॉमी की बुनियाद बन रहा है.
1: बिल्कुल सही कहा अमिता, मैं ये बात मानती हूँ. देखो दोहा मैश जैसे स्टार्टअप्स ये दिखा रहे हैं कि हमारी जनरेशन को सिर्फ आप कह लेना कि बनी बनाई टेक्नोलॉजी यूज करना पसंद नहीं है.
0: right.
1: हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में भी हो. देखिए डिसेंट्रलाइज स्टार्टअप्स का ये फायदा है कि डाटा किसी एक सर्वर पर सेव नहीं होता ना. आपका मैसेज मेरे फोन से होता हुआ तीसरे फोन तक जाता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में. प्राइवेसी भी है और स्पीड भी है.
0: सफा मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिटी ओन्ड कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे कतर के कल्चर से बहुत मिलता जुलता है. हमारा कल्चर हमेशा से मिल बांट कर रहने और एक दूसरे की मदद करने का रहा है. सो मैश नेटवर्किंग वही मुझे लग रहा है कि कर रहा है और डिजिटल तरीके से कर रहा है.
1: ओए होए, छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है छोटे. ये बात तो बड़ी अच्छी बोली है अमिता, बिल्कुल सही बात है.
0: राइट.
1: ये डिजिटल मजलिस की तरह है जहाँ हर कोई बराबर है. इन स्टार्टअप्स के लिए कतर एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है. देखिए हमारी पॉपुलेशन ना टेक सेवी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास विजन 2030 है जो इनोवेशन को हर मोड़ पर सपोर्ट करता है.
0: बिल्कुल. और कतर नेशनल विजन 2030 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. सो दोहा मैश जैसे स्टार्टअप्स जब एजुकेशन सिटी से निकलकर QSTP में स्केल होते हैं, तो वो सिर्फ एक ऐप नहीं बनाते,

0: वो कतर के लिए एक नया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खड़ा कर देते हैं। कल को हो सकता है कि दोहा की बनी हुई मैश टेक्नोलॉजी दुनिया भर के बड़े स्टेडियम और स्मार्ट सिटीज में भी यूज की जाए।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर या तुम्हें चॉकलेट पसंद है तो वो भी
0: डार्क चॉकलेट।
1: डार्क चॉकलेट। अच्छा भाई दोस्तों, जो लोग हमें सुन रहे हैं ना और जिनके दिमाग में कोई आइडियाज हैं, देखें ये याद रखें, दोहा मैश के फाउंडर्स भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स थे। उन्होंने बस एक प्रॉब्लम को देखा और उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए एक बेहतर कल बनाना चाहता है, बस ये याद रखें।
0: सच में सफा, इन स्टार्टअप्स की कहानियां सुनकर ना ऐसा लगता है कि हम एक ना बहुत ही एक्साइटिंग दौर में जी रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी अब सिर्फ वो सिलिकॉन वैली से नहीं आती बल्कि दोहा के मुशरब और एजुकेशन सिटी के कमरों से भी निकल कर आती है।
1: तो भाई मैं तो ये कहूंगी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
0: यस।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाएं। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।
4: चलिए साथियों, अगले सेगमेंट में हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि मैश काम कैसे करता है। पर स्टार्टअप स्टोरीज का टेक अवे यही है कि टेक्नोलॉजी को सेंट्रलाइज्ड मत रखो, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि हर इंसान एक नॉड बन सके, हर इंसान एक कनेक्टर बन सके।
5: एब्सोल्युटली, बहुत खूब कहा आपने। तो हमारे सारे कतर के लिसनर्स, उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टार्टअप स्टोरी है या आप किसी ऐसे इनोवेटर को जानते हैं जो कतर में डिजिटल रेवोल्यूशन ला रहा है, तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगेगा नेक्स्ट जेन शो में इस बारे में बात करना।
4: चलो भाई अमिता, अब वक्त हो गया है थोड़ा सा टेक्निकल होने का।
5: यस,
4: देखो स्टार्टअप की बातें तो हो गई, अब बात करते हैं उस मैजिक के बारे में कि ये चीजें चलती कैसे हैं। लेट्स डाइव इनटू टेक टॉक।
5: बिल्कुल सही कह रही हो सफा। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना एफएम 107 पर अपनी अमिता और सफा के साथ नेक्स्ट जेन शो सुनते हुए।
4: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा और अमिता के साथ नेक्स्ट जेन ऑन FM 107।
5: यस,
4: चलो भाई अमिता, अब टेक्नोलॉजी के समंदर में थोड़ा सा गहरा सा गोता लगाते हैं।
5: ओके,
4: देखो हमने माइक्रो कम्युनिटीज, स्टार्टअप्स और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की, लेकिन अब समझते हैं वो इंजन जो इस डिजिटल दुनिया को चला रहा है, यानी कि मैश नेटवर्किंग। देखो अमिता, ऐसे समझाओ मुझे कि जैसे मैं कोई 5 से 9 साल का बच्चा हूँ, ठीक है?
5: ओहो, मतलब चैलेंज दे दिया ये तो सफा ने। चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेल, ट्रेडिशनल इंटरनेट को एक बड़े पेड़ की तरह समझो, ठीक है?
4: ठीक है।
5: अब उसकी एक मजबूत जड़ और तना दोनों होंगे, ठीक है? यानी इंटरनेट प्रोवाइडर।
4: ओके,
5: अब डेटा पहले वहां जाता है और फिर हमारे फोन्स तक पहुंचता है। अगर तना टूट जाए तो पूरा सिस्टम रुक जाता है, है कि नहीं?
4: यानी सेंट्रल सिस्टम।
5: बिल्कुल, लेकिन मैश नेटवर्किंग स्पाइडर वेब की तरह है, ठीक है? इसमें कोई एक सेंट्रल पॉइंट जरूरी नहीं होता। हर फोन एक नोड यानी छोटा स्टेशन बन सकता है,
4: ठीक है?
5: डेटा एक फोन से दूसरे फोन तक हॉप करता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचता है।
4: अच्छा, मतलब ये कि मेरा फोन भी एक छोटे से टावर की तरह काम कर सकता है।
5: एग्जैक्टली।
4: अरे वाह।
5: हाँ, तो अगर एक कनेक्शन टूट जाए तो डेटा दूसरा रास्ता ढूंढ सकता है। इसी वजह से मैश नेटवर्क्स रेजिलिएंट होते हैं।
4: अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि ये 2026 में इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है?
5: वेल, इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइवेसी और सोवरेनिटी। लोकल मैश नेटवर्क में डेटा को हर बार ग्लोबल इंटरनेट सर्विस तक जाने की जरूरत नहीं होती। एक कम्युनिटी के डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंक्रिप्शन की वजह से बीच से डेटा फॉरवर्ड करने वाला डिवाइस आमतौर पर मैसेज का कॉन्टेंट भी नहीं देख सकता।
4: अच्छा, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आगे इंटरनेट ऑफ अस हो गया है।
5: या एग्जैक्टली। और इसका प्रैक्टिकल यूज स्मार्ट बिल्डिंग्स, इमरजेंसी कम्युनिकेशन और कनेक्टेड पब्लिक स्पेसेस में हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बिल्डिंग का मेन इंटरनेट कनेक्शन डाउन है, तो लोकल मैश सिस्टम कनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान इमरजेंसी अलर्ट्स रिले कर सकता है।
4: और स्ट्रीट लाइट्स?
5: बिल्कुल, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जरूरत के मुताबिक ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकती हैं। इससे एनर्जी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो सकती है।
4: अच्छा, और बैटरी का क्या? देखो हर फोन डाटा फॉरवर्ड करेगा तो बैटरी जल्दी ही खत्म होनी है।
5: मॉडर्न लो एनर्जी टेक्नोलॉजीज ना इस कंसर्न को कम कर सकती है। मैश में वर्कलोड भी मल्टीपल डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
4: अच्छा, तो मैश नेटवर्किंग सिर्फ चैटिंग नहीं बल्कि रेजिलिएंट कम्युनिटीज और स्मार्टर सिटीज का भी हिस्सा बन सकते हैं।
5: एग्जैक्टली। तो हमारे लिसनर्स को

0: मीडिएटर बनकर कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव डिसीजन में बदलना होगा कि मतलब सबकी सुननी होगी. और तीसरा है डिजिटल. याद रखिए ट्रस्ट ही कम्युनिटी की करेंसी होता है. और एक सिंपल रूल है कि अपनी कम्युनिटी के रूल्स शुरू में क्लियर रखें. क्लियर बाउंड्रीज लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आइडिया शेयर करने में ना मदद करती है.
1: तो भाई ये बात तो मैंने जो है ना दिमाग में बिठा ली. और आजकल के दौर में ये चीजें बहुत बहुत क्लियरली सेट होनी चाहिए ये बातें. तो भाई आज हमने डेथ ऑफ द फीड से बर्थ ऑफ मैश तक का सफर किया है.
2: राइट.
1: अच्छा फ्यूचर टेक्नोलॉजी सिर्फ फास्टर डिवाइसेस नहीं है साथियों, बल्कि स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस और एम्पावर्ड कम्युनिटीज के बारे में भी है.
0: यस. और इसीलिए हम कहते हैं कि आज जो हमने बातें की वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेगी. और अगले हफ्ते हम और भी अमेजिंग बातें करेंगे और एक नया टॉपिक लेकर आएंगे सफा. दैट विल बी द न्यू सुख.
1: तब तक के लिए भाई स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड और अपने डिजिटल ट्राइब्स को मजबूत बनाते रहिए. तो भाई अमिता हम दोनों इजाजत लें.
0: इजाजत लेते हैं और एक चीज और हमारे लिसनर्स को कह देते हैं कि अगर आपके भी कोई सजेशंस है ना और आप चाहते हैं कि सफा अमिता नेक्स्ट जन में ये वाली चीज भी हमें बताओ या इसके बारे में डिटेल बताओ तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं 666-22107 इस नंबर पे. और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ FM 107 पर, है कि नहीं.
1: और भाई इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाजत. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107.
0: दिल

मैंने सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग अपने हिसाब से सोचा, और ये हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी तो हुआ होगा, जब हम अपने मुल्क में रहते थे, अपने शहर में रहा करते थे, तो वहाँ आमतौर पर होता ही है कि आप कहीं जाते थे तो देखते थे कि अरे फला के पास कार है, एसी है, घर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं है, और आप समझते थे यार ये कितना बड़ा वेल्थ है, ये कितनी लग्जरी है, ये कितनी अमीरियत है फला चीज़ होना। लेकिन जब आप बड़े हुए एज अ किड, जब आप देखा करते थे किसी के घर में एसी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बुलेट है ना, कार है, और फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि ये तो लग्जरी, अगर ये हो गया तो मैं अपने आप को अमीर मानूंगा। लेकिन जब आप बड़े हुए, अब आपको रियलाइज होता कि यार ये तो टोटली नॉर्मल है यार, है ना। तो ऐसा क्या था जो आप बचपन में देखा करते थे विच वॉज अ साइन ऑफ एक्सट्रीम वेल्थ, लेकिन अभी आप रियलाइज कर चुके हैं कि यार ये तो टोटल नॉर्मल है यार, इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है, किसी के घर में अगर एसी है या फलाना है या फलाना है तो वो अब वेल्थ नहीं है। जैसे मैं मतलब ये कहना तो नहीं है कौन से रिश्तेदार थे ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक रिश्तेदार थे हमारे घर में, तो जब भी मैं उनके घर जाया करता था ना तो 10 का नोट, 20 का नोट, है ना, उसके अलावा 50 के नोट ऐसे ही पड़े रहते थे रैंडम कहीं पर भी। मतलब आपने दराज खोली तो दराज में 4-6 सिक्के पड़े, 5-5 के, 10-10 के सिक्के पड़े हुए, और आज से मैं बता रहा हूँ सिर्फ 15-15 साल की बात, 2012-13 के बारे में बता रहा हूँ। तो मेरे को लगता था यार ये तो बहुत ही यार पैसे वाले हैं इसलिए इनने इतना छोड़ रखा। भाई मैंने तो वो वाला दौर जिया है ना कि अखबार बेच के मैं पतंगे ले आया था घर पे, हमारे घर में 3 रुपए का उस वक्त एक अखबार आया करता था, तो जब अखबार इकट्ठा हो जाए तो 4-6 अखबार एक साथ अगर बेच दे तो उसमें 2-3 रुपए मिल जाते, तो उतने में पतंग आ जाया करती थी। तो हम तो वो कर रहे थे, हमारे घर में इक्का दुक्का होता तो मैं तो गायब कर देता भाई साहब तो मैंने तो 2-2 रुपए गायब किए भी हैं भाई, जो बात है सही गलत तो है, लेकिन हमारे जब मैं दूसरे वाले घर में, वहाँ पर ऐसा नहीं किया, मतलब अपने ही घर में, ये वो आला आदमी नहीं होता कि अपने ही घर में जो है ये नुकसान करता है। एक कहावत भी है, चुड़ैल भी 10 घर छोड़कर, ऐसा होता ना, डायन भी 10 घर छोड़कर रॉब करती, अपन अपने ही घर में, लेकिन दूसरे घर में नहीं गया अभी। सो मैं देखता हूँ वहाँ 2-2 का सिक्का पड़ा हुआ है, 10 का सिक्का, दराज खोल ले वहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता था कि यार इतना पैसा अगर हो जाए किसी दिन कि आप 2-10 रुपए के बारे में सोचे ना, है ना, 20-50 रुपए के बारे में सोचे ना, और वो कहीं पर भी रैंडम पड़े रहते हैं, तो इसका मतलब यार ये आदमी अमीर है। तो मेरे को लगता था अगर जिस दिन मेरे घर में ये हो गया तो ये अमीर है, लेकिन अब 1-1, 2-2 रुपए पड़े रहते हैं यार मेरे पास, मतलब कहीं पर भी मैं कभी दराज अपने ही घर में खोलता हूँ तो वो मुझे मिल जाता, और मेरे को गुस्सा आता कि अरे ये यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, कहीं पर भी पड़ा हुआ है। तो 10 का नोट भी उसमें ना, वो मेकअप पता नहीं क्या यार, ये घर में क्या है सीन है। मेरे घर में एक जगह है जहाँ पर मेरे बेगम का मेकअप रखा, वहां पर 10 का नोट बेचारा उसने मेकअप किया हुआ है भाई, उसको लाली लिपस्टिक लगी है तो मैं कहा ये कैसे है यार, वो लाली लिपस्टिक फाउंडेशन, वो इतना फाउंडेशन लग गया उस 10 के नोट का कि वो अब 10 का नोट बेचारा रहा नहीं है, अब वो बस प्लेन पेपर है ब्राउन कलर का भाई उसकी पपड़ी जम गई है। लेकिन ये मेरे घर का अभी नॉर्मल, मेरे को लगता है अब ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है सही में। अगर आपके पास पैसे होते तो इंडियन 10 रुपए रखा या कुछ थोड़े बहुत पैसे रखे तो आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और फिर वो रखा ही रह जाता है, और मुझे यकीन है कि आपके घर में भी छोटे दराजों में ये सब चीज़ें रखी होंगी। सो आप अपनी मर्ज़ी से बताएं कि आप जब दूसरों के घर जाया करते थे, जब दूसरे के घर बैठा करते थे, जब वहाँ मज़े कर रहे होते थे, तो आपके दिल में ऐसा क्या होता था कि यार ये चीज़ अगर हो जाए तो सच में वेल्थ है, सच में असली लग्जरी ये है, और ये अमीरियत है, फला चीज़ देखने पर आपको लगती हो यार ये तो अमीरियत है। नंबर है 666-22107, यहाँ पर आके आप बता सकते हैं 666-22107। 6:02 हो रहे हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कैसे हैं, कबूल करो भाई, कबूल है भाई, सलाम आपका। पहले मैं सोचता था कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं मगर मैं बन नहीं सका, सोचते सोचते हम सोचते रह गए सोचते सोचते नहीं भाई, ये भी अमीरियत तो है ही है यार, कि अगर घर पे आप अगर सोच रहे हैं कि आप अमीर बन जाएं और आपने एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में आकर कमा रहे हो और अपने घर वालों को कुछ हिस्सा दे पा रहे अपनी कमाई का, तो यार आपने तो मुकम्मल एक जनरेशन को बेहतर बना दिया, और ये लग्जरी में ही तो आएगा कि भाई खुद भी जी रहा है दूसरों को भी पाल रहा है, आती रहेगी भारी लाइन ओके एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम,

भाई दूसरे के घर में एसी देख रहा है, जब हम अपने घर में हाथों वाला, अरे यार हाथों वाला पंखा चलाया करते थे हाँ, और दूसरे घर में एसी देख ले, भाई ये क्या अमीरी थी। नहीं, हाथों वाला पंखा किसने किसने चलाया, सच बताना, गले की चमड़ी पकड़ के बताओ सच। हाथों वाला पंखा, अरे अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त वगैरह थे, हम लोग कहीं कहीं तो थे, ग्राउंड वगैरह पे थे, तो वहां हाथों वाले पंखे की बात भी हुई थी। अरे यार आज तो क्या जिंदगी इतनी करीब करीब से गुजर रही होती है ना, हाथों का पंखा किसने किसने चलाया है, आंख बंद करके भी आवाज आती थी, और उसमें कुछ लोगों के हाथों के पंखे जो होते थे ना, उसमें वो जो हल्की सी पाइप जैसी लगी होती थी, पाइप नुमा होता था, आप उसे घुमाते तो घूमती थी, और किसी किसी में पाइप होते ही नहीं थे, टूट फूट जाता था, तो उसको घुमाना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो लोग अपना हाथ गोल बना लेते थे और अंदर ही अंदर, मैंने खुद किया है, अंदर ही अंदर पंखा घुमा रहे होते थे। हाय हाय क्या हाथ दर्द वाली जिंदगी थी भाई। अच्छा अब जिनको हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मिली है वो क्या जाने, जिनके घर हमेशा इन्वर्टर रहा है ना, जो लग्जरी में रहे, उनको क्या पता हाथ वाला पंखा क्या होता, आजकल के बच्चों को क्या पता हाथ वाला पंखा है। एक तो हम थे जो हाथ को गोल बना के गूं गूं गूं घुमाते रहते थे यार। एम डी हुसैन साहब कहते थे भाई मेरे मामू के घर में होता था चलोजा चलोगोजा चलगोजा खाने वाला, तो मैं समझता था कि यार ये अमीरी क्यों, क्योंकि 14,000 किलो था वो। अच्छा कोई चीज खाने वाली होती है, क्या था यार चलगोजा, भाई ये तो कोई जानवर होता है ना चिलगोजा टाइप ऐसा। चलगोजा क्या है वैसे, कुछ होता होगा, मैं अभी सर्च करता हूँ यार हुसैन साहब, मेरे को आइडिया नहीं। चलगोजा कुछ तो मैंने अभी कुछ दिन पहले कहीं से सुना भी था, चलगोजा टेस्ट होता है कुछ, आई डोंट नो यार। लेकिन फिर भी अगर 14,000 रुपए किलो का कोई सामान किसी घर में पड़ा है यार, ये तो महंगी चीज है। अब वैसे मेरे घर में केसर पड़ा हुआ है, हालांकि है 1 ग्राम, लेकिन 3 लाख रुपए किलो वो भी है। बट वो अमीरी नहीं है बिल्कुल दोस्तों। क्योंकि वो 300 रुपए की आती है भाई, 300 रुपए 250 रुपए ऐसे मिलता है 1 ग्राम। आगे बढ़ते हुए भाई, जिस घर में एसी देखते थे ना, तो समझते थे कि यार बहुत बड़े लोग हैं, ये तो अपने घर में तो डंडे वाला पंखा होता था। हाँ भाई डंडे वाला पंखा, आए हाय मेरे को। और अच्छा डंडे वाले पंखे भी अलग अलग तरह के होते थे, कुछ लोग तो भाई बहुत संजो के रखते थे वो पंखा, नहीं आपने देखा है कि पन्नी अन्नी उड़ा देते थे उसको टाइट वाली, और कुछ लोग ना उसके आगे आगे एकदम आखिरत में पंखे के वो कुछ तो पर्दा जैसा लगा दिया करते थे, वो भी भाई सजाते थे, उसमें 6 कलर कम से कम होते थे पंखे वाले में, घर पे ही बनता था ये, कहीं बाहर से नहीं मिलता है, बाहर जो मिलता था उस वो लकड़ी वाला मिला करता था जिसको बाकायदा बुना जाता था, लेकिन हमारे घरों में दफ्ती को काट वाट लिया, दफ्ती को फिर कपड़े उड़ा दिए, उसी को सिल विल दिया भाई, है ना, वो डिज़ाइन डिज़ाइन हो गई, जो पर्दा ख़राब हो गया है, देखो कितना बढ़िया रिसाइकिल रीयूज हुआ करता था हमारे ज़माने में। यार इतना बूढ़ा हो गया हूँ क्या मैं? मेरी हिम्मत कैसे हुई अपने ज़माने में बोलने की। लेकिन सही कह रहे हैं हसनैन साहब भी कि अपने घर में जो है वो डंडे वाला पंखा ही हुआ करता था, लेकिन जिनके घर एसी देख लो ना, लगता था ओ ये अगर हो जाए, और आज देख लो भाई, आज जो भी घर रेंट पे ले ले अपन कतर में, एसी तो लाजमी है बाबा। आप किसी भी जगह पर जाएं, किसी भी होटल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, शॉप पे जाएं, स्टोर पे जाएं, इवन मैकेनिक की दुकान पे भी जाएंगे ना, तो वहां पर एक जो जहां पर बिल बनता वहां पर तो एसी होती होती है भाई, एसी हर जगह है। क्या बात है यार, ये तो बहुत ही बेहतरीन बातों में हो गया कि एक जमाना था भाई साहब हम भी एसी देखते थे, और अब भैया वो हम जहाँ जाते हैं वहाँ एसी होती, कार में भी एसी हमारे। अमीन साहब ने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, बस करो साहब लाओगे क्या? नहीं मेरा भाई, क्या कह रहे हैं, चिलोजे का भाई। अच्छा इनने भेजा है कुछ, यही है क्या चिलोजा? यार ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, ऐसा लग रहा है ये ब्राउन चावल है बस, या चावल जल गए, ऐसा तो नहीं चावल जल गए तो महंगे हो जाते। ओके चिलोजा भाई मैंने तो कभी देखा नहीं है, ये शकरकंदी की तरह भी लग रहा है। बाकी आसिफ भाई का मैसेज है, भाई लग्जरी लाइफ जीना चाहता था मगर जी नहीं सका, अब जाके सपनों पे स्टॉप लगाना पड़ रहा है। अरे नहीं सपने जीते रहो यार, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने घर में है आज भी हाथों वाला पंखा, मेरी नानी अभी भी यूज़ करती हैं। हाँ भाई जिनको आदत हो गई ना, वो आँख बंद करके भी ऐसे ही चलाते रहते उसे पंखा, और वो चलता रहा, हाथ भी नहीं दर्द होता भाई उन लोगों का, उनकी आदत हो गई, आंख बंद हो गई है, जब तक वो गहरी नींद में ना चले जाए ना कि हाथ वाथ काम नहीं कर रहा है, तब तक वो ऐसे झलते रहते थे अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पास अभी तक है हाथ वाला पंखा। अरे

दांत वाला पंखा कुछ ज्यादा ही याद आ गया लोगों का। ख्वाजा साहब का मैसेज है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। भाई जिनके घर पत्थर के होते हैं, अच्छा वो फर्श जिनका पत्थर का होता है, ओ हाँ हाँ हाँ, वो भी लग्जरी हुआ करती थी। हाँ यार, मेरे भी एक छोटे वाले मामू थे, उनके घर में वो चित्ते चित्तेदार छोटे छोटे जो है वो पत्थर लगे होते थे, टुकड़े वाले, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। हाँ आज के ज़माने में पत्थर तो बहुत आम हो गया है, लेकिन उस ज़माने में एक मेरे ख्याल में 20-25 साल पहले वो छोटे छोटे बहुत बारीक पत्थर हुआ करते थे। वो पत्थर अगर आप देखें तो लोगों के घरों में फर्श पे लगा रहता था। वो भी एक अमीरी थी यार। नहीं अच्छा, वो टीवी वाला भी एक अमीरियत आई थी कि जिनके घर टीवी हो, रिमोट वाला बाद में आया, उससे पहले तो बटन वाला था। आप दूसरे के घर में जाके अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते थे भाई। आपको कहा जाता था अरे सुनो जाके चेंज करके आओ। जिनके घर टीवी होता था भौकाल जमाता था ना भाई। अलिफ लैला देखते थे? नहीं देखते थे बताओ। अलिफ लैला देख कितना लो, लेकिन आप अपनी मर्जी से चैनल नहीं चेंज कर सकते थे। बाकी एक और मैसेज। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, क्या हाल है? मैं बहरीन से सुन रहा हूँ। जुल्फिकार साहब कैसे हैं मेरे भाई? मैं आपको तो समझ गया हूँ, आपका चेहरा माशाल्लाह, मैं प्रोफाइल देख के जान जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया लोगों के मैसेज का। बाकी अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और आज का सवाल एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। सवाल ये है कि बचपन में ऐसी क्या चीज़ थी जब दूसरों के घर जाकर आप देखते थे और जानते थे या समझते थे कि यार ये तो लग्जरी है, लेकिन बड़े होने के बाद अब आपको लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है, है ना? हमने जिस चीज़ को बचपन में लग्जरी समझा, लेकिन अब आपको एहसास हुआ ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। लोगों के घर जाने के बाद अब आपको लगता है कि हाँ यार ये हमारे पास भी है एंड इट्स नॉट लग्जरी, ये बहुत बेसिक है। तो आप हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आतिफ असलम की आवाज़, नुसरत फतेह खान साहब का साथ, सानू एक पल ये गाना चैन नहीं आए, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हाँ जी हबीबी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का दिल से नहीं सही। फिलहाल 6:00

36 मिनट हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आज के सवाल का जवाब, आज का सवाल बड़ा सिंपल सा था, मजेदार था। सवाल ये कि आपने लोगों के घर बहुत कोई एक ज़माने में अमीरी देखी, आपको लग्जरी लगा वो काम, या उनका उनका रहने का तरीका, या फिर उनके घर में जो सामान है वो आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी लगा, वेल्दी लगा। लेकिन अब आप जब बड़े हो गए हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत आम सी चीज़ है, ये तो रेगुलर चीज़ है, ये अमीरी की निशानी नहीं है। जैसे एसी हो गया, इन्वर्टर हो गया, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो सकता है। मुझे पता नहीं कितने लोग जानते नहीं जानते, चिलगोजा भी कोई चीज़ होती है भाई, मेरे को नहीं पता था, लेकिन कुछ भाइयों ने बताया, जैसे ख्वाजा साहब ने बताया है कि आप ट्राई करो चिलगोजा, बहुत टेस्टी रहता है और कई हाइपर मार्केट में यहाँ पर मिल जाता है। पता नहीं भाई, मेरे को शक्ल से देख कर तो ये वो लग रहा है हमारी तरफ मिलते हैं और शकरकंदी कहते हैं उसे, मे बी ये वही चीज़ हो या फिर कुछ और हो। लेकिन शकरकंदी भी यार मतलब वो तो सस्ती मिलती है, मुझे इतना आइडिया है कि आपने जो चिलगोजा बताया वो तो 3 लाख रुपए का भाई, 3 लाख रुपए किलो। फिर उसके बाद एक और ही मैसेज है जकी साहब का, अस्सलाम वालेकुम, आप सही गरीब हैं, चिलगोजे का नहीं पता। हाँ भाई, मैं हूँ गरीब यार, लेकिन अच्छा अभी इन्होंने कुछ तो भेजा है, 24 कतरी रियाल का है, सिर्फ 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम 24 रियाल का है, लगभग 95 लिखा है इसमें, लेकिन ठीक है 100 ग्राम अगर 24 का है तो 240 ही तो हुआ यार, 240 एक किलो का हुआ, तो ये वो नहीं है मेरा भाई, फिर आपने सस्ता वाला देखा है। मेरे साथ साथ जकी भाई आप भी गरीबी है। इवन 240 का भी नहीं हुआ ना फिर तो, क्योंकि इसमें 95 लिखा हुआ है। अगर 24 कतरे रियाल का है तो वो 3 लाख रुपए का अगर होना है तो फिर अच्छी खासी कीमत का होना चाहिए भाई साहब वो। ये ड्राई फ्रूट ये वो नहीं है, ये लिखा है पाइन नट स्पील्ड। जाओ मेरा भाई जकी साहब, आपको पता नहीं है यार, अमीरियत का आपका एहसास थोड़ा सा कम हो रहा है। चिलगोजा फरीना यूनुस लिखा है चिलगोजा स्पाइन सीड, अरे लेकिन ये तो सस्ता निकला, 3 लाख का तो है ही नहीं ये तो, तो या तो किसी एक ने गलत बोला है भाई। उसके अलावा अशफाक भाई कहते हैं भाई ये, और ये जो आदत है ना चलाने की, पंखा चलाने की, मेरा एक दोस्त है उसके घर में एसी भी है लेकिन उसकी नानी फिर भी कमरे में बैठकर वो पंखा चला दिया। हाथ वाला पंखा चलाने की आदत उनकी, हाँ नहीं ये तो बहुत लोगों में होता है। तो भाई आज जाकर खरीद लो, हम गरीबों का क्या पता भाई, लेने के बाद फोटो भेज दें। लेकिन भाई अगर किसी प्रोडक्ट की अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है तो फिर वो तो चिलगोजा ही हुआ। पाइन सीड इज़ ओके, मतलब मैंने पाइन सीड भी कभी नहीं खाया भाई, लेकिन अगर चिलगोजा 3 लाख रुपए किलो था एक ज़माने में और आज जो है 240 कदरी रियाल का मिल रहा है तो भाई डिग्रेड तो बहुत हुआ यार। क्या चिलगोजा बनेगा रे तू। फिर एक और ये मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, ये कहते हैं अवन जिसके घर में था मैं उनको अमीर समझता था, लेकिन अभी तो हमारे घर दो दो पड़े हुए हैं, सेम टू सेम मेरे घर भी दो दो पड़े हुए भाई। फिर एक और ये सलाम वालेकुम अस्सलाम, भाई अलीफ लाला मैंने भी देखा है दूसरों के घर में, हाँ ये तो पता नहीं बहुत आम बात है कि एक ज़माना जब कॉलोनी में आप रहा करते थे या फिर आप यू नो किसी शहर में रहते थे तो एक के घर टीवी आ जाती थी फिर 4-6 लोग बैठते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि जब मैच वगैरह आते थे ना, बड़े इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है और कोई वर्ल्ड कप वगैरह चल रहा है तो टीवी बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट करके बाहर लगाया जाता था, पार्क वगैरह में लगाया जाता था और फिर मैच होता था। आपकी तरफ का आइडिया नहीं, मेरी तरफ पता क्या है कि वो पार्क में बैठते थे हम लोग और एक पर्दा लगा दिया जाता था, कोई तो प्रोजेक्टर भी लेकर आया था भाई, वो बाकायदा चल रहा होता था, वो उसमें गाय बैल सब आए जा रही हैं। हमारे लिए वही लग्जरी था भाई। तो जिनके घर टीवी है आधी से ज्यादा जनरेशन ने अलीफ लैला उधर ही देखा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, चिलगोजा नेम ही पहली बार सुना है। अरे देखो ये कौन कह रहा है, शेख इरफान। हाँ मैं, हम लोग तो चिलगोजा अलग तरह से एज अ सार्कास्टिक टोन इस्तेमाल करते हैं कई बार, देखो बहुत बड़े चिलगोजे आदमी होते हैं ऐसे हम लोग कहते थे। हमें नहीं पता था ये खाने की चीज़ है, वो भी अमीरों की खाने की चीज़ है भाई, बट स्टिल 240 कतरे रियाल पर केजी अगर मिल रहा है कोई चीज़ तो मैं उसे इज्जत दूंगा भाई, महंगी चीज़ तो है। 1947 की बात करती, अम्मा इतना पुराना भी नहीं हो यार मुबीन साहब। एक और मुबीन है, उन्होंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये दूसरे वाले मुबीन है, ठीक है। फिर एक और मैसेज बिलाल साहब का है, सर चिलगोजई हमारे यहाँ बहुत है, पाकिस्तान में ये पहाड़ों में होता है। अच्छा क्या बात कर रहे हैं यार हम लोग।

0: ने हमेशा, मतलब हम तो अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, बहुत चिलगोजे आदमी हो, तो ऐसे हम लोग मस्ती मस्ती में बोलते हैं, अगर मांगता है तो आपके लिए मैं मंगवाता हूँ, अरे मेरा भाई आपका बहुत बहुत प्यार। लेकिन कभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट कभी सुपर मार्केट वगैरह जाऊँगा तो एक बार ज़रूर टेस्ट करूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर किसी चीज़ के बारे में बात है, और अगर पहाड़ वाले खा रहे हैं, मेरे को पता नहीं पहाड़ वालों से एक अलग कनेक्शन है, जो काम पहाड़ वाले कर रहे हैं मेरे को वो करने का बड़ा दिल करता है, उसका रीज़न ये होता है या तो वो हेल्दी काम करते हैं, वो हमारी तरह हुसियत नहीं फैलाते हैं, एम साइलेंट है इसमें भाई वो मेहनती होते हैं और उनको सारा काम हेल्दी ही चाहिए, है ना, और कोई भी मिलावटी चीज़, वो उनको देखा, उनके बच्चों को देखा है तुमने, वो मेहनत करते हैं, उनको उनके बच्चों को देखा, कोई चिप्स वगैरह खा रहे हो अंकल से मांग के, हैं कोल्ड ड्रिंक पोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पीते यार, वो एकदम हेल्दी चीज़ हमेशा, मैंने नहीं देखा उनको ये फालतू की हरकतें करते हुए, जो जो समतल ज़मीनों में रहते हैं ना उनके बच्चे हरकतें करते हैं, हमारे बच्चे हरकतें करते हैं
1: कि पापा पापा ये चाहिए मेरे को, पापा पापा मेरे को केक दिला दो, चिप्स दिला दो मेरे को।
0: अरे खैर, बिलाल साहब आगे कहते हैं ये पाकिस्तान में वजीरिस्तान में मिलता है, ओह क्या बात है, यहाँ भी, यहाँ सुपर मार्केट में भी तो यहाँ पर कई जगहों पर मिलता है, आजकल के बच्चों बिरबा क्या, आजकल के बच्चों बिरबा गुटी, भाई क्या लिखने, भाई ये देखो मेरे को अपनी जगह है यार, बच्चों को कुछ कहना है कह लो, लेकिन पहाड़ी लैंग्वेज मेरे को नहीं आती फिर आगे वॉइस है, वॉइस मैं कुछ देर में सुनकर फिर रिप्लाई करूंगा। अरबाज खान साहब सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, क्या चल रहा है आज, मैं तो ये भी नहीं कह सकता आज जो है शौक चल रहा है, लेकिन आप बताइए जनाब आप क्या क्या चल रहा है। शेख इरफान साहब कहते हैं ये अगर चह खाने की चीज़ है, ये अगर खाने की चीज़ है तो, बट यहाँ कतर में खाता कौन है, नेम बताओ भाई मुझे उससे मिलना है। अरे नहीं कतर में तो हाइपर मार्केट में बहुत जगह पर ये चिलगोज़ा मिलता है। सलाम भाई, चिलगोज़े को पश्तो नाम है जंगोज़ी, जांगोजी। भाई मेरी आज ना वोकैबुलरी कर रही हो जानी है, मैं बता रहा हूँ। इस्माइल साहब बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, लेकिन हम तो यहाँ पर बैठे हुए ना, तो हम चिलगोजे को ही देखेंगे। भाई मेरे को नाम लेते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्योंकि हम दोस्तों को तो ऐसे ही कहते हैं ना, बट मेरे को नहीं पता था ये खाने की चीज़ है। मुबीन साहब कहते हैं नहीं मालूम, ये दूसरे वाले मुबीन है, राजस्थान में बोलते हैं उनजोगोजे अब तो मेरे को समझ में आ गया, तुम लोग मजे ले रहे हो ना हाँ लिखा है सीखो साहब सीखो, गर्मी पैसा ना राजस्थान में बोलते हैं ठीक है फिर एक फ़ोटो ही भेज दी है इमरान खान साहब ने। अच्छा दो फोटो मेरे पास आई हैं, टोटल तीन। एक तो चिलगोजे की फ़ोटो आई है, जो भाई क्रीम कलर का, जिसने फाउंडेशन लगाया हुआ है चेहरे पे, वो अलग है, पॉलिश्ड होगा। लेकिन जो दो फोटोज़ आई हैं ये हो सकता छिलका भी हो, बट ये ब्राउन कलर की है, मे बी ऊपर का छिलका हो सकता है, इमरान खान साहब ने भेजी है। फिर खाजा साहब कहते हैं मैं मेरी खाला जाता था वहाँ पर, पिकॉक और जावा बाइक देख के गरीब फील होता था। अच्छा मेरी खाला के घर जाते थे वहाँ पर, मोर यानी कि पिकॉक और जावा देख कर, मतलब बाइक वगैरह देख कर गरीब फील होती थी। अरे यार ये भी है। अच्छा मेरे को बाइक देख कर तो गरीब फील होता था, लेकिन एक और बाइक आती जिसमें यू नो आप बहुत सारा सामान रख सकते थे, जो रिटेल दुकानदार होते हैं ना।

हैं वो नहीं है। एहसान उबैद ने सलाम करते हुए क्या हाल लिखा है, बहुत ही अच्छा है एहसान साहब, आप सुनाए कैसा है आपका हाल। फिर इरफान ने लिखा है भाई नेक्स्ट वीकेंड में दोनों मिलकर तलाश करते हैं। हाँ यार ये क्या चीज़ है अपने को पता करना पड़ेगा भाई, देखा टॉपिक बन गया आज। हाँ यार आज तो मेरे को हमने सवाल क्या किया था टॉपिक बन गया, लोग अपने अपनी तरह से जवाब दे रहे हैं, इतने में चलगोजा आ गया। अभी इसमें चल के क्या चलगोजा आइटम है भाई ये। इसी के बारे में बात होने लग गई। फिलहाल 6:45 हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब वक्त आ गया है कि हम खत के बारे में बात कर लें, और आज का खत आपको जो लिखना है वो थोड़ा सा अलग टाइप में लिखना है। अगर आपको खत लिखना होता तो आप क्या खत लिखते, अपने अपने सामान के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में जो आपने पहले एक लग्जरी समझा था, या अपनी किस्मत को, मैं सोचता हूँ किस्मत ज़्यादा सही लफ्ज़ है, कि अपनी किस्मत को आप प्रोडक्ट को लेकर, ऐसा ना कह देना भाई कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सैड चल रही है, कम्मों की शादी नहीं हो रही है, लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं भाई। रोने वाली बात नहीं करनी है ना, आपको अभी जो लाइफ मिली हुई है, जो भी एक तो है अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के बाद, आप बताइए कि अगर आपको खत लिखना हो आपकी किस्मत को लेकर, जो आज आपको मिला है, एक जमाने में आप उसे लग्जरी समझते थे बट अब वो आपके पास भी है ना, उस चीज में अगर किस्मत को देखा जाए आपकी, तो आप क्या खत लिखना चाहेंगे अपनी किस्मत को, वो हमें बताइए 666-22-107 पे, 666-22-107 पे। कम्मों की शादी नहीं बताना ना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं FM 107 पे, वो लम्हे, ये गाना सुने, वापस आते हैं कुछ ही देर में आपकी किस्मत के खत को पढ़ने के लिए, दिल से देसी।

आपने वो लम्हे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। 6:52 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। किस्मत वाले खत की तरफ बढ़ते हैं। तीन तो ऑडियो है भाई, ये ऑडियो मेरे से छूट जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैसेज है तबस्सुम का। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कॉमन चीज है, लेकिन बचपन में मुझे डाइनिंग टेबल लग्जरी लगती थी क्योंकि वो हमारे घर नहीं थी। अरे हाँ, ये लग्जरी ही है। वो हमने भी चटाइयों में बैठकर खाना खाया है, और फिर जब बेड पे आ गए तो बेड पे पहले घूसा खाते थे क्योंकि अम्मी कहती थी दस्तरखान के अंदर ही तुम्हारा सामान जो खा रहे हो गिरना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो पहले घूसा खाते थे फिर दस्तरखान पे गिरने लगा। और उसके बाद डाइनिंग टेबल तो कभी हमारे घर पे नहीं आई। यहाँ पर आने के बाद डाइनिंग टेबल तो वो है कि नहीं मस्त है भैया, आपके तो होनी चाहिए, तो फिर हमने रखी डाइनिंग टेबल। सो हाँ, ये बात भी बहुत सही है कि डाइनिंग टेबल जो है वो लग्जरी हुआ करते थे, और आज भी मुझे लगता है कई घरों में वहाँ पर ना बेड पर या ज़मीन पर बैठ के खाना खाया जाता है, चटाइयों पे। बाकी एक और मैसेज आगे लिखा है खत में, डियर डाइनिंग टेबल, फाइनली तुम और मैं अब साथ बैठते हैं और चाय पिया करते हैं, क्या बात है। अच्छा ये बात तो है यार, सोफे पे बैठ के मजा नहीं, डाइनिंग पे आप बैठते हैं ना तो आपको लगता है यार लग्जरी तो है लाइफ में कुछ, कि जब तक आपने दूसरों के घर में बैठ के डाइनिंग टेबल पर खाना खाया है तो आपको लगता है अरे यार ये तो थोड़ा कुछ अलग है, वरना आप तो अपने घर पे वैसे खाते थे अपने मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बट यहाँ पर लग्जरी तो है भाई, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आगे मैसेज है किस्मत को खत, डबल ए लगा दिया मुबीन साहब ने, लेकिन ठीक है। अच्छा नसीब वो जो अल्लाह की रजा मिले, जिसमें अल्लाह की रजा मिले और जिंदगी में सुकून, खुशी और बरकत लाए, क्या बात है। ये खत आपने किस्मत को लिखा है तो बहुत ही उम्दा, अगर ये टॉन्ट है खुद के लिए तो भाई ये तो एक टॉन्ट भी है इसमें ना, अगर आप खत लिख रहे हैं किस्मत को और किस्मत बगल में खड़ी है आपके। अच्छा नसीब वो है जो अल्लाह की रजा मिले, जिसमें और जिंदगी में सुकून, खुशी और बरकत लाए, है ना, ऐसा लगे करके सुन रही है बगल में किस्मत खड़े होकर, उसको टॉन्ट मार रहा है मुबीन साहब, ये दूसरे वाले मुबीन है। बाकी हाय किस्मत, सो स्वीट ऑफ यू, अरे इतनी में बात कर दी इन्होंने कंप्लीट किया। अशफाक मियां थोड़ा तो मेहनत कर देते लेकिन ठीक है। सोफा क्या लिखा है, सोफा भी जो है हम लोग के टाइम में लग्जरी हुआ करता था फजील भाई, आए हाय। मुझे याद है कि 2007 या 8 में ना वो सोफा बहुत चला था। यहाँ तो जैसे क्या होता है, सोफा पूरा कवर्ड होता है ना, उसमें लकड़ी दिखी नहीं रही होती, आपको बहुत कम दिखती है। हमारी तरफ नया नया चालू हुआ था, लकड़ी दिखा करती थी और शीशम और आम और फलाने की लकड़ी जो है वो चला करती थी भाई। वो सोफा आज भी जिंदा है, उसकी स्प्रिंग बैठ गई है, अब्बा घर पे रखे हुए हैं, उसको जाने नहीं देना चाहते, जबकि वो दहेज की भी नहीं है भाई। होता है ना, दहेज की होती है तो आपके पास मजबूरी होती है, आप हटा नहीं सकते हैं, आपने जब खुद खरीदी है भाई, उसकी स्प्रिंग दब गई है, अब वो

सोफा कम, लकड़ी ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है कोई स्प्रिंग है जो चपटी हो गई है और बैठ रहे हैं उस पर। ठीक है, वो सोफा सोफा रहा ही नहीं है वो बस ये है कि लकड़ी है और जो है ऊपर से गद्दा नुमा कोई सामान है जो उसके ऊपर हम लोग बैठ जा रहे हैं। लेकिन ठीक है जुल्फिकार साहब, ये भी तो है कि लग्जरी जो फील होता है वो तो होता ही है। आज तो ये बहुत आम हो गया है। माई नेम इज शमशेर या शमशेर, भाई यही है चिलगोज़ा। मैंने देख लिया भाई, बहुत फोटोज़ आ गई हैं, लेकिन ये दो अलग अलग फोटोज़ हैं। मैंने समझ गया, मुझे लगता शायद कभी मैंने पाइन नट्स खाएँ, शायद खाएँ कभी। फिर एक और ये मैसेज है साजिद साहब का, वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई कहते हैं, डियर किस्मत इतना खर्चा हो गया है तो एक बंगला भी दिला दो। मैं कहा बंगला भी दिला दो, ये तो वो वाला डायलॉग है ना कि अरे मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है एक अंडा भी ले लें। फिर उसके बाद साहिल साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। डियर किस्मत ऐसा निज़ाम बनाओ कि घर बैठे पैसा आए। इसके लिए बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं बोल नहीं सकता है लेकिन मैं बोलता अगर आप सामने होते तो। फिर एक और मैसेज है, किसने लिखा है, नाम तो नहीं है, नाम लिख देता तो बढ़िया होता है। डियर डेस्टिनी एटलीस्ट ट्राई टू इम्प्रेस मी विद हैवी बैंक बैलेंस, पीनट इज रेगुलरली पीनटिंग एवरी मंथ। अरे मेरा भाई, ये किस्मत को एक टॉन्ट भी आ गया, लगे हाथ दो टॉन्ट हो गए आज। फिर बाकी दो ऑडियो है, ऑडियो में जवाब दे दूंगा अरबाज साहब आपको, और फिर एक और शख्स है मुबशिर मुबीन साहब, आपको भी मैं ऑडियो में जवाब दूंगा। एक मैसेज है, फलाना फ़ोन एक टाइम पे या वीआईपी लगता है, एक टाइम पे ये वीआईपी लगता था और आज तो सबके पास है, बट मेरे साथ मसला ये है कि उस एमएन मेरी उसमें मेरी फ़ोटोज़ नहीं है या बुरी किस्मत है। आपके पास अभी नहीं है, ये बुरी किस्मत। अरे आ जाएगा मेरा भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहो। और यहाँ तो वो भी है ना कि आप पे ले, बाद में भी पे कर सकते हैं, किश्तों में भी ले सकते हैं ना, ये सब भी है, बाद में ले, बाद में पेमेंट करके खरीद लो मेरा भाई, देखी जाएगी यार अल्लाह मालिक। फिलहाल सारे खत जो हैं वो हो चुके हैं और ऑडियो का जवाब मैं आपको ऑडियो में भी दे दूंगा कुछ ही देर में इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इन सब में सबसे बेस्ट मुझे लगा एक भाई का मैसेज, ऐसा निज़ाम बनाओ कि घर बैठे पैसा आए। मैं आपको पर्सनल जवाब देता हूँ, ठीक है। एक काम है ऐसा करता कोई और है, उसमें पैसा आपको आता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल शाम 6 बजे नेहा बसिन की आवाज में। गाना और आज भी हमने अपने कोड़े वाले भाई को कोई मौका नहीं दिया, लेकिन बढ़िया आदमी है यार, आज मैं बैठा उसके साथ तो। FM 107 दिल

0: के लिए जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए.
1: क्या बात, क्या बात है, क्या बात है. सीधे हाथ में पकड़ाई,
0: सीधे हाथ की तरफ है मामला. तो अब महविश के तरफ है,
1: मतलब गहरा और गंभीर होता जा रहा है मामला.
0: हाँ,
1: तब जहाँ है तेरे लिए,
0: हाँ,
1: नहीं है तू जहाँ के लिए. क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, तो फिर ये पे खत्म हुआ है. तो ये से जो है एक बहुत ही मेरा पसंदीदा शेर, बहुत ही जबरदस्त शेर. और अक्सर जब ये बिग बैंग थ्योरी की बात हो रही होती है ना, तो उसके साथ ये शेर जरूर एसोसिएटेड होता है. तो जो लोग समझ गए होंगे समझ गए होंगे, नहीं समझे तो पहले उनको सुना दे रहे
0: हैं.
1: साइंटिफिक शेर सुना रही हूँ मैं आपको, अल्लामा इकबाल का. आखिर अल्लामा इकबाल है, दूर की नजर रखते थे. कहते हैं कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदा कुन फयाकुन.
0: क्या बात है, क्या बात है. ये बहुत सारे स्टेटस पे लगने वाला है ना.
1: बिल्कुल वही वाला है.
0: तो अब जो है इस तरफ बढ़ जाते हैं, इनकी तरफ. सीम बताएंगी उनके दिल में अब क्या, कौन से तब इसको लेके क्या आया है, कॉम्पिटिशन है.
2: देखिए मैंने आपको कहा था ना कि आप यूनिक हैं, तो नून आया है. अब मैं भी यूनिक बन गई क्योंकि मेरे ऊपर भी नून आया.
0: मुबारक हो, मैं इंतजार ही कर रहा
1: हूं. चलो गुड, जबरदस्त. मतलब जो कहा वो पलट गया.
2: तो सुनो.
0: बिल्कुल इरशाद, इरशाद.
2: निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज. निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रक्त सफर मेरे कारवां के लिए.
1: क्या बात है, क्या सोज मचाया है.
0: एंड कर दिया, एंड बिल्कुल
1: जबरदस्त.
2: तो ये इसे सुनाएंगे अब कबीर.
0: ठीक है, तो देखिए क्योंकि मेरी बारी अब आ चुकी है. महविश, जैसा आपने कुछ देर पहले कहा कि थोड़ा भारी मामला चलेगा, जियाद अल्लामा इकबाल की बात करी, तो ये समझने के लिए थोड़ा सा जो है लोगों को अपने दिमाग को एक्सपेंड करना पड़ सकता है. बहुत गहरा है, इसमें दो तीन बातें एक साथ हो रही हैं.
1: अच्छा
0: ठीक है,
1: सही.
0: तो इरशाद हो जाए कोई तो बोल दो.
2: दोनों बोल देते.
0: कर्ज क्या है भाई, ये मिसरा लिख दिया किस शौख ने मेहराब मस्जिद पर, ये मिसरा लिख दिया किस शौख ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादान गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया.
1: क्या बात,
2: सही बात है. हमें तब समझ में आता है जब रेल निकल जाती है.
0: हाँ, हाँ। गाड़ी छूट जाती है तब पल्ले पड़ती है.
1: जबरदस्त जबरदस्त.
0: अब जो है
1: ते कयाम आया,
0: आया
1: यानी अलिफ,
0: अलिफ आया.
1: अच्छा जी, तो अलिफ से ये भी मतलब जो है ना, मतलब जो मेरे जहन में इस वक्त शेर आ रहे हैं, हाँ, वो उर्दू की किताब वाले ही आ रहे हैं.
2: अच्छा, जो हम
1: स्कूल जो स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वो वाले सारे आ रहे हैं. और वो जिनकी तशरीहां की हुई हैं, तो तशरीह का फायदा ये होता है कि आपके दिमाग में इतने सालों के बाद भी रह जाते हैं. तो चलिए जी सुनते हैं. अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, कि खाक ही अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी
2: है.
0: क्या बात है. तो आपके पास अब ये आया
2: जी,
0: ये आया है कि भाई ये क्या होगा. अब
2: ये क्या होगा वो मैं बताती हूँ.
0: चलिए बताइए.
2: तो आज का इस महफिल का एक आखिरी
1: शेर
2: जी
1: समात फरमाने वाले,
2: समात फरमा रही हूँ मैं. तो इरशाद
0: फरमाइए. इरशाद भाई, इरशाद.
2: यही जमाना हाजिर की कायनात है क्या, यही जमाना हाजिर की कायनात है क्या, दिमाग रोशन और दिल तेरा और निगाह बेबाक.
0: ये कॉपी करने लायक है.
1: हाँ.
0: और प्रिटी शोर जिसके जो समझना चाहेंगे इसे समझे भी.
1: हाँ.
0: आसपास पड़ोस में पूछे भी.
1: हाँ.
0: जो समझ गए हैं. हाँ. वो उसको इस्तेमाल करें.
1: एग्जैक्टली और डॉक्टर्स बहुत समझते होंगे इसमें. हाँ. दिल दिमाग और आंखें, मतलब सब चीजें आ गई हैं.
0: अक्सर दिल की बात ज्यादा हो जाती है. हाँ. दिमाग की बात भी हो जाती है. अच्छा
1: बैलेंस कर दिया,
0: बैलेंस कर दिया.
1: तो फिर आज का ये जो हमारा बैतबाजी का मुकाबला था, लामा इकबाल के अशार हमने पढ़े
0: जी.
1: और जैसे सीन ने शुरू में कहा था कि शायरे मशरिक लामा इकबाल, मतलब ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक लहर बर्पा कर दी थी, और जितनी मतलब लोग थे वो इनकी जो शायरी थी चिंगारी भर दी थी सब.
2: रेवोल्यूशन ले आए,
1: रेवोल्यूशन लेकर आ गए थे. तो यकीनन मतलब आज की एपिसोड बहुत ही खास थी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आई होगी. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम एक और अच्छे से शायर के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे इसी शो में, जिसका नाम है महफिल शायरी. और तब तक के लिए मुझे माविश, सीम, कबीर को दीजिए इजाजत.
0: अल्लाह हाफिज.
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की. व्हाई मनी एजुकेशन मैटर मोर देन एनीथिंग. देखिए आज के इस फास्ट चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है. जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो उससे पैसे को समझना नहीं बल्कि उसे पैसे को मैनेज करना स्मार्ट डिसीजंस लेना ये इम्पॉर्टेंट होता है. इसमें आपकी बजटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग डेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग ये सारी चीज़ें शामिल हैं. बहुत से लोग अच्छी इनकम अर्न करते हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से अपने पैसे को इफिशेंटली मैनेज नहीं कर पाते. फाइनेंशियल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि आज हर शख्स रोजाना फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है. जब हम शॉपिंग करते हैं सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम फाइनेंशियल डिसीजंस ही तो ले रहे होते हैं. और अगर इन डिसीजंस के पीछे प्रॉपर नॉलेज ना हो तो इंसान फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर सकता है जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है. देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी का एक सबसे बेसिक पार्ट है बजटिंग. और बजटिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखना. जब इंसान को पता होता है कि हर मंथ कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है तो उसके लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. बजटिंग से अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होती है और सेविंग्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. देखिए सेविंग्स भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. बहुत से लोग सिर्फ जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं लेकिन फाइनेंशियली अवेयर लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करते हैं. सेविंग इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके काम आती है. अगर अचानक मेडिकल एक्सपेंस आ जाए जॉब चली जाए या कोई और इमरजेंसी तो ये आपको एक सपोर्ट देती है. वही फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को भी सिखाता है. सिर्फ पैसा सेव करना या पैसा कमाना कभी कभी काफ़ी नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वक्त के साथ पैसे की वैल्यू भी तो कम हो रही है. जो वैल्यू कल 1 लाख की हुआ करती थी अब बिल्कुल भी नहीं है ना. मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर अर्ली एज में बजटिंग सेविंग इन्वेस्टिंग की हैबिट डेवलप कर दी जाए तो फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने में आसानी होती है. देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है बल्कि पैसे को वाइजली मैनेज करने के बारे में है. एक शख्स हाई सैलरी अर्न करके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करता है अगर उसे मनी को मैनेज करना ना आता हो. वहीं दूसरी तरफ एवरेज इनकम वाला पर्सन फाइनेंशियल सिक्योर हो सकता है अगर वो स्मार्ट

डिसीजंस लेना जानता हो। तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी मॉडर्न लाइफ की सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक है। यह हमें बजट, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, डेट मैनेजमेंट की पूरी थोरो नॉलेज देती है। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं वो अपने गोल्स अचीव करके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने में कामयाब होते हैं। बस जिंदगी का जो सबसे सिंपल फंडा है ना, वो यही है। सबसे सिंपल लेसन ये हो सकता है कि जितनी जरूरी पैसे कमाना है दोस्तों, उतना ही जरूरी पैसे को समझना और मैनेज करना है। बस कोशिश कीजिए कि आप उसे प्रॉपर तरीके से कमाएं भी, मैनेज भी करें, मैनेज इन द सेंस सेव भी करें, बजटिंग भी करें, डेट को भी मैनेज करें और इन्वेस्टिंग भी करें। चलिए फिलहाल अभी के लिए तो मैं आपसे इजाजत ले लेती हूँ इस वादे के साथ कि नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। कल तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 विल सिटी सी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107.7 पे, वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। चलिए फिर आज आपको मैं वेबसाइट के साथ साथ एक कूल ट्रिक भी बताता हूँ जो आपके बड़ी काम आने वाली, इन केस आपने टेक अपडेट्स फॉलो नहीं किए अभी तक। वेयर वर यू? सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar, प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए, बिकॉज देखिए आपको होना बड़ा जरूरी है, वरना मैं बोलता ही रह जाऊंगा और सुनने वाली पब्लिक नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसी वेबसाइट से जो आपके बोर्डम को मिटा देगी। जैसा क्या कई बार ऐसा मन नहीं होता, बैठे हुए टाइम काट रहे हैं, पंचिन का टाइम आने वाला है, तो उससे पहले टाइम पास आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये घर पे भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई भारी इंजन नहीं चाहिए आपको, सिंपली अपने लैपटॉप या पीसी पे से रन कर सकते हैं। इसका नाम है messenger.ebito.co, messenger messenger.ebito, एबिटो या जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहे .co। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने गेम आएगा और वो जो गेम है इतना जबरदस्त टाइम पास है, आप अपने दोस्तों के साथ भी उसको खेल सकते हैं और साथ साथ आप खुद भी इसे पार कर सकते हैं। उसमें कुछ मिशंस भी आपके सामने आएंगे, उन मिशंस को खेलिए, पार कीजिए। एंड मैं सही बता रहा हूँ, आपको लगेगा यार ये तो थोड़ा एडिक्टिव सा हो गया, तो बच्चों को जरा दूर रखिएगा इससे, क्योंकि ये एडिक्शन तो है। हालांकि गेम जो है बच्चे बड़े सब खेल सकते हैं, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंटरेक्टिव गेम है। एंड इसके लिए कोई भी आपको भारी कोई ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 666-22107 इसमें आप शो के दौरान भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, इन केस आपको कोई भी डाउट हो। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अ ट्रिक व्हिच आई रियली लाइक्ड एंड मैं शेयर करना चाहूंगा, ये है इंस्टाग्राम की ट्रिक। जब आप कोई वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे और आपको उसको डाउनलोड करना होता है तो आप क्या करते हैं, आई डोंट नो आप क्या कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इजी ट्रिक दे देता हूं मैं। तो जब आप किसी वीडियो को पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पे तो उसका आप लिंक को उठा लें, कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जब आप पेस्ट करेंगे पूरी लिंक को तो इंस्टाग्राम जो लिखा हुआ है उसमें से RAM हटा दीजिए। ठीक है, लिंक पोस्ट करेंगे तो पूरा लिखा आएगा ना www.instagram.com/whatever, तो उसमें जो इंस्टाग्राम का रैम होगा वो हटा दीजिए और आपके पास डाउनलोड के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप हाई क्वालिटी में उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सो या देयर यू गो, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी और ज्यादा ज्यादा लोगों को बताएं, फैला दें इसे। जो तीन लोगों को बताएं उनको बोलिए कि वो आगे तीन लोगों को बताएं, काम जरूर आएगी। ऑलराइट, तो अब मैं जरा एक खबर की तरफ बढ़ता हूँ जो खबर भी है और एक तरीके का फैक्ट बनता जा रहा है इन फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो न्यूज में सबसे पहली बात है चार्जिंग को लेकर, फोन की चार्जिंग को लेकर ना जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, कितने सारे पावर बैंक आ चुके हैं, रिट्रैक्टेबल टेबल केबल्स आ चुके हैं, लेकिन अभी यू ग्रीन एक कंपनी है तो उन्होंने इस पे काम किया कि लिक्विड कूल्ड मैग्नेटिक पावर को बैंक्स में कैसे यूज किया जाए। तो लिक्विड कूल्ड मैग्नेटिक पावर बैंक्स मार्केट में आने वाले, भी उनकी सिर्फ टेस्टिंग हुई है, बाकी कंपनी है बेल्किन करके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है काफी पतला और हायर कैपेसिटी वाला पावर बैंक और

उन्हें उसके साथ साथ जो रिट्रेक्टेबल केबल्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए हैं। आई थिंक ये एक एक बहुत बड़ी जीत है आने वाले वक्त में कि जितने कम हो सके उतना ही आसानी रहेगी आई थिंक। एंड इसके अलावा जो AI की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और मेजर मेजर मेमोरी चिप्स शॉर्टेज होती चली जा रही है, इसकी वजह से रैम और DRAM की जो कॉस्ट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लैपटॉप्स और गेमिंग डिवाइसेस एक्सपेंसिव होंगे थ्रू आउट 2027 जब तक कि इस जंग को जीता नहीं जाता। सो मेक श्योर कि आपके जो फेवरेट गैजेट्स हैं इनकेस वो गेमिंग से जुड़े हुए हैं, लैपटॉप्स हैं, PCs हैं और गेमिंग कंसोल हैं आप ही ले लो भाई। इसके बाद ये सब चीज़ें महंगी होने वाली हैं फॉर श्योर, ठीक है। एंड इसके अलावा DJI ने लॉन्च किया था अपना DJI Osmo 360 और Hoover Air Versa, ये क्रिएटर्स के लिए एक नया खिलौना है। इसका जो रिव्यू है मैं इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि हर किसी का इसको देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। सो अपने अपने तरीके से परसीव करें इसे और मुझे बता दीजिएगा आपको कैसा लगा, आपके रिव्यू पे मैं काम करूँगा, ठीक है। बिकॉज क्या है कि ये क्रिएटर्स के लिए जो लोग यूज़ कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ओके। On that note, this was the update. This is Kabir signing off. अपना ख्याल रखिए, आप बेहद बेहद जरूरी हैं। अस्सलाम।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। सेहत मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल आसान हुई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खुशी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी यही नेमत किसी इंसान के जरिए हम तक पहुंचती है। किसी ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, किसी उस्ताद ने हमें सिखाया, किसी दोस्त ने वक्त दिया, किसी साथी ने हमारा काम आसान किया, किसी ने एक मुश्किल वक्त में सिर्फ इतना कहा, फिक्र न करें मैं आपके साथ हूँ। तो क्या सिर्फ दिल में खुश हो जाना काफ़ी है, या उस शख्स को ये बताना भी चाहिए कि आपने मेरे लिए जो किया मैं उसकी कदर करता हूँ। इस सिलसिले में एक गहरा उसूल सिखाते हैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यश्कुरु नास ला यश्कुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सिखा रहे हैं कि शुक्र सिर्फ आसमान की तरफ उठने वाले हाथों का नाम नहीं, अपने इर्द गिर्द मौजूद इंसानों की कदर करने का नाम भी शुक्र है। सबसे पहले एक बुनियादी हकीकत समझ लीजिए कि हर नेमत का असल अता करने वाला अल्लाह ताला है। रिज़्क भी वही देता है, सेहत भी, इल्म भी, मदद के दरवाजे भी अल्लाह खोलता है। लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिकमत से बहुत सी नेमतें असबाब और इंसानों के जरिए हमारे पास पहुंचाता है। आप बीमार हैं, अल्लाह शिफा देता है, लेकिन डॉक्टर को सबब बनाता है। आप इल्म हासिल करते हैं, इल्म अल्लाह की नेमत है, लेकिन किसी उस्ताद को जरिया बनाता है। आप मुश्किल में हैं, मदद अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन कभी किसी दोस्त, रिश्तेदार या अजनबी के हाथ

0: हाथ से पहुंचती है। इसलिए किसी इंसान का शुक्रिया अदा करना अल्लाह को भूल जाना नहीं, बल्कि ये तस्लीम करना है कि अल्लाह ने इस शख्स को मेरे लिए खैर का जरिया बनाया। हदीस में जैसा कि आया है, मल्ला यशकुरुन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता। यानी मोमिन का मिजाज ही ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरों की भलाई को महसूस करे और तस्लीम भी करे, क्योंकि इस तरह के जुमले बाज़ औक़ात दूसरे इंसान के पूरे दिन को खूबसूरत बना देते हैं। सामने किराम, इस हदीस के ज़मीन में ये तशरीह भी आई है कि जो शख्स लोगों के एहसान को मुसलसल नज़रअंदाज करता है, उनकी भलाई को तस्लीम नहीं करता और हर नेमत को मामूली समझता है, आहिस्ता आहिस्ता नाशुक्री उसके मिजाज का हिस्सा बन सकती है। तब जाकर मसला सिर्फ ये नहीं रहता कि उसने फुला इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उसकी नज़र ही बदल जाती है। उसे जो मिला है वो कम नजर आता है, जो नहीं मिला वो बड़ा नजर आता है। लोगों की 10 भलाइयां भूल जाता है, एक कमी याद रखता है। कितनी अजीब बात है ना, कोई इंसान हमारे साथ बरसों अच्छा सलूक करता रहे लेकिन एक दिन हमारे तवक्कु पूरी न कर सके तो हम कह देते हैं आपने मेरे लिए किया ही किया है। ये जुमला सिर्फ दूसरे का दिल तोड़ता ही नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी याददाश्त शुक्र को भी जाहिर करता है। ओवरऑल सामने किराम, शुक्र दरअसल ये देखने की तरबियत है। नाशुक्र इंसान देखता है कि मुझे क्या नहीं मिला, शुक्रगुजार इंसान ये भी देखता है कि मुझे क्या कुछ मिला है। नाशुक्र इंसान दूसरों की कमी देखता है, शुक्रगुजार इंसान उनकी कोशिश भी देखता है। तो सामने किराम, अपने घर ही से शुक्र का आगाज कीजिए। शायद शुक्रिया की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे अपने घरों में है। अपने शरीक हयात से कहिए, आपने आज जो किया उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया, शुक्रिया। अपने बच्चे से भी कहिए, तुमने मेरी मदद की, बहुत अच्छा लगा। बच्चों से शुक्रिया अदा करने से बड़ों की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि बच्चे सीखते हैं कि एहसान की कदर करना हमारे घर की तहजीब है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है।

Scam Alert. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज आपको नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं इत्तला कराता रहता हूं, रूबरू कराता रहता हूं, ताकि ना आपके साथ, ना आपके फैमिली मेंबर के साथ, ना फ्रेंड्स के साथ, ना ही किसी रिलेटिव के साथ फ्रॉड हो सके. वेल, आज जिस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो बहुत आम हो गया है, वो है कलीग इन्वेस्टमेंट टिप्स. ये काम कैसे करता है, इस पर हम नजर डालेंगे, और साथ ही साथ इस तरह के फ्रॉड से बचने के क्या तीन उपाय हैं, क्या तीन सॉल्यूशंस हैं, उन पर भी नजर डालेंगे. दोस्तों, ये है कलीग इन्वेस्टमेंट टिप्स. काम कैसे करता है ये फाइनेंशियल फ्रॉड? पूरी तरह से हमारे अंदर रातों रात अमीर बनने के लालच और फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो का फायदा उठाकर डिजाइन किया गया है. इस स्कैम का सेटअप अक्सर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ही आसानी से या उसके जरिए, उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए शुरू होता है. कोई इंसान जो पहले आपकी कंपनी में था, या फिर आपसे किसी सोशल मीडिया पर ऐड था, कनेक्शन बना हुआ था, वो बड़ा ही फ्रेंडली होकर आपसे नॉर्मल बातें शुरू करेगा. धीरे धीरे वो चैट का रुख पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ देगा. वो बड़े ही कैजुअल अंदाज में आपसे कहेगा कि मैं ऑफिस के काम के साथ साथ एक नए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या सीक्रेट स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए हर महीने लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है. आपको कन्विंस करने के लिए वो अपने फेक डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भी शेयर करेगा, जिसमें बड़ा प्रोफाइल लिखा होगा और प्रोफाइल दिख रहा होगा आपको. ऐसे में दिखेगा कि हाँ, प्रॉफिट भी इसको हो रहा है. साथ ही ये दोस्त आपको भी टैग करेगा, वो आपको टारगेट करेगा कि तू क्यों मेहनत कर रहा है, बस एक बार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जैसे कि 5,000-10,000 रुपए करो और इसका जो रिस्क है वो बिल्कुल कम है. उनके कहने पर जब आप उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके थोड़ा पैसा डालते हैं, तो वो वेबसाइट आपको बिल्कुल रियल दिखेगी. वहां आपका जो पैसा है वो ग्रोथ ग्राफ हर दिन ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जिसे देखकर आप खुश होकर अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं. लेकिन असली झटका तब लगता है जब आप उस पैसे को अपने रियल बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. स्कैमर्स विड्रॉल ब्लॉक कर देते हैं, बोलते हैं कि पहले 20% टैक्स जमा करो, और जैसे ही आप टैक्स देते हैं वो आपका अकाउंट परमानेंटली लॉक कर देते हैं और सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं. तो यानी कि जो ग्रोथ आपको दिख रही थी वो फेक थी, लेकिन जो आपने 20% टैक्स दिया है वो आपने असली अमाउंट दिया है अपनी जेब से. तो आपने जो पेमेंट पहले करी थी, जो ग्रोथ दिखा रहा था, वो भी फेक थी. आपने वो पेमेंट ऑलरेडी कर दी और फिर 20% टैक्स के नाम पे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है. लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के तीन बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, सॉल्यूशन हैं. क्या है वो, उन पर जरा बात करते हैं. दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल प्राइवेसी. हमेशा ये रूल बना लें कि किसी भी एक्वेंटेंस, दूर के रिश्तेदार या ऑनलाइन मिलने वाले कलीग की पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस पर कभी भी आंख बंद करके अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और ट्रेडिंग के लिए हमेशा ऑथराइज्ड और रेगुलेटेड ब्रोकर्स का ही यूज करेंगे. दूसरा तरीका है या दूसरा सॉल्यूशन है वेरीफाई रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन. अगर कोई आपको किसी नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या क्रिप्टो पोर्टल के बारे में बताता है, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट रिसर्च करें, चेक करें कि क्या वो पोर्टल कतर सेंट्रल बैंक, सेबी या किसी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल गवर्नमेंट रेगुलेटर या रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड और लाइसेंस्ड है या नहीं. अगर उसका कोई रेगुलेटरी रिकॉर्ड नहीं है तो वो वेबसाइट फ्रॉड है. उसके अलावा तीसरा तरीका है टेस्ट विथ स्मॉलेस्ट कैपिटल एंड रीड रिव्यूज. ऐसी किसी भी अनवेरिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपनी मेजर कैपिटल मत लगाएं. गूगल और साइबर फोरम्स पर उस प्लेटफॉर्म का नाम डालकर स्कैम या विड्रॉल प्रॉब्लम कीवर्ड के साथ रिव्यूज चेक करें. अगर वहां नेगेटिव रिव्यूज हैं, तो तुरंत अपना बचा हुआ कॉन्टेक्ट तोड़ दें और उनके इन्वेस्टमेंट ग्रुप से एग्जिट कर लें. तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिनसे आप बच सकते हैं. इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए. सुनते रहे FM 107, दिल से देसी. स्कैम अलर्ट.

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में खुशबू का बहुत प्यारा मकाम है। खुशबू सिर्फ जीनत का जरिया नहीं बल्कि मेहमान नवाजी, सफाई और खूबसूरत यादों से भी जुड़ी होती है। कतरी घरों में अच्छी खुशबू मेहमान के इस्तकबाल और पुरसुकून माहौल की अलामत समझी जाती है। कतर में ऊद और बखूर का इस्तेमाल खास तौर पर मशहूर है। ऊद एक खुशबूदार लकड़ी है जो अपनी गहरी और पुर असर खुशबू की वजह से पसंद की जाती है। जब इसे जलाया जाता है तो इसकी महक घर के माहौल को दिलकश बना देती है। बखूर खुशबूदार अशिया का एक मजमुआ होता है। इसमें लकड़ी, रेशे, खुशबूदार तेल और मुख्तलिफ इतर शामिल किए जाते हैं। हर घर में इसकी तैयारी और खुशबू का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोग हल्की खुशबू पसंद करते हैं जबकि कुछ ज्यादा गहरी महक को पसंद करते हैं। खुशबू पेश करने के लिए अक्सर मुबाखरा इस्तेमाल किया जाता है। मुबाखरा एक रिवायती बर्तन होता है जिसमें जलता हुआ कोयला रखा जाता है और उस पर बखूर या फिर ऊद डाला जाता है। इसे फैलने वाली खुशबू कमरे में धीरे धीरे फैलती है। जब मेहमान घर आते हैं तो कभी उनके इस्तकबाल के लिए खुशबू का एहतमाम किया जाता है। ये रवैया मेहमान के लिए इज्जत और तवज्जो का इजहार होता है। खुशबू का मकसद सिर्फ ये नहीं कि कमरा

0: वो कौन सी बातें हैं जो एक शख्स को अजीम बनाती हैं वो कौन से काम हैं जो एक शख्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं
1: जानना चाहोगे
0: अपने मैदान अमल में कारनामे दिखाने वाले और अपने हौसलों से समुद्र का सीना चीरने वाले ऐसी ही अजीम शख्सियतों और जाबाजों की दास्तान लेकर आए हैं हम इनकी जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डालें सुनिए स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
2: हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा वाह क्या बात है अस्सलाम वालेकुम मरहबा कैसे हैं आप सब मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आज अनटोल्ड स्टोरीज में हम ऐसी ही शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनके ऊपर ये चंद लाइनें पूरी तरह से सूट करती है

आपने वो फिल्म तो देखी होगी आमिर खान की थ्री इडियट्स, याद है, जहां पर पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर कैसे इनोवेशंस किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया। और आमिर खान का कैरेक्टर फुनसुख वांगडू या फिर रणछोड़ दास श्यामल दास छांझड़, जिन्हें प्यार से लोग रांचो कहते हैं, कौन उसे भूल सकता है। वैसे आपको बताना चाहती हूँ, रियलिटी में एक शख्सियत है सोनम वांगचुक, उनसे इंस्पायर होकर आमिर खान के इस कैरेक्टर को बनाया गया था। वेल, सोनम वांगचुक एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काफी सारे इनोवेशंस एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये उन्होंने कैसे सीखा, जब वो छोटे से थे तब से उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया। उसे ऑब्जर्व करते करते जब वो आगे गए तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर हमने पढ़ाई के साथ साथ लाइफ को जीने के तौर तरीके नहीं सीखे तो जिंदगी अधूरी सी होगी। और बस इन्हीं तौर तरीकों को सीखते सिखाते सोनम वांगचुक आगे बढ़ते चले गए। तो आइए उनके बारे में कुछ और बात करेंगे, उनके इस इंस्पिरेशनल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देश।

0: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज हम बात कर रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज में सोनम वांगचुक के बारे में, जिन्हें लोग द मैन ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। यस,
1: आई एम सोनम वांगचुक, आई एम एन इंजीनियर एंड एन इको आर्किटेक्ट।
0: तो सोनम वांगचुक का जन्म हुआ हिमालयन रीजन में लद्दाख में, और एक छोटे से गाँव में जो की 70 किलोमीटर दूर है लद्दाख से। अब वहाँ पर इनकी जिंदगी के शुरुआती तौर के 9 साल यूं ही गुजर गए, क्योंकि वहाँ पर अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह नहीं थे। तो इनकी सबसे पहली टीचर इनकी माँ थी, जिन्होंने इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। यहाँ तक कि अब क्योंकि छोटा सा गांव है तो वहाँ पर खेती किसानी ये सारी चीज़ें तो होंगी, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों पर कूदना, तैरना, ये सारी चीज़ें सोनम वांगचुक बचपन में किया करते थे।
1: I have never thought of my childhood as harsh because we did not miss what we did not know.
0: आगे बढ़ते गए तो वो कहते हैं ना, जिंदगी को जीने की स्किल्स इन्हें बहुत अच्छे से आ चुकी थी। अब पहली बार स्कूल गए कितने साल में, 9 साल की उम्र में, और क्योंकि इन्हें बचपन से ही जिंदगी को जीने के तौर तरीके आते थे तो इनका दिमाग बहुत शार्प था। और आगे बढ़े तो जब 9 साल में पहली बार स्कूल गए तो 2 बार इनको प्रमोट किया। ये सिलसिला आगे बढ़ते चला गया, लेकिन जब ये छोटे थे तो इनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। इनका क्लास में बैठना उठना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो दूसरे बच्चे थे वो इन्हें बहुत छेड़ते थे। ये थोड़ा दिखने में डिफरेंट थे और लोग इन्हें इनकी भाषा को लेकर भी थोड़ा तंग करते थे। ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सोनम वांगचुक ने एक ही लक्ष्य बनाया था कि जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। आगे बढ़े तो बीटेक की डिग्री इन्होंने हासिल की, मैकेनिकल इंजीनियर वैसे तो ये पेशे से हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनकी कई सारी उपलब्धियां हैं। बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने 2 साल की हायर स्टडीज की अर्दन आर्किटेक्चर एट द क्रेटेर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन फ्रांस में। 2011 में ये पढ़ाई उनकी कम्प्लीट हुई। वैसे मैकेनिकल इंजीनियर देखा जाए बाय एजुकेशन, लेकिन इनका ज़्यादातर जो काम रहा वो एजुकेशन की फील्ड को रिफॉर्म करने में गया, और 27 सालों से वो इस फील्ड में डटे रहे और जुटे रहे। कहते हैं ना कि जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई, चाहे घर का हो या बाहर का, हमें परेशान कर ही देता है, या यूं कहें हमारी

जिंदगी के डिसीजन में अड़चन पैदा करता है। और यहाँ पर सोनम की जिंदगी में उनके फादर थे। वो सोचते थे कि भाई इंजीनियरिंग की स्ट्रीम ली है और एजुकेशन में अब काम करेगा, तो ये सारी चीजों को लेकर वो ज्यादा सहमत नहीं थे। ऐसे में जब इंजीनियरिंग कर रहे थे सोनम वांगचुक, तब उन्हें अपने पढ़ाई का पैसा या यूं कहें अपनी पढ़ाई की फीस खुद निकालनी पड़ी, और इसके लिए वो दूसरे बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर उनसे फीस लेकर अपने कॉलेज की फीस जमा करते थे। ये तो शुरुआती दौर की कहानी हुई, लेकिन अब वक्त आ रहा था नए नए इनोवेशंस और नए नए डेवलपमेंट का। एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, एन अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी फॉर माउंटेन डेवलपमेंट जो कि वांगचुक सेटअप कर रहे थे, वहां पर 95% स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स पास नहीं कर पाए थे। ये सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो गए थे और वो साल था 1996 का। अब ऐसे में सोनम वांगचुक ने ये सोच रखा था कि ऐसे बच्चों को वो पास कराएंगे अपने इस इंस्टीट्यूट के जरिए कि कोई भी बच्चा फेल ना हो पाए, और वही हुआ। 2 decades तक ये सिलसिला चलता रहा और हर साल 25% जो फेलियर था वो कम होते गया। और कर्टेसी थी कि सोनम वांगचुक पूरी तरह से बच्चों को अल्टरनेटिव लर्निंग प्रैक्टिसेस के जरिए और भी कई सारे इनोवेटिव मेजर्स के जरिए उनके डेवलपमेंट में उनकी मदद किया करते थे, जिसकी वजह से बच्चों ने पढ़ाई को रियल लाइफ से जोड़कर पूरी तरह से समझकर पढ़ना शुरू किया, और फिर नंबर जो थे वो कटे नहीं, वो बढ़ते चले गए। अब बात है 1988 की, जब वांगचुक ने अपना ग्रेजुएशन पूरी तरह से खत्म किया। अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था जहां पर स्कूल को रिफॉर्म किया जा रहा था गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ मिलाकर। और ये जो ऑपरेशन था इसका नाम था न्यू होप इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड द विलेज कम्युनिटीज एंड द सिविल सोसाइटी टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। वैसे काफ़ी कमाल की मूवमेंट थी, इसके चलते बच्चों ने पढ़ाई को लेकर एजुकेशन को लेकर एक नई अप्रोच महसूस की, यहाँ तक कि जो फेलियर रेट था वो कम होते जा रहा था। लेकिन इस दौरान एक दो बच्चे ऐसे थे जो कि परीक्षा में फेल हो जाते थे। अब ये देखकर सोनम को रहा नहीं गया और उन्होंने पूरे ऑपरेशन को फिर से रीलॉन्च किया ताकि कोई भी बच्चा फेल ना हो सके। और उन्होंने जो ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया उसमें कम से कम 70 से लेकर 100 स्टूडेंट्स रहा करते थे जो कि 10th बोर्ड में पहले फेल हुए थे, लेकिन अब डिस्टिंक्शंस लेकर पास होने वाले थे। हाँ जी, ये बच्चे कौन थे? इन्होंने उस इंस्टीट्यूट को एक छोटी सी कंट्री की तरह बना लिया था, और क्योंकि उनको पढ़ाई एक अलग तरीके से कराई जा रही थी तो वो मेक श्योर करते थे कि वो खेती किसानी भी करते थे, जानवरों का ख्याल भी रखते थे, अपने खाने खुद बनाते थे, और वो कहते ना जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे चाहे जितने भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। और फिर जब पढ़ाई उन्होंने शिद्दत से की तो 10th बोर्ड में ये सारे के सारे पास हो गए। वाह क्या बात है। तो सोनम वांगचुक के इस तरह के इनिशिएटिव एजुकेशन फील्ड में चलते चले आ रहे थे, और उसके बाद कंट्रीज को लेकर एक बड़ा कमाल का इनोवेशन इन्होंने किया। वो क्या था बस कुछ ही देर में बताएंगे, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: मेहमान तुम।
1: वरी सर, आप गए नहीं? आप तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप?
2: ये मेढक, ये बतख और ये केला।
1: मेढक।

0: बच्चों बच्चों बच्चों, कैसी है पेंटिंग? देखिए, देखो,
1: अति सुंदर सर,
2: फर्स्ट प्राइज सर।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ FM 107 पर दिल से देसी
1: Assalamualaikum, marhaba, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का on FM 107 पर मैं हूँ आपकी ये फरमीता और आज Untold Stories में हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो अब तक हमने जाना कि कैसे सोनम वांगचुक ने अलग अलग तौर तरीके आजमा कर बच्चों की जो फेलियर रेट थी यानी स्टूडेंट्स के फेलियर रेट्स को स्पेशली 10th बोर्ड में कम कर दिया। अब आगे ऐसे बड़े बड़े डिसीजन या ऐसे बड़े बड़े इनोवेशन इन्होंने किए जिससे ना कि सिर्फ लद्दाख के लोगों को बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज को भी बड़ा फायदा मिला। यस, तो हम बात करने वाले एक ऐसी इनोवेशन के बारे में जिसे लोग आइस स्तूपास के नाम से जानते हैं। बर्फ के वो स्तूपास जिन्हें कई सारे सीनियर इंजीनियर्स ने भी बनाया था, लेकिन गड़बड़ ये हो जाती थी कि वो आर्टिफिशियल हॉरिजॉन्टल आइस फील्ड्स बना देते थे, यानी कि जो कहते हैं ना आड़े में बर्फ के मैदान। अब वो बनाते थे तो उससे एक प्रॉब्लम सामने आती थी कि प्री मैच्योर मेल्टिंग हो जाती थी। पहले आइस स्तूपा का मकसद ये था कि जब स्कैसिटी रहती है, पानी की कमी रहती है, तो जो लद्दाख के किसान हैं खासतौर से अप्रैल और मई के महीने में, उन्हें उनकी खेती में किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन सीनियर इंजीनियर्स की ये कोशिश नाकाम रही। ऐसे में सोनम वांगचुक ने अपना दिमाग दौड़ाया।
2: Some of us are working on artificial glaciers that conserves the wasting water in winters and stores it in huge mountains of ice. Then in spring, as these mountains melt, it feeds the farms when the farmers need the most. Then in June, the natural glacial melt streams start flowing and there's actually an excess of water. So the challenge is really to make sure that such ice lasts through the critical months of April and May. And for this, we devised a new concept that we call the ice stupa form of artificial glaciers. Cones of ice that rise vertically upwards and hence does not melt easily in the sun.
1: और उन्होंने vertical ice towers को बनाना शुरू किया, यानी कि आड़ा करने की जगह सीधे सीधे बड़े बड़े ice towers बनाने शुरू किए। और ये तब बनाए जब विंटर्स का टाइम चल रहा था और आइस स्तूपास जल्दी जल्दी बन सकते थे और मेल्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी। आगे बढ़े 2014 की बात करें तो ये आइस स्तूपा वांगचुक का एक मेन प्रोजेक्ट बन गया, जिसके चलते उन्होंने ये कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए, लद्दाख के जितने भी फार्मर्स हैं उन्हें अप्रैल मई के महीने में फार्मिंग आसानी से करने को मिले। ये टू स्टोरी प्रोटोटाइप आइस स्तूपा था जहां पर लगभग 1.5 लाख लीटर पानी जमा हो सकता था। वेल, इस इनोवेशन को देखकर 2016 में स्विस एल्प्स की अथॉरिटीज ने वांगचुक को इनवाइट किया कि वो भी स्विट्जरलैंड में आए और वहां आकर आइस स्तूपास बनाए ताकि टूरिज्म अट्रैक्शन बढ़े और पानी की कमी दूर हो सके। 2016 अक्टूबर की बात है कि वांगचुक और उसकी टीम ने मिलकर, साथ में स्विस एल्प्स की टीम ने मिलकर सबसे पहला आइस स्तूपा बनाया यूरोप में। और डेफिनेटली उनके इस इन्वेंशन के लिए उन्हें रोलेक्स अवार्ड और एंटरप्राइज से नवाजा गया। ये इनोवेशन यहाँ पे नहीं रुका। 2018 की बात करें तो कुछ लोकल स्कल्पचर्स आर्टिस्ट के साथ लद्दाख में 10 फुट का ऊंचा आइस स्तूपा बनाया गया। अब ये आइस स्तूपा आसानी से नहीं बना था, लगभग इसमें 25 दिन का हार्ड वर्क लगा, डेडिकेशन लगी, और जो आइस स्तूपा था उसके ऊपर एक आइस स्तूपा बनाया गया। मतलब आप सोच लीजिए, डबल डबल आइस स्तूपा। और टेम्परेचर क्या था? -12 डिग्री सेल्सियस। इतने लो टेम्परेचर्स में ये एंटायर टीम ने काम किया और मेहनत इनकी रंग लाई, क्योंकि वो यही चाहते थे कि जो फार्मर्स हैं और जो आसपास के लोग हैं, लद्दाख पे रहने वाले लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो इनका प्रोजेक्ट था कि वाकई में रंग लाया।
2: इट विल नॉट ओनली सॉल्व द क्राइसिस फेसिंग आवर फार्मर्स बट एक्चुअली हेल्प ग्रीन द वास्ट डेजर्ट लैंड व्हिच वी

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ FM 107 पर दिल से देसी
1: सोनम वांगचुक का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उन्हें काफी डिमांड मिला रहा था लेकिन हर कोई उनसे सहमत भी नहीं हो रहा था चलिए आपको बताते हैं ये बात है 2015 की जब सोनम एजुकेशन की फील्ड में काफी मेहनत कर रहे थे प्लस क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर भी थे तो उन्हें पूरी तरह से पता था कि जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसकी टेक केयर कैसे करते हैं तो हुआ ये कि लद्दाख में एकदम क्राइसिस आ गया लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से पुक्तल रिवर जो है यानी कि पुक्तल नदी वो ब्लॉक हो गई और ब्लॉक हुई तो 15 किलोमीटर लंबी एक लेक या यूं कहें एक नहर बन गई अब वो नहर भी जोरदार पानी के साथ थी और कहते हैं कि लंबी पॉपुलेशन के लिए लंबी आबादी के लिए वो खतरनाक थी वांगचुक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और अथॉरिटीज को अप्रोच किया साइफन टेक्निक के द्वारा उन्होंने बताना शुरू किया कि इस टेक्निक के इस्तेमाल से इस लेक को धीरे धीरे ड्रेन किया जा सकता है लेकिन अथॉरिटीज ने उनकी एक ना मानी उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस पूरे की पूरी लेक को बर्स्ट कर दें ऐसे में वांगचुक ने उन्हें फिर से समझाया कि अगर आप इस पूरी लेक को बर्स्ट कर देंगे तो बहुत बड़ी आबादी जो बड़े बड़े मैदान हैं खेतों के यहाँ तक कि 12 पुल वो सब खराब हो सकते हैं लेकिन अथॉरिटीज ने एक न मानी और उन्होंने उस लेक को बर्स्ट कर दिया और जब बर्स्ट किया तो वही हुआ कि जोरदार बाढ़ आ गई बाढ़ के आने से कई सारे खेतों में पानी भर गया 12 पुल टूट गए और ये नुकसान काफी महंगा पड़ा आगे बढ़कर सिक्किम की गवर्नमेंट ने साइफन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहा वहाँ पर भी एक बड़ी ही खतरनाक नहर लेक यूं कहें तो बन गई थी और उस लेक के पानी को भी कहीं और डाइवर्ट करना चाहते थे ऐसे में साइफन टेक्निक का इस्तेमाल करके वांगचुक की मदद से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया ये सिलसिला चलते जा रहा था लेकिन अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं जहाँ पर हमने सोनम वांगचुक के एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात की तो 2000

2013 की बात है कि जब लद्दाख की कम्युनिटी के सारे स्टूडेंट्स ने एक न्यू लद्दाख मूवमेंट को लॉन्च किया, जो कि एक सोशल कैंपेन था और ये लद्दाख का वर्जन था ग्रीन पार्टी का, जिसका मकसद था कि सस्टेनेबल एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, इस पर काम करेंगे। और पहले मोटिव था कि सारे लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को एक बैनर तले लेकर आएंगे और इस पर काम किया जाएगा। लेकिन बाद में नॉन पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट ये बन गई और इससे भी काफी काफी लोगों को फायदा हुआ। तो जनाब, ये थे सोनम वांगचुक, जिनके बारे में हमने इतनी सारी बातें की। अनटोल्ड स्टोरीज में ये वो शख्सियत थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके ये जताया कि जिंदगी में हर चीज का हल निकाला जा सकता है। कभी कभी पढ़ाई के हल हमको अपनी आम जिंदगी को जीने के तौर तरीकों को आजमाते हुए भी निकाले जा सकते हैं, और फेलियर कभी हमारी लाइफ में नहीं आ सकता। और अगर आप फेल हुए हैं तो हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, ये इन्होंने सिखाया। तो सोनम वांगचुक का एक ही मकसद था कि जिंदगी में हायर एजुकेशन लेना और सारे स्टूडेंट्स को देना, कई सारे कैंपेन्स को एस्टैब्लिश करके, लॉन्च करके, यहाँ तक कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी एस्टैब्लिश किया जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और तभी कहते हैं कि सोनम वांगचुक, जो कि 9 साल की उम्र तक कभी स्कूल ना गए, और जब स्कूल गए तो उसके बाद ऐसा चमत्कार किया कि चाहे टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे गवर्नमेंट्स हों, हर किसी ने उनके इन एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस को लेकर हैट्स ऑफ किया, उन्हें सल्यूट किया। और इसी बात के साथ मेरे जहन में ये कुछ लाइनें आती हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

0: क्यों, सही कहा ना। तो आज हमने सोनम वांगचुक के बारे में बातें की। ऐसे ही हर हफ्ते अनटोल्ड स्टोरीज में कोई ना कोई ऐसी इंस्पिरेशनल शख्सियत जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, वक्त हो गया है मेरे जाने का। शो के बाद अगर आप हमसे रब्ता कायम करना चाहते हैं, देन FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, आपकी ए फॉर अमिता वहीं मिल जाएगी। ठीक है, अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
1: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान

0: आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड मकर के आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: Maximum music, maximum fun.
4: On FM 107, Dil Se Desi.

0: उस तरह इंतजार में रहना कि हक जाहिर हो जाए, बहुत ही एक सख्त मरहला है।
1: आप सुन रहे हैं कसस अल कुरान
2: आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर।
0: तो अब यूसुफ अलैहि सलाम जो कभी गुलाम की हैसियत से मिस्र पहुंचे थे कहते हैं इजअलनी अला खजाइन अल अर्ध इन्नी हफीज़ुन अलीम, मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। ये खजानची कहते हैं ना, तो ये वाला है, मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। देखिए सफर कहाँ से कहाँ पहुंचा, कुएं की तह से खजाइन मिस्र तक, फरोख्त किए जाने से इंतजामी इख्तियार तक, कैदी से एक जिम्मेदार और बाइख्तियार मकाम तक। और फिर वो मंजर आता है जिसके लिए शायद पूरी दास्तान हमें तैयार कर रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को बुलंद मकाम पर बिठाते हैं। अल्लाह अकबर, कौन नहीं चाहता कि अपने वालिदैन को उस मकाम पर पहुंचाए जिसके वो यानी जमानों बरसों भर उसके इंतजार में रहते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को उस बुलंद मकाम पर बैठाते हैं और उनके अहले खाना उनके सामने ताज़ीम सजदे में झुकते हैं, जो उस वक्त की शरीयत में जायज़ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं या अबती हाज़ा तअवील रुया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, अब्बाजान ये मेरे लिए उस पहले ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच कर दिखाया। वो ख्वाब जो बचपन में देखा था रास्ता उस तक सीधा न था, ख्वाब के फौरन बाद तख्त नहीं आया, यानी वहाँ काफी सारी चीजें झेलनी पड़ी, हसद कुआं गुलामी आजमाइश कैद इंतजार, फिर जाकर वो ताबीर जो है ना आगे आई।
3: भाई देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कहना चाहिए हम दुआ करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट जो है वो सीधा हमारे सामने आ जाए, लेकिन अल्लाह सुभान व तआला का रूट कभी ज़िगज़ैग होता है। आप डेस्टिनेशन देखते हैं, अल्लाह सुभान व तआला डेवलपमेंट भी देख रहे होते हैं। आप कहते हैं भाई मुझे यहाँ पहुँचना है, अल्लाह सुभान व तआला शायद कहते हैं पहले तुम्हें वो इंसान बनना है जो वहाँ पहुँचने के बाद उस मकाम को संभाल सके। भाई कितना इम्पोर्टेंट बात है। देखिए
0: अच्छा जी सामने किराम, किस्सा तो हमने सुन लिया, ये वाकया मुख्तसर अंदाज में, चूंकि वक्त उतना नहीं है तो हमने कोशिश की, हमारी कोशिश ये रही कि वो जो अहम जो मकामात हैं वो आपके सामने पेश कर दिए जाएं। अच्छा सूरह यूसुफ की दास्तान को अब हम देखने की कोशिश करेंगे नफ्सियाती पहलू से। सूरह यूसुफ की दास्तान अगर सिर्फ वाकयात की तरतीब से पढ़ा जाए तो हाँ ये अजीम किस्सा है, किसी ने इसको गम का किस्सा कहा, किसी ने इसको जमाल का किस्सा कहा। वैसे सूरह यूसुफ पढ़ते हुए बहुत मजा आता है, और यानी सामीन अगर आप सूरह यूसुफ किसी कारी से पढ़ते हुए सुनते हैं तो आपको वो अगर आप वो दिलचस्पी जरूर महसूस करेंगे, ये तो यानी फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ। लेकिन अच्छा अब अगर हम इस सूरह को जरा ठहर कर उसके किरदारों को देखें तो यहाँ एक और दुनिया है। ये सूरत सूरह यूसुफ हमें ये नहीं बताती कि क्या हुआ बस और इस पर इत्तेफाक कर लिया, नहीं, ये सूरह हमें ये भी दिखाती है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे हसद करता है, कैसे अपने गलत फैसले को अपने लिए जायज बनाता है, कैसे खूबसूरत अल्फाज के पीछे बुरी नीयत छुपाता है, और फिर कैसे वही इंसान वक्त के साथ बदल भी सकता है। और शायद सूरह यूसुफ की एक खास खूबी भी यही है कि उसमें इंसानी किरदारों की एक पूरी गैलरी हमारे सामने आ जाती है। इब्तिदा में यूसुफ अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम उनके भाई, यानी उनके भाई मकसद है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। फिर काफिला आता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स, अजीज मिस्र का घर, फिर अजीज की बीवी, शहर की औरतें, कैद खाना और वहाँ दो नौजवान कैदी, फिर बादशाह, बादशाह का दरबार, ख्वाब की ताबीर के मामले में दरबार के लोग, और फिर कई बरस बाद दोबारा भाई, यानी वही भाई जिसको उन्होंने जिस पर ज्यादती की थी, अब दोबारा भाई उनके सामने आ जाता है। तो क्या तवक्कु कर सकते हैं, वो क्या करेगा, अब तो कमजोर नहीं है वो भाई, अब तो वो इस्तेकाम के आखिरी मकाम तक पहुंच चुका है। यूं हर नया बाब, हर नया मरहला इंसानी तबीयत का एक नया रंग भी सामने ले आता है।
3: वाह बहुत क्या जबरदस्त, कहना चाहिए लुब्बे लुबाब आपने सूरह का जो है पेश किया। तो मुझे लगता है कि ये सूरह हमें पीपल रीडिंग भी सिखाती है। भाई टूल्स चेंज हो जाते हैं, जमाना चेंज हो जाता है, कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज हो जाता है, लेकिन जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो ह्यूमन नेचर है, वो बड़े ही मतलब बहुत ही हद तक वहीं का वहीं रहता है। भाई आज भी जैसे जाहिर बात है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हम लोग सोचा करते थे या लोग सोचा करते थे, तो सोच हमारी भी आज वैसी ही है, इसलिए तो आप हमें सिखा के गए और बता के गए बातें जो ताउम्र और ता कयामत तक जारी रहने वाली है। तो जेलेसी आज भी जेलेसी है, मैनिपुलेटेशन आज भी मैनिपुलेटेशन है, गिल्ट आज भी गिल्ट है, और भाई सिंसियर लव आज भी हकीकी मोहब्बत है। इसलिए कुरान की स्टोरी जो है वो कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि भाई हमारा जो नेचर है वो भी तो कभी पुराना नहीं होता।
0: बिल्कुल सर भाई, सूरत के आगाज ही में दो टोक अल्फाज में अगर हम कहें कि जो रहनुमाई हमें मिलती है इंसानी तबाही के हवाले से, वो ये कि हर अच्छी खबर हर शख्स के सामने बयान करना मुनासिब नहीं होता। ये बहुत अहम
3: ये सबक जो है, ये असली है।
0: बिल्कुल, क्योंकि नेमत बाज दिलों में खुशी पैदा करती है और बाज दिलों में हसद। और इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उस ख्वाब की बात सुनी यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने बेटे से, तो क्या कहा, या बुनैया ला तक्सुस रुयाका अला इख्वतिक फयकीदू लका कैदा, बेटे अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। तो ये फरासत है और इस पर हमें भी अमल करना चाहिए, समझना चाहिए कि
3: ये बात,
0: किसको ये खबर पहुंचाई
3: भाई, ये मतलब मसला हो जाता है कि भाई मैं अपने भाई से छुपाऊंगा, मैं अपने बहन से छुपाऊंगी।
0: सोचिए
3: आप कैसी बातें कह रहे हैं या आप कैसी बात कर रहे हैं। यहाँ वालिद साहब एक पैगंबर दूसरे पैगंबर को क्या ताकीद कर रहा है।
0: अल्लाह अकबर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नतीजा आपने निकाला कि यहाँ तक कि फैमिली के बाउंड्स के अंदर भी खबरें छुपाई जा रही है, एक मकसद है। चूंकि बाज़ोकात आपके खून के लोग भी वो बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
3: सुभान अल्लाह।
0: बिल्कुल वही हुआ, यानी जब जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया भी नहीं भाइयों को, लेकिन फिर भी वो तरह तरह के चालें चलने लगे भाई। तो बाद में ये किस्सा सबको पता है कि आगे जाके क्या हुआ। मंतकी एतबार से भी सोचें, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हो जाता कि अल्लाह ने उनके छोटे भाई के लिए कोई गैर मामूली मकाम मुकद्दर किया है, तो अकल क्या कहती है, अरे भाई ये हमारा भाई है, उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, उसका मकाम हमारे घराने का शरफ है, उसकी हिफाजत करें, उसे मोहब्बत दें, उसकी कामयाबी पर खुश हों। लेकिन हसद अकल के हिसाब से नहीं चलता। हसद कहता है कि अगर किसी दूसरे को रोशनी मिली है तो मेरी रोशनी कम हो गई, अगर किसी और को मोहब्बत मिली तो मेरे हिस्से से कुछ चला गया। और यही ज़हनी कैफियत इन अल्फाज में सामने आती है, लयूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब है, हालांकि हम एक मजबूत जमात हैं। तो ये मसला यहाँ ये नहीं कि हमें भी मोहब्बत चाहिए, अगर मसला इज्जत तक होता तो फिर मसला यानी मामला आगे जाता ही नहीं। तो लेकिन बात तो आगे बढ़ती है और वो कहते हैं उक्तुलु यूसुफ अव इत्रहु अर्दन यखलु लकुम वजहु अबीकुम, कितनी जुरत के साथ वो कहते हैं यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी दूर जमीन में फेंक दो ताकि तुम्हारे बाप की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। तो सर भाई यहाँ हसद अपने पूरे तबाकुन मंतक के साथ सामने आता है कि मुझे मोहब्बत भी चाहिए ये ख्वाहिश थी, लेकिन उसके साथ दूसरा एक मंतक एक वो भी खड़ा हो गया कि भाई को खत्म कर दो। तो ये हसद का जुनून है।
3: तो भाई यहाँ पर भी एक सबक हमें मिलता है कि हर ब्लेसिंग जो है उसको हर जगह अनाउंस करते मत फिरिए, है ना, ये भी समझदारी की बात नहीं है। हर प्लान पब्लिक करना जरूरी नहीं होता, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इवन घर वालों से भी, इवन भाई बहनों से भी, क्योंकि ये सबक हमें अल्लाह सुभान व तआला कुरान में बता रहे हैं सीधे सीधे, ये सीधे सीधे अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं भाई हर सक्सेस को हर इंसान के साथ शेयर करना जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि आप पैरानॉइड होना नहीं है आपका, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट होना जरूर है। आपको पता होना चाहिए कि कौन आपकी खुशी से जेन्युइनली खुश हो रहा है और कौन कंपैरिजन में लगा हुआ, जैसे अभी तला भाई ने बताया। तो प्राइवेसी कभी खौफ नहीं होती, है ना, कभी विजडम होती है, ये बात याद रखें।
0: फिर सामने किराम सूरह यूसुफ में एक और गैर मामूली तरबियत हमें मिलती है कि कुरान चाहता है कि मोमिन पाक दिल हो जरूर, यानी पाक दिल तो जरूर होना चाहिए लेकिन सादा लोह ना हो, यानी ऐसा सादा सीधा बंदा कुछ समझता ही नहीं है, नहीं समझदार बंदा होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की जबान को सुनिए कि अपने वालिद के पास आए और कितने नरम अंदाज में कहा, या अबाना मालिक अला तमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून, अबा जान क्या बात है, क्या आप यूसुफ के बारे में हम पर इत्माद नहीं करते, हालांकि हम तो उसके सच्चे खैर खा हैं। जरा लफ्जों की मिठास देखिए, व इन्ना लहू लनासिहून, हम तो उसके खैर खा हैं। फिर फरमाया अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, वो खाते पीते खेलेगा उधर, हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। यानी पूरा प्रपोजल ऐसा बनाया गया कि एक बाप का दिल नरम हो जाए, उस बच्चे को भी कुछ तफरी मिल जाए, हम भाई हैं, हम उसके खैर खाएं, हम हिफाजत करेंगे। लेकिन अल्फाज के पीछे मनसूबा कुछ और था।
3: और देखिए मैनिपुलेशन अक्सर इसी तरह काम करती है, वो आपको सीधा नहीं कहती कि मैं

0: Midnight Melodies, only on FM 107. Dil Se Desi.
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की.
3: Wellness is finding yourself, finding what brings you joy. And what keeps you whole?
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों सुनना न भूलें शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
4: दोस्तों घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है. याद रखिए आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है. फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं. सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है. हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर. आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो. फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम पास का ध्यान रखें. PASS जिसका मतलब होता है पी फॉर पुल यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें. दूसरा है ए यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें ना कि आग के ऊपर. नंबर 3 है एस जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रिलीज हो. और चौथा है दोबारा से एस यानी स्वीप, नोजल को साइड टू साइड घुमाते हुए आग पर स्प्रे करें जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना जाए. फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप इमरजेंसी नंबर या लोकल फायर डिपार्टमेंट का कॉन्टेक्ट नंबर हाथ में रखें और किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए आप सभी को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दें. FM 107 आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है.

कहा, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उनसे अलग एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने उन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर न निकाल ले जाएं, और हमारे वालिद एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया, फिर एक साय की जगह जा बैठा और बोला, परवरदिगार, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूं। कुछ देर न गुजरी थी कि उन दोनों औरतों में से एक शर्म और हया के साथ चलती हुई उसके पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे लिए जानवरों को जो पानी पिलाया है उसका अजर आपको दें। मूसा जब उसके यहां पहुंचा और अपना सारा किस्सा उसे सुनाया तो उसने कहा, कुछ खौफ न करो, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। इन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, इस शख्स को नौकर रख लीजिए, बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो मजबूत और अमानतदार हो। उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, बशर्त ये कि तुम 8 साल तक मेरे यहां मुलाजिमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता, तुम इंशाल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी कर दूं उसके बाद फिर कोई ज्यादती मुझ पर न हो, और जो कुछ कौल व करार हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर निगहबान है।